नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 19 अगस्त 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके साथ ही न्यूज ऑन EIR ऐप के माध्यम से भी आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं। सुबह के 6 बजने ही वाले हैं, समाचार थोड़ी ही देर में अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल किया है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4 स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। एनटीए के कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे। एनटीए ने यह निर्णय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश के बाद लिया। इसमें परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी उपाय करने को कहा गया था। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण 44 भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार ने 8 अधिसूचनाएं जारी की। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं। रद्द परीक्षाओं में औषध निरीक्षक, सहायक प्रोफेसर, डिप्टी कलेक्टर, दंत चिकित्सक, सहायक अभियंता, सिविल जज, अपर लोक अभियोजक और वन अधिकारी समेत कई पदों की भर्ती परीक्षाएं शामिल हैं। सरकारी पॉलिटेक्निक में व्याख्याता, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, सहायक वन संरक्षक और अन्य प्रशासनिक तथा तकनीकी पदों की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। अधिसूचनाओं में कहा गया है कि जेपीएससी और जेएसएससी में अनियमितताओं से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय से त्वरित अदालत गठित करने का भी अनुरोध किया जाएगा। सरकार ने पाइप से रसोई गैस पीएनजी कनेक्शन घर घर पहुंचाने की योजना को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। ये योजना 1 सितंबर से 2 चरणों में लागू की जाएगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य अधिक परिवारों तक पाइप से रसोई गैस पहुंचाना है। वर्तमान में देश में 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन हैं। निर्वाचन आयोग ने देश की चुनाव व्यवस्था पर एक फैक्ट शीट जारी की है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य विधानसभा तथा विधान परिषदों के चुनाव स्वतंत्र वैधानिक संस्था निर्वाचन आयोग कराता है। आयोग ने बताया कि लगभग 1 अरब मतदाताओं को फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र जारी किए गए हैं। ये फैक्ट शीट अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनावी प्रक्रिया का जिक्र किए जाने के बाद जारी की गई। गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर आज शाम चेन्नई पहुंचेंगे। श्री शाह कल चेन्नई के पास कोवलम में दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। भारत ने पर्यावरण से जुड़े प्रयासों को जन केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने पर बल दिया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में ये बात कही। श्री यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों की चुनौतियों का उल्लेख किया।
1: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
2: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और जापान की प्रगाढ़ साझेदारी और उनके रणनीतिक महत्व पर बल दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों को भारत में निवेश और साझेदारी बढ़ाने के लिए भी आमंत्रित किया। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कल जापानी प्रतिनिधिमंडल से कहा कि दोनों देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को बमबारी की धमकी दी है। 2 क्षेत्रीय अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ओमान के ईरान के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही को लेकर समझौते के करीब पहुंचने से नाराज हैं। नीदरलैंड्स के एम्स्टलफेन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। अगले दौर में जगह बनाने के लिए दोनों टीमों के लिए मुकाबला काफी प्रमुख है। भारत के 2 मैचों में 3 अंक हैं और अगले दौर में पहुंचने के लिए उसे कम से कम ड्रॉ की जरूरत है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: यह है विविध भारती।

सुनिए आज का चिंतन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कथन है, किसी भी व्यक्ति के विचार ही सब कुछ हैं। वो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। आइए सुनते हैं भक्ति रचनाएं।

ईश्वर प्रदत्त इस जीवन में हमारा मन प्रधान है। वो हमारे वास्तविक विचारों की प्रतिमूर्ति है। मन निर्मल तो जीवन संयमित।

प्रभु नाम जपते जपते मन भूल जाता है संसार के बंधनों को। इस मगन मन से होते हैं असंभव कार्य भी संभव।

आस्था का ही अनोखा रूप है देशभक्ति। मातृभूमि की सेवा और उनके प्रति समर्पण की भावना ईश्वर भक्ति के समान ही संतोष देने वाली है। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं देशगान।

सुबह 6:35 से श्री रामचरितमानस आज सुनिएगा 250वां भाग। छह बजकर 45 से संगीत सरिता के अंतर्गत इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ताल प्रवाह तबला वादक भाग तीसरी। आप सुन सकते हैं कलाकार पंडित कालीनाथ मिश्र, भूले बिस्तर गीत। कार्यक्रम का समय 7:00 का। हम है राही प्यार के कार्यक्रम सुन सकते हैं 7:30 से 8:00 से समाचार प्रभात। 8:15 से त्रिवेणी, 8:30 से चित्रलोक, 9:30 से आज के फनकार। कार्यक्रम आज केंद्रित है संगीतकार खयाम पर। सुबह 10:00 से सेलुलॉयड के सितारे, इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण सुनेगा अभिनेता यशपाल शर्मा और अभिनेत्री प्रतिभा शर्मा से ममता सिंह की बातचीत की पहली कड़ी। कार्यक्रम रंग तरंग का समय 11:00 का और 12:00 से हिंदी में समाचार। दोपहर 12:05 से यादों की महफिल, 1:00 से सुरीला सफर, 2:00 सुनिए त्रिवेणी और 2:15 से दोपहर समाचार। सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 2:30 से, 3:00 से सखी सहेली, 4:00 सुनिएगा कार्यक्रम आज की मेहमान। इसमें आज सुनिए अभिनेता निर्देशक पंकज रैना से विधि जैन की बातचीत। 5:00 से छाया गीत का पुनः प्रसारण। शाम 5:30 से तराने नए पुराने और 6:00 से हिंदी में समाचार। शाम 6:05 से जारी रहेगा कार्यक्रम तराने नए पुराने। 6:35 से संध्या रंजन। शाम 6:45 से सुनिए संगीत सरिता। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ताल प्रवाह तबला वादक। आज सुनिएगा तीसरी कड़ी। कलाकार हैं पंडित कालीनाथ मिश्र। शाम 7:00 से जय माला। 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम राग अनुराग।

रात 8 बजे से हवा महल में सुनिए झल की अधूरी बात। लेखन वीएम आनंद का, निर्देशन विजय दीपक छिब्बर का। रात 8:15 से नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुन सकते हैं चित्रलोक। 8:45 से समाचार संध्या। रात 9 बजे से कार्यक्रम आपके लिए। से आज के फनकार, आज रात ये आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता उत्पल दत्त पर। रात 10 बजे से छाया गीत। 10:30 से सुनिए ढलती जाए रात और 11 बजे रंग तरंग का पुनः प्रसारण। आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत आज के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस। आज सुनिए 285वीं भाग।

राक्षस इतने बलवान और बड़े योद्धा हैं, उन्हें नन्हे नन्हे वानर भला किस प्रकार मार सकेंगे? सीता जी का ये संशय हनुमान ने सुमेरु जैसा अपना आकार दिखाकर पल भर में मिटा दिया। फिर छोटा रूप धारण कर बोले, हे माता, वानरों में बलबुद्धि तो नहीं होती, किंतु प्रभु की कृपा से छोटा सांप भी गरुड़ को खा सकता है। सीता जी को सभी प्रकार से संतुष्ट करके पवन पुत्र ने अपनी भूख मिटाने के लिए न केवल फल फूलों का आहार करना आरंभ किया, बल्कि इस क्रम में पूरी वाटिका ही उजाड़ डाली। रोक टोक करने वाले रखवालों को मसल कुचल कर मार डाला। विध्वंस का समाचार सुनकर रावण ने बंदर को पकड़ लाने के लिए योद्धा भेजे। उनका संहार सुन अपने पुत्र अक्षय कुमार को पठाया। एक भयंकर गर्जन के साथ जब हनुमान ने एक वृक्ष उखाड़कर उसे भी मार डाला, तो रावण के क्रोध की सीमा न रही। उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ को आदेश दिया कि वो जाकर उस वानर को बांध कर ले आए।

0: संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ताल प्रवाह। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध तबला वादक कालीनाथ मिश्र। आपसे बातचीत की है रामकृष्ण दास ने। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी।
1: संगीत सरिता के श्रोताओं, आपको रामकृष्ण दास का नमस्कार। आप सभी को मैं स्वागत करता हूं आज के तबला कलाकार श्री कालीनाथ मिश्रा जी का।
2: नमस्कार। नमस्कार
1: मिश्रा जी, आप बनारस घराने के बहुत ही सुप्रसिद्ध तबला वादक हैं। हमने सुना है कि बनारस के जो बाज है उसको पूरब अंग का बाज कहा जाता है। दिल्ली से तबला शुरू हुआ और उसके बाद लखनऊ आया और लखनऊ से बनारस। तो बनारस बाज का क्या खासियत है? इसमें हमने सुना है कुछ थपिया बाज भी होता है और दिल्ली किनार का बाज होता है, तो इस बारे में थोड़ा आप हमारे श्रोताओं के लिए प्रकाश डालें।
2: सबसे पहले मैं कालीनाथ मिश्रा अपने साथियों कलाकारों के साथ सुनने वाले सभी संगीत सरिता को मैं प्रणाम करता हूं। और जैसा कि दास बाबू ने जिक्र किया थाप, हमारे बनारस घराने का जो थाप का एक
1: क्या बात,
2: ये जो तका का जो बोल है, पहले तो मैं बताऊं आपको दास बाबू की तबला का मतलब क्या होता है। तबला ये फारसी शब्द है, इसका नाम था तबल
1: जी।
2: और हमारे गुरु जी ने मुझे बताया कि त से होता है तल, ब से होता है बल और ल से होता है लय।
1: क्या बात,
2: और हमारा लय प्रवाह है ये, तो तीनों का एक समावेश होना चाहिए।
1: हाँ, इसी में मुझे याद आया किसी तबला वादक ने कहा है कि पखावज से तबला बना है।
2: जी हाँ, जी हाँ,
1: कि तब भी बोला इसे कुछ बात
2: जी,
1: है।
2: जी, हाँ,
1: इसके बारे में
2: पखावज
1: बताइए ना।
2: क्या है दास बाबू, कि पखावज को काट के तबला का निर्माण हुआ और ये सारा से जाता है हमारे अमीर खुसरू साहब को।
1: अच्छा,
2: हर म्यूजिक के साथ इंस्ट्रूमेंट के साथ पखावज मैच नहीं होता था, तो उन्होंने पखावज को काटा और सारा श्रेय जाता है हमारे दिल्ली घराने के सिद्धार्थ खान साहब को, जिन्होंने तबले के बोलों को निर्माण किया कि तबला कैसे बजेगा। तो पखावज को काटा, तो पखावज तो लकड़ी था, तो उसको काट के बनाया गया और सिद्धार्थ खान साहब ने बजाया उसको। तो थाप का जो अंदाज है वो हमारे श्रेय जाता है हमारे बनारस घराने के राम सहाय जी, बूंदी महाराज जी, किशन महाराज जी। किशन महाराज जी का थाप का तो खैर क्या बात है। थाप का एक अंदाज होता है कि आपके बोलों में वजन होना चाहिए।
1: अच्छा,
2: लेकिन वो थाप आप हर जगह किसी के साथ अगर आप संगत कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट के साथ, गाने के साथ,
1: नाच में ज्यादा थाप लगा
2: नाच में, और अगर तबला प्लेयर तबला वादक सोलो बजा रहा है,
1: अच्छा,
2: तो वो उस वक्त स्टेज पर शेर है, वो थाप भी दे सकता है, जोर से बजा सकता है। वो थाप के एक अंदाज होता है, ये भी थाप है
1: जी।
2: लेकिन ये हम गाने के साथ कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट के साथ कर, लेकिन जब सोलो बजाएंगे

0: लगे कि किसी ने पानी में एक लाठी मार दिया।
1: आज आप कौन सा ताल बजाएंगे हमारे श्रोताओं के लिए?
0: आज हमने सोचा कि ताल प्रवाह है, तो सुनने वाले श्रोताओं को मैं आज झपताल के बारे में बताता हूं। झपताल, वो पलक झपता है ना, वहां से शुरुआत हुई झपताल। 10 मात्रे का ताल है और इसमें भी 2 ताल है। देखिए पहले कैसे बनाने वालों ने कैसा बनाया है कि रूपक ताल के 3-4 अलग अलग तालों का नाम है। 3 ताल में भी अद्धा ताल करते हैं, अलग अलग आदि ताल भी है। झपताल में 2 ताल है, धी ना धी धी ना, ती ना धी ना, 1 पर ताली, 3 पर ताली, 8 पर ताली और 6 पे खाली है। और इसी का एक ताल का नाम है सुल ताल, सुलफाट ताल, वो भी 10 मात्रे का है। तो प्रस्तुत करता हूं श्रोता झपताल।
1: मैं इसमें और एक बात जानना
0: जी,
1: आपने सुलताल के जिक्र की।
0: हाँ।
1: सुलताल पखावज के लिए
0: जी, पखावज का बोल है वो।
1: और एक ताल होता है उसूले फाखता,
0: वही वही है
1: वो। क्या, लेकिन वो पखावज पे तो नहीं बसता होगा?
0: नहीं, पखावज का ही है वो। धा अच्छा, धा दे।
1: और अमीर खुसरो की बनाई हुई ताल,
0: अमीर खुसरो साहब का है, लेकिन वही पखावज के अंदाज से बनाया।
1: अच्छा,
0: धा धा दिन धा टीट धा टेटे धा दे गिन धा, ये अंदाज है। अब वो झपताल कैसे बजेगा श्रोता, सुनिए दास बाबू प्रस्तुत है झपताल।

0: अब देखिए दास बाबू, ये हमारे बनारस की खास स्टाइल है
1: जी,
0: उसका एक अंदाज है। जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने के पहले आलाप जोड़ शुरू करते हैं बिना ताल के
1: जी,
0: उसी तरह से तबला वादक भी शुरू कर सकता है
1: जी,
0: जिसको कहते हैं हम आमद।
1: अच्छा,
0: ताल में आने का अंदाज़।

इसको कहते हैं गमक। ये आपको ज्यादातर सरोद में मिलेगा। मुझे याद है कि मैं कार्तिक कुमार जी के साथ जब बजा रहा था इसी संगीत सरिता में जी, तो उन्होंने सुरबहार जो गमक, तो उसी का अंदाज है, बाएं का अंदाज़।

0: क्या बात है मिश्रा जी, आपने डग्गे का काम बड़ी अच्छी तरह से बताया, बहुत अच्छा लगा। इससे मुझे याद आ रहा है आप ही के घराने के एक बहुत अच्छे तबला वादक कुमार बोस जी,
1: क्या
0: पंडित कुमार बोस, उन्होंने भी डग्गा पर बहुत काम किया है।
1: आपको मैं बता दूं दास बाबू, आपने नाम जिक्र छेड़ा तो किशन महाराज जी के ऐसे ऐसे शागिर्द हैं, उसमें से इनको तो मैं कहता हूं कि ही इज जस्ट लाइक टाइगर ऑन स्टेज, कुमार दादा। उनका रियाज करने का अंदाज, अरविंद आजाद हैं देखिए पूना में
0: जी,
1: उनका भी एक अंदाज है, तो उनका जो तरीका है वो किशन जी के, महाराज जी के, हमारे गुरु जी के शिष्य हैं वो।
0: इसी सिलसिले में और एक बात याद आ रही है, जब मैं कुछ तबला वादकों से बात कर रहा था तो उन लोगों ने कहा कि भाई ये बनारस के तबला वादक कभी कभी ढोलक का अंग भी डग्गे में दिखाते
1: जी हाँ,
0: हैं,
1: जी हाँ, एकदम जरूर
0: तो
1: है।
0: उसका क्या मामला है? और जब किशन महाराज जी से एक बार मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि बहुत सारे ताल वाद्य
1: जी
0: का समावेश
1: जी
0: बनारस के तबले में
1: जी हाँ
0: आया है,
1: जी हाँ,
0: उसके बारे में थोड़ा बताइए।
1: मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन हमारा अभी ये एपिसोड चल रहा था झपताल,
0: जी
1: हम जब आगे के एपिसोड में आएंगे कि दादरा कहरवा क्या होता है उसमें हम जरूर दिखाएंगे। दास बाबू, मैंने पहले भी कहा था कि पुराने फिल्मों में प्योर क्लासिकल को लिया गया है।
0: जी
1: आपको पता है फिल्म प्रोफेसर में झपताल का एक बड़ा सुंदर गाना है,
0: अच्छा
1: लता दीदी और रफी साहब का गाया हुआ है, धीर।

ताल प्रवाह। इस श्रृंखला की ये थी तीसरी कड़ी। जाने माने तबला वादक श्री कालीनाथ मिश्र से बातचीत की रामकृष्ण दास ने। इस श्रृंखला में कालीनाथ मिश्रा जी को सारंगी पर लहरा दे रहे हैं उस्ताद फारूख लतीफ खान और हारमोनियम पर हैं विनोद पड़गे जी। तकनीकी सहयोग वंदना ठाकुर और निखिल धामापुरकर। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जय।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है संगीतकार खयाम की पुण्यतिथि, तो आज के इस कार्यक्रम में उनके संगीतबद्ध गीतों के जरिए उन्हें याद करेंगे।

लता मंगेशकर और हरी ईरानी की आवाज में हसरत जयपुरी की बोल आप सुन रहे थे खयाम का संगीत। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। खयाम का संगीत बद्ध किया ये गीत फिर सुबह होगी फिल्म से है। आशा भोसले की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल।

0: ही हो।
1: प्यासे दिल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, मुकेश की आवाज, जानिसार अख्तर के बोल, खयाम का संगीत।
2: देखो वृंदावन की कुंज गलिन में ऐसी धूम मचाई हाथ में ले गुलाल मुखड़े पे डाल रंग दियो लाल देखो कमाल ऐसी धमाल रे अंग अंग में राग रंग भर भर के आज और सज के लाल ना के लोग लुगाई लगा दिन था।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। और अंतराल में जाने से ठीक पहले हम आपको सुनवा रहे थे राज प्रतिज्ञा फिल्म का गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में। भरत व्यास के बोल थे सन्मुख बाबू का संगीत। तो चलिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में आप सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: आशा भोसले की आवाज में लाला रुख फिल्म का गीत आपने सुना, कैफी आजमी के बोल खयाम का संकेत।
1: कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, वे सीधे दिल में उतर जाती हैं। वीर जारा, टोरबाज, इंडियाज मोस्ट वांटेड, सीआईडी, अदालत, जाने कितनी फिल्मों और धारावाहिकों में देखा है उनका अभिनय और सुनी है उनकी सशक्त आवाज।
2: अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं जीवन में, आपके मन में वैसी दीवानगी और एकदम पागलपन होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग।
1: अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, वॉइस ओवर आर्टिस्ट और डबिंग डायरेक्टर पंकज रैना की कश्मीर से लेकर मुंबई तक की सारी यादें करेंगे विशेष मुलाकात 19 अगस्त 2026 को आज के मेहमान कार्यक्रम में शाम 4 बजे। सुनिएगा विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन पर।
3: मैं यहां।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

0: आप सुन रहे थे हम है राही प्यार के फिल्म के इस गीत में जानिसार अख्तर ने से लिखा तलत महमूद का संगीत। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आप सुन रहे हैं विविध भारती पर।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुम्हें बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपके आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
2: दिना दिना हे आला दिना बदली दुनिया के आया नया।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

अली बाबा और 40 चोर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी की आवाज, असद भोपाली के बोल, उषा खन्ना का संगीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आपको बता दें कि सुबह 9:30 पर आप आज के फनकार कार्यक्रम सुन सकते हैं, जो कि संगीतकार खयाम पर केंद्रित है। और इसके साथ ही 10 बजे से पुनः प्रसारण में सुनिए अभिनेता यशपाल शर्मा और अभिनेत्री प्रतिभा शर्मा से

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम हम है राही प्यार के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

मोहब्बत इसको कहते हैं। फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, मुकेश और आशा भोसले की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, खयाम का संगीत। संगीतकार खयाम की पुण्यतिथि पर आज का हम है राही प्यार के कार्यक्रम उन्हीं के संगीतबद्ध गीतों से सजा है। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की अगली रचना फिल्म शोला और शबनम से, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें, कैफी आजमी के बोल।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
3: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया,

0: काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के, और अंतराल से ठीक पहले आपने सुना त्रिशूल फिल्म का गीत लता मंगेशकर और येसुदास की आवाजों में साहिल उद्यानवी के बोल खयाम का संगीत। संगीतकार खयाम की पुण्यतिथि पर उन्हीं के संगीतबद्ध गीतों पर आधारित है आज का ये कार्यक्रम।

खयाम के संगीत से सजा ये गीत आप सुन रहे थे। कभी कभी फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में, साहिल लुधियानवी के बोल। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर, हम है राही प्यार के, जिसमें आज संगीतकार खयाम के पुण्यतिथि पर उन्हीं के संगीतबद्ध गीत हम आपको सुनवा रहे हैं।

थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की युगल स्वरों में गुलजार के बोल खय्याम का संगीत। आइए अब सुनते हैं खय्याम के संगीत से सजा ये गीत। आहिस्ता आहिस्ता फिल्म के इस गीत में शब्द निदा फाजली के, आवाजें आशा भोसले और अनवर की।

हर एक मंजर नया सा है, हंसी लगने लगी हर रहगुजर, हंसी लगने लगी हर रहगुजर आहे।

आहिस्ता आहिस्ता फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले और अनवर की आवाजें, निदा फाजली के बोल, खयाम का संगीत। और इसके साथ ही आज का हमेरा ही प्यार के कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने घरेलू पाइपलाइन गैस कनेक्शन को घर घर पहुंचाने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 600 पुराने विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए। झारखंड सरकार ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बीच अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की। दिल्ली जल बोर्ड रिश्वत मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन और 5 अन्य गिरफ्तार। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान पर मिसाइल हमले का आरोप लगाते हुए व्यापारिक और वित्तीय लेनदेन स्थगित किए। और नीदरलैंड्स में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पाइप से रसोई गैस पीएनजी कनेक्शन घर घर पहुंचाने की प्रक्रिया तेज करने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। ये योजना 1 सितंबर से 2 चरणों में लागू की जाएगी। एक रिपोर्ट।
4: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार योजना के माध्यम से मौजूदा पीएनजी कनेक्शनों को अपने रसोई घरों में पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल शुरू कर सकेंगे। वर्तमान में देश भर में करीब 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन है। मंत्रालय ने बताया कि योजना के अंतर्गत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CGD कंपनियों को बिना बिल वाले कनेक्शनों को सक्रिय करने और पीएनजी नेटवर्क का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत CGD कंपनियों को प्रदर्शन अवधि के दौरान जोड़े गए हर अतिरिक्त घरेलू पीएनजी कनेक्शन के लिए 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर अतिरिक्त घरेलू स्तर पर उत्पादित कम कीमत वाली गैस आवंटित की जाएगी। आनंद और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
3: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4-स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। NTA के कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे। परीक्षा एजेंसी ने यह निर्णय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश के बाद लिया है। इसमें परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी उपाय करने को कहा गया था। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी कर दी है। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग और आउटसोर्स एजेंसी TSR डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड TDPL द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं।
5: सरकार ने उन परीक्षाओं के परिणाम भी रद्द कर दिए हैं जिनकी प्रारंभिक प्रक्रिया TDPL द्वारा कराई गई थी। अधिसूचनाओं के अनुसार कथित अनियमितताओं को लेकर SIT की जांच और जारी CID जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर JSSC CGL परीक्षा रद्द की गई है। सरकार ने 6 परीक्षाओं को स्थगित करने और 17 परीक्षाओं की CID जांच कराने का भी फैसला लिया है। दोनों आयोगों में आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा, जबकि वरिष्ठ IAS अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता वाली समिति परीक्षा प्रणाली में सुधार के सुझाव देगी। मैं विश्व रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
3: दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदित प्रकाश राय और 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को उन्नत बनाने की टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी के मामले में हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: सतर्कता निदेशालय की शिकायत पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान सामने आया कि निविदा प्रक्रिया में कथित तौर पर ऐसी तकनीकी विशिष्टताएं और शर्तें शामिल की गई थीं जो एक विशेष प्रौद्योगिकी प्रदाता के पक्ष में थीं। इससे प्रतिस्पर्धा सीमित हुई और एक चयनित निजी इकाई को अनुचित लाभ पहुँचा। जांच में यह भी सामने आया है कि निजी व्यक्ति कथित तौर पर कुछ सरकारी अधिकारियों और बिचौलियों के साथ संपर्क में थे। ताकि निविदा प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सके। एसीबी के अनुसार इससे विशेष प्रौद्योगिकी प्रदाता के पक्ष में निविदा की शर्तों को प्रभावित करने के लिए निजी व्यक्तियों और सरकारी अधिकारियों के बीच कथित साठगांठ के संकेत मिलते हैं। जांच में पूरे धन के लेन देन और कथित अपराध से अर्जित आय की भी जांच की जा रही है। अनुपम और आनंद के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और जापान की प्रगाढ़ होती साझेदारी और उनके रणनीतिक महत्व पर बल दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों को भारत में निवेश और साझेदारी बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में जापानी प्रतिनिधिमंडल से कहा कि दोनों देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, प्रगति और समृद्धि की साझा आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने कहा कि यामानाशी प्रांत के प्रतिनिधियों की मौजूदगी ये दिखाती है कि इस साझेदारी का भारत के राज्यों और क्षेत्रों तक तेजी से विस्तार हो रहा है।
7: जापान के निवेशक और वहाँ पे नवाचार से जुड़े हुए लोग उत्तर प्रदेश के दौरे पे आए हैं। यामाची और उत्तर प्रदेश के बीच ये जो साझेदारी है, इससे बड़े पैमाने पे निवेश आएगा, ढेर सारे लोगों को रोजगार और व्यापार के अवसर मिलेंगे।
3: इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.8% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। हालांकि एजेंसी ने यह भी कहा है कि अलनीनो और भौगोलिक राजनीतिक चुनौतियों से आर्थिक रफ्तार धीमी पड़ सकती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्त वर्ष 2026 में वृद्धि दर 7.6% रहने का अनुमान लगाया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने वित्त वर्ष 2025-26 में ऋण देने के मामले में जबरदस्त बढ़ोतरी की है। इस दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के प्राथमिक क्षेत्र ऋण फ्रेमवर्क के अंतर्गत इन बैंकों का प्रदर्शन मजबूत रहा। हालांकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कुल बकाया ऋण में 2024-25 के मुकाबले 10.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो गत वित्त वर्ष में 5,78,000 करोड़ रूपये से ज्यादा का था। गृहमंत्री अमित शाह तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर आज शाम चेन्नई पहुंचेंगे। श्री शाह कल चेन्नई के पास कोवलम में दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में तमिलनाडु, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर मलेशिया से एक कुख्यात गिरोह के 3 आरोपियों को भारत लाने में सफलता हासिल की है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि इन आरोपियों के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से संबंध थे। हत्या, जबरन वसूली, विस्फोटक रखने तथा हाल में लुधियाना में हैंड ग्रेनेड विस्फोट की साजिश से जुड़े कई मामलों में इनकी तलाश थी। हरियाणा पुलिस ने पंजाब के एक परिवार और उसके सहयोगियों से जुड़े अंतर्राज्यीय बाल तस्कर गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना परगट सिंह को पंजाब के मुक्तसर से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरोह ने अब तक देश भर में 50 नवजात बेचे हैं। बहादुरगढ़ के पुलिस उपायुक्त मयंक मिश्रा ने आकाशवाणी को बताया कि अब तक गिरोह से जुड़े 21 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज तड़के न्यू मार्केट इलाके में एक होटल में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि होटल में आग से बचाव और अग्निशमन की व्यवस्था नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मानव जीवन की सार्थकता अन्य प्रणालियों के कल्याण और भलाई के लिए अनवरत काम करने में ही है। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपनी शारीरिक क्षमताओं, धन, बुद्धि और वाणी का इस्तेमाल परहित और कल्याणकारी कार्यों के लिए करना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर शर्मा प्रसिद्ध शिक्षाविद, कानूनविद और कुशल राजनेता थे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्वी हिस्सों, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश हो सकती है। उधर उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की

0: स्थिति गंभीर बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नदियों में उफान से 6 जिलों के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और लगभग 10 लाख लोग प्रभावित हुए हैं।
1: भद्रक में भंडारी पोखरी और तिहिड़ी ब्लॉक सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से है, जहां बाढ़ का पानी गांव में घुस गया है और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जाजपुर, केंद्रापड़ा, बालेश्वर, केओंझर और मयूरभंज में भी बाढ़ जैसा हालत है। ब्राह्मणी और सालंदी नदियों का जलस्तर बढ़ने से संकट और गहरा हो गया है, जबकि अखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एहतियात के तौर पर कई स्कूल बंद रखे गए हैं। राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों और किसानों के लिए 1,000 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: संयुक्त अरब अमीरात ने इलाके में बढ़ते तनाव और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे को देखते हुए ईरान के साथ सभी प्रकार के व्यापारिक और वाणिज्यिक लेनदेन को स्थगित कर दिया है। अमीरात के विदेश मंत्रालय की संचार निदेशक अफरा अल हामिली ने बताया कि इस फैसले का उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता और वित्तीय व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाए रखना है। अमीरात ने यह घोषणा ईरान की ओर से खाड़ी में 2 बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के दागे जाने के बाद की। हालांकि अमीरात ने यह भी कहा कि वो शांति और स्थिरता के बीच बातचीत, सहयोग और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति संकल्पित है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
2: नीदरलैंड्स में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। दोनों टीमों के लिए अगले दौर में जगह बनाने के लिए ये मुकाबला महत्वपूर्ण है। भारत ने अब तक 2 मैचों से 3 अंक हासिल किए हैं और उसे अगले दौर में पहुंचने के लिए आज का मैच कम से कम ड्रॉ खेलना होगा। भारत ने वेल्स को हराया है और इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा है। श्रीलंका में गोल क्रिकेट टेस्ट के 5वें और आखिरी दिन आज श्रीलंका की टीम अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट पर 84 रन से आगे खेलेगी। भारत ने श्रीलंका को 372 रन का लक्ष्य दिया है। श्रीलंका को जीत के लिए अभी 288 रन की जरूरत है, जबकि भारत श्रृंखला की जीत से केवल 6 विकेट दूर है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कल नई दिल्ली में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार जीत दर्ज की। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कॉलिन फिलिमोन को हराया। वहीं त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
3: धन्यवाद फरहत। झारखंड में परीक्षा रद्द होने से 2000 से अधिक नौकरियां खतरे में, 6 में से 3 प्रदर्शनकारियों ने खत्म किया अनशन। जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। जंतर मंतर पर पुलिस सख्ती के आरोपियों की जांच सर्वोच्च न्यायालय की उच्च स्तरीय समिति से कराए जाने का फैसला कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने दिल्ली पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से इनकार करने का भी समाचार दिया है। 2 अक्टूबर से बैंकिंग फॉर यूथ अभियान, दैनिक जागरण के आर्थिक पन्ने की खबर है। पत्र लिखता है, युवाओं को बैंकिंग सुविधा की जानकारी देने के लिए युवा कियोस्क और युवा बैंकिंग मित्र बनाएंगे सभी बैंक। 16 साल बाद भारत और पाकिस्तान आमने सामने, पुरुष हॉकी विश्व कप में शीर्ष 2 में जगह बनाने पर नजरें, अमर उजाला की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पन्ने पर विश्वविद्यालयों में भारतीय ज्ञान पर शोध की प्रक्रिया शुरू होने पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, भारतीय ज्ञान परंपरा को मिली महत्ता। भारतीय ज्ञान की खोज हमें औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त कराने के लिए, विकसित भारत के लिए ज्ञान लोग गढ़ने वाली भी है। अंतरिक्ष में उगाई सरसों से बनाई सबसे स्वादिष्ट स्पेस डिश, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन और उनकी साथी जेसिका विट ने किया कारनामा। बीज और खेती की सामग्री पृथ्वी से पहले ही भेजी गई थी। राजस्थान पत्रिका ने आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर दुनिया के पुरस्कृत फोटोग्राफ को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। पत्र लिखता है, अंधेरे में शिकार को झपटने को तत्पर बार्न उल्लू। ये तस्वीर इंग्लैंड के नॉरफॉक की है और तस्वीर ली है विंस बर्टन ने। पत्र ने आइसलैंड में डेनियल विने गार्सिया द्वारा क्लिक की गई तस्वीर भी साझा की है, जो ज्वालामुखी से बहते गर्म लावा का विहंगम चित्र है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने घरेलू पाइपलाइन गैस कनेक्शन को घर घर पहुंचाने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 600 पुराने विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए। झारखंड सरकार ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बीच अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की। दिल्ली जल बोर्ड रिश्वत मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन और 5 अन्य गिरफ्तार। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान पर पर मिसाइल हमले का आरोप लगाते हुए व्यापारिक और वित्तीय लेनदेन स्थगित किए। और नीदरलैंड्स में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार। सारी दुनिया में 19 अगस्त का दिन विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए आपको इसका इतिहास बताएं। दरअसल विश्व फोटोग्राफी दिवस का जो ताल्लुक है वो है डगेरोटाइप नाम की एक फोटोग्राफी प्रोसेस से, जिसका आविष्कार किया था फ्रांस के लुईस डगेरो और जोसेफ निकोफोन ने 1837 में। फिर हुआ ये कि 9 जनवरी 1839 में फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंसेज ने डगेरोटाइप प्रोसेस की उद्घोषणा की और 19 अगस्त 1839 के दिन फ्रांस की सरकार ने इसका पेटेंट खरीद लिया और इसे सारी दुनिया के लिए मुफ्त में उपलब्ध करवा दिया। तो इस तरह से ये मानना चाहिए कि 19 अगस्त के दिन फोटोग्राफी की सुविधा सारी दुनिया के लिए उपलब्ध हो गई थी और इसलिए विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। जरा सोचिए कि वो जमाना कैसा था जब फोटोग्राफी बड़ा ही महंगा शौक होता था और बहुत ही रईस लोग अपने फोटो खिंचवा सकते थे।

फोटोग्राफी ने विज्ञान की प्रगति के साथ बहुत सारे बदलाव देखे हैं। एक जमाना था जब फोटोग्राफी के लिए फिल्म रोल की जरूरत पड़ती थी और एक निश्चित संख्या में फोटो क्लिक करने के बाद ही उस फिल्म को धुलने भेज दिया जाता था। जब वो डेवलप होके और प्रिंट होके आती थी तब हमें ये देखने मिलता था कि तस्वीरें किस तरह से आई हैं। इनमें से कई तस्वीरें बेकार भी हो जाती थी। जाहिर है कि फिल्म रोल वाले वो दिन बड़े ही सुहावने थे और बहुत ज्यादा जिज्ञासा और बेकरारी से भरे हुए थे, क्योंकि फिल्म रोल के खत्म होने का इंतजार करना पड़ता था। आज भी वो काली सफेद तस्वीरें पुराने जमाने की यादों को हमारे सामने ताजा कर देती हैं।

आगे चलकर जमाना बदल गया और अब तो वो जमाना आ गया है जब फोटोग्राफी के लिए लोग कैमरे से ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करने लगे हैं। जरा सोचिए कि एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट मोबाइल आपके लिए कम्युनिकेशन मीडियम का काम भी करता है और दूसरी तरफ वो आपके लिए कैमरे का काम भी करता है। जिंदगी के हर महत्वपूर्ण या आम पल को आप तस्वीरों में बांध सकते हैं, लेकिन इसका असर ये हुआ कि तस्वीरों का जो महत्व था वो बहुत कम हो गया क्योंकि तस्वीरें बड़ी आम हो गई। ये तस्वीर खींची और ये सोशल मीडिया पर चढ़ा दी या फिर मोबाइल कम्युनिकेशन मीडियम के जरिए आपने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भेज दी और उन्होंने फौरन देख ली और वो खुश भी हो गए। यानी चीजें आसान हो गईं तो उनका महत्व कम हो गया, पर फिर भी आज जिंदगी के कुछ पल तस्वीरों में कैद हो जाते हैं और हम विकल होकर उन पलों को याद किया करते हैं।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को वो भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक, लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

सुखिंदर सिंह और ए आर रहमान की आवाजों में आप सुन रहे थे ए आर रहमान का संगीतबद्ध किया ये गीत द लेजेंड ऑफ भगत सिंह फिल्म से। और वाकई हमारे देश की बात ही कुछ और है, क्योंकि यहाँ एक ऐसी विरासत हमें हमारे सभी साथियों ने सौंपी है, चाहे वो हमारे शहीद हों या हों हमारे साहित्यकार या संत, सभी ने हमें कुछ ना कुछ ऐसा दिया है जिससे हमारी संस्कृति समृद्ध हुई है। आज गोस्वामी तुलसीदास की जयंती है, जिनका नाम बचपन में राम बोला रखा गया था, और राम भक्ति में लीन संत तुलसीदास ने श्री राम के चरित्र को विभिन्न रचनाओं में ढाला। तुलसीदास कृत रामचरितमानस का पाठ वर्षों से घर घरों में किया जाता है। अवधी भाषा में रचित इस महाकाव्य को आप विविध भारती पर भी रोजाना सुनते हैं सुबह 6:35 से। तो संत कवि तुलसीदास जी की जयंती पर उन्हें नमन करते हैं और एक ऐसा गीत सुनते हैं जिनमें रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों को शामिल किया गया है।

0: विक्रम मोन्टर से की आवाज और इन्हीं के संगीत बद्ध किया ये गीत आपने सुना राम सेतु फिल्म से। इसे लिखा शेखर अस्तित्व ने और साथ ही तुलसीदास कृत रामचरितमानस की कुछ पंक्तियां भी इसमें शामिल रही।
1: कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, वे सीधे दिल में उतर जाती हैं। वीर जारा, टोरबाज, इंडियाज मोस्ट वांटेड, सीआईडी, अदालत, जाने कितनी फिल्मों और धारावाहिकों में देखा है उनका अभिनय और सुनी है उनकी सशक्त आवाज।
2: अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं जीवन में, आपके मन में वैसी दीवानगी और एकदम पागलपन होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग।
1: अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, वॉइस ओवर आर्टिस्ट और डबिंग डायरेक्टर पंकज रैना की कश्मीर से लेकर मुंबई तक की सारी यादें करेंगे विशेष मुलाकात 19 अगस्त 2026 को आज के मेहमान कार्यक्रम में शाम 4 बजे। सुनिएगा विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन पर।
3: मैं यहां।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

जबरिया जोड़ी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। तनिष्क बागची का संगीत, रश्मि विराग के बोल, अल्तमश फरीदी और यासिर देसाई की आवाजें। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर चित्रलोक। और इस दुनिया में सबसे कीमती है वो भावना जो एक इंसान को दूसरे इंसान से प्रेम सहानुभूति रखने के लिए प्रेरित करती है। वो व्यक्ति जो स्वयं से पहले दूसरों को रखते हैं, मानवता की एक मिसाल कायम करते हैं और अपनी इस भावना से हमें भी प्रभावित करते हैं। और इसी भावना को उजागर करने वाले व्यक्तियों के लिए प्रतिवर्ष 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। और इस दिन को उन व्यक्तियों की स्मृति में मनाया जाता है जिन्होंने मानवतावादी संकटों में यानी कि युद्ध आदि परिस्थितियों में मानवीय उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपनी जान गंवाई। क्योंकि जब भी कभी ऐसा होता है कि कोई युद्ध हो, सशस्त्र संघर्ष हो, तो उसमें जितने दोनों पक्ष के व्यक्ति जो लड़ रहे होते हैं, वास्तविक रूप से युद्ध में जो प्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हैं, उन्हें तो नुकसान कई बार पहुंचता ही है, लेकिन साथ ही साथ जो व्यक्ति वहाँ लोगों के संरक्षण के लिए जाते हैं, उन तक जरूरी सामान पहुंचाते हैं या चिकित्सकीय सहायता लेकर जाते हैं, उन्हें भी बहुत बड़े पैमाने पर अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो उन्हें याद करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। पहली बार इस दिन को मनाया गया 19 अगस्त 2009 को। और हम ऐसे सभी व्यक्तियों को नमन करते हैं।

0: भाग मिल्खा भाग फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। सिद्धार्थ महादेवन और साथियों की आवाजें, प्रसून जोशी के बोल, शंकर एहसान लॉय का संगीत।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुम्हें बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
2: दिना दिना हे आला दिना बदली दुनिया के आया नया।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

अमिताभ बच्चन और साथियों की आवाजों में कहानी फिल्म का गीत आपने सुना। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे लिखा, क्लिंटन सरजू का संगीत। कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से अंतराल का।

जावेद अली की आवाज में आप सुन रहे थे पुष्पा द राइज पार्ट वन। फिल्म से ये गीत राखी बलम ने इसे लिखा, देवी श्री प्रसाद ने संगीत से सजाया। और आज है विश्व फोटोग्राफी दिवस, जो कि हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है। 19 अगस्त 1839 को फ्रांस में डेगुराइट फोटोग्राफी प्रक्रिया के पेटेंट की घोषणा की गई थी और फोटोग्राफी की इस तकनीक को लुई डिग्रे और जोसेफ नाइस फोर निप्स ने ईजाद किया था, इसीलिए इसे डेगुराइट फोटोग्राफी कहते हैं। और तो जब साल 2010 में विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाने की शुरुआत की गई तो इस तारीख को इसीलिए चुना गया। और फोटोग्राफी तो बहुत ही अच्छी चीजें मानी जाती है, क्योंकि अगर आप किसी याद को कैद करना चाहते हैं, कहीं आप घूमने जाते हैं या किसी खास उत्सव में आप शामिल होते हैं तो फोटोग्राफ आप अपने पास रखते हैं। बचपन की कितनी तस्वीरें हमारे पास है और हमारे जो पूर्वज हैं उनकी, उन्हें भी हम अपनी उनकी तस्वीरों में देख लेते हैं। लेकिन इन दिनों तस्वीर की तकनीक बदलती चली जा रही है और मोबाइल अब हमारे हाथ में आ चुका है और हम केवल यादों को कैद करने का माध्यम ही तस्वीर को नहीं बनाते बल्कि लगातार ढेर सारी तस्वीरें खींचते हैं, जिन्हें देखने के लिए भी कई बार हमारे पास वक्त नहीं होता। क्योंकि पहले जिस तरह से चुनिंदा तस्वीरें खींची जाती थी और बैठकर एक साथ एल्बम में वो तस्वीरें देखी जाती थी, और जब भी कभी सब हम सब मिलते थे, चाहे वो गर्मियों की छुट्टियां हों चाहे कोई भी मौसम हो, और जब भी कुछ ज़्यादा लोग हम मिलके बैठते तो बस एल्बम निकाला जाता और याद की जाती वो सारी बातें कि उस तस्वीर को खींचने से ठीक पहले क्या हुआ था, क्यों किसी ने ऐसा अजीब सा मुंह बनाया हुआ है, ये क्यों कोई हंस रहा है, किस तरह के कपड़े किसी ने पहने हैं, वो कपड़े कहाँ से लाए गए थे, इस तरह की ढेरों बातें ढेरों यादें ताज़ा होती हैं। लेकिन इन दिनों जब हजारों फोटो हम खींचते हैं लगातार, बल्कि एक ही दिन में हम पता नहीं सैकड़ों फोटो तो हम खींच ही लेते हैं, तो उन्हें देखने का धैर्य भी अब खोता जा रहा है। आपका क्या मानना है इस बारे में हमें बताइए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं गीत।

0: सनम तेरी कसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। नीति मोहन, अकाशा सिंह और दर्शन रावल की आवाजें, समीर अंजान के बोल, हिमेश रेशमिया का संगीत।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहां से हुजूर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक और बात हो रही विश्व फोटोग्राफी दिवस की। तो ये बताइए कि क्या आप आज के इस दिन को मनाने के लिए सेल्फी लेने वाले हैं या किसी की फोटो खींचने वाले हैं या शेयर करने वाले हैं अपनी कोई बेहतरीन तस्वीर या अपनी खींची हुई कोई खूबसूरत तस्वीर, ये आप सोचिए। तब तक ये गीत भी सुन लीजिए।
4: जट लटक मटक लचक मचक लचक मचक चाल चलत जा।
5: ए छोरा गांडा थई गया।

0: सत्यमेव जयते टू का ये गीत आपने सुना जारा एस खान और जैस मानिक की आवाजें, जैस मानिक और तनिष्क बागची के बोल, उन्हीं का संगीत।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। फिल्म का गीत आप सुन रहे थे रूमी और तनिष्क बागची की आवाजें, तनिष्क बागची का संगीत, नीरज राजावत के बोल। कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं चित्रलोक और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। सुनिधि चौहान और शाश्वत सिंह की आवाजें, अमिता भट्टाचार्य के बोल, फिल्म तू झूठी मैं मक्कार।

हर टेंशन को झटक कर झूमते नाचते रहिए, खुश रहिए, आनंदित रहिए। और हाँ, दिन भर में जहाँ भी रहिए, रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के साथ। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा। कार्यक्रम चित्रलोक में आज के लिए बस इतना ही।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद। विविध भारती के

0: पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है किशोरदान? एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदान ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदान आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में।

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है जाने माने संगीतकार मोहम्मद जहूर खयाम हाशमी पर।

खय्याम। फिल्म उद्योग में ये नाम एक बेमिसाल संगीतकार का नाम है, एक ऐसा संगीतकार जिसकी फिल्मोग्राफी में एक भी गाना ऐसा नहीं है जो उनके स्टैंडर्ड से कम हो। एक ऐसा संगीतकार जिसने हमेशा हर गाने में अपना 100% दिया।

18 फरवरी 1927 को नवा शहर पंजाब में मोहम्मद जहूर खयाम हाशमी का जन्म हुआ था। बचपन से ही संगीत का शौक था और इस शौक के चलते ही एक ख्वाब आंखों में पलने लगा था। ये ख्वाब था कुंदन लाल सहगल की तरह गाना और फिल्मों में एक्टिंग करना। जी हाँ, खयाम कुंदन लाल सहगल की तरह एक्टर और सिंगर बनना चाहते थे। खयाम के पिता को साहित्य, कविता और संगीत से लगाव था। वो अपने बच्चों को लेकर जलंधर जाते और उन्हें फिल्में भी दिखाया करते थे। यहां तक कि उन्होंने अपने बच्चों के भीतर देशभक्ति का जज्बा भी भरा था। जब नवा शहर से जलंधर ट्रेन जाती तो रास्ते में एक स्टेशन पड़ता खटकर कलाम। यहां ट्रेन रुकती तो पिता अपने बच्चों से कहते, इस गांव को सलाम करो क्योंकि ये शहीद भगत सिंह का पैतृक गांव है। और बच्चे ऐसा ही करते। खयाम के भीतर देशभक्ति का जज्बा इस बचपन से आया था। इसका क्या असर हुआ, ये हम आपको थोड़ी देर बाद बताते हैं। फिलहाल एक दिलचस्प किस्सा। 11 बरस की उम्र थी खयाम की। संगीत सीखने का जुनून बहुत ज्यादा था। वो किसी को भी बताए बिना जलंधर से बिना टिकट ट्रेन में दिल्ली भाग आए। दिल्ली में उनके चाचा रहा करते थे। चाचा के पास पहुंचे और उन्हें जब सारी बात बताई तो वो बहुत गुस्सा हो गए। वहां उनकी दादी मौजूद थीं, जिन्होंने चाचा को शांत करवाया। संगीत के इस शौक को देखते हुए चाचा ने खयाम को हुस्न लाल और भगत राम की निगरानी में रखवा दिया, जहां खयाम ने 5 बरस संगीत सीखा। इस तरह से हुस्न लाल और भगत राम खयाम के पहले संगीत गुरु हुए। 17 बरस की उम्र होते होते खयाम एक बार फिर घर से भाग निकले। ये घर से दूसरी बार भागना था

इस बार वो दिल्ली नहीं आए बल्कि सीधे मुंबई आ गए। थोड़े दिन संघर्ष किया और उन्हें ये समझ में आया कि अभी उनकी उम्र बहुत कम है और ये सही वक्त नहीं है मुंबई में स्ट्रगल करने का, इसलिए खयाम वापस लौट गए। संगीत के इस जुनून को देखते हुए किसी दोस्त ने उनकी मुलाकात चिश्ती साहब से करवाई। चिश्ती साहब यानी गुलाम अहमद चिश्ती, जो एक संगीतकार थे और चिश्ती बाबा के नाम से मशहूर थे। खयाम लाहौर में उनसे मिलने पहुंचे, उनसे कुछ गाने को कहा गया। खयाम ने जो गाना सुनवाया उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होकर चिश्ती बाबा ने उन्हें अपना सहायक बना लिया एक शर्त पर। शर्त ये थी कि रहने और खाने की सहूलियत मिल जाएगी पर पैसा नहीं मिलेगा। क्योंकि पैसा मिलता नहीं था इसलिए पैसे की किल्लत हुई तो अपने भाई के पास जा पहुंचे। भाई का एक फलता फूलता ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। जब इस स्थिति के बारे में खयाम ने भाई को बताया तो बड़े भाई ने एक जोरदार तमाचा खयाम को रसीद कर दिया। उस रात खयाम सो न पाए, करवटें बदलते रहे और अपनी जिंदगी के बारे में सोचते रहे। आखिरकार उन्होंने एक फैसला किया। सन 1943 में खयाम फौज में शामिल हो गए। यहाँ एक गाना आपको सुनवाते हैं। जब भारत जंग से मुब्तिला था, जब हौसला पस्त हो रहा था, तब जानिसार अख्तर ने देश का हौसला बढ़ाने के लिए एक गीत लिखा था और इसे खयाम ने स्वरबद्ध किया था।

फौज में रहते हुए भी ख्वाब में उन्हें कुंदन लाल सहगल दिखते, अपने आराध्य, अपने हीरो। मुंबई उनको पुकारता था। आखिरकार 3 बरस फौज की नौकरी करने के बाद खयाम ने फौज से इस्तीफा दे दिया, वापस चिश्ती बाबा के पास चले गए। यहाँ जाने माने निर्देशक बीआर चोपड़ा ने चिश्ती बाबा से जोर दिया कि आपको खयाम को पैसे देने चाहिए। इस तरह से खयाम की तनख्वाह तय हो गई 125 रुपया माहवार। पहली बार खयाम के जहन में ये बात आई कि संगीत से पैसा भी मिल सकता है और इज्जत भी मिल सकती है। सन 1947 में खयाम चिश्ती बाबा के सहायक रहमान से मिलने के लिए लाहौर से मुंबई आए। यहाँ उनकी मुलाकात अपने पुराने गुरुओं से हुई, हुस्न लाल भगतराम, और उन्होंने पहली बार खयाम से एक गाना गवाया और इस तरह से खयाम गायक बन गए। यहीं रहमान के साथ मिलकर उन्होंने जोड़ी बनाई और ये जोड़ी शर्मा जी वर्मा जी के नाम से संगीत देती रही। जब अगस्त में भारत आजाद हुआ तो रहमान पाकिस्तान चले गए, शर्मा जी वर्मा जी की जोड़ी टूट गई। आखिरकार खयाम शर्मा जी के नाम से संगीत देते रहे। इसी दौर का गीत है, सन 1948 में आया बीवी फिल्म का।

हाशमी। अब इतना लंबा चौड़ा नाम तो फिल्मों में चलता नहीं, इसलिए अपने नाम में से खयाम ने खयाम शब्द को चुना और आगे के करियर में उन्होंने खयाम के नाम से ही संगीत दिया। यानी फुटपाथ वो पहली फिल्म थी जिसमें बतौर संगीतकार उनका नाम आया खयाम। इस फिल्म में दिलीप कुमार पर फिल्माया गया, अली सरदार जाफरी और मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत खूब कामयाब हुआ था।

ये कामयाबी का पहला स्वाद था। खयाम कामयाब होने के बावजूद ज्यादा फिल्में नहीं हासिल कर पाए, पर यूं था कि मुंबई में उनके पैर जम गए थे। सन 1958 में राज कपूर ने फिल्म फिर सुबह होगी के लिए शंकर जयकिशन की बजाय खयाम का चुनाव करवाया। साहिर लुधियानवी ने इस फिल्म के गाने लिखे। दोस्तोवस्की के उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट पर बनी इस फिल्म का संगीत खूब चला और खयाम की खूब ख्याति हुई।

सन 1964 में फिल्म शगुन आई। साहिर लुधियानवी के गीत इस फिल्म में खयाम साहब की शरीक हयात जगजीत कौर ने कुछ गाने गाए।

कि खयाम साहब के गाने तो बड़े मशहूर हुए, लेकिन ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं और फिल्म जगत में ये बात चल निकली कि खयाम अनलकी हैं। जिन फिल्मों में वो संगीत देते हैं वो अमूमन चलती नहीं हैं। बहुत बरस तक खयाम साहब के पास काम नहीं था, जबकि उनके काम की बहुत तारीफ होती रही थी। सन 1976, यश चोपड़ा ने जमाने भर के विरोध के बावजूद फिल्म कभी कभी के लिए खयाम को साइन किया। कभी कभी खयाम के करियर का एक माइलस्टोन बन गई।

कभी कभी सुपरहिट हुई और इसके बाद आई खयाम के करियर की ज्यादातर फिल्में। आइए एक के बाद एक इन फिल्मों के गाने सुने जाएं। फिल्म त्रिशूल, खयाम की शैली से बिल्कुल अलग गाना।

मुजफ्फर अली ने अपनी फिल्म बनाई उमराव जान और इसके लिए खय्याम को चुना गया। खय्याम ने इस फिल्म में अपने पूरे हुनर से काम लिया।

फिल्म उमराव जान के लिए खय्याम को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इसी फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार से भी नवाजा गया। सन 1981 में जब यश चोपड़ा ने फिल्म सिलसिला का संगीत देने के लिए खय्याम को आमंत्रित किया तो वो इस फिल्म की कहानी से सहमत नहीं थे, इसलिए उन्होंने ये फिल्म ठुकरा दी। ये खय्याम के उसूल थे जिनसे वो कभी समझौता नहीं करते थे। सन 1983 कमाल अमरोही की फिल्म रजिया सुल्तान, इस फिल्म के लिए हबशी की आवाज मिल नहीं रही थी। उन्होंने बहुत सारे गायकों के ऑडिशन लिए और आखिरकार इस ऑडिशन में कामयाब हुए विविध भारती के हमारे पूर्व सहयोगी कब्बन मिर्जा और आया ये काल।

खयाम की फिल्मोग्राफी अपनी क्वांटिटी में भले कम हो लेकिन क्वालिटी में खयाम का कोई जवाब नहीं। उनकी फिल्मोग्राफी में एक भी फिल्म और एक भी गाना ऐसा नहीं मिलता जिसमें कोई समझौता हो। वो हमेशा अपना 100% अपनी हर फिल्म और हर गाने में उतारते रहे। सन 1980 में आई चंबल

0: धीरे धीरे फिल्म संगीत से खयाम की दूरी बढ़ती चली गई। उन्होंने कई टीवी सीरियल्स में संगीत दिया, टाइटल सॉन्ग्स तैयार किए और वो भी कमाल के थे। आज के फनकार कार्यक्रम में खयाम की बात करें और उनके गैर फिल्मी एल्बम्स की बात ना करें, ये कैसे हो सकता है? उन्होंने मीना कुमारी के अशार कंपोज किए, एल्बम था आई राइट आई रिसाइट।
1: जंग

चाहे मुकेश हूँ, आशा भोसले या मोहम्मद रफी, खयाम ने सभी के लिए गैर फिल्मी एल्बम तैयार किए। जब मोहम्मद रफी गाते हैं पाँव पड़ूं तो रिश्याम, तो यूं लगता है जैसे वो पूरे समर्पण के साथ अपनी रूह को अपनी आवाज में उतारे दे रहे हैं।

फिल्म संगीत में महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारत सरकार ने खय्याम को पद्म भूषण से सम्मानित किया था। आधे घंटे के इस वक्त में खय्याम के हर एक गाने, हर एक फिल्म की चर्चा करना मुमकिन नहीं है, लेकिन खय्याम की विदाई फिल्म संगीत से मेलेडी की, ईमानदारी की, उसूलों की विदाई है, नाजुकी की विदाई है।

0: ये था संगीतकार खय्याम पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक युगल से। जी हाँ, ये हैं जाने माने अभिनेता यशपाल शर्मा और उनकी पत्नी प्रतिभा शर्मा। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने, तो सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आज विविध भारती के स्टूडियो में एक मशहूर कलाकार जोड़ी की आमद है, जिन्होंने फिल्मी दुनिया में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। लगान, गंगा जल, अब तक छप्पन, अपहरण, बवंडर, सिंह इज किंग, राउडी राठौर जैसी बहुत सारी चर्चित फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा आपने दिखाया है। वो है मशहूर अभिनेता यशपाल शर्मा जी, और उनके साथ है उनकी शरीके हयात प्रतिभा शर्मा जी। प्रतिभा जी ने अपने करियर की शुरुआत रेडियो से की, और आज रेडियो यानी विविध भारती के स्टूडियो में ये जोड़ी बैठी हुई है। लज्जा, दास कैपिटल जैसी फिल्मों में प्रतिभा जी ने अभिनय किया, बहुत सारी शॉर्ट फिल्मों का निर्देशन किया इन्होंने। तो अब यशपाल जी, प्रतिभा जी का हम स्वागत कर रहे हैं विविध भारती के स्टूडियो में। यशपाल जी नमस्कार, प्रतिभा जी नमस्कार।
2: नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।
3: शुक्रिया।
1: कैसा लग रहा है आप दोनों को यहाँ विविध भारती के स्टूडियो में आकर?
3: बहुत अच्छा लग रहा है और बड़ा सुखद लगता है। जब वीडियो नहीं होता है, ऑडियो होता है ना सिर्फ, तो आधा टेंशन कम हो जाता है। ना आपको तैयार होना, ना मेकअप करवाना है, बस आपको माइक के सामने बैठना, बोलना है और बेशुमार अपने दिल की बातें करनी है।
1: क्या
3: बहुत अच्छा लगता है रियली।
1: तो बस आज तो दिल की अलमारी खोलनी होगी आप दोनों को। आप बताइए प्रतिभा जी, आप तो रेडियो में अनाउंसर रही हैं, आपके लिए ये लम्हा कैसा है?
2: बिल्कुल, मुझे ऐसे मायके आ गए ऐसे लग रहा है।
1: तो फिर शुरू हो जाइए। मायके का जिक्र होता है तो लड़कियां फिर मायके पहुंच जाती हैं, तो मायके की वो याद साझा कीजिए। रेडियो में आप अनाउंसर थी
2: जी,
1: आकाशवाणी जलगांव में?
2: आकाशवाणी जलगांव में मैं अनाउंसर थी।
1: तो कैसे वहां तक पहुंची और कैसे वहां से वापस?
2: वहां रेडियो में तो मैं कैजुअल अनाउंसर थी, तो उस वक्त कैजुअल अनाउंसर का बहुत बोलचाल था
1: जी जी।
2: तो उस वक्त बहुत मजा आता था, मतलब अलग अलग अलग से प्रोग्राम करने को मिलते थे, गाने बजाने को मिलते थे। वो जो अभी हम लोग जो रिकॉर्ड्स देख रहे थे वो हमें उस वक्त हमें बिल्कुल बजाने पड़ते थे।
1: क्या बात है, तो वो सारी यादें ताजा हो गई।
2: बिल्कुल,
1: तो बस यादों के गलियारों में हम आपको दोनों को ले चलेंगे। फिलहाल हम यशपाल जी से जानना चाहते हैं कि ये बरेली के बच्चन कैसे बन गए आप बताइए।
3: हाँ, बरेली के बच्चन एक बहुत सालों बाद, शायद 14-15 सालों बाद मैं कोई सीरियल कर रहा हूँ, नीली छतरी वाले के बाद एक्चुअली, क्योंकि मैं सीरियल नहीं करना चाहता अपनी जिंदगी में कभी ज्यादा। लेकिन कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं वो आपको खींच लेते हैं, जैसे नीली छतरी वाले ने मुझे खींचा और मतलब बहुत मेरा लाइफ टाइम एक यादगार काम बन गया। उसी तरीके से बरेली के बच्चन का जो स्क्रिप्ट है और जो रोल है वो मुझे इतना भाया कि मुझे लगा कि अब सब कुछ छोड़ के थोड़ा टाइम इसमें बिताया जाए और इसमें जिया जाए और देखते हैं कुछ क्या चैलेंज आते हैं सामने, कुछ डिफरेंट करने के लिए, कुछ चैलेंजिंग करने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए, किस कुछ यादगार करने के लिए मैंने बरेली का बच्चन स्वीकार किया
1: जी। और हमारे श्रोता सुन रहे हैं तो जानना चाहेंगे, देखेंगे कि क्या है, कौन है बरेली के बच्चन। हमने तो सिर्फ ट्रेलर देखा है और हम भी उत्सुक हैं देखने के लिए।
3: शुरू हो चुका है ये
1: जी
3: 8 जून से, और डेली रात को 9 बजे सोमवार से शुक्रवार आता है, और अगर आप मिस कर दें तो जियो हॉटस्टार पे वो परमानेंट रहता है।
1: क्या बात,
3: तो आप वहां भी देख सकते हैं
1: जी। आपकी दोनों की फिल्मी दुनिया और जो टेलीविजन की दुनिया है, इतनी लंबी यात्रा है आपकी फिल्मों की कि बहुत कम शब्दों में मुश्किल है बात करना, लेकिन हम वहां चलते हैं पहले, जहां यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा मिले, वो एनएसडी की दुनिया थी शायद। बताइए आप दोनों कैसे मुलाकात हुई, बारी बारी से। प्रतिभा जी आप बताइए पहले
2: जी। मैं गलती से जब
1: गलती से मिली यशपाल जी से
2: गलती से मैं बॉयज हॉस्टल चली गई थी, जब मुझे एनएसडी के लिए जा रही थी, मतलब गई थी मैं वहां पे इंटरव्यू के लिए। तो जो फाइनल हमारा इंटरव्यू होता है, वर्कशॉप होता है, उसमें 5 दिन का वर्कशॉप होता है, उसमें फाइनल सिलेक्शन होता है। तो उसके लिए जब मैं वहां से जलगांव से दिल्ली आई थी और दिल्ली जब मैं गई तो मुझे वहां पे बोल दिया गया कि आप वहां जाओ। तो मैं वहां वकील लेन में गई और वहां बॉयज हॉस्टल में टिकी रही, एक रात तो वहां में रही। तो सुबह मुझे आना था, तब मैं सामने से इधर से आ रही हूँ और यशपाल जी उधर से आ रहे हो लेन से,
1: अरे
2: और हम एक दूसरे को देखे और फिर ये बोले कि चलिए मैं आपका सामान लेके चलता हूँ।
1: अच्छा, ये तो फिल्मी स्टाइल में बिल्कुल। फिर क्या हुआ?
2: बस फिर हमारा फाइनल सिलेक्शन में भी दोनों का नाम आउट हो गया, तो ऑफ कोर्स साथ में ही थे। फिर तो लड़ाई लड़ाई चलती रही।
1: अच्छा, पूछते हैं यशपाल जी से कि लड़ाई किस तरह की होती है, ये थोड़ा सा बाद में पूछेंगे, पहले जरा एनएसडी की बातें कर लें। यशपाल जी, हमने सुना है कि एनएसडी के लिए जब आप चले हरियाणा हिसार से, तो वो क्या जर्नी थी, वो क्या यात्रा थी, जरा बताइए।
3: वो यात्रा बहुत आसान नहीं थी। एनएसडी में कम से कम भी मैंने 3 बार अप्लाई किया, तब नहीं हुआ, तो चौथी बार किया तब हुआ।
1: अच्छा,
3: जिस साल प्रतिभा ने अप्लाई किया उस साल हुआ मेरा,
1: तो मतलब मुकद्दर ने
3: पता
1: इंतजार करवा के आप दोनों को
3: नहीं, लेकिन तीन साल
1: मिलाया।
3: नहीं हुआ, 3 साल नहीं हुआ के बाद मेरा चंडीगढ़ में हो गया, इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट में। तो वहां से फिर 1 साल किया एमए, तो 1 साल बाद दिल्ली में भी हो गया, तो फिर मैंने दिल्ली शिफ्ट कर लिया। तो दिल्ली में उन दिनों 91 की बात है, 91 जून की, उसमें हमने शुरू किया था। प्रतिभा भी थी हमारी क्लास में, बाकी हमारे मुकेश तिवारी, आशुतोष राणा, कुमुद मिश्रा, बाकी बहुत सारे लोग मराठी भी, अनिरुद्ध खुटवड़ और अभय
2: अभय
3: कुलकर्णी
2: कुलकर्णी।
3: जी, तो ये भी साथ बहुत सारे लोग थे, जो बहुत अच्छा बैच था हमारा।
1: जी, तो ये आपके दोस्त लोग हैं आशुतोष राणा, मुकेश जी, इनसे जुड़ी हुई कोई खास याद साझा करना चाहेंगे आप?
3: नहीं ठीक है, ये तो बहुत ऐसी बातें हैं जो कुछ शेयर नहीं कर
1: ओ
3: सकते। तो ठीक है, उसको चल रहने देते हैं थोड़ा
1: जी
3: सा।
1: जी
3: हाँ, लेकिन
1: बात
3: एक एक याद मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा। कुमुद मिश्रा और मेरा चेहरा एकदम मिलता था उस वक्त,
1: जी जी जी
3: तो मेरे जितने भी उसके प्रेस के कपड़े थे, लॉन्ड्री वाला मुझसे मांगता था।
1: अरे अच्छा,
3: और आशुतोष राणा ने अपने आप को मतलब हीरो साबित करने के लिए एक दिन क्या किया कि अपने बाल कर्ली करवा लिए, और
1: अच्छा
3: कर्ली करवा लिए, बिल्कुल मलिंगा जैसा दिख रहा था वो, तो मतलब और बहुत खराब दिख रहा था। तो जो भी, अरे ये क्या करवा लिया, सबका रिएक्शन यही है, अरे ये क्या करवा लिया।
2: कुछ ना कुछ
3: तो
2: करवाते ही
3: और
2: रहता
3: बता रहा था
2: था
3: भाई, 400 रुपये, 400 रुपये बहुत ज्यादा थे उस वक्त, चार सौ रुपये तो हमारी स्कॉलरशिप थी उस वक्त।
1: बिल्कुल
3: तो बोलो 400 रुपये में करवाए हैं बाल कर्ली, तो और जिस जो भी देखे रितु तलवार थे वो भी, अरे बाप रे कितना खराब लग रहा है यार, आशु ये क्या कर लिया तूने। तो बेचारा इतना परेशान हो गया, शाम को जब हॉस्टल गए तो हॉस्टल के बाहर नाई बैठा था, तो 2 रुपये में गंजा हो गया। मैं नहीं भूल सकता वो आशुतोष राणा की वो बात।
1: जी, तो वैसे भी बड़े उनके बारे में बहुत सारे किस्से मशहूर हैं, और कोई किस्सा याद आएगा बातचीत के दौरान तो जरूर साझा कीजिएगा, और वो आपके दोस्त भी हैं। तो यहाँ दोस्ती के नाम या उन दिनों के नाम कोई गाना सुनवाना चाहेंगे? कौन सा, किसकी पसंद का गाना सुना है, प्रतिभा जी या यशपाल जी?
3: प्रतिभा जी,
2: पिया तो से नैना
1: नैना
2: लगे
1: लगे रे, वाह भाई क्या बात है, गाइड फिल्म का गाना है, तो यही गाना सुनते हैं।

0: भाई ये गाना पिया तो उसे नैना लागे रे, ये इन्होंने आपके लिए ही मुझे लगता है सुनवाया होगा यशपाल जी। तो मुझे आपसे ही जानना है कि ये प्रतिभा जी ने जिक्र किया कि आपने इनका सामान उठाया, तो ये जो प्रेम का बीज था आप दोनों के बीच, प्रेम का पौधा कैसे
1: बीच
0: रोपा गया?
1: पौधा नहीं था, बहुत भारी बैग था इसका जो
0: जी
1: जो मैंने उठाया था, और तकरीबन 150 मीटर 200 मीटर होगा
0: हाँ,
1: वहाँ इस
0: चल के जाया।
1: हॉस्टल से वहाँ तक, तो वो मंडी हाउस क्रॉस करके पूरा, तो वहाँ गए थे। तो प्रेम का बीज ऐसा कोई फिल्मी कहानी की तरह ऐसा नहीं था हमारा, हम मर जाएंगे तुम्हारे बगैर, और या मतलब हाँ, लेकिन एक फिल्मी बात जरूर थी कि 3 साल तो हमने खूब लड़ाइयाँ की, अच्छे काम किए, नाटक किए, और एक में तो हम चंद्रहास में भाई बहन बने थे, और बहुत ही बढ़िया प्रोसेस रहा सारा। लेकिन जब खत्म हुआ और जब ये चली गई, तब बड़ा मैंने मिस किया, क्योंकि भाई अब कोई ना तो लड़ने वाला, ना कोई प्यार करने वाला, ना रूठने वाला, ना मनाने वाला, तो बड़ा मिस किया। तो मैं एक दिन फिर सीधा इसके घर पहुंच गया, जलगांव,
0: अच्छा
1: दिल्ली से जलगांव, सीधा दरवाजा खोला और ये माँ बेटी मेरे सामने खड़ी, और ए ऐसे हैरान। और फिर मैं चला गया, और फिर उसी ट्रेन से वापस आ गया, मगर नहीं तुम साथ चलो,
0: अच्छा
1: तो भाई ऐसे नहीं जा सकते, शादी वादी करना पड़ेगा, बच्ची बड़ी हो गई है। तो मैंने कहा ठीक है करवा लो, कल कर लेते हैं। बोले नहीं अभी तो तारा डूबा हुआ है। मैं कहा तारा तो हम निकाल लेंगे। तो आर्य समाज मंदिर में गए तो वो बोले पंडित जी के भाई तारा डूबा हुआ हम नहीं मानते। तो मैंने कहा तो फिर करवा डालो आज। तो बस थोड़ी देर बाद शायद दोपहर तक सारी तैयारी करके हमने शादी कर ली। शादी के दौरान, फेरों के दौरान पता लगा कि वो पंडित जो था वो हिसार का था हमारे
0: अरे तो
1: वो आर्य
0: यशपाल के
1: समाज,
0: वहां से कोई नहीं था तो वो हिसार के थे।
1: तो
0: अच्छा
1: बड़ा कोइंसिडेंस रहा बाय चांस, और ऐसे शादी हो गई। और फिर पहली बार जिंदगी में मैं और प्रतिभा एसी कोच में सफर करके जलगांव से दिल्ली गए।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो अब यहां पर एक गाना जरूरी लग रहा है, प्रतिभा जी बताइए कौन सा गाना, या यशपाल जी आप बताइए।
1: हुई शाम उनका

0: प्रतिभा जी की जो प्रेम की नैया चल पड़ी है यूं कहेंगे, और आपकी जिंदगी का सुनहरा और सुरीला सफर चल पड़ा है, तो इस सफर की आगे की कहानी आप बताइए। फिर जब साथ में रहने लगे, फिर वो नोक झोंक तकरार के दिन, कौन सी ऐसी बात है जो यशपाल जी की पसंद हुई नापसंद हुई वो बताइए।
1: नहीं, हम लोग साथ में काम करते थे रेपेट्री में और साथ में खाना खाते थे, और उस उतना ही हमारा मिलना होता था पूरे दिन में। बाकी पूरा दिन हम दोनों काम में लगे रहते थे
0: कौन सा
1: रेपेट्री
0: काम
1: में।
0: था?
1: रेपेट्री में एज एन एक्टर
2: नाटकों
1: काम
2: की
1: करते थे,
2: रिहर्सल वगैरह।
1: नाटकों की रिहर्सल कंटिन्यू होती रहती है।
0: तो कौन से वो नाटक थे जो उन दिनों रिहर्सल चल रहे थे उन नाटकों
1: आइंस्टाइन कर रहे थे हम लोग, मुआवजे कर रहे थे, कर्मावाली थे, ये सारे नाटक वहाँ पे उस वक्त चल रहे थे, उसमें ही हम लोग काम कर रहे थे। हमारे वक्त कुछ नाटक नए शुरू हुए थे आइंस्टाइन जैसे, तो वो नाटकों की रिहर्सल चलती रही।
0: वो दोनों लोग उसमें
1: हाँ,
0: किरदार।
1: यशपाल तो आइंस्टाइन बने हुए थे, मैं उनके जो उनकी वाइफ है उसकी फ्रेंड बनी हुई थी उस नाटक में, मारिया।
0: जी, यशपाल जी से हम जानना चाहते हैं। अब फिल्मों की ओर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपकी बहुत सारी फिल्में हैं, फिल्मों के नाम क्या गिनाए हैं? गंगा जल, अपहरण, बवंडर, बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लगान फिल्म आपके फिल्मी करियर का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो लगान फिल्म से हम शुरू करते हैं। लगान फिल्म की कहानी बताइए, कैसे आप जुड़े, कैसे आमिर खान से मुलाकात हुई, कैसे आशुतोष गोवारिकर से मिले आप, दोनों कहानी बताइए आप।
2: लगान वाकई में मेरे ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि लगान तक ही मैंने स्ट्रगल किया ऑफिस ऑफिस घूम करके,
0: जी
2: उसके बाद नहीं किया फिर मैंने, क्योंकि अपने आप फ़ोन आते थे, बात होती थी, काम मिल जाते थे। तो लगान जब मिल रहा या मिली थी, उस वक्त हम वनराई कॉलोनी में रहते थे, जहाँ सिर्फ एक कमरा था, बिल्कुल छोटा सा, एक छोटा सा बाथरूम था और छोटी सी बालकनी थी, और एक स्लैब था जिसे किचन का नाम दे दिया गया था। तो हम दोनों उसी में रहते थे, और वहाँ सारे स्ट्रगलर, राजपाल यादव, विजय राज, ये अनूप सोनी, कुमुद मिश्रा, सब वहीं रहते थे। बहुत सारे, सीमा विश्वास, राजेश तैलंग, सब वहीं रहते थे। बहुत बड़ा एक
1: जी,
2: स्ट्रगलर का अड्डा था
1: हब
2: वो,
1: था वो।
2: स्ट्रगलर सब लोग, स्ट्रगल क्योंकि सस्ता था ना, तो सब लोग वहीं आके रुक जाते थे।
0: जी
2: तो वहाँ रहते थे हम, तो वहाँ हमारे पास पेजर था। पेजर में मैसेज आया कि कॉल आमिर खान प्रोडक्शन और क्लेमेंटिना डैश क्लेमेंटिना। मैंने कहा ये क्लेमेंटिना क्या है भाई, ये जरूर किसी ने प्रैंक खेला है, कोई कान खिंचाई कर रहा है हमारी।
0: हाँ
2: तो मैंने सोचा चलो काम तो कुछ था नहीं,
0: जी
2: मैंने कहा फ़ोन तो कर लेते हैं। तो मैंने फ़ोन किया तो आमिर खान प्रोडक्शन में लगा फ़ोन, तो वहाँ उठाया, लैंडलाइन था उस वक्त, मोबाइल नहीं थे, तो लैंडलाइन था, तो उसमें क्लेमेंटिना ने उठाया, तो वो एक लड़की का नाम था,
0: अच्छा
2: क्रिश्चियन लड़की का।
0: जी
2: तो मैं बोला, तो वो बोले आशुतोष ग्वारीकर कल मिलना चाहते हैं आपसे, आप आ जाइए ऑफिस, ये एड्रेस भेज रही हूँ मैं, पेजर पे मैसेज आ गया मुझे। और मैं अगले दिन आशुतोष ग्वारीकर से मिलने गया। उन्होंने 3.5 4 घंटे ऐसे घूम घूम के कमरा बंद किया, बोले नोबडी विल डिस्टर्ब मी, और घूम घूम करके 3.5 4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे।
0: ओ
2: ये कमाल की बात है, मैंने उनसे सीखा कि अपने खून में पूरी कहानी होनी चाहिए, जो कि
0: बिल्कुल
2: मैंने फॉलो किया बाद में डायरेक्ट करते हुए। तो उसने सुनाई, और रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल है।
0: और
2: मतलब
0: बहुत हाँ
2: इसमें
0: जी
2: वेरिएशन भी है, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी। तो और उसने बोला कि लाखा के लिए हम ढूंढ रहे हैं।
0: क्या बात है।
2: तो मेरी तो ऐसे, मैंने कहा भाई थैंक यू भाई, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा, और मैंने तो थैंक यू वैंक यू नहीं है, ये ऑडिशन देना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ ऑडिशन देंगे ना। तो अगले दिन मुझे बुलाया आमिर खान के घर पे, और वहाँ ऑडिशन हुआ। ऑडिशन दे करके मैं निकला, और निकलते ऑटो में बैठा ही था, 10 मिनट हुए होंगे मुझे कि मेरे पास मैसेज आ गया कि यू आर सेलेक्टेड।
0: क्या बात है, वाह।
2: मैं स्टेशन जा रहा था ट्रेन पकड़ने, तो मैं तो मतलब मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि इतनी बड़ी फिल्म, इतने बड़े स्टार के साथ मेरा मतलब सिलेक्शन हो रहा है, और इतने बड़े रोल के लिए। तो मैं तो बड़ा खुश था। तो उन्होंने क्या है, आमिर खान को भेजा ऑडिशन उसी वक्त। आमिर खान मद्रास में थे, AR
0: जी
2: रहमान के पास म्यूजिक के लिए कुछ बैठे हुए थे। तो उसके बाद मैं घर गया, उन्होंने बोल दिया कि सेलेक्ट, मतलब उन्होंने हाँ कर दिया मेरे लिए। तो हो गई बात। अब अगले दिन मुझे आना था प्रोडक्शन पैसे की बात करने, तो रीना दत्ता से,
0: जी जी
2: रीना दत्ता उनकी जो वाइफ थी, प्रोड्यूसर थी उस वक्त, तो उन्होंने बोला कि भाई आप पैसे की बात कर लो। तो मैं रास्ते भर ट्रेन में ये सोचता रहा कि साला यशपाल इस बार ना तू सब छोड़, 1 लाख रुपया मांग लो, ये मौका है, बड़ा प्रोडक्शन है और मतलब मिल जाएगा, कोई मना नहीं करेगा। फिर ख्याल आया कि यार अगर उन्होंने नहीं दिए तो मैंने कहा फिर 80,000 में कर लूंगा, फिर सोचा चलो 40-50 हजार में कर लूंगा, अरे यार मैंने कहा काम तो कुछ है नहीं, 20,000 मिलेगा तो भी कर लूंगा।
0: क्या बात है,
2: फिर मैं गया रीना दत्ता जी के ऑफिस में गया, तो रीना दत्ता जी ने पहली बात यही बोली कि यशपाल हमारा बजट बहुत कम है, हम सबको 1.5-1.5 लाख रुपए दे रहे हैं। तो मेरे मुंह से निकल गया नहीं नहीं मैडम, इतना लंबे दिन है, इतना बड़ा रोल है, 2 लाख तो होना चाहिए। तो मैडम ने बोला ठीक है साइन कर दो।
0: क्या बात है,
2: अब देखो ये होता है। और वो भी फिर 4.5 महीने के लिए था, फिर शेड्यूल बढ़ गया, फिर 1 महीना, फिर 50,000 और एक्स्ट्रा बढ़ गए, और 250 रुपया पर डे एक्स्ट्रा और मिलता था, तो मतलब मौज ही मौज हो गई थी। खैर वो बात अलग है, लेकिन लगान ने जो दिया पूरी दुनिया में घुमाया, पूरी दुनिया में हम फेस्टिवल्स में गए, और अमेरिका कनाडा के टूर पे भी गए, दुबई हर जगह बहुत जगह गए हमने, पूरी दुनिया मलेशिया मॉरिशस सब जगह घुमा दिया इस फिल्म ने, और बहुत कुछ दिया, और ऑस्कर में नॉमिनेट हुई, बेस्ट 5 में चली गई थी
0: जी, बिल्कुल
2: बिल्कुल कांटे की टक्कर में बची लास्ट में। तो ये था किस्सा लगान का जी।

0: आपने जैसे बताया कि विविधता थी इस कहानी में आपने जब सुना, लेकिन लाखा का किरदार बड़ा ही अलग तरह का था, बड़ा महत्वपूर्ण था। उस किरदार को गढ़ने के लिए आपको किस तरह की तैयारी करनी पड़ी निजी तौर पर?
1: तैयारी उन्होंने एक हफ्ता पहले बुला लिया था आशुतोष गवारीकर ने सबको।
0: जी
1: मुझे याद है मेरा जन्मदिन था 1 जनवरी को, और 1 जनवरी को ही मेरी फ्लाइट थी, तो वो उसी दिन मैं गया था, और 7 तारीख से शायद शूटिंग शुरू थी, 6 या 7 से।
0: जी
1: तो एक हफ्ता हम वहाँ पूरे गांव में घूमते थे, मीटिंग करते थे, और आशुतोष गवारीकर हर किसी के पास आकर के बताता कि ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारी लकड़ियाँ पड़ी हैं, तुम वहाँ से जंगल से लकड़ियाँ काट के लाते हो, लकड़हारा हो, और यहाँ लकड़ियाँ इकट्ठी करते हो, और फिर गांव में एक एक जैसे 4-4 लकड़ी या 10-10 लकड़ी ऐसे बेचते हो
0: जी
1: गांव में। तो मतलब एक करेक्टर मेरा समझ में आ गया था, और यहाँ से वो सामने गौरी का घर है हीरोइन का, उससे तुम प्यार करते हो, इसलिए ज्यादातर तुम यहीं खड़े रहते हो। और क्या है कि उसका बाप जो है हीरोइन का वैद है, तो मैं क्या करता हूँ जानबूझ के ना अपना हाथ वाथ काट लेता हूँ ताकि उसके पास पट्टी बंधाने जा सकूं
0: अच्छा क्या बात
1: गौरी को
0: है
1: देखने के बहाने।
0: जी जी जी
1: तो इस तरीके का करेक्टर मेरा था पूरा, और मैं नफरत करता हूँ सिर्फ एक ही इंसान से, वो है भुवन जो हीरो है आमिर खान, क्योंकि वो हीरोइन को चाहता है, हीरोइन उसको चाहती है, तो इसलिए मेरा ये जेलसी भी काफी निकल के आई। लेकिन बाद में जब पता चला कि देश प्रेम और ये प्रेम अलग है एक तरफा, तो इसकी कोई मैं क्या कर रहा हूँ अब इसके लिए, मैं देश को धोखा दे रहा हूँ, वो
0: जी
1: एक एहसास हुआ, और फिर मैंने पूरी शिद्दत के साथ मैच जितवाया
0: जी
1: कुदरती। अभी उसके 25 साल पूरे हो रहे
0: क्या
1: हैं।
0: बात
1: जी
0: है,
1: जी
0: बहुत बहुत मुबारक पूरे विविध भारती परिवार की ओर से। आशुतोष जी कैसे हैं बातचीत करने में निजी तौर पर, उनकी कोई खासियत बताना चाहते हैं?
1: बिल्कुल, बहुत क्लैरिटी है उनके अंदर, वो प्री प्रोडक्शन में बहुत सारा काम कर लेते हैं, पूरी फिल्म का मतलब जर्रा जर्रा उनके दिमाग में और
0: जी
1: खून में बसा हुआ होता है कि क्या करना है मुझे,
0: जी
1: ये
0: जी
1: बहुत अच्छी बात है। हालांकि मैं उसके भी पक्ष में नहीं हूं, सारी चीजें कैलकुलेटेड नहीं होनी चाहिए मेरे

0: हिसाब से कुछ चीजें स्पॉन्टेनियसली छोड़ देनी चाहिए, जो कि लगान में उन्होंने किया,
1: बिल्कुल
0: लगान में किया उन्होंने, काफी कुछ काम करके कुछ चीजें एक्टरों पे छोड़ दी थी और स्पॉन्टेनियसली जो होता था उस पे उसी हिसाब से किया, क्योंकि कैमरामैन अनिल मेहता थे जो बहुत ही सजे हुए कैमरामैन थे, तो टीम भी बहुत बढ़िया थी, अच्छे सब एक्टर लिए हुए थे और क्रू भी बहुत कमाल का था सारा। अपूर्व लाखिया उसका चीफ एसोसिएट डायरेक्टर था, जो कि आजकल बहुत बड़ा डायरेक्टर बन चुका है, जिन्होंने बहुत सारी फिल्में डायरेक्ट की हैं अभी, तो बहुत बढ़िया टीम थी। और आशुतोष गवारीकर की क्लैरिटी कमाल की थी, उसको मालूम था कि मुझे क्या चाहिए और वो उनसे एक्टरों से निकलवा लेता था।
1: जी, और आमिर खान तो परफेक्शनिस्ट हैं।
0: बिल्कुल, आमिर खान के साथ उनकी बहुत सारी मुलाकातें हमारी शूटिंग से पहले ही हो चुकी थी और सब कुछ तय हो चुका था कि क्या करना है।
1: बिल्कुल, और आप दीजिए एक गाना, आप बताइए कौन सा गाना सुनवाए यहाँ पर।
0: लगान का ही सुनवा दो।
2: हाँ, वो बहुत इंस्पायरिंग।
0: कोई हमसे जीत न पाए।

0: इस फिल्म से जुड़ा हुआ अनुभव आप साझा करना चाहेंगी प्रतिभा जी?
1: हाँ बिल्कुल, जैसे ये फिल्म इतनी हिट हुई उसके बाद हमारे बच्चे हुए, तो मेरे बच्चों को मैं रोज लगान दिखाती थी और बच्चे इतने ज्यादा यूज्ड टू हो गए थे उस लगान के, मम्मी लगान लगाओ ना, मम्मी लगान लगाओ,
0: क्या बात
1: रोज
0: है।
1: देखना उनको लगान रोज।
0: तो और भी बहुत सारी फिल्में हैं यशपाल जी की और
1: नहीं,
0: आपकी,
1: वो नहीं
0: तो
1: देखनी, यही
0: बच्चे
1: देखनी।
0: सिर्फ यही देखते हैं। और जब अब बड़े हो गए हैं बच्चे तो फिल्म देखते हैं तो कोई टीका टिप्पणी करते हैं एक्टिंग के बारे में?
1: अरे उनके फेवरेट एक्टर है उनके
0: क्या बात है
1: पापा।
0: बहुत बढ़िया। कोई आना चाहते हैं फिल्मी दुनिया में?
1: हाँ बड़ा वाला तो कोशिश भी कर रहा है,
0: जी नाम बताएं तो अच्छा।
1: सौम्या, सौम्या
0: जी
1: शर्मा।
0: चलिए सौम्य जी के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं,
2: अरे
0: वीरो
2: हाँ एक
0: हीरो हैं।
2: मिनट, सॉरी मैं बीच में
0: हाँ
2: डिस्टर्ब
0: हाँ
2: कर रहा
0: नहीं नहीं
2: हूँ।
0: बोलिए
2: जब
0: बोलिए।
2: लगान की शूटिंग चल रही थी तो प्रतिभा का फोन आया, अरे बाबा क्या कर रहे हो तुम, वो कौन सी फिल्म कर रहे हो, धोती बोती वाली? देखो यहाँ पे इतनी सुपर डुपर हिट हो गई है, ऋतिक रोशन की पहली फिल्म थी। कौन सी थी वो? बोली बाप रे, एक ऐसा हीरो आ गया है जो उसने सबको फेल कर दिया है, चारों तरफ उसकी चर्चा हो रही है, हाउसफुल जा रहे हैं, और क्या फिल्म बन रही, क्या फिल्म बनी है, मैं भी देख के आई। हैं
1: ऋतिक
0: कौन
1: रोशन
2: सी
1: की
2: वाली फिल्म
1: पहली
2: थी?
1: फिल्म जो थी
2: कहो ना
1: वो
2: प्यार
1: कहो
2: है।
1: ना प्यार है। अच्छा
2: हैं तो मैं डर गया भाई, मैंने कहा छोड़ दूं क्या लगान, क्या कर लेकिन देखिए वो फिल्म भी सुपर डुपर हिट हुई, लगान भी, और लगान के साथ गदर भी रिलीज हुई और गदर भी सुपर डुपर हिट हुई
0: जी जी जी बिल्कुल।
2: दोनों।
0: प्रतिभा जी हम आपसे जानना चाहते हैं कि एक फिल्म थी राजेंद्र कोठारी की, है ना, याद होगी आपको, दास कैपिटल, तो इसमें आप हीरोइन है और यशपाल जी हीरो, निजी जिंदगी के हीरो भी वही है, तो
1: जी
0: ये पर्दे पर उनको हीरो के रूप में देखना, खुद को हीरोइन के रूप में देखना, ये कैसा एक्सपीरियंस था आपका, अनुभव कैसा
1: नहीं,
0: था?
1: हम लोग पहले से मतलब साथ में काम करते
0: कर
1: आए
0: चुके
1: थे,
0: हैं।
1: तो मैं जब गुलजार साहब के साथ और मैं जब श्याम बेनेगल साहब के साथ काम कर रही थी तब मुझे राजन कोठारी जी ने नोटिस किया था एज एन एक्टर, तो उनके मैं याद में थी, ध्यान में थी, तो उन्होंने हालांकि सीमा विश्वास को कास्ट किया था और यशपाल की जगह कौन और एक्टर थे,
2: पता नहीं मुझे,
1: रघुवीर यादव
2: रघुवीर
1: शायद,
2: यादव सर,
1: हाँ
2: यस सर
1: रघुवीर यादव
0: जी।
1: उनके दिमाग में थे, पर जैसे ही उन्होंने मेरे वो वाले काम देखे थे वो, क्योंकि वो ही उसमें कैमरामैन थे, तो उन्होंने वहां से मुझे नोटिस किया था और फिर उन्होंने मुझे घर पे आके बोला कि ये रोल सिर्फ प्रतिभा करेगी, बस दैट्स ऑल।
0: जी। तो इस फिल्म की शूटिंग से जुड़ी हुई कोई खास याद साझा कीजिए, दोनों लोग साथ में जाना, अमूमन अलग अलग शूटिंग पे जाते होंगे
1: नहीं
0: लेकिन
1: तब
0: इस बार।
1: हमारे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, तो मम्मी आई थी उनको संभालने के लिए, मम्मी पापा मेरे, और हम दोनों वहीं पे रहते थे जहां पे लोकेशन था,
2: मनोर में थी
1: मनोर में
2: लोकेशन,
1: थे।
2: वहीं होटल ले रखा था हमने
0: जी जी जी
2: सब लोगों ने,
0: अच्छा।
2: पूरी कास्ट क्रू ने, तो वहीं होटल रहे थे, वहीं बाजू में एक गांव था तो वहीं करते थे,
1: लेकिन
2: बच्चे भी साथ में थे।
1: बहुत सुंदर थी वो
0: जी
1: फिल्म।
0: तो आपने कहा बच्चे छोटे थे और तो बच्चों के साथ एडजस्टमेंट थोड़ा मुश्किल होता है, सामंजस्य जिसको कहेंगे, क्या कैसे आप सामंजस्य बिठाती थी
1: तो
0: शूटिंग
1: उस
0: के लिए?
1: वक्त तो मतलब छोटे थे ही, ऑफ कोर्स तो करना पड़ता था ना उनके साथ काम, मम्मी उनको भेजती थी स्कूल और फिर मैं यहाँ से और क्या ही कर सकती हूँ, फोन ही कर
0: कि
1: सकते
0: बच्चे जब मिलते थे
1: हाँ।
0: रोते थे तो फिर
1: नहीं
0: दिल,
1: रोते भी थे नहीं थे, वो बड़े उस तरह के
0: अच्छा
1: बच्चे हैं कि मतलब समझदार है,
0: उनको पता था कि
1: उनको
0: मम्मी
1: पता
0: पापा
1: था।
0: को आगे बढ़ना है
1: पर
0: ऐसे साथ में।
1: एक दिन मुझे, मैंने वो जो उस ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी जो मैं अपने मायके के लिए जाने के लिए रोती हूँ, तो वो उसको बिल्कुल ही छोटा था मेरा बेटा, तो बिल्कुल ही मेरे ख्याल से 5-6 साल का होएगा, तो मुझे बोल रहा है मम्मी तुम एकदम छमक छल्लो लग रही हो। ये शब्द भी उसको पता नहीं कहाँ से मिला।
0: जी। तो बच्चे देखते रहते हैं तो और बहुत कुछ सीखते हैं, टेलीविजन
1: हाँ
0: से सीखते हैं, तो यहाँ पर बात बच्चों की है, बच्चों के लिए कोई गाना सुनवाना चाहेंगे?
1: हाँ बिल्कुल, लकड़ी की काठी बहुत सुंदर गाना है।

0: देता है, तो ऐसा लगता है कि चलो कुछ तो
1: जी
0: बढ़िया हो रहा है।
1: बिल्कुल, नाटक का जिक्र किया आपने तो हमें याद आया कि एक नाटक किया था जो लगभग 3 घंटे चला था, वो कौन सा नाटक था और उस पर आपने दर्शकों को हंसाया, जिसमें मुकेश तिवारी भी है
0: अच्छा, वो बड़े न
1: वो?
0: खेले छोटे खेल।
1: जी,
0: हाँ, वो एक फ्रेंच प्ले है, डरियो फो का लिखा हुआ, आर्कएंजल्स डोंट प्ले पिनबॉल गेम, उसका हिंदी अनुवाद है।
1: जी
0: और उसमें मेन रोल मैंने किया था लॉफ्टी का, और उसमें 2.5 घंटे का नाटक था वो। तो ये समझो कि 2.5 घंटे तक तो लगातार हंसाया, फिर 10 मिनट रुलाया,
1: क्या
0: फिर
1: बात।
0: आखिरी के 5 मिनट फिर हंसाया। तो ऐसा उसका प्रोसेस था, और वो कहानी भी ऐसी थी, तो बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा था वो। मुकेश तिवारी डबल कास्ट में था मेरे साथ,
1: जी
0: मतलब एक दिन मैं करता था, एक दिन वो। मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस वाइज अभी तक का मेरा सबसे एनर्जेटिक परफॉर्मेंस रहा है वो।
1: जी
0: वो हुआ आइंस्टाइन हुआ या
1: परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो परफॉर्मेंस के हिसाब से तो बहुत सारी फिल्में आपके खाते में हैं, गंगा जल जो शुरुआती फिल्म है और प्रकाश झा जिसके डायरेक्टर हैं, तो गंगा जल की बात आप बताइए हमारे श्रोताओं को, कैसे जुड़े प्रकाश झा से, ये आपके शुरुआती दिन थे और संघर्ष के भी दिन थे?
0: प्रकाश झा का मैसेज आया था मेरे पास, फिल्म करने वाला हूं मैं तो तुम मेरे बारे में सुना किसी से उन्होंने, एनएसडी के ही कई लोग बता देते हैं ना। तो मैं गया तो बस उनसे बातचीत हुई, और उन्होंने बोला कि ये रोल है एक सुंदर यादव का, ये साधु यादव का बेटा है, साधु यादव जो है मेन विलेन है इसमें, तो हम उनके बेटे हो,
1: जी
0: बिगड़ैल बेटे। तो मैंने बोला कि ठीक है करता हूँ, भी कर ली मैं बात, हो गई। तो मैंने बोला स्क्रिप्ट दे दो, तो बोला स्क्रिप्ट तो मैं अजय देवगन को ना दूं। तो मैं बोला ठीक है भाई। तो फिर मैंने बोला अच्छा मैं यहीं पढ़ लेता हूँ आपके ऑफिस में। बोले हाँ यहीं पढ़ लो, लो। तो मैंने वहाँ वह बैठ करके 3 घंटा स्क्रिप्ट पढ़ी मैंने,
1: जी
0: और पढ़ करके मैंने बोला कमाल रोल है जी, मैं करूँगा। हालांकि उसमें डायलॉग नहीं थे कुछ भी ज़्यादा, और वो लिखा हुए में सुंदर यादव कुछ भी नहीं था, लेकिन फिल्म करते करते करते करते उसमें मेरे सीन लिखे जाने लगे,
1: क्या
0: और
1: बात है।
0: हाँ, और मेरा रोल बढ़ता गया बढ़ता गया, और वो मेन विलेन में आ गया तकरीबन तकरीबन क्या है एक्चुअली में।
1: जी
0: तो वो प्रकाश झा की खासियत है कि उन्होंने देखा कि ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन रही है इसकी, तो उन्होंने मेरे रोल को बहुत अच्छे से उभारा और पूरा फुटेज दिया।
1: जी बिल्कुल।
0: गाना भी था, एक आइटम सॉन्ग था जो ये संजय दत्त की वाइफ है मान्यता, उन्होंने डांस किया था उस पर।
1: जी अब यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना है, सुनवाए हम।
0: यहाँ तो मेरा फिल्म है ना, ये एक सिंग इज किंग का एक गाना बड़ा अच्छा है।

0: सच बताऊं तो विविध भारती में जब मैंने जिक्र किया कि यशपाल जी आ रहे हैं, यशपाल शर्मा जी, बोले गंगा जल वाले, गंगा जल आपके नाम के साथ कैसे जुड़ गया है? तो
1: जुड़ गया है। अरे वो सुनिए, मैं सिक्किम में शूटिंग कर रहा था, सिक्किम में पेलिंग करके एक जगह है जहाँ डैनी
0: जी जी
1: डैनी साहब हैं जहाँ
0: हाँ
1: के, तो पेलिंग में शूटिंग कर रहा, जानू बरुआ डायरेक्टर थे, और वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची मिली मुझे और बोल रही, अंकल अंकल आपने गंदे आदमी का रोल बहुत अच्छा करते हो। मैं बोला क्या देखा बेटा तूने, मैंने समझ नहीं आया, तारीफ कर रही है कि बेइज्जती कर रही है। तो मैंने बोला बेटा क्या देखा तुमने, अरे वो जो अजय देवगन के साथ किया ना आपने आंख फोड़ने वाला, बहुत अच्छा था। मैं बोला अच्छा गंगा जल की बात कर रही है, ये भी
0: क्या
1: एक
0: बात है
1: तरीका है बच्चों का।
0: जी
1: मेरी
0: जी
1: वाइफ भी प्रतिभा नहीं देखने देती बच्चों को, गंगा जल देखने नहीं देती
0: अच्छा
1: ना, बोल रही है बहुत वायलेंस है, बहुत वायलेंस है।
2: वो छोटे छोटे बच्चे थे, मैं
1: और
2: एकदम
1: वाकई में वो
2: प्रतिभा
1: पिस्तौल लेकर के ठा ठा ठा ठा करते थे ना, जब ऐसी फिल्में देख करके, तो मुझे भी अपने आप पे ना ग्लानि हुई कि यार यशपाल तेरी वजह से बच्चे कितने बिगड़ रहे होंगे ऐसे, तो ये ऐसे रोल मत कर। तो मैंने ना वाकई कॉन्शियसली उस तरीके के रोल करना बंद कर दिया था। अब कई बार नहीं पता होता और करना होता पड़ता है, जैसे राउडी राठौड़ है या कोई जिसमें वायलेंस बहुत है तो करना पड़ता है, लेकिन मैंने खुद डिसाइड किया कि मैं खुद नहीं करूंगा ऐसा कुछ
0: जी।
1: जिसमें बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़े।
0: चमेली में आप बने थे केपी सिंह, उसके बारे में बताइए, वो उस भूमिका के बारे में बताइए। करीना कपूर इस फिल्म में थी, बड़ी सुंदर फिल्म थी,
1: बहुत
0: हमने
1: प्यारी
0: देखा।
1: फिल्म
0: हाँ
1: थी, सुंदर फिल्म थी, और मेरा रोल बहुत बड़ा नहीं था लेकिन बहुत कमाल रोल था मेरा, क्योंकि बहुत लोगों ने चमेली का नाम लिया है। छोटा रोल लेकिन प्रभाव छोड़ने वाला रोल
0: जी
1: था, क्योंकि वो करीना कपूर की और राहुल बोस की सारी समस्याएं सॉल्व कर देता है
0: जी
1: आखिर में आकर के। सुधीर मिश्रा मेरे फेवरेट डायरेक्टर रहे
2: डायरेक्टर
1: हैं, और जब भी उन्होंने कोई भी रोल दिया, मेरे ख्याल पहले हजारों ख्वाहिशें ऐसी, फिर ये था चमेली था, फिर उसके बाद ये साली जिंदगी, इरफान खान भी थे,
0: जी
1: तो इस जो भी रोल दिए उन्होंने मुझे उन पर पूरा आंख बंद करके भरोसा रहता था कि श्याम बेनेगल हुए, प्रकाश झा हुए, सुधीर मिश्रा हुए, ये
0: जी
1: कुछ
0: जी
1: भी रोल देंगे, अनुराग कश्यप हुए, कोई भी रोल देंगे तो मैं आंख बंद करके कर लूंगा, मैंने बिल्कुल नहीं पूछूंगा
0: जी जी
1: जी।
0: क्या बात है। अब यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना है, सुनवाए हम।
2: डोली में बिठाई के का
0: आप दोनों गा के सुनाएंगे तो भी

ये थी जाने माने अभिनेता यशपाल शर्मा और उनकी पत्नी प्रतिभा शर्मा से ममता सिंह की बातचीत। आज आपने सुना पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: Taranc, taranc.
1: रंग तरंग प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अनूप जलोटा के स्वर से।

अनूप जलोटा और अनीता खंडेलवाल के स्वरों में आप ये भक्ति रचना सुन रहे थे। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। दोस्तों, आज जाने माने संगीतकार खयाम की याद का दिन है। आइए सुने ये रचना बेगम अख्तर की आवाज में, सुदर्शन पाकिर के बोल हैं।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

उषा मंगेशकर, भूपेन हजारिका और हेमंती शुक्ला की आवाजें थी। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की आवाजें सुनिए। एल्बम का नाम है ये प्यार का मौसम है।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: फिर चांद की पेशानी से उठता है धुआं, आज फिर महकी हुई रात में जलना होगा। आज फिर सीने में उलझी हुई वजनी सांसें हट के बस टूट ही जाएंगी, बिखर जाएंगी। आज फिर जागते गुजरेगी तेरे ख्वाब में रात, आज फिर चांद की पेशानी से उठता है धुआं, आज फिर महकी हुई रात में जलना होगा। कहां छुपा दी है रात तूने, कहां छुपाए हैं तूने अपने गुलाबी हाथों के ठंडे फाए। कहां हैं तेरे लबों के चेहरे, कहां है तू आज, तू कहां है। ये मेरे बिस्तर पे कैसा सन्नाटा सो रहा है।
1: ये था गुलजार का स्वर।

तुलसी कुमार और जुबिन नौटियाल की आवाजों में आप सुन रहे थे ये नॉन फिल्म एल्बम से गीत, कुणाल वर्मा के बोल थे। पेश खिदमत है जगजीत सिंह की आवाज, कैफ भोपाली के बोल हैं। प्रोग्राम है रंग तरंग।

ये थी जगजीत सिंह की आवाज, कैफ भोपाली के बोल थे। इसी के साथ आज का रंग तरंग प्रोग्राम खत्म होता है। रंग

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। सूचना
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग
3: उमंग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
1: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
3: घड़ी की सुइयां कभी नहीं रुकती, समय भी किसी का इंतजार नहीं करता। जो हर पल का सम्मान करता है, भाग्य भी उसी का साथ देता है। समय बहुत अनमोल है, उसकी कद्र करें।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतने सुंदर संदेश के लिए, जिसने सच में हम सबको समय का महत्व समझाया। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें पहला संदेश मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन और हेमलता के साथ साथ डिंपल देवांगन।
3: ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
1: और माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल।
3: छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
1: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से हमारे चिर परिचित श्रोता योगेश ठाकुर जी।
3: सभी श्रोताओं को उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम उमंग से।
1: श्रोताओं, एक बार फिर से करते हैं आपका बहुत बहुत स्वागत हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
3: जी
1: श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी कुछ ऐसे शब्दों की जो हैं तो हिंदी, संस्कृत और उर्दू के, लेकिन अब वे विश्व की कई भाषाओं में विशेषकर अंग्रेजी में इस्तेमाल किए जाते हैं।
3: आज एक बार फिर से हम लेकर आए हैं कुछ और शब्दों को जो हिंदी, संस्कृत, उर्दू और क्षेत्रीय भाषाओं से आए हैं, लेकिन अब दुनिया भर में प्रयोग में लाए जाते हैं। श्रोताओं, आपने बंगलो यानी बंगला शब्द अवश्य सुना होगा। शायद ही कोई सोचे कि ये शब्द भारतीय है। अक्सर ऐसा लगता है कि ये शब्द अंग्रेजी का है, लेकिन तथ्य कुछ और है।
1: जी श्रोताओं, तथ्य ये है कि अंग्रेजी का बंगलो शब्द बंगला या बांग्ला से निकला है।
3: जी।
1: इसका अर्थ था बंगाल शैली का मकान। ब्रिटिश अधिकारियों ने भारत में जब देखा कि भारत के बंगाल क्षेत्र में एक मंजिला चौड़े बरामदे वाले घर गर्मी के

0: मौसम के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं,
1: जी
0: तो उन्होंने भी अपने रहने के लिए इसी प्रकार के मकान बनवाए और उन मकानों को उन्होंने बंगलो कहना शुरू किया।
1: जी
0: धीरे धीरे ये शब्द पूरे ब्रिटिश साम्राज्य और फिर पूरी दुनिया में फैल गया। तो श्रोताओं, जानकारी ये थी कि बंगलो शब्द बांग्ला शब्द से निकला है।
1: जी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अनेक देशों में आज भी जहाँ जहाँ ब्रिटेन का प्रभाव रहा, एक मंजिला स्वतंत्र मकान को बंगलो ही कहा जाता है।
0: आशा है श्रोताओं कि आपको हमारी आज की जानकारी जरूर बड़ी रोचक लग रही होगी, है ना? आइए अब सुनते हैं एक और नया शब्द, और वो शब्द है खाकी। श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि पुलिस और सेना की वर्दी का प्रसिद्ध रंग खाकी कहाँ से आया?
1: तो हम आपको बता देते हैं, ये शब्द फारसी उर्दू के खाक शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है धूल, मिट्टी या राख। तो जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा में खाकी शब्द कहाँ से आया।
0: होता ये था कि भारत में अंग्रेज सैनिकों की सफेद वर्दी बहुत जल्दी गंदी हो जाती थी,
1: जी,
0: इसीलिए उन्होंने धूल जैसे भूरे रंग की वर्दी पहननी शुरू की। ये रंग इतना उपयोगी सिद्ध हुआ कि बाद में पूरी ब्रिटिश सेना और फिर अनेक देशों की सेनाओं तथा पुलिस ने भी इसे अपना लिया।
1: जी,
0: इसलिए आज खाकी केवल एक रंग ही नहीं बल्कि अनुशासन और सेवा का प्रतीक भी माना जाता है।
1: और अब बात करते हैं एक और बहुत प्रचलित शब्द की। शब्द है लूट। अंग्रेजी का लूट शब्द भी भारत से गया है। ये शब्द हिंदी के लूट या संस्कृत के लुंट शब्द से संबंधित है। इसका अर्थ है छीन लेना या लूट लेना।
0: श्रोताओ, अंग्रेजी शासन काल में अंग्रेज लोग अधिकतर जज, सैनिक या प्रशासनिक अधिकारी होते थे।
1: जी,
0: न्याय करने की प्रक्रिया में या प्रशासनिक मसलों में अंग्रेज अक्सर ये शब्द भारतीयों द्वारा सुनते थे।
1: जी,
0: उन्होंने इस शब्द को यानी लूट शब्द को अपनी भाषा में अपना लिया।
1: जी,
0: आज अंग्रेजी समाचारों, फिल्मों और पुस्तकों में लूट शब्द का प्रयोग पूरी दुनिया में होता है।
1: और अब लेते हैं दो और शब्द जिनसे सभी परिचित हैं। वो शब्द हैं योग और गुरु। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश हो जहां योग शब्द न सुना हो। योग शब्द संस्कृत धातु युज से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना या मिलाना।
0: श्रोताओ, योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा के संतुलन की जीवन पद्धति है। संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया, जिसके बाद ये शब्द पूरी दुनिया में और अधिक लोकप्रिय हो गया। इसी प्रकार से गुरु शब्द भी संस्कृत से आया है।
1: आज भारतीय अंग्रेजी में ये प्रचलन हो चला है कि किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञ के लिए गुरु शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे टेक्नोलॉजी गुरु,
0: मार्केटिंग गुरु
1: या म्यूजिक गुरु।
0: श्रोताओ, दूसरी भाषाओं में शब्दों का यह स्थानांतरण भारत की ज्ञान परंपरा का विश्व पर गहरा प्रभाव दर्शाता है।
1: जी, तो प्रिय श्रोताओ, भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं होती बल्कि संस्कृति की वाहक भी होती है। जब किसी देश के शब्द दुनिया की दूसरी भाषाओं में पहुंचते हैं, तो वे अपने साथ उस देश का इतिहास, संस्कृति और जीवन दर्शन भी लेकर जाते हैं। जिस भाषा के शब्द दुनिया अपनाने लगे, समझिए उस संस्कृति ने दुनिया को कुछ अमूल्य दिया है।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी। तो अब हो जाइए तैयार आज के प्रश्न के लिए। हमारा आज का प्रश्न है, खाकी शब्द किस मूल भाषा से आया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: खाकी शब्द किस मूल भाषा से आया है?
0: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो जरूर करें। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
0: और इन्हीं पुस्तकों को आप ऑडियो बुक प्रारूप में भी NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर भी सुन सकते हैं।
1: जी
0: श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम, नदी का सफर।
1: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में नदी की यात्रा के बारे में बताते हुए उसके उद्गम, प्रवाहित होने के क्षेत्रों, जलप्रपात बनने और अंततः समुद्र में मिल जाने के बारे में रोचक ढंग से बताया गया है।
2: नमस्कार साथियों, कल कल करती नदियाँ धरती की नसों में बहता हुआ जीवन है, जो हर प्राणी को जीवन दान देती हैं।
3: नदियाँ प्रकृति का अमूल्य उपहार है, जिनकी गोद में न जाने कितनी मानव सभ्यताएं पनपी, फूली फली और विकसित हुई। नदियाँ न केवल जल का स्रोत हैं, बल्कि जीवन, संस्कृति और सभ्यताओं की आधारशिला है। अक्सर एक जिज्ञासा हमारे मन में उठती है,

0: कि नदियों का उद्भव कैसे हुआ। तो आइए सुनते हैं एक रोचक कहानी, नदी का सफर।
1: एक समय था जब पृथ्वी पर चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। ये लगभग 20 लाख वर्ष पहले की बात है। इस काल को हिमयुग यानी आइस एज कहते थे। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान बढ़ा, बर्फ पिघलने लगी थी और पेड़ पौधे भी उगने लगे थे।
0: इस तरह से हजारों वर्ष बीत गए। हिमालय पर्वत पर कहीं एक बर्फ की चोटी थी और वहीं रहती थी एक चंचल और चमकदार बर्फ की बेटी। नाम था हिमशिला। वो बहुत बड़े ग्लेशियर यानी हिमनद में रहती थी।
1: एक दिन सूरज ने मुस्कुरा कर कहा,
2: पुत्री हिमशिला, अब तुम्हें धरती पर उतरना होगा। वहां नीचे बहुत से जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, उन्हें तुम्हारे जल की आवश्यकता है।
3: क्यों, मैं क्यों नीचे जाऊं? मैं तो यहाँ ऊपर बहुत खुश हूँ। बादल मेरे साथ आंख मिचौली खेलते हैं। यहाँ सब कुछ कितना शांत है, मैं नीचे क्यों जाऊं?
2: पुत्री, ऊपर रहोगी तो केवल ठंडी बर्फ बनकर यहीं पड़ी रह जाओगी। हमें यूं ही पड़े नहीं रहना चाहिए, किसी के काम भी तो आना चाहिए।
3: अच्छा,
1: सोच में पड़ गई। फिर सूरज ने अपना ताप और बढ़ाया। फिर धीरे धीरे हिमशिला ने मन बना ही लिया पर्वत से उतरकर नीचे जाने का। वो एक छोटी सी धार बन गई और बहने लगी तीव्र गति से ढलान की ओर।
0: रास्ते में कई भूमिगत जलधाराओं ने भी यात्रा में उसका साथ दिया। उसकी गति और बढ़ गई। अचानक उसने महसूस किया, कोई उसे खींच रहा है।
2: वो डर गई और बोली,
3: अरे ये कौन मुझे नीचे खींच रहा है?
1: पर्वत पर तपस्या करने वाले एक बूढ़े साधु ने हंसकर कहा,
2: पुत्री, ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है जो तुम्हें नीचे खींच रहा है। डरो नहीं, धरती माँ तुम्हें अपने पास नीचे बुला रही है ताकि उसे जीवन मिल सके।
0: वो खुशी खुशी बहने लगी।
3: देखो, जरा देखो। अरे ये क्या, और भी इतनी सारी छोटी छोटी धाराएं बहती हुई आ रही हैं मेरी तरफ। हाँ देखो ना, मेरी तरफ।
0: ये सभी आपस में मिल गईं और सभी मिलकर बहने लगी। अब उन्होंने नदी का रूप धारण कर लिया था। कहने लगी,
1: सखी, अब हम सब मिलकर बहेंगी। हम सब एक दूसरे की सहायक हैं।
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम सब मिलकर बहेंगी।
1: हाँ।
0: अब मिलकर बहने के कारण उनकी बहने की ऊर्जा और बढ़ गई। फिर क्या था, छोटी सी जलधारा ने अब एक विशाल नदी का रूप धारण कर लिया। मार्ग में कई पत्थर मिले, चट्टानें मिली, मार्ग रोकने की भी कोशिश की। लेकिन नदी को तो अब बस एक ही धुन थी,
3: मुझे तो बस आगे बढ़ना है, आगे और आगे।
0: एक दिन की बात है, बहते बहते नदी एक बहुत ऊंची चट्टान के पास आ गई। नीचे देखा तो बहुत गहराई थी, उसे बहुत डर लगा। क्षण भर के लिए वो रुक गई और सोचने लगी,
3: हाँ अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब मैं क्या करूं।
0: उसने दाएं बाएं देखा, तब पर्वत ने कहा,
2: कूद जाओ ना।
3: कूद जाऊं?
2: डरो मत।
3: हाँ
2: धरती माता तुम्हें अपनी बाहों में ले लेंगी।
3: अच्छा तो कूद जाती हूँ। कूद गई।
0: लोगों को खुश देखकर नदी को बड़ी खुशी हो रही थी। और हाँ एक बात और है, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वो रुकी नहीं, अपने लक्ष्य की ओर बहना जारी रखा। कई बार रास्ते में या पहाड़ों पर वर्षा हुई तो उसका जल प्रवाह और भी बढ़ गया।
1: फिर क्या था, भला भूमिगत झरने भी क्यों चुप रहते, उन्होंने भी पूरा योगदान दिया और वो भी शामिल हो गए नदी की इस रोमांचक यात्रा में।
0: वो आगे बढ़ती रही। रास्ते में उसने कई गांव देखे जहां लोग और पशु पक्षी प्यासे थे। पेड़ पौधे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सारे खेत सूख गए थे। नदी बोल उठी,
3: अब समझी, सूरज दादा ठीक ही कहते थे, मेरा बहना दूसरों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जहां जहां मैं जाती हूँ वहां हरी हरी घास उगाती है, पेड़ खुशी से झूमने लगते हैं, पशु पक्षी प्रसन्न हो जाते हैं, लोग मुझे माता कहते हैं, मेरी पूजा करते हैं। न जाने कितनी सभ्यताओं को मैंने अपनी गोद में फलते फूलते और पनपते देखा है, लेकिन कई बार मुझे बहुत दुख होता है जब लोग मुझ में कूड़ा फेंकते हैं, शहरों की प्रदूषित नालियां तक मुझ में बहा देते हैं, और मैं बीमार हो जाती हूँ।
1: जब वो सागर तक पहुंची तो सागर ने कहा,
2: पुत्री तू इतनी दूर कैसे आ गई?
3: माँ धरती का गुरुत्वाकर्षण मुझे यहाँ तक बहा कर ले आया।
2: पुत्री तू बहती रही इसीलिए जीवन चलता रहा।
3: अच्छा
2: तू रुकती तो हा? जीवन चक्र ही रुक जाता। चलती रहो।
3: मैं चलती रहूंगी। हाँ मैं हमेशा चलती।
1: चरैवेति, यही तो जीवन है।
0: चरैवेति, नदियों का संदेश यही महान। चलते रहना कर्तव्य पथ पर, हो यही बस तुम्हारे जीवन की पहचान।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम नदी।

का सफर कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन विनीत कुमार शर्मा, कलाकार पूनम एस कुदुसिया, सुनील लोहिया, शशांक शर्मा और बबीता त्रिपाठी, आलेख अजीत होरो, संपादन एवं निर्माण कुसुमलता। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है हेलेन केलर।
2: इस कार्यक्रम में दिव्यांग अमेरिकी महिला हेलेन केलर के जीवन और दिव्यांगता से उनके संघर्ष और विजय की गाथा का सप्रसंग उल्लेख किया गया है और बताया गया है कि किस प्रकार वे विश्व की करोड़ों महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गईं।

0: आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जो पूरे संसार के लिए प्रेरणा स्रोत है, जिनका नाम है हेलेन केलर।
1: हेलेन केलर का जन्म 27 जून 1880 में अमेरिका में हुआ था। जब ये 2 साल की हुई तो बहुत बीमार पड़ी और
2: डॉक्टर, मेरी बच्ची ठीक तो हो जाएगी ना?
3: मिसेस केलर, मुझे बेहद अफसोस है, पर हेलेन अब कभी देख, बोल और सुन नहीं पाएगी। हिम्मत रखिए मिसेस केलर, हिम्मत रखिए।
0: हेलेन की शिक्षा उसकी मां के लिए अब एक चुनौती बन गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हेलेन की देखरेख और शिक्षा के लिए उन्होंने एक अनुभवी अध्यापिका को चुना, जिनका नाम था मिस सेलिवन।
1: आओ हेलेन, मेरे पास आओ। हाँ, इधर। मैं हूँ सेलिवन। आज से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हम दोनों मिलकर खेलेंगे, बहुत सारे काम एक साथ करेंगे। धीरे धीरे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। अच्छा देखो, मेरा हाथ पकड़ो। हाँ, ऐसे। दोस्त हूं ना तुम्हारी। शाबाश। इस तरह एनी सेलिवन ने हेलेन को पढ़ाना शुरू कर दिया। जो भी शब्द हेलेन को सिखाना होता वो उसके हाथ पर लिख देती थी। इस तरह पढ़ते हुए हेलेन ने सबसे पहले गुड़िया शब्द सीखा। हेलेन, आओ, आज तुम्हें एक शब्द लिखना सिखाती हूँ। हेलेन है गुड़िया जैसी, तो हम लिखते हैं तुम्हारे हाथ पर गुड़िया। लाओ हाथ दो। गुड़िया।

0: गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया।
1: अचानक एक दिन बाग की सैर करते हुए पानी का नल देखकर मिस सलिवन के मन में एक विचार आया।
0: अरे, ये पानी का नल? हाँ, अगर पानी का स्पर्श कराकर हेलेन के दूसरे हाथ पर पानी लिखूं, तो कितना अच्छा होगा। अभी देखती हूँ। ये रहा पानी का नल। हेलेन, हेलेन, अपना हाथ मुझे दो। हाँ, शाबाश। अच्छा, अब अपनी हथेली खोलो। ऐसे हाँ। अच्छा, अब मैं एक शब्द लिखूंगी तुम्हारी हथेली पर। देखो, मैं लिख रही हूँ पानी। हाँ हाँ, शाबाश। पानी। हाँ, पानी। एक बार फिर कोशिश करो। हाँ, यूं शुरू हुआ हेलेन का पढ़ना। अब तो वो चीजों को छू छू कर इशारे से उनके नाम पूछने लगी।
1: जल्दी ही वो अपनी अध्यापिका के मुंह और गले को छूकर बोलना भी सीख गई, यहाँ तक कि वो संगीत का भी आनंद लेने लगी।
0: मिसेस केलर
2: जी,
0: हेलेन तो अब बहुत कुछ सीख गई है। संगीत का आनंद भी लेने लगी है। आप तो खुद इतना अच्छा पियानो बजाती हैं। आज हेलेन के लिए मेरे लिए पियानो बजाइए ना।
2: जरूर, मैं अभी बजाती हूँ।

0: तुम अच्छा पिया नो
1: हेलेन हेलेन शाबाश हेलेन मिस सलीमन मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं
2: अरे नहीं नहीं मिस
1: मेरी बच्ची अब थोड़ा सुन सकती है और बोल भी सकती है मिस सलीमन
2: हेलेन
1: बोल सकती है

0: सिर्फ इतना ही नहीं, हेलेन उभरे अक्षरों यानी ब्रेल लिपि को पढ़ने लगी। वो अंग्रेजी के अलावा लैटिन, फ्रेंच और जर्मन भाषाएं भी सीख गई।
1: यही नहीं, वो तैराकी, घुड़सवारी और नाव चलाने में भी रुचि लेती। हेलेन ने अमेरिका के प्रसिद्ध महाविद्यालय रेडक्लिफ से स्नातक परीक्षा विशेष सम्मान से उत्तीर्ण की। हेलेन ने आत्मकथा लिखी जो एक प्रसिद्ध पत्रिका में छपी। दुनिया की 50 से ज्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है।
0: बाद में उन्होंने 10 किताबें और लिखी। वो अंधेपन, बहरेपन और उनसे जन्मी समस्याओं के बारे में अखबारों में लेख लिखती रही। अमेरिका और विदेशों में अंधेपन के लिए काम करने वाली संस्थाओं से वो जुड़ गई।
1: उन्होंने दुनिया के कई देशों की यात्राएं की। सभी जगह हेलेन केलर को भारी सम्मान मिला। सन 1955 में वो भारत आई। दिल्ली में विशाल जनसभा में उन्हें सम्मानित किया गया।
0: ...1964 में हेलेन केलर को अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया।

0: हेलेन केलर की सफलता का रहस्य था तमाम कठिनाइयों के बीच आनंद की तलाश। हेलेन अपने प्रशंसकों के लिए प्रेरणा का एक अमर स्रोत थी, है और हमेशा रहेंगी।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम हेलेन केलर, और श्रोताओं इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
1: जगबंधु और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम।

0: कभी कभी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। साहिर लुधियानवी के बोल थे खयाम का संगीत था।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
3: तुम इसको खेल समझे हो मगर एक दिन दिखा देंगे मोह।

0: मुकेश और आशा भोसले की आवाजों में आप सुन रहे थे मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गाना। संगीतकार थे खयाम, फिल्म थी मोहब्बत इसको कहते हैं। आज का ये प्रोग्राम खयाम साहब के नाम।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, वे सीधे दिल में उतर जाती हैं। वीर जारा, टोरबाज, इंडियाज मोस्ट वांटेड, सीआईडी, अदालत, जाने कितनी फिल्मों और धारावाहिकों में देखा है उनका अभिनय और सुनी है उनकी सशक्त आवाज।
1: अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं जीवन में, आपके मन में वैसी दीवानगी और एकदम पागलपन होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग।
0: अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, वॉइस ओवर आर्टिस्ट और डबिंग डायरेक्टर पंकज रैना की कश्मीर से लेकर मुंबई तक की सारी यादें करेंगे विशेष मुलाकात 19 अगस्त 2026 को आज के मेहमान कार्यक्रम में शाम 4 बजे। सुनिएगा विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली।

0: लता मंगेशकर और तलत अजीज की आवाजें थी। मखदूम मोहिउद्दीन के बोलते खयाम का संगीत था। फिल्म थी बाजार। इसी के साथ आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, वे सीधे दिल में उतर जाती हैं। वीर जारा, टोरबाज, इंडियाज मोस्ट वांटेड, CID, अदालत, जाने कितनी फिल्मों और धारावाहिकों में देखा है उनका अभिनय और सुनी है उनकी सशक्त आवाज।
2: अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं जीवन में, आपके मन में वैसी दीवानगी और एकदम पागलपन होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग।
1: अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, वॉइस ओवर आर्टिस्ट और डबिंग डायरेक्टर पंकज रैना की कश्मीर से लेकर मुंबई तक की सारी यादें करेंगे विशेष मुलाकात 19 अगस्त 2026 को आज के मेहमान कार्यक्रम में शाम 4 बजे। सुनिएगा विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को एतराज अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, अब तक तो आपको पता चल ही चुका होगा कि हर रोज हम एक इबारत या टेक्स्ट फेसबुक पेज पर पोस्ट करते हैं। इसमें वो शब्द समाये होते हैं जिन पर आधारित गाने इस कार्यक्रम में शामिल किए जा सकते हैं। तो आज आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम मेरे साथ, यानी रेडियो सखी के साथ। अब वो जो इबारत है वो मैं पढ़ के सुना दूं, क्योंकि बहुत सारे श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े नहीं हैं, तो उन्हें भी पता चल जाए कि आज की इबारत क्या है और इबारत से जुड़े हुए शब्द, मतलब इसमें जो शब्द होते हैं उनसे जुड़े गाने आपको ढूंढने हैं और लिखने हैं। चांदनी रात बहुत खामोश थी, आकाश पर चांद और तारे चमक रहे थे। खिड़की के पास बैठी वो देर से दूर उसी तारे को देख रही थी। जाने क्यों उसे लगता था कि उस चमक में कोई पुरानी याद छिपी है। टेबल पर एक तस्वीर रखी थी, तस्वीर में दो लोग थे, कभी बहुत पास आज बहुत दूर। उसने गुनगुनाया, आप यूं फासलों से गुजरते रहे। उन दिनों का दीवानापन भी कितना अजीब था। एक आवाज पर दिल धड़क उठता था, एक नजर पूरी रात जगा देती थी, फिर न जाने कब रंजो गम ने प्रेम की जगह ले ली। वो तस्वीर उठाकर देर तक देखती रही, मन ही मन जैसे कोई गीत बज उठा, चोरी चोरी कोई आए चुपके चुपके, काश कोई सचमुच आ जाए, दरवाजे पर दस्तक दे और कहे कि इतने बरसों की दूरी शायद बस एक भूल थी। मगर दरवाजा खामोश था, सिर्फ हवा पर्दों को हिला रही थी। उसने तस्वीर को सीने से लगा लिया, आप और हम या तुम और हम, कभी यही तो एक पूरी दुनिया थी। अब तस्वीर में बची दो मुस्कुराती आंखें थी और उन आंखों के पीछे छिपी एक अधूरी कहानी। तभी उसकी नजर फिर उस तारे पर गई, वो अब भी चमक रहा था। उसे लगा शायद प्रेम कभी खत्म नहीं होता। लोग दूर चले जाते हैं, मौसम बदल जाते हैं, तस्वीरें पीली पड़ जाती हैं, लेकिन किसी रात किसी अकेली खिड़की के बाहर वही प्रेम एक तारे की तरह टिमटिमाता रहता है। उसने तस्वीर को वापस मेज पर रखा और धीमे से कहा, इस तरह तोड़ा मेरा दिल कि अब दर्द भी तुम्हारी याद जैसा प्यारा लगता है। तो ये एक छोटी सी कहानी थी, आप भी चाहें तो बुन सकते हैं कहानी, लेकिन साथ में जरा वो जो तारों वाली बात है कि उसकी नजर फिर उस तारे पर गई। तो बचपन में बहुत सारे तारे देखते थे एक साथ आंगन में लेटकर चारपाई पर, ऐसा ही एक गाना भी है गुलजार साहब का लिखा हुआ। बहरहाल वो गाना तो याद कीजिए, लेकिन तारों वाले गाने तो बहुत सारे आपको लिखने ही हैं, साथ में वो याद साझा कीजिए कि जब तारे गिनते थे तो आसमान में तारे गिनते गिनते संख्या भूल जाते थे और तारे वहीं के वहीं रह जाते थे। तो कई बार सप्तऋषि तारा और तारों के कई नाम हम गिनाते थे, ध्रुव तारा, वो देखो वो ध्रुव तारा है, वो सप्तऋषि तारा। तो ऐसी कोई याद है तो वो जरूर साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। www.facebook.com/vbsmumbai टाइप करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। चलिए अब गानों का सिलसिला शुरू करते हैं और पहेलियों का। पहेलियां भी तो बूझनी है, जरा बताइएगा कि किस फिल्म का ये गाना है और गीतकार का नाम क्या है। संगीतकार का नाम तो आप बूझ चुके हैं, आज उनकी याद का दिन है जिन संगीतकार का ये गाना है। वैसे बूझिए आप गीतकार संगीतकार का नाम और फिल्म का नाम। पहली आसान तो है ना, ये गाना तो आप पहले बहुत बार सुन चुके हैं।

शंकर हुसैन फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, जानिसार अख्तर के बोल थे, खयाम का संगीत था। सभी श्रोताओं ने सही पहचाना है, सही जवाब दिया है। बहुत सारे श्रोताओं ने शब्द लिखे हैं, चांदनी, फासले, रात, रंजोगम, चोरी चोरी, तुम और हम, आंखों, मौसम, याद हो सकते हैं। बहुत सारे श्रोताओं ने तारे से जुड़े हुए बहुत सारे गाने लिखे हैं, तारे से जुड़े हुए अनुभव नहीं साझा किए हैं। और चांदनी रात की एक खूबसूरत बात होती है, जब चांदनी रात में घूमने निकलते हैं तो उसका कुछ अलग ही आनंद होता है। उससे जुड़ी हुई बहुत सारी यादें होंगी, वो भी आप साझा करते रहिए। अब हम, आपने क्या लिखा है वो हम बताते चलते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रेम में कई बार सुबह आने से पहले ही रात बहुत अंधेरी लगने लगती है, और खासकर तब जब हमें अपने प्रेम का इंतजार हो। प्रेम जब एक तरफ से कम होने लगे तो सबसे पहले मन स्वीकार करने से इनकार करने लगता है, और हम तरह तरह के ख्याल में डूब जाते हैं। प्रेम में इंतजार का कोई आकार नहीं होता, वो तो हवा में घुल जाता है, आंखों में ठहर जाता है। कुछ इंतजार कभी खत्म नहीं होते, वो दिल तोड़कर चला गया, लेकिन क्या इस तरह जाने से प्रेम खत्म हो गया? प्रेम बड़ी गहरी चीज है। प्रेम में आकर्षण तो वक्ती है, फर्क इतना है कि तुम प्रेम में कितने गहरे तक डूबे हो। बात बहुत साधारण है, ऐसा क्यों होता है जब कोई एक प्रेम के सहारे सदियां बिताने का मादा रखता है और दूसरा दिल तोड़कर चला जाता है? लेकिन इसमें बड़ा कौन होता है, दिल तोड़कर चला जाने वाला या जो आखिर तक प्रेम करता रहता है, जरा ये भी बताइए। एक श्रोता ने लिखा है कि आज दोपहरी दो प्रेमियों की दोपहरी होगी, जहां उनके मिलने बिछड़ने के किस्से होंगे, उनके रोमांस की बातें होंगी, गिले शिकवे होंगे। चांदनी रात में अकेला कोई महबूब की तस्वीर सीने से लगाए तरह तरह के सवाल जवाब कर रहा होगा। उसका गया महबूब अब तक आया नहीं, फिर क्या वो अब नहीं आएगा? आखिर कब तक कोई एक तारे में महबूब की आकृति तलाशती रहेगी? क्या वो सचमुच नहीं आएगा? ये तो आपको बताना है कि वो महबूब आएगा, दरवाजे पर जो दस्तक हुई थी सचमुच कोई आया या नहीं। बहरहाल चलिए आगे बढ़ें, और अब आपको बूझना है हीरो हीरोइन का नाम। फिल्म है नूरी, और इसमें कौन कौन से शब्द आ रहे हैं आज की इबारत के, बताइए, और साथ में हीरो हीरोइन का नाम बूझिए।

नूरी फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, जानिसार अख्तर के बोल खयाम का संगीत था और बहुत सारे श्रोताओं ने इसका जवाब सही दिया है। फारूक शेख और पूनम ढिल्लन इस फिल्म में होते हैं हीरो हीरोइन, और बहुत जल्द जवाब हमारे श्रोताओं ने दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि ये दिलकश चमकते सितारे भला किसे नहीं सुहाते हैं, बचपन से ही ये दिलों को लुभाते हैं, टूटते हुए तारे मन में एक सवाल सा जगाते हैं कि टूट के आखिर कहाँ तलक जाते हैं। ये भी बताइएगा कि बचपन में जब तारों भरी रात में जागकर देखते थे आंगन में खाट डालकर, तो कौन कौन से तारे आप गिनते थे, उन तारों के नाम अगर याद है तो बताइएगा। एक श्रोता ने लिखा है कि अगर दिल तोड़ने का किसी की भलाई के लिए है तो वो बड़ा है, वरना तो अंत तक निभाने वाला सही है। देखो ना ममता जी, आटे वाले हाथ धोकर लिखना पड़ रहा है, क्या बात है भाई। ये तो आपका जुनून है और आपका प्यार है, खुलूस है, मोहब्बत है विविध भारती के प्रति जो ऐसा करवा रहा है, और हमें ये जानकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि कमेंट लिखने के लिए, टिप्पणी लिखने के लिए आपको हाथ धोना पड़ा। कोई बात नहीं, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जहाँ हीरोइन आटा गूंथ रही है और दरवाज़ा बेल बजती है, घंटी बजती है, तो बाल पीछे करती है और आटा बाल में लग जाता है, लट में। वो कौन सी फिल्म है अगर याद है तो ज़रा नाम लिखिएगा। बहरहाल हम आपकी टिप्पणी एक दो और पहुँचा दें आप तक। एक श्रोता ने लिखा है कि आज खयाम साहब के खूबसूरत गीतों से सजा है आज का सुरीला सफर, बहुत आनंद आने वाला है, आज सुबह से उनके गीत बज रहे हैं। असल में खयाम साहब के गीत तो सुन रहे हैं, सुरीला सफर को हमने अब एक अलग रंग दिया है, इसलिए खयाम साहब के साथ साथ उन्हें तो हमने याद किया ही, साथ में और भी तमाम गाने शामिल किए हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि खयाम शब्दों की गहराई को समझते थे, उनके गाने सिर्फ संगीत नहीं बल्कि बेहतरीन शायरी और साहित्य का एहसास कराते थे, शास्त्रीय और लोक संगीत का मेल। उन्होंने अपनी रचनाओं में भारतीय शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत का अनूठा संतुलन बनाया, कम शोर ज्यादा सुकून उनकी धुनों में, और पश्चिमी या भारी शोर की बजाय ठहराव, खामोशी और रूहानी मिजाज होता था। अब हम आपको चोरी चोरी फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं जिसमें चांदनी है, चांदनी रात है, और साथ में एक पहेली हम पूछ रहे हैं आपसे। उस पहेली को आप देखते हैं कि बूझ पाते हैं कि नहीं। कौन सा एक गीत है जिसमें चांदनी रात है, इतराना है, खुद से शर्माना है और ऐसे शब्द हैं, फिर देखा है ये शब्द भी है, नीला अंबर शब्द है। आपको गाने के बोल अगर याद आए तो लिखिए, फिल्म का नाम लिखिए, हीरो हीरोइन कौन थे ये भी आपको ही लिखना है। जरा याद कीजिए, फिर से दोहरा देते हैं हम आपको, जिसमें चांदनी रात है एक गाना, अभी एक गाना सुनवाएंगे चोरी चोरी फिल्म का जिसमें चांदनी रात है, इसके अलावा एक गाना और है जिसमें चांदनी रात है, खुद से शर्माना है और देखा है कई बार, नीला अंबर शब्द है, और आज की यादों की महफिल कार्यक्रम में वो गाना हमने आपको सुनवाया भी था। चलिए सुनते हैं ये गाना।

कुछ तकनीकी गड़बड़ियों के कारण बीच में विघ्न आया, इसके लिए हम माफी आपसे चाह रहे हैं। चोरी चोरी फिल्म का गाना ये रहा। आपको बूझना है गीतकार का नाम।

चोरी चोरी फिल्म का गाना था और इसमें चांदनी है, मधुर चांदनी है, और बहुत सारे श्रोताओं ने हमारे पहेली का जवाब बिल्कुल सही दिया है। हमारी पहेली ये थी कि कौन सा ऐसा गीत है इस गाने के अलावा जिसमें चांदनी रात है, इतराना है, खुद से शर्माना है और देखा है नीला अंबर शब्द है। हमारे श्रोताओं ने बहुत त्वरित जवाब दे डाला है इसका। चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है, फिल्म दिले नादा, और इसमें हीरो हीरोइन जया प्रदा और राजेश खन्ना होते हैं। और बहुत ज़्यादा तादाद में इसका जवाब आया है। बड़ा अच्छा लग रहा है कि बहुत जल्दी आपने पहचान लिया। और हमने आपसे पूछा था कि वो हीरोइन है जो आटा लगा है हाथ में, दरवाज़ा खोलने जाती हैं और वो बालों में लग जाता है, लट में उनके आटा लग जाता है। तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, बॉबी, फिल्म बॉबी में डिम्पल हैं, बेसन से सने हुए हाथ से ऋषि कपूर के लिए दरवाज़ा खोलती हैं। क्या बात है भाई, बहुत सारी फिल्में आपने देख रखी हैं और जानकारियाँ बहुत समृद्ध है। हम भी समृद्ध हो रहे हैं, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है जानकर। और एक श्रोता ने लिखा है कि 1955 में बचपन में जब गर्मियों के दिन बस एक तारे पर सबसे पहले खाट पर सोने जाते थे, वो सबसे चटक चमकने वाला तारा रहता था, उसे हम जरूर बचपन में देखते। और जब कोई तारा भागता यानी चलता था तो हम सब भाई बहन मिलकर कहते, देखो तारा भाग रहा है, कुछ देर बाद वो गायब हो जाता था। और कई श्रोताओं ने ये तारा वो तारा गाने के बोल लिखे हैं और बहुत सारे श्रोताओं ने ये जवाब दिया है, बॉबी, फिल्म बॉबी में डिम्पल होती हैं। और एक श्रोता ने लिखा है, चिट्ठी ने कोई संदेश न जाने कहाँ तुम चले गए। और फिर एक श्रोता ने लिखा है, चांदनी रात में एक बार तुम्हें देखा है, खुद से शर्माते हुए, ये गीत है फिल्म दिले नादा का, राजेश खन्ना और जया प्रदा। और एक श्रोता ने लिखा, थोड़ी सी बेवफाई, चांदनी रात में एक बार तुम्हें देखा है। मतलब हमारे श्रोताओं ने इस पहेली का जवाब बिल्कुल सही दिया, सही सही दिया। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में छत पर चारपाई डालकर हम सोते थे, हमारी मम्मी हमें तारों के बारे में बताती थी और बताती थी कि ये सप्तऋषि तारा है, ये ध्रुव तारा है, उनके बारे में मैं एक तारे कैसे बने ये भी बताती थी कि तारे कैसे बने, सुनकर मैं रोमांचित हो जाता था। अब वो दुनिया नहीं रही, अब भी छत है, आंगन है, लेकिन वक्त नहीं है तारों को देखने के लिए, क्योंकि अब एक दुनिया है, वो है स्क्रीन की दुनिया, मोबाइल की दुनिया, कंप्यूटर की दुनिया, उसी में आप सब कुछ देख लेते हैं। तो कुदरत के पास जाने के लिए वक्त ही नहीं है। तो आप ज़रा याद कीजिए और बताइए कि पिछले दिनों आसमान के तारे को आपने कब देखा था, आसमान में निकलते हुए चांद को कब देखा था, कब आप चांद से बतियाए थे। अगर आपको तारीख नहीं आ तो ये बता सकते हैं कि पिछले हफ्ते, पिछले महीने, बताइएगा ईमानदारी से। अब बाजार फिल्म का ये गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, आपको बूझना है हीरो हीरोइन का नाम और साथ में संगीतकार का नाम भी। इबारत का कौन सा शब्द इसमें आ रहा है?

0: बाजार फिल्म की ये गजल थी, भूपेंद्र की आवाज, बशर नवाज के बोल थे, खयाम का संगीत था। संगीतकार का नाम हमने पूछा था, सभी श्रोताओं ने सही बताया है और ये भी बताया है हमारे श्रोताओं ने, बाजार में नसरुद्दीन शाह, सुप्रिया पाठक, स्मिता पाटिल और फारूक शेख। और एक श्रोता ने लिखा है कि कल रात ही हमने तारे का नजारा देखा, जब दुकान मंगल कर दी तो मैंने देखा मौसम साफ है। और एक श्रोता ने लिखा है कि 1981 में फिल्म उमरा और जान, 1982 में बाजार और 83 में रजिया सुल्तान, ये तीन ऐसी फिल्में हैं जो फिल्में नहीं बल्कि धुनों का महाकाव्य हैं। और सभी और भी श्रोताओं ने लिखा है फिल्म बाजार का बेहतरीन गीत भूपेंद्र की आवाज बहुत अच्छी लग रही है। और बहुत सारे श्रोताओं ने ये भी लिखा है कि इस इबारत से याद शब्द से ये गाना था। और एक श्रोता ने लिखा है कि 16 आने सच्ची बात मैं बता रहा हूँ, मुझे बनारस से अपने गांव आजमगढ़ जाना होता है, तभी मैं निकलते हुए सूरज को देख पाता हूँ और हमें 2 महीने हो गए निकलते हुए सूरज को देखे हुए। क्या बात है, बड़ी ईमानदारी से आपने अपनी बात कह दी, बहुत अच्छा लगा ये जानकर। एक श्रोता ने लिखा है कि करोगी याद तो हर बात याद आएगी, परीक्षा देते समय ये बात क्यों याद नहीं आती है। भाई ठीक से पढ़ेंगे तो याद आएगी ना, तो ध्यान से पढ़िए, जैसे कि गाने ध्यान से सुनते हैं और याद आ जाती है, फिल्म के सीन याद आ जाते हैं, वैसे आपके आपको पाठ्यक्रम की बातें भी याद रहेंगी। एक श्रोता ने लिखा है कि सचमुच ही सावन की बौछार जैसे महसूस कर रहे नजर आ रहे हैं, जो दिल को सुकून पहुंचा रहे हैं, पानी की बूंदें छमछम करती हैं, जो इस कार्यक्रम को रंगारंग बना रहे हैं, ये बरसात का मौसम बहुत कुछ बयां करती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जो मेलोडियस सॉन्ग आज हम सुन रहे हैं, वही गीत हम उन दिनों अपने रूफ, अपने छत पर, घर की छत पर सुना करते थे रेडियो ट्रांजिस्टर के साथ। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा लग रहा जानकर। और एक श्रोता ने लिखा है कि चांद तारे तो रोज ही देखते हैं रात को, आकाश में चांद तारे न दिखे तो लगता है कि आज बारिश फिर आएगी। और एक श्रोता ने लिखा है कि आजकल चांद तो कभी कभी दिख जाता है पर तारे एकदम से नहीं दिखते, बादल बहुत रहते हैं। बचपन वाली बात भी बताइए कि जब तारों को लेकर पहेलियां बूझी जाती थी कि ये कौन सा वाला तारा है, और अगर कोई गलत बताए तो शर्त लगती थी, फिर कुछ पैसों की शर्त लगती थी या फिर कुछ काम करने की शर्त लगती थी कि अगर गलत जवाब दिया तो वो कल फिर कोई काम सौंप दिया जाता था कि ये हिस्सा, अलमारी का हिस्सा साफ सफाई करोगे या आंगन बुहारोगे, या ये सजा भी होती थी। तो इस तरह की कोई याद आपके जहन में है तो ज़रूर साझा कीजिए। फिलहाल माया फिल्म का गाना सुनिए और बताइए गीतकार और संगीतकार का नाम।
1: तस्वीर तेरी दिल में जिस

माया फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें थी, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सलील चौधरी का संगीत था। हमने ये सवाल आपसे पूछा था और एक श्रोता ने लिखा है कि जब छोटे थे तो दीदी के गांव जाया करते थे, छत पर खटिया डालकर तारे गिना करते थे और आपस में चाची की लड़कियां हम सब बहनें मिलकर यही कहती थी कि तूने कितने तारे गिने। आज वो दिन है कि तारे आसमान पर दिखाई नहीं देते, गिने या देख भी ले तो ऐसा लग रहा है कि बरसों बीत गए तारे नजर आए हुए। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि जो पिछला गाना सुनवाया था याद को लेकर और अभी तस्वीर को लेकर ये गाना सुनवाया है। और जब बात तस्वीर की चली है तो तस्वीर से जुड़ा हुआ और कौन सा गाना इस वक्त आपके जहन में गूंज रहा है, हो सकता है आपका वो गाना यहाँ पर हम बजा दें अभी तुरंत। और एक श्रोता ने लिखा है कि पहले हमारी नानी जी हमेशा तारा देखकर ही शाम का खाना खाती थी, तारे को पहले दर्शन करके, तारीख को पहले दर्शन करके उसका भोग लगाकर खाती थी। भाई चांद को देखकर खाना खाने की परंपरा के बारे में हमें पता है कि जब कोई व्रत त्यौहार होता है, कोई खास त्यौहार जैसे करवा चौथ का व्रत है, तो महिलाएं चांद देखकर खाना खाती हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि छोटे छोटे तारों के साथ चांद बड़ा ही अपना लगता है, हमें बहुत सारी बातें हम याद करते हैं चांद से जुड़ी हुई, पर वो हमारी बातों का जवाब नहीं देता। चांद से बहुत सारी बातें पूछते हैं लेकिन वो जवाब नहीं देता, बस महसूस ज़रूर होता है कि वो हमें सुन रहा है, पर कभी तो एक छोटा ही सही जवाब देना चाहिए ना। हम रोज़ देखते हैं कि मगर कई दिनों से हमें चांद दिखा ही नहीं, कल ही हम आसमान में देख कर आसमान से पूछ रहे थे कि हमारे चांद को कहाँ छुपा रखा है। भाई चांद से तो सभी बतियाते हैं, बचपन में तो चांद के जो चांद में परछाई दिखती है, लोग कहते थे कि कोई वो बुढ़िया है जो सूत काटती है, और कई गानों में भी, कई कविताओं में भी ये बात आती है। तो चांद से जुड़ी हुई तो बहुत सारी बातें हैं हमारे जहन में, बहुत सारी पहेलियाँ हैं। आपके जहन में कौन सी बात है वो आप साझा कीजिए। हाँ तो आपने तस्वीर वाला गाना याद किया क्या जो हम सुनवाने जा रहे हैं, कहीं यही गाना तो आपने नहीं याद किया या कोई और गाना हो तो वो भी बताइए। और ये गाना सुनते सुनते ज़रूर बताइए कि किन कलाकारों पर फिल्माया गया है ये गाना। फिल्म है सावन को आने दो।

सावन क्वानेदु फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने पूछा था किन कलाकारों पर फिल्माया गया है, अरुण गोविल और जरीना वहाब। हमारे सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है और तस्वीर से जुड़े हुए गाने गानों के बोल भी लिखे हैं। तस्वीर बनाता हूँ तस्वीर नहीं बनती, ये बोल कई श्रोताओं ने लिखा है, जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं। और सावन को आने दो फिल्म का नाम था, हमारे श्रोताओं ने बताया है। और फिर एक श्रोता लिख रहे हैं तस्वीर बनाता हूँ, फिर एक श्रोता लिख रहे हैं कि दूर गगन की छांव और खुले आसमान के नीचे रहने वाले को ही पता होता है कि तारों को गिनना और अंधेरी रात में चांद देखने का मजा ही अलग होता है, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है। और एक श्रोता ने लिखा है कि तस्वीर तेरे दिल मेरा बहला न सकेगी, मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे तुम, मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे। और बहुत सारे श्रोताओं ने ये गाने के बोल यही लिखे हैं। और एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा है कि सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, और चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है। मतलब इबारत से जुड़े हुए ये गाने लिख रहे हैं। और एक श्रोता की टिप्पणी है कि आज की इबारत में खयाम के संगीत सा ठहराव है, चांदनी रात की खामोशी, खिड़की के बाहर टिमटिमाता तारा, मेज पर रखी पुरानी तस्वीर और बरसों बाद भी धड़कती हुई एक अधूरी

महबूब की मेहंदी फिल्म का गाना था और हीरो हीरोइन का नाम हमने पूछा था, राजेश खन्ना, लीना चंदावरकर। और एक पहेली और पूछी थी जो ये थी कि मुकेश की आवाज में एक और ऐसा ही गाना है, ऐसा नहीं मतलब जिसमें दीवानापन शब्द आता है, और उसमें फिल्म का नाम हमने पूछा था और गाने के बोल। मुकेश की आवाज में गाना है जिसमें दीवानापन शब्द आता है, गाने के बोल बताइए फिल्म का नाम। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन। हिंट के लिए हमने आपको ये बता दिया। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत दिल को छू लेने वाली है, और ये बात हमारे कई श्रोताओं ने लिखी है। आप सभी से एक गुजारिश है कि आप प्रार्थना करें कि मैं जल्द ही भारत आ सकूं और विविध भारती के स्टूडियो में आकर आपके दर्शन कर सकूं। क्या बात है भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप विदेश से अपने देश में लौटना चाहते हैं, और ये मेरा बहुत बड़ा सपना है। ये लिख रहे हैं, आपका सपना पूरा हो, हम शामिल हैं आपकी इस दुआ में। और हमारे और भी श्रोताओं की बहुत सारी टिप्पणियाँ हैं जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि अब तो जिम्मेदारियों का बोझ है, पहले हम तारे गिनते थे, आसमान साफ होता था। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में जब छोटे भाई बहन एक साथ खेलते थे तो बोलते थे ये हिस्सा तारे का मेरा है, फिर हम आपस में एक दूसरे से कहते थे कि मेरी तरफ के तारे ज्यादा हैं, फिर करते करते लड़ाई हो जाया करती थी। और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि गर्मियों के दिन में गाँव जाने पर जब छत पर सोते थे तो बीच रात में अजिया माँ काकी को उठाने लगती थी, सात डरिया सप्तऋषि दिखाई दे रहा है, भोर होने वाला है। क्या बात है भाई, तब तारों से चांद से ही समय का अनुमान लगा लिया जाता था। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत में चांदनी रात की खामोशी है, खिड़की के बाहर टिमटिमाता तारा, मेज पर रखी पुरानी तस्वीर बरसों बाद धड़कती है। तो जो मैंने इबारत लिखी है उसकी समीक्षा इन्होंने कर दी है। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रेम में दीवानी प्रेयसी, चांद तारों में प्रियतम की तस्वीर देख उसका इंतजार कर रही है, दिल में उठा दर्द आंखों से

बयां हो रहा है। कौन सा गाना आपने सोचा था कि अब बजेगा, ये जिसमें इबारत में कौन सा शब्द आता है ये भी बताइएगा। फिल्म शगुन, आपको पहचाननी है आवाज किसकी है, किसकी आवाज में ये गाना है और संगीतकार का नाम भी। संगीतकार और जिनकी आवाज है उनसे एक खास रिश्ता भी है, जरा बताइएगा।

0: शगुन फिल्म का गाना, जगजीत कौर की आवाज, साहिर लुधियानवी के बोल, खयाम का संगीत। सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया है, लेकिन एक सवाल और पूछा था कि जो संगीतकार हैं और गायिका हैं, इनका खास रिश्ता था, इसके बारे में हमारे श्रोताओं ने नहीं बताया। इसके जवाब का भी हमें इंतजार रहेगा। और एक श्रोता ने लिखा है कि मजबूरी से दिल तोड़कर चले जाने वाले उस सपनों के सौदागर का प्रेम धागा इतना पक्का था कि प्रियतमा के रूह में सदा के लिए फंस गया था। और एक श्रोता ने लिखा है कि ममता जी आज की अधूरी इबारत को पूरा नहीं करेंगी क्या? भाई, ये तो इबारत को पूरा तो आपको करना था, हमने तो आपसे ही पूछा है शुरुआत में, कार्यक्रम की शुरुआत में, कि अंत क्या चाहते हैं आप, कि वो जो दरवाजे की दस्तक हुई थी वो आ जाए या नहीं, तो आप बताइए कि क्या करना है। वैसे दुख का अंत सुख से होता है तो ज्यादा अच्छा लगता है। सुनिए ये प्यासा फिल्म का गाना, बुझिए हीरो हीरोइन का नाम और आवाज किसकी है ये भी बताइएगा।
1: हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो।
0: दो आवाजें हैं, दोनों के नाम बताइए।

गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजें थी, पूछा था हमने, सभी ने सही जवाब दिया है। साहिर लुधियानवी के बोलते सचिन देव बर्मन का संगीत था, फिल्म थी प्यासा और माला सिन्हा गुरुदत्त के अभिनय से सजी थी फिल्म। हमारे श्रोताओं ने यह भी सही बताया। और एक पहली हमने आपसे पूछी थी कि मेरे दीवानेपन की कोई दवा नहीं महबूब की मेहंदी, और पूछा था कि एक और गाना है जिसमें दीवानापन शब्द आता है, सभी ने सही जवाब दिया, यहूदी फिल्म ये मेरा दीवानापन है, मुकेश की आवाज। और हमारे कई श्रोता लिख रहे हैं कि आज की इबारत में जो कहानी बुनी बहुत पसंद आई, और एक श्रोता ने लिखा है कि ये जो आज की कहानी थी अगली बार जब आइएगा तो ऐसी ही कोई कहानी लेकर आइएगा। क्या बात है भाई, लेकिन कहानी का अंत आप सबने बताया नहीं, हमने पिछली दफा भी कहानी का अंत पूछा था, आप सभी ने बताया था वही अंत हमने किया था, लेकिन आज हमारे श्रोता हम ही से पूछ रहे हैं, तो चलिए अंत फिर अंत में जो लाइन लिखी है उसी अंत से उसी लाइन से हमें समापन करना पड़ेगा। एक श्रोता ने लिखा है कि ये रचना केवल बिछड़ने का रोना नहीं है बल्कि ये एहसास कराती है कि सच्चा प्रेम पाना या खोना नहीं बल्कि किसी को अपनी रूह में हमेशा के लिए संजो लेना है। प्रेम का पैगाम कबूल हो गया है तो दोबारा भेजने की जरूरत नहीं होती। तो चलिए अब जब असली प्रेम सच्चा प्रेम होता है तो दुख दर्द कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन इबारत का अंत यही था, तो इसी गाने से अंत करते हैं। फिल्म का नाम जरा बता दीजिए, क्या है फिल्म का नाम, और गीतकार संगीतकार का नाम पता है तो वो भी बताइए।

शहनाई फिल्म का गाना था, आशा भोसले की आवाज थी, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, रवि का संगीत था और यही था प्रोग्राम का आखिरी गाना। सुरीला सफर का ये सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। अब दीजिए इजाजत।

नमस्कार। सारी दुनिया में 19 अगस्त का दिन विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए आपको इसका इतिहास बताएं। दरअसल विश्व फोटोग्राफी दिवस का जो ताल्लुक है वो है डगेरोटाइप नाम की एक फोटोग्राफी प्रोसेस से, जिसका आविष्कार किया था फ्रांस के लुईस डगेरो और जोसेफ निकोफोन ने 1837 में। फिर हुआ ये कि 9 जनवरी 1839 में फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंसेज ने डगेरोटाइप प्रोसेस की उद्घोषणा की और 19 अगस्त 1839 के दिन फ्रांस की सरकार ने इसका पेटेंट खरीद लिया और इसे सारी दुनिया के लिए मुफ्त में उपलब्ध करवा दिया। तो इस तरह से ये मानना चाहिए कि 19 अगस्त के दिन फोटोग्राफी की सुविधा सारी दुनिया के लिए उपलब्ध हो गई थी और इसलिए विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। जरा सोचिए कि वो जमाना कैसा था जब फोटोग्राफी बड़ा ही महंगा शौक होता था और बहुत ही रईस लोग अपने फोटो खिंचवा सकते थे।

फोटोग्राफी ने विज्ञान की प्रगति के साथ बहुत सारे बदलाव देखे हैं। एक जमाना था जब फोटोग्राफी के लिए फिल्म रोल की जरूरत पड़ती थी और एक निश्चित संख्या में फोटो क्लिक करने के बाद ही उस फिल्म को धुलने भेज दिया जाता था। जब वो डेवलप होके और प्रिंट होके आती थी तब हमें ये देखने मिलता था कि तस्वीरें किस तरह से आई हैं। इनमें से कई तस्वीरें बेकार भी हो जाती थी। जाहिर है कि फिल्म रोल वाले वो दिन बड़े ही सुहावने थे और बहुत ज्यादा जिज्ञासा और बेकरारी से भरे हुए थे, क्योंकि फिल्म रोल के खत्म होने का इंतजार करना पड़ता था। आज भी वो काली सफेद तस्वीरें पुराने जमाने की यादों को हमारे सामने ताजा कर देती हैं।

आगे चलकर जमाना बदल गया और अब तो वो जमाना आ गया है जब फोटोग्राफी के लिए लोग कैमरे से ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करने लगे हैं। जरा सोचिए कि एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट मोबाइल आपके लिए कम्युनिकेशन

मीडियम का काम भी करता है और दूसरी तरफ वो आपके लिए कैमरे का काम भी करता है। जिंदगी के हर महत्वपूर्ण या आम पल को आप तस्वीरों में बांध सकते हैं, लेकिन इसका असर ये हुआ कि तस्वीरों का जो महत्व था वो बहुत कम हो गया, क्योंकि तस्वीरें बड़ी आम हो गई। ये तस्वीर खींची और ये सोशल मीडिया पर चढ़ा दी, या फिर मोबाइल कम्युनिकेशन मीडियम के जरिए आपने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भेज दी और उन्होंने फौरन देख ली और वो खुश भी हो गए। यानी चीजें आसान हो गईं तो उनका महत्व कम हो गया, पर फिर भी आज जिंदगी के कुछ पल तस्वीरों में कैद हो जाते हैं और हम विकल होकर उन पलों को याद किया करते हैं।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत सतत वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 130 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधा कृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीता। मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। और FIH हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। आज नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में कहा कि देश 6-8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है।
1: इन्वेस्टमेंट स्टोरी, हमारी विकास यात्रा में निवेश की अहम भूमिका रही है। आज हम हर साल करीब 130 अरब डॉलर का सार्वजनिक निवेश कर रहे हैं। इससे अर्थव्यवस्था में एक डॉलर के निवेश पर करीब 3.6 डॉलर की आर्थिक गतिविधि होती है। इसके साथ ही इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और ये सुनिश्चित करने में भी सहायता मिली है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचे।
2: बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ रीच एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि भारत के पास अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। पिछले 10 वर्षों में करीब 65,000 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया गया है, जबकि हवाई अड्डों की संख्या भी दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि देश में रेल नेटवर्क में व्यापक सुधार हुआ है।
1: आज देश का 99.6% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकृत हो चुका है। पिछले एक दशक में 38,000 किलोमीटर नई रेल लाइनें जोड़ी गई हैं और 162 सेमी हाई स्पीड ट्रेनें शुरू की गई हैं।
0: इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी साझा विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है।
3: उत्तर प्रदेश आज भारत की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होते हुए भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। बीते 9 वर्षों में हमने सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के बजट को, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। 96 लाख से अधिक MSME यूनिट्स, 35,000 से अधिक बड़े उद्योग और 22,000 से अधिक स्टार्टअप आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत और जापान सहयोग महत्वपूर्ण दिशा में आगे बढ़े हैं।
4: जापान के साथ भारत की पार्टनरशिप केवल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप नहीं है, ये डेवलपमेंट की पार्टनरशिप है, ये डिप्लोमेसी की पार्टनरशिप है और ये डिग्निटी की पार्टनरशिप है। उत्तर प्रदेश आपको केवल इन्वेस्टर नहीं मानेगा, आपको डेवलपमेंट पार्टनर मानेगा, क्योंकि हम मानते हैं इन्वेस्टमेंट का सर्वोत्तम रूप है जो कैपिटल के साथ साथ कैपेबिलिटी भी लाती है, टेक्नोलॉजी के साथ टैलेंट लाता है और प्रॉफिट के साथ प्रॉस्पेरिटी भी लाता है और रेवेन्यू से ज्यादा रिलेशन मजबूत करता है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजोरी कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत करने, रणनीतिक विश्वास और सहयोग बढ़ाने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। श्री कोइजुमी ने आज मुंबई में पश्चिमी नौसेना कमान का दौरा किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन चौथी भारत सिंगापुर

0: पूर्व मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में भाग लेने के लिए आज प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर पहुंच गई। बैठक कल होगी। प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
1: इस दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्ण से मुलाकात की। दोनों विदेश मंत्रियों ने सिंगापुर में भारतीय उच्चायोग के नए चांसलरी परिसर की आधारशिला भी रखी। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और सिंगापुर के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी। ये दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय है। इसके अंतर्गत उन्नत विनिर्माण, संपर्क, डिजिटल क्षेत्र, स्वास्थ्य और चिकित्सा, कौशल विकास तथा सतत विकास सहित 6 प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की जाती है और नए अवसर तलाशे जाते हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि बैठक में भारत सिंगापुर आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नए अवसरों पर चर्चा होगी। सकलैन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में प्रश्न पत्र लीक जैसे मामले रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए स्थायी तंत्र शामिल हो। NEET UG 2026 पेपर लीक से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सचिव को निर्देश दिया कि वे हलफनामा दाखिल करें, जिसमें ये बताया जाए कि राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा नंदन नीलेकणी समिति द्वारा सुझाए गए आवश्यक संशोधनों को भी इसमें शामिल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि देश में एक मजबूत परीक्षा संस्थान हो जो विशेषज्ञता को बनाए रखने और तकनीकी परिवर्तनों के अनुकूल होने में सक्षम हो। NEET UG 2024 प्रश्न पत्र लीक विवाद के बाद पूर्व ISRO अध्यक्ष डॉ. के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में के राधाकृष्णन समिति का गठन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में लापता और बचाए गए बच्चों की पहचान तथा उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए राष्ट्रीय DNA और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली बनाने की मांग की गई है। न्यायालय ने गृह मंत्रालय और आयोग को नोटिस जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहारनपुर तथा दिल्ली में 10 परिसरों पर छापेमारी की है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेगी। सरकार ने बताया है कि पेंशन की राशि अगले महीने की पहली तारीख से सीधे महिलाओं के खातों में जमा होना शुरू हो जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि योजना शुरू होने के मात्र 18 दिनों में ही लगभग 800,000 महिलाओं ने दिल्ली लक्ष्मी योजना पोर्टल पर पंजीकरण कराया, जबकि इसके बाद 500,000 से अधिक आवेदन जमा किए गए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने आज विधानसभा में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि विधानसभा के सभी सदस्यों को नया वाहन, चालक और सहायक दिया जाएगा। इसके अलावा ईंधन खर्च के लिए हर महीने 75,000 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने उत्तरी चेन्नई में 300 करोड़ रुपए की लागत से 400 बिस्तरों वाला नया अस्पताल बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत इलाज के लिए बीमा राशि 500,000 रुपए से बढ़ाकर 25,00,000 रुपए करने की भी घोषणा की। पंजाब पुलिस ने नवनियुक्त रक्षा कर्मियों के सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल शुरू किया है। ये पोर्टल रक्षा मंत्रालय से जुड़ा है, जो नए भर्ती हुए कर्मियों के दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों का सत्यापन करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल X @AIRNewsHindi को

0: फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तरी छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, विदर्भ, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरलम और माहे में भी इसी तरह का मौसम रह सकता है। भुवनेश्वर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तरी ओडिशा के कई हिस्सों में अब भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
1: उड़ीसा में बाढ़ का संकट अभी भी भारी मुश्किलें पैदा कर रहा है, खासकर भद्रक जिले में, जहां बैतरणी और सालंदी नदियों के उफान के कारण बड़े इलाके जलमग्न है। वासुदेवपुर, तिहिड़ी, धामनगर, भंडारी पोखरी और चांदबली ब्लॉक के गांव अभी भी बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर आज 297 स्कूल और 395 आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखे हैं। उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स ओडराफ के जवानों ने केंद्रापड़ा जिले के कुलसाही गाँव में एक सरकारी आवासीय स्कूल में 4 दिन से फंसे 230 छात्रों को बचाया है। आईएमडी ने शुक्रवार से रविवार तक उड़ीसा में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में कल देर रात हुई तेज वर्षा से धारचूला तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुलागाड़ में बेली ब्रिज ध्वस्त हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: धारचूला क्षेत्र में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण कुलागाड़ में बेली ब्रिज ध्वस्त होने से आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के साथ ही चीन सीमा को जोड़ने वाला सड़क संपर्क भी बाधित हो गया है। मार्ग बंद होने से दालमा, चौदास और व्यास घाटी का संपर्क जिला मुख्यालय और धारचूला क्षेत्र से कट गया है। प्रशासन ने पुल को जल्द बहाल करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। बीआरओ के अनुसार आज शाम तक डायवर्जन रूट का कार्य पूरा होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और भूस्खलन के कारण 100 से अधिक ग्रामीण सड़कें बाधित हैं। मौसम विभाग ने देहरादून और बागेश्वर में आज भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी करी है। वहीं टहरी, पौड़ी, हरिद्वार, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: जम्मू कश्मीर में खराब मौसम को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एहतियात के तौर पर यात्रा के लिए नए पंजीकरण पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। एक रिपोर्ट।
3: श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए पहले से पंजीकृत और वैध RFID कार्ड वाले श्रद्धालुओं को प्रशासन के निर्देशों के अनुसार यात्रा की अनुमति दी जा रही है। श्रद्धालुओं से श्राइन बोर्ड और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। नए पंजीकरण पर फैसला मौसम और सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए लिया जाएगा। वहीं श्री अमरनाथ यात्रा का 455 श्रद्धालुओं वाला तीसरा जत्था आज तड़के जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से पुंछ के राजपुरा गांव के लिए रवाना हुआ। इस बीच मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मीनाक्षी।
0: भारत ने गोल में 2 मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में आज श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की पूरी टीम 206 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में नीदरलैंड्स में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। भारत ने 2 मैचों में 3 अंक हासिल किए हैं। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के मिक्स डबल्स स्पर्धा में भारत के ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मकाऊ की जोड़ी को उन्होंने हराया। प्री क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी का सामना चीन की जोड़ी से होगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी भी वॉकओवर मिलने के बाद प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। कोलकाता पुलिस ने न्यू मार्केट इलाके में मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित एक होटल में लगी आग में 9 लोगों की मौत की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। मृतकों में 2 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। 16 घायल लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता अग्नि दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। घरेलू शेयर बाजार में आज लगभग 0.5% गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 365 अंक गिरकर 76,871 पर और निफ्टी 110 अंक गिरकर 24,045 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत सतत वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 130 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीता। मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। और FIH हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। ये खानदान फिल्म का गाना है, लता मंगेशकर की आवाज, नक्श लालपुरी के बोल खयाम का संगीत है।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

0: दिल अपना और प्रीत पराई इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। शब्दकार थे शैलेंद्र और संगीतकार शंकर जयकिशन।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुम्हें बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

जिस देश में गंगा बहती है, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। शैलेंद्र की रचना थी, शंकर जयकिशन की धुन थी। फिल्म है 11,000 लड़कियां, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, एन दत्ता का संगीत है।

11,000 लड़कियां, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, एन दत्ता का संगीत था। सदाबहार नगमे प्रोग्राम के आखिर में आइए सुनते हैं धूल का फूल फिल्म का गाना सुधा मल्होत्रा की आवाज में। साहिर लुधियानवी के बोल, एन दत्ता का संगीत है। सुनिए ये प्रोग्राम का आखिरी गाना और इसी के साथ अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: नमस्ते सभी सखियों को, सभी सखियाओं को, सभी सखाओं को और सुनने वालों को स्वीकार कीजिए चंचल वर्मा का नमस्कार। और दीपा बैठी है मेरे सामने, कैसी हो दीपा?
2: बिल्कुल ठीक। और हमारे सभी साथियों को यानी हमारे सखियों को
1: हेल्दी नमस्कार।
2: हाँ बिल्कुल, हेल्दी नमस्कार देना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम लगातार ना उस प्रेरणाओं में रहें, इंस्पिरेशन में रहें।
1: हाँ।
2: ये सिर्फ ऐसा नहीं कि हम आपको दे रहे हैं, आप भी हमें देते हैं
1: जी।
2: हमारे साथी देते हैं जो हमें सुनते हैं उनकी तरफ से भी। और अगर कभी कहीं कोई भूल चूक हो जाए, और इन दिनों ये दिन ऐसे चल रहे हैं, अगर कहीं थोड़ा सा भी आलस आ रहा हो ना, तो फिर से ऐसा लगता है कि हाँ हमारे किसी एक दोस्त ने कहा है अपनी सेहत का ध्यान रखना है।
1: बिल्कुल
2: बिल्कुल, लगातार इस बात पर अपना ध्यान रहे कि अपनी सेहत का और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उसके साथ कोई हल्का फुल्का उसे कहीं हल्के में ना ले,
1: कोई समझौता नहीं करना है। और आपके कहने से पहले ही मैं बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि हेल्दी नमस्कार आएगा, इसीलिए बहुत उत्सुकतावश
2: हाँ,
1: मैंने कह दिया।
2: तो एक बार फिर से अपने साथियों को, सखियों को और श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
1: चलिए और बता दें कि आज किस विषय पर हम बात करेंगे। देखो, सुंदर दिखने का शौक अगर सबको होता है तो सुंदर फोटो आए ये भी शौक सबको होता है।
2: हाँ बिल्कुल।
1: और कई बार ऐसा होता है ना कि हम यूं ही बैठे हैं, किसी ने फोटो खींचने का अंदाज उसका इतना अच्छा था ना, तो वो फोटो देखकर हमें लगता है कि अरे उस दिन तो मैंने कोई तैयार भी नहीं हुए थे, हम बाल भी नहीं बनाए थे, और कई बार हम जिस जगह पर बैठे होते हैं वो भी बहुत खूबसूरत नहीं होती। लेकिन ये फोटोग्राफी का कमाल है कि आपकी जो छवि है वो उभर कर इतनी सुंदर सामने आती है कि लगता है कि तारीफ कर दो जिसने फोटो खींची है।
2: ये बात तो बिल्कुल सही है। और वो जो सुनहरे पल कैद हो जाते हैं हमेशा के लिए, और फिर जब कुछ सालों के बाद हम एल्बम खोल के देखते हैं वो वक्त याद करते हैं, तो भाई ये आविष्कार कितना ऐतिहासिक है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे और बहुत सारे संदेश इस विश्व फोटोग्राफी दिवस के लिए आए हैं।
1: और एक समय था ना कि कई बार जब कैमरे से फोटो क्लिक होती थी तो हम इंतजार करते थे कि कब वो पूरी रील पहले खींची जाएगी, फिर उसे धुलाई पे जाएगी।
2: हाँ।
1: और फोटो जब डेवलप होके आएंगे तब हम उन्हें देखेंगे। लेकिन अभी जिस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट हमारे हाथ में, जिसे हम मोबाइल के नाम से जानते हैं, आपने जैसे ही क्लिक किया आपके हाथ में फोटो होता है
2: जी।
1: अगर आप किसी को दिखाना चाहते हैं तो आपके पास उसे भेजने के यानी कि एक दूसरे के साथ शेयर करने के ऑप्शन भी होते हैं।
2: बिल्कुल।
1: अब धुलाई करवाएंगे इतना इंतजार ही नहीं करना होता, और तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है कि आप तुरंत जाकर प्रिंट भी ले सकते हैं उसका। अगर आपको एक हार्ड कॉपी यानी कि अपने पास में रखनी है, आपको कई बार लगता है कि कहीं कोई डिलीट ना हो जाए, तो उसे हमेशा के लिए अगर सुरक्षित रखना है तो बहुत लंबा समय इंतजार नहीं करना है।
2: बिल्कुल सही कहा। और जो डिलीट वाली बात कही है ना आपने, दिल में कहीं कुछ ऐसी भावनाएं आ जाती हैं कभी कभी चंचल, जो हमें डिलीट कर देनी चाहिए।
1: बिल्कुल,
2: है ना,
1: यानी कि जो नफरत की, क्रोध की भावनाएं हैं उन्हें भुलाकर हमेशा अपने दिल में एक इंसानियत की, जो मानवता की भावना है, दूसरों का भला करने की भावना है, उसे हम सहेज कर रख सकते हैं।
2: बिल्कुल सही, ताकि

0: हम आगे जो जीवन में चलें तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ यानी सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ें और खुशियों को और मन की शांति और सुकून को प्राथमिकता देते हुए आगे निकलते चलें जीवन में। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए देखिए आज है विश्व मानवता दिवस।
1: और यही हमने शब्द लिया है जब हम बात करेंगे कि शब्द हमारे और विचार आपके, तो मानवता को लेकर हमारे सुनने वालों के क्या विचार हैं, वो इस बारे में क्या सोचते हैं, वो हमें जरूर लिखकर भेजें। तो मानवतावादी दिवस के बारे में भी बात होगी और मानवता के बारे में हमारे सुनने वालों की सोच क्या है इस बारे में भी बात होगी।
0: और साड़ियां पहनना कैसा लगता है, ये विचार अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या क्या पसंद है आपको साड़ी पहनना?
1: भाई महिलाओं को साड़ी पहनना पसंद ना हो ये तो हो ही नहीं सकता, और खास मौके जब आते हैं ना। वैसे हम जो भी कैजुअल कपड़े जो होते हैं हम पहन लेते हैं, कई बार सलवार सूट पहनते हैं, कई बार हम जीन्स टॉप भी पहनते हैं, कहते हैं कि वेस्टर्न आउटफिट कभी करने का मन करता
0: जी
1: है। लेकिन जब कोई खास मौका हो, किसी से मिलने जाना है, घर पे कोई उत्सव है, कोई त्योहार है, या कभी मन में लगाना कि नहीं आज कुछ मन में खास बनने का अवसर है, तो उस वक्त सबसे पहला परिधान जो हमारे जहन में आता है वो होता है साड़ी।
0: बिल्कुल।
1: और
0: और
1: इतने सारे
0: सावन
1: प्रकार है ना साड़ी के कि कई बार चुनना मुश्किल होता है, लेकिन अलग अलग मौके के हिसाब से साड़ियां चुनी जाती
0: चुनी जा
1: हैं।
0: सकती है, जैसे कि सावन के महीने में लहरिया साड़ी।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, और लहरिया साड़ी की ही आज हम बात करेंगे। लहरिया साड़ी राजस्थान में तो बहुत ही लोकप्रिय है, लेकिन
0: जी
1: आजकल हर जगह ये पहुंच चुकी है। तो हमारे जितने भी सुनने वाले हैं इसके बारे में जरूर हमें बताएं कि हमारी सखियां किस तरह से लहरिया पहनती हैं, या उनके वार्डरोब में साड़ी है कि नहीं।
0: है या नहीं। और जिस दिन आपको साड़ी पहन के कहीं जाना है तो फिर घर में एकदम अफरा तफरी होती है ना कि भाई मुझे जाना है, अब हम जल्दी नहीं आ पाएंगे, तो ऐसे में कुछ झटपट बना के रख दें, खिला दें घर में, जो पीछे परिवार में बच्चे रह
1: हाँ
0: गए हैं या पतिदेव रह गए हैं या कोई और परिवार के सदस्य, तो क्या झटपट बनाया जा सकता है? कुछ संदेश आए हैं, हम चाहते हैं आप और कुछ रेसिपीज
1: बिल्कुल,
0: भेजिए।
1: हमारी सखियां बड़ी होशियार हैं, वो इस तैयारी में होती है कि भाई आज जल्दी से कुछ बनाना है, तो उनके पास उनके पिटारे में झटपट वाले कौन से व्यंजन होते हैं, खासतौर पे जो स्नैक्स के आइटम होते हैं ना, तो वो हमें लिखकर भेजें। तब तक एक गाना सुन लेते हैं सबके साथ
0: चलिए
1: में।

0: दीपा, हम भी तो यही कह रहे हैं कि ये जो समय है, ये तन्हा ना बीत जाए, इसमें सबको साथ लेकर हमें चलना है, और कई बार अपनी यादों को भी साथ संजो कर चलना होता है। फोटोज में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, जो हमारी तस्वीरें होती हैं पुरानी, वो
1: जी
0: हमें उन यादों से जोड़े रखती हैं, हमारे जो मिलने जुलने वाले हैं उनसे भी जोड़े रखती हैं। तो कई बार मन में आता है कि फोटोग्राफी क्या चीज़ है, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं कि फोटोग्राफी रोशनी का इस्तेमाल करके चित्र बनाने की एक कला होती है, और 19 अगस्त का दिन होता है, इसे विश्व स्तर पर फोटोग्राफी के रूप में हम मना रहे हैं आज भी, और विविध स्तर और रचनात्मक तरीकों से फोटोग्राफी की कला और शिल्प का इस दिन सम्मान किया जाता है।
1: अगर इसके इतिहास में थोड़ा जाएं हम चंचल, तो शुरुआत में फोटोग्राफिक प्रक्रियाओं में डेगोरियो टिप ये
0: हाँ
1: आविष्कार किया गया था,
0: बिल्कुल,
1: जिसे 19 अगस्त 1839 में फ्रांसीसी सरकार ने दुनिया को उपहार के रूप में ये घोषित किया था।
0: और ये उपहार देखो ना, कितना बहुत काम की चीज बन गई हमारे।
1: बिल्कुल, तो ये लुई और जोसेफ निप्स, इन दोनों ने मिलके इस टाइप को, ये
0: ये जो
1: डेकोरेट,
0: आविष्कार है,
1: हाँ,
0: हाँ
1: ये जो आविष्कार है, इसको विकसित किया था और इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ, जिसने हमारी और आपकी छवियों को कैप्चर करने और उससे सुरक्षित और हमेशा संरक्षित रखने के लिए, आप यूं कहें कि एक क्रांतिकारी बदलाव आ गया है ना
0: बिल्कुल सही कहा,
1: हम सबके ही जीवन में।
0: और इसी की याद में तो आज का दिन हम मना रहे हैं, और ये दिन जो इस आविष्कार का सम्मान करता है, फोटोग्राफी को इस तरह से मतलब पेश करता है, और सदियों में ये विकसित हुआ, जिसने कला, विज्ञान, पत्रकारिता, व्यक्तिगत अभिव्यक्ति सभी को प्रभावित किया है। फोटोग्राफी की दुनिया से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके लिए तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहां वो जो अपना जुनून है, अपना शौक है, उसे साझा भी करते हैं, और जो उनका काम है, इसके माध्यम से सबकी वाहवाही भी बटोरते हैं इसे दिखाकर, है ना।
1: अब अगर कभी पूछा जाए कि एक तस्वीर क्या है, तो एक तस्वीर किसी स्थान या अनुभव या विचार या किसी समय को जब कैद कर लिया जाता है, उस क्षण को,
0: जी
1: उसे एक हम तस्वीर कहते हैं। भाई
0: बिल्कुल
1: अगर कभी पूछ लिया किसी ने ये सवाल, तो हम कम से कम परिभाषा तो दे सकते हैं, है
0: जी सही कहा
1: ना।
0: दीपा आपने,
1: और फोटोग्राफी के रूपों का सम्मान करते हुए हर साल एक वैकल्पिक थीम के साथ इस दिन को मनाया जाता है। तो इस साल का जो थीम है वो है घर, यानी हमारा हाउस होम जो हम कहते हैं। तो ये थीम उस स्थान या उस एहसास को दर्शाती है जिसे हम अपना घर मानते हैं, जहाँ आप रहते हैं, या आपका कोई, आपका गृह, आपका देश, या वो स्थान जिस जहाँ आपको अपना सा लगे, एक सुकून भरा महसूस हो,
0: जी
1: तो ये थीम है। तो आप घर को लेकर के तस्वीरें अलग अलग खींच सकते हैं, और सोशल मीडिया पर अलग अलग जगह पर आज के दिन उस फोटोग्राफ को शेयर कर सकते हैं।
0: और देखो, हमारे सुनने वाले लिख रहे हैं कि ये अद्भुत कला बीते हुए पलों को, भावनाओं को, यादों को हमेशा के लिए सहेज लेती है। अच्छी तस्वीर केवल एक दृश्य नहीं दिखाती, बल्कि अपने भीतर एक पूरी कहानी, एहसास और पूरा समय समेटे हुए रहती है। फोटोग्राफी ने दुनिया को देखने और समझने का नजरिया भी बदला है। तस्वीरें समय को रोक नहीं सकती, लेकिन बीते हुए समय को हमारी यादों में हमेशा के लिए जीवित रख सकती हैं, और ये बहुत अच्छी बात लिखकर भेजी है।
1: बिल्कुल। और एक संदेश और आया है, बड़ा प्यारा सा। ये संदेश में कहती है हमारी सखी कि सच कभी कभी हमारा ऐसे ही खींचा गया फोटो इतना अच्छा होता है कि उसके सामने बहुत ही बन ठन के खींचे गए फोटो बहुत ज्यादा प्यारे लगते हैं। मतलब हम कभी कभी बिल्कुल तैयार होकर के खड़े होते हैं कि हाँ, हमारा क्लिक करना चाहिए फोटो, लेकिन एक कैजुअल वाले भी जो पिक्चर है, फोटो खींची हुई, वो बहुत सुंदर लगती है उसके
0: बिल्कुल।
1: सामने।
0: और एक संदेश में बात लिखी गई है कि तस्वीरें बीते हुए कल और इतिहास को सुरक्षित रखती हैं। तस्वीरों की कोई भाषा नहीं होती, ये बिना बोले सब कुछ कह देती हैं, ये बिना बोले सब कुछ कह देती हैं, और अपने नए

0: दिन और पुराने फोटोग्राफरों को अपनी कला दिखाने का मौका देती हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक और संदेश कहता है कि पहले के समय में हमारे देश में लोगों के पास कैमरे नहीं होते थे, कैमरा बहुत महंगा हुआ करता था,
0: हाँ
1: उसकी रील भी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी वाली होती थी और फोटो खिंचवाने के बाद धुलवाने के लिए स्टूडियो में जाना पड़ता था, जैसे अभी हम बात कर रहे थे,
0: जी
1: और तब जाकर के फोटो मिलते थे। अच्छी आई या बुरी वो तो बाद की बात थी, फिर
0: हाँ
1: कलर फोटो खींचने लगी और पहले स्टूडियो में जाना पड़ता था फोटो खिंचवाने के लिए। आज के समय में मोबाइल से ही फोटो खींचे जा सकते हैं, किसी के पास भेज दो, कोई टाइम नहीं लगता। अब तो लोगों के पास मोबाइल है, कैमरे बहुत कम लोगों के पास लोग भी बहुत कम रखने लगे
0: जी
1: हैं, और वो भी उन्हें जिन्हें कैमरे का शौक है, या वो जो कि इसको प्रोफेशनली इसको
0: हाँ,
1: लेते हैं वो लोगों के पास कैमरे होते हैं।
0: लेकिन उन कैमरों में भी आजकल ये एक सुविधा आने लगी है कि आप तुरंत उसको डेवलप करा सकते हैं। पहले जो कहते हैं ना कि इंतजार करना पड़ता था ना,
1: हाँ
0: जो
1: जी
0: इंतजार की घड़ियां हैं वो लोगों की कम हो गई हैं। कई बार हम शादी में भी देखते हैं ना, फोटोग्राफर जब तस्वीर खींचते हैं तो चार पांच फोटो एक साथ में खींच लेते हैं और फिर आपसे सेलेक्ट करवा लेते हैं कि किस फोटो को फाइनल करके रखा जाए।
1: बिल्कुल
0: कई बार तो कि आंखें बंद हो गई, कहीं आप यहां वहां देख रहे होते हैं, तो वो फोटो पहले ऐसा ये सुविधा हमारे पास नहीं थी। अगर आपकी तस्वीर में आंखें आपने बंद कर ली, झपका दी, या आप कहीं इशारे से कुछ कह रहे हैं, आपका हाथ जहां का तहां है वहीं रह जाएगा।
1: हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। और आज के दिन क्या-क्या होता है, तो आज के दिन के पे फोटोग्राफी की कला और शिल्प का सम्मान किया जाता है। चंचल दुनिया भर के फोटोग्राफर तरह तरह के प्रदर्शनियों में भाग लेकर के अपने काम को चित्रित करते हैं, फिर अलग अलग वर्कशॉप्स होती हैं, कई जगह पर ऐसा होता है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं जिसमें फोटोग्राफी के बारे में जानकारी दी जाती है, फिर फोटो वॉक करने वाले और टूर फोटोग्राफी के शौकीन को पास आसपास के स्थानीय लोगों का पता लगाने और उन्हें कैमरे में कैद करने के लिए भी एक साथ ले जाया जाता है। तो ऐसा भी होता है कि आपको फोटोग्राफ खींचनी है तो आपको
0: हाँ
1: कोई ऐसे छोटे से गांव, कोई ऐसे जगह हो, ट्राइबल एरिया कोई हो,
0: हाँ
1: तो वहां पे लेके जाते हैं और उनको बोला जाता है कि ये विशेष समुदाय इनके इनका फोटोग्राफ खींचा जाए और फिर इन्हें अलग अलग जगह के लिए इस्तेमाल किया जाता है और साझा की जाती है वो सारी तस्वीरें।
0: हमारे एक श्रोता का संदेश है कि पहले तस्वीरें कैमरे में कैद होती थी, पर आजकल इसकी जगह मोबाइल ने ले ली है और डिजिटल रूप में ये होने लगी हैं। तस्वीर बहुत कुछ बयां कर देती हैं। तस्वीरों का होना हमारे अपनों को हमारे नज़दीक रखता है, यादों से जोड़े रखता है। तस्वीर हमारे लिए खास थी और हमेशा खास ही रहेंगी।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि तस्वीरें बीते हुए कल और इतिहास को सुरक्षित रखती हैं, तस्वीरों की कोई भाषा नहीं होती, बिना बोले सब कुछ कह देती हैं, और ये दिन नए और पुराने फोटोग्राफरों को अपनी कला दिखाने का मौका देता है।
0: हमारे एक संदेश में लिखा गया है कि एक समय था जब राजा रजवाड़े या बहुत धनाढ्य परिवार के लोग होते थे, उनके पास कैमरा होता था या फोटो का चलन उस समय ज्यादा था। फिर धीरे धीरे समय गुजरता गया, वैसे वैसे सुविधाएं भी सुलभ होती गईं। जैसे सामान्य मानवी तक फोटोग्राफी का जमाना था, पर्यटन, धार्मिक स्थल और सभी जगह फोटोग्राफी होने लगी और ये एक व्यवसाय था। जब लोग अपनी तस्वीरों को घर पर पोस्ट के द्वारा भेजा करते थे, ऐसे वक्त ने लोगों के साथ कैमरों को भी रखा और आज मोबाइल के माध्यम से जो चीज़ कभी दुर्लभ थी वो सहज हो गई है। तो चलिए अभी गीत सुन लें।
1: चलिए।

0: साथ ही आना, और मैं भी तुम्हें बुला रही हूँ दीपा सखी, बस आना क्योंकि बहुत सारे संदेश हैं, इन्हें भी पढ़कर सुनाना। तो पहले एक संदेश मैं ही पढ़कर सुना देती हूँ।
1: चलिए सुनाइए।
0: और फोटोग्राफी की हम बात कर रहे थे ना, इस पर अपना एक किस्सा हमारे एक श्रोता ने लेकर भेजा है कि कॉलेज के दिनों की उन्होंने बात लिखी है। कॉलेज में उन्हें एक कार्ड बनवाना था, उन्हें फोटो की जरूरत थी। तो शहर के पास, आगे लिखते हैं कि शहर के पास ही हमारी दुकान थी, उसके पास में एक फोटो स्टूडियो था, उसमें दोनों पिता पुत्र काम किया करते थे। लेकिन उस दिन लड़के के पिता दुकान पर नहीं आए थे, और उसी दिन क्योंकि मुझे फोटो की जरूरत थी और उनके लड़के के साथ मेरी आपस में बनती नहीं थी, लेकिन वो लड़का बोला कि मैं तुम्हारी तस्वीर अच्छी बना दूंगा। लेकिन मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि शायद भूतकाल में उनके साथ ऐसी कुछ घटना हो चुकी थी उसके साथ में। लेकिन उस लड़के ने विश्वास दिलाया कि वो फोटो अच्छी लेगा, तो डरते डरते उसकी बात पर विश्वास करके वो तैयार हो गए फोटो खिंचवाने के लिए। और जब वो तस्वीर ले रहा था लड़का, तो मैं बहुत डरा हुआ था, घबराहट भी चेहरे पर थी, और मुझे यही डर लग रहा था कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। लेकिन कोई अनहोनी नहीं हुई, उसने तस्वीर मेरी बहुत अच्छी बनाकर दे दी। वो तस्वीर मेरे पास आज भी है, जब भी मैं उस तस्वीर को देखता हूँ तो उसमें मेरा चेहरा बहुत डरा हुआ और घबराया हुआ दिखाई देता है।
1: देखिए कितने मजेदार उनकी यादें हैं ना तस्वीरों को लेके। और 1962 की एक याद हमारे श्रोता भाई यहाँ पे साझा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया की शादी का फोटो एल्बम बनाने पहली बार फोटोग्राफर को बुलाया गया था साल 1962 में। उन दिनों ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था, हर जगह हर एक फोटो खींचने के बाद फ्लैश का लैंप बदलना पड़ता था। और उन दिनों मेरा बचपना था, तो 11 साल की उम्र थी उनकी। मंडप के बीच भाई भाभी के फोटो खींचते वक्त मैं भी हर फोटो में बीच में खड़ा हो जाता था।
0: और पहले ऐसा अक्सर होता था कि छोटे बच्चों को बड़ा शौक होता था कि वो हर तस्वीर में नजर आए।
1: हाँ,
0: और कहीं ना कहीं से वो झांकता हुआ चेहरा उनका नजर आ ही जाता था। पुराने एल्बम जब भी हम खोलते हैं ना, तो एक ना एक बच्चा ऐसा नजर आएगा जो हर फोटो में कहीं ऊपर से कहीं नीचे से अगल बगल से, या और जब तक फोटो उन्हें हटाया जाए वो फोटो क्लिक हो चुकी होती थी, वो एंड टाइम पर इस तरह से तस्वीर में घुस जाते।
1: और ये देखो एक और मजेदार संदेश आया है, हमारी सखी कह रही है कि फोटो में तो ऐसी ताकत है कि सिर्फ फोटो देखकर ही 18 साल पहले मेरी शादी हुई थी। वो कैसे, उधर से फोटो कागज में लपेट कर आई और इधर से हमने कागज में लपेट के दे दी फोटो और बस हो गई शादी। क्या बात है भाई, ये जमाना कितना सुलभ और सुंदर और एकदम सादा सा था, है ना।
0: बातें आगे बढ़ाएंगे, पहले एक गीत सुन लीजिए।
1: चलिए।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं। विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली, और हमने बहुत सारी बातें फोटोग्राफी के बारे में की। और आज एक और दिवस हम मना रहे हैं, 19 अगस्त के दिन मनाया जाता है विश्व मानवतावादी दिवस, और ये उन लोगों की याद में मनाया जाता है दीपा, जिन्होंने विश्व स्तर पर मानवतावादी संकट जो भी आए हैं उनमें या तो अपनी जान गंवा दी या फिर मानवीय उद्देश्यों के कारण और अपने दूसरों की सहायता के कारण उन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया।
1: जी, और इसके पीछे अगर इतिहास जाने तो वो ये था कि 19 अगस्त 2003 को संयुक्त राष्ट्र कार्यालय पर हमला हुआ जिसमें करीब 22 मानवीय सहायता कर्मी मारे गए, और जिनमें संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि सर्जियो वियरा डिमेलो भी शामिल थे।
0: जी।
1: तो साल 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस इसके रूप में नामित करने का प्रस्ताव पारित किया गया था, और फिर ये प्रस्ताव स्वीडन ने रखा था।
0: और जिस दुर्घटना की या जिस हादसे की आप बात कर रही हैं, ऐसा माना जाता है कि अब तक जितनी भी त्रासदी हुई उनमें ये बहुत खतरनाक थी, और करीब 4,000 से भी अधिक राहत कर्मी ने इन्हों इसमें जान गंवाई थी, उनको निशाना बनाया गया था। और कि जो जानलेवा हमले हुए थे इसमें न जाने कितने घायल हुए, कितनों ने अपनी जान दे दी, और कुछ गिरफ्तार भी हुए, कुछ का अपहरण भी हुआ। इस तरह की घटनाएं ना हो, मानवता लोगों में बनी रहे, इसीलिए ऐसे दिन मनाए जाते हैं ताकि जो भी अशांति संघर्ष है उससे अलग किया जा सके खुद को और एक शांति की स्थापना की जा सके।
1: बिल्कुल सही कहा। और ये देखिए ना, ये विश्व भर में फैली अशांति और संघर्ष में लाखों लोग अपने सरजमी से भी अलग हो जाते हैं और किसी अन्य जगह पर उन्हें स्थापित किया जाता है, तो ऐसे लोगों की संख्या आज ये अनुमान किया जाता है कि 6.5 करोड़ से भी ज्यादा है। तो ऐसे लोगों को एक जगह दे दी जाए, उनके भी एक ठिकाना उनका हो जाए और उनका जो जीवन यापन है बराबर चलते जाए, तो ये भी एक उद्देश्य है मानवतावादी दिवस का।
0: और इस पर बहुत सारे संदेश भी हमें मिल रहे हैं। मानवता, जो हमने एक शब्द दिया था कि शब्द हमारा है, विचार हमारे श्रोताओं को लेकर भेजने हैं, तो मानवता के बारे में जो विचार उन्होंने लेकर भेजे हैं, मानवता जो मानव से जुड़ी उसकी क्रियाशीलता को दर्शाती है कि वो दूसरों के प्रति कैसा भाव रखता है। मानवता के मूल में क्षमा, सहिष्णुता, दया, प्रेम, ये सभी भाव हैं जो आदमी का आदमी के प्रति उसकी सोच को दिखाता है। जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ हमारे कुछ कर्तव्य हैं, उन सब में मानवता का भाव रखना सबसे महत्वपूर्ण है। हमारी संवेदनाएं, हमारे परोपकार मानवता से जुड़े हुए विषय हैं, ये अलग नहीं है। दूसरों के प्रति दया भाव रखना, प्रेम रखना, अहंकार त्याग कर सरल ढंग से पेश आना, ये सब मानवता के ही स्तंभ हैं।
1: बिल्कुल। और एक और संदेश है, मनुष्य को जीवन में सत्य, प्रेम, करुणा, दया, सहयोग, सद्भावना, आपस में मेल मिलाप की राह पर चलना चाहिए, नहीं तो कैसे मानवता महकेगी और वसुधैव कुटुंब की भावना होगी कैसे। तो विश्व हमारा परिवार है, ऐसी मानवता की महक और सार्थकता की आज हमें बहुत ज्यादा जरूरत है।
0: बिल्कुल सही बात लिखी। इसी तरह से एक छोटा सा संदेश है लेकिन बहुत बड़ी बात कहता है कि मानवता कहने में कोई बात नहीं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान लाने, किसी का हाथ थामने और बिना किसी के स्वार्थ के जब मदद करने में है, वही मानवता है। इंसानियत की सबसे खूबसूरत भाषा वही है जिसे बोलने के लिए शब्दों से ज्यादा एक संवेदनशील दिल की जरूरत है।
1: और एक और संदेश आया है चंचल, ये कहते हैं कि मानवता शब्दों और विचारों का वो सेतु है जो करुणा, सहानुभूति और निस्वार्थ सेवा के माध्यम से संपूर्ण मानव जाति को एक सूत्र में पिरोता है। ये किसी भी संकुचित दायरे या सीमा से परे जाकर मनुष्यता के वास्तविक स्वरूप को परिभाषित करता है।
0: बड़े अच्छे

0: संदेश हमें मानवता के ऊपर मिल रहे हैं। एक अन्य संदेश में हमारे श्रोता द्वारा जो बात कही गई है वह मैं पढ़कर सुनाती हूँ आप सभी को। मानवता और इंसानियत, जिसका अर्थ होता है किसी दूसरे के प्रति दया, प्रेम और भलाई करना, सभी के प्रति प्यार की भावना रखना, अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों का हित सोचना। और वाकई में ये चीजें अभी देखने को नहीं मिलती हैं। आगे लिखते हैं कि ये व्यक्तिगत व्यवहार से जुड़ा हुआ है, यानी एक व्यक्ति का दूसरे के साथ, दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छा बर्ताव, यही मानवता है।
1: बिल्कुल सही। और आज के समाज में देखो मानवता को लेकर बहुत उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। कभी कहीं प्राकृतिक आपदा आ जाती है, कहीं दुर्घटना हो गई, किसी संकट के समय लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आते हैं। रक्तदान करना, गरीब बच्चों की शिक्षा में सहायता करना, बुजुर्गों का सम्मान करना, पशु पक्षियों के प्रति दया रखना और पर्यावरण की रक्षा करना, ये भी मानवता के रूप हैं।
0: बिल्कुल। आज जब विज्ञान और तकनीक ने हमारे जीवन को दीपा बहुत आसान बना दिया है, लेकिन जो कहते हैं ना कि मानवता, इसे तकनीक से हम जोड़ के देख ही नहीं सकते ना। कोई व्यक्ति कितना भी उसके पास धन है, लेकिन वो उसके धन का वो सिर्फ अपने लिए ही सहेज कर रखता है, किसी की सहायता नहीं करता, तो कहते हैं कि उसके धनी होने का भी कोई महत्व नहीं है। अगर आप किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं, भले आपने बहुत सारा धन खर्च नहीं किया, आपने कोई छोटी सी ऐसी काम कर दी, छोटी सी ऐसी कोई बात कह दी जो किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आती है। अगर मान लीजिए किसी दुखी को, दुखी दिल है उसको सहारा दे दिया, सांत्वना के दो शब्द कह दिए, तो ये भी मानवता का परिचय देता है। हमारे समाज में मानवता के बहुत सारे उदाहरण हैं दीपा, जिसमें प्राकृतिक आपदा के समय या किसी दुर्घटना के समय जब लोग आगे आकर एक दूसरे की मदद करते हैं, रक्तदान करते हैं, बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, तो ये चीजें हैं ना, यही असली मानवता होती है।
1: हमारी एक सखी ने चार शब्द लिखा है मानवता के लिए, जियो और जीने दो।
0: क्या बात है, तो चलिए अब गाना सुन लेते हैं।

0: और भाई एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना होनी ही चाहिए। जब कोई उत्सव होते हैं ना, तो ये भावना हमारे देश में सब जगह देखने को मिलती है। सब मिलजुल कर उस त्योहार को मनाते हैं, और महिलाओं में सावन के महीने का एक खास आकर्षण होता है। सब मिलकर सखियां साथ झूला झूलने जाती हैं,
1: बिल्कुल।
0: और तीज के दिन खास तौर पर लहरिया पहना जाता है। अभी हाल ही में तीज का त्योहार गया है, जिसे राजस्थान में बहुत धूमधाम से मनाया गया।
1: बिल्कुल
0: तो जो राजस्थान की हमारी सखियां ना, जो इस वक्त सखी सहेली कार्यक्रम सुन रही हैं, उससे जुड़ी हुई हैं, तो वो हमारी बात से जरूर सरोकार रखती होंगी कि उन्होंने भी लहरिया पहना होगा, नहीं पहन पाई किसी कारणवश, तो मन में मलाल जरूर रह गया होगी लहरिया नहीं पहन पाई।
1: तो कोई बात नहीं, इस दफा लहरिया साड़ी ले आए, क्योंकि सावन अभी बाकी है। तो और उसे पहन के खूब सुंदर सजे धजें और ढेर सारे तस्वीरें खींचे, और फिर अब तो कई सारे सोशल प्लेटफॉर्म से आप साझा कर सकती हैं।
0: और जब आपने सजने धजने की बात कही ना, तो साड़ियों के बहुत अलग अलग प्रकार होते हैं। हर परिधान के साथ में एक अलग तरह का श्रृंगार किया जाता है। जो ज्वेलरी हम पहनते हैं ना, जो जेवरात हम पहनते हैं, तो हर परिधान के साथ अलग तरह के जेवर पहनते हैं। अगर आपने बनारसी साड़ी पहनी है, तो जेवर अलग तरह के
1: अलग
0: होंगे।
1: होगा
0: आपने सूती कोई साड़ी पहनी है, तो
1: जी।
0: अलग तरह के होंगे। जॉर्जेट की पहनी है, लहरिया पहना है। अब लहरिए में भी आपने भारी भरकम पहना है या हल्का फुल्का पहना है, तो आपके जो श्रृंगार की चीजें होती हैं, वो उस तरह से हो जाती हैं। बहरहाल हम बताते हैं कि लहरिया राजस्थान की एक पारंपरिक और बहुत खूबसूरत साड़ियों में से एक होती है, और इसकी खास पहचान होती है इसके जो लहरदार और तिरछे पैटर्न बने हुए होते
1: पैटर्न
0: हैं
1: जो
0: ना।
1: बने होते हैं जी।
0: और खास तौर पर राजस्थान की जो रंग बिरंगी संस्कृति उत्सव है, वहां की जो संस्कृति है, उससे जुड़ी हुए ये परिधान होते हैं।
1: अब देखो ना चंचल, ये लहरिया, ये शब्द ही लहर से आया है।
0: हाँ
1: इसमें कपड़े को विशेष तरीके से मोड़ कर या बांध कर रंगाई की जाती है, जिससे कपड़े पर लगातार लहरों जैसी धारियां बन जाती हैं। और ये खास तौर पे टाई और डाई, यानी वो तकनीक, बंदेज या रंगाई, इसकी तकनीक का ही एक रूप है। और इस साड़ी के लहरदार धारियां इसकी खासियत के साथ इसकी सबसे प्रमुख पहचान भी है। लहरिया साड़ी ज्यादातर आप देखो तो एकदम चटक कलरों में होगी,
0: हाँ
1: है ना, पीली, गुलाबी, लाल, हरा, नीला, नारंगी, सारे जो चटक कलर होते हैं हमारे,
0: हाँ
1: वो इनमें, इन साड़ियों को आप देख सकते हो। हालांकि आजकल अब थोड़े से इंग्लिश कलर, इंग्लिश टोन्स भी लेने लगे हैं, लेकिन फिर भी
0: जो
1: जो
0: पारंपरिक चीजें हैं,
1: पारंपरिक कलर जो इस साड़ी के साथ जाता है ना, गुलाबी पहन लीजिए आप, हरा पहन लीजिए, आहा,
0: जैसे
1: और
0: आपने पहना,
1: लाल कलर
0: जो
1: की सुर्ख साड़ी हो तो क्या बात है।
0: आपने पीले कलर का अगर बेस है, तो उस पे कुछ नारंगी या हरे रंग की
1: हाँ
0: धारियां होंगी। अगर
1: बिल्कुल।
0: गुलाबी बेस है साड़ी का, तो कुछ ज्यादा गहरे रानी रंग की या हरी सी कुछ धारियां। तो जो बीच में धारियों का रंग अलग होता है ना, वो इसे और खूबसूरत बना
1: बिल्कुल
0: देता है।
1: खूबसूरत बना देता है। और शादी ब्याह में तो आप देखिए थीम रखने लग जाते हैं आजकल तो, कि एक किसी फंक्शन पे हम ये वाली साड़ी या इसका लहंगा बना करके पहनेंगे। और फिर देखिए जब चटक कलर में पारंपरिक नृत्य होता है, तो उसका तो जो नजारा ही कुछ एक अलग आनंद देता है।
0: हमारे बहुत सारे श्रोताओं के संदेश हमें मिल रहे हैं। एक संदेश में कहा गया है कि लहरदार यानी लहरिया साड़ी मूल रूप से राजस्थान, विशेषकर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, यहाँ की पारंपरिक पहचान है। अपनी खूबसूरत लहरनुमा डिजाइन के कारण राजस्थान के अलावा अन्य जो राज्य हैं, जैसे गुजरात

0: मेहरिया साड़ी आपने इन दिनों में पहनी या नहीं पहनी हमें जरूर बताइएगा। और सुनिए ये संदेश, ये भी यही बता रहा है संदेश कि ये टाई एंड डाई ये वाले कला से इसको बनाया जाता है जिसमें पानी की लहरों की तरह तिरछे और सुंदर धारियों वाले पैटर्न बनते हैं और राजस्थान का ये पारंपरिक पहनावा है। साथ में कह रहे हैं कि इसमें कपड़े को तिरछा मोड़ कर धागे से बांधा जाता है फिर चमकीले रंगों से रंगा जाता है। पचरंगा लहरिया जो है उसमें 5 रंगों वाली विशेष डिजाइन होती है। यहाँ की सबसे पुरानी और लोकप्रिय शान है ये वाली स्टाइल और प्रमुख प्रकार और रंग है लाल पीला हरा गुलाबी बहुरंगी शेड सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। अगर कपड़े की बात करें तो ये संदेश कहता है कि जॉर्जेट क्रेप शिफॉन सिल्क जैसे इन जैसे हल्के और जो हाँ। लहरदार जो एकदम बिल्कुल आराम से जो जिसे पहना जा सके ऐसे वाले फैब्रिक इस्तेमाल करते हैं। गोटा पत्ती का वर्क होता है फिर तो त्योहारों और शादियों के लिए इस तरह महीन गोटा पत्ती या जरदोसी का काम इस पर किया जाता है। राजस्थानी सावन और उत्सवों के माहौल में सजी खूबसूरत लहरिया साड़ियाँ ये ताज़ा डिजाइन आजकल खूब वहाँ के मार्केट में आप देख सकते हैं।
1: सिर्फ साड़ियाँ ही नहीं जो पुरुष हैं वो दुपट्टे डालते हैं लहरिया कि जो दुपट्टे बनने लगे हैं वो कुर्ता पायजामा पहनकर उस पर लहरिया पहनना सिर्फ हम कहते हैं ना कि महिलाएं शौकीन होती हैं तो लहरिया के जो दुपट्टे हैं जहां महिलाएं उनको शौक से पहनती हैं तो पुरुष भी इसे बहुत चाव से अपने कुशल कुर्ते पजामे पर सजाते हैं।
0: और सिर्फ दुपट्टा ही नहीं पुरुष तो उसके कुर्ते बनते हैं शॉर्ट कुर्ता जीन्स के ऊपर आप पहनिए देखिए क्या खूबसूरत लगता है।
1: इसके अलावा पगड़ियां भी पहनी जाती हैं। पगड़ियों में भी लहरिया होता है जो पगड़ी जिस कपड़े की आप बांध कर पहनते हैं उसमें भी लहरिया का इस्तेमाल किया जाता है। एक अन्य संदेश में कहा गया है कि लहरिया इसके ब्राइट कलर कॉम्बिनेशन और लाइट वेट होना ये हर उम्र की महिलाओं पर बहुत फंपता है। हाथ से बनी असली लहरिया साड़ी रंग की शुरुआत इसमें रंग जो है वो धुलाई में थोड़ा सा निकल सकता है क्योंकि ये टाई डाई से बनाई जाती है।
0: और लहरिया को एक प्रकार एक संदेश में हमारी सहेली ने लिख भेजा है एक दली यानी इसमें केवल एक ही रंग की लहरदार धारियां होंगी और इसमें 5 अलग अलग रंगों का इस्तेमाल होगा जो बेहद शुभ माना जाता है जैसे कि लाल पीला हरा नीला गुलाबी और एक होता है एक और प्रकार है मोठड़ा। तो जब लहरिया की धारियां एक दूसरे को काटती हुई चेक्स वाला पैटर्न बनाती हैं मतलब एक तरफ से और दूसरे तरफ से जब आती है तो उसे मोठड़ा कहते हैं।
1: तो चलो एक गाना सुन लेते हैं सुंदर साड़ियों की बात हो रही है सुंदर गीत।

0: और देखो जब हम तुम दोनों मिल जाते हैं ना तो बहुत सारे संदेश लेकर आते हैं। और अब कुछ आगे संदेश की तरफ बढ़ते हैं, और हमने बात की थी ना कि कुछ झटपट बनने वाली जो चीजें होती है ना उनकी बात की जाए, क्योंकि कई बार हमारे पास समय की कमी होती है या अचानक से मेहमान आ जाते हैं, हमें कहीं जाना होता है और हम ऐसे ही किसी चीज की तलाश में रहते हैं कि झटपट ऐसी कोई चीज बना दी जाए जो स्वादिष्ट भी हो और इसे आहार बना रहे पेट में।
1: बिल्कुल
0: तो
1: सही।
0: सूजी के अप्पे ऐसे होते हैं जिन्हें झटपट बनाया जा सकता है। इसके लिए सामग्री क्या चाहिए हमारे श्रोता ने हमें लिखकर भेजी है। 1 कप सूजी में आधा कप दही और आधा कप पानी डालकर एक गाढ़ा घोल बना लीजिए। इसमें आधा कप बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, घिसा हुआ गाजर मिलाएं, 2 हरी मिर्च और हरा धनिया भी काट कर डाल दें। अब ये जो सब्जियों की सामग्री बनाई गई है इसमें आप जो चीजें नहीं खाते हैं उन्हें आप ना डालें, और कुछ स्वाद के लिए और चीजें डालना चाहते हैं तो उन्हें आप जोड़ भी सकते हैं। आगे इसे बनाने के लिए रेसिपी है कुछ इस तरह से है कि एक छोटे पैन में 1 चम्मच गर्म तेल करके डालें, राई, जीरा, नीम की छोटी पत्तियों का तड़का लगाकर इसमें एक गाढ़ा घोल तैयार कर दें। इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख दें। अब आधा चम्मच इसमें कुछ भी आप या तो बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, इस तरह कुछ भी डाल सकते हैं, और तुरंत अप्पे के सांचे में डालकर गर्मा गर्म फूले फूले अप्पे तैयार कर लीजिए। नारियल की चटनी या फिर हरे धनिया की चटनी के साथ में इसे परोसकर खाया जा सकता है।
1: बिल्कुल। और एक और ये रेसिपी भेजी हमारी सखी ने, भुट्टे की टिकिया बनाना बताया है कि कटोरी, 1 कटोरी उबले हुए भुट्टे आप ले लें, मिक्सी में पीस लें, 1 कटोरी उबले हुए उबला हुआ आधा आलू ले सकते हैं, आधा कटोरी पनीर, और इन सबको मिक्स कर लें। हरा धनिया, हरी मिर्ची, अदरक वगैरह डाल लें और थोड़ा सा चाहे तो शिमला मिर्ची डाल लें। सब सब कुछ मिक्स करके अपने हिसाब से मसाले डाल लें, टिकिया बनाकर इसे सेक लें।
0: और अभी गाना सुन लेते हैं।
1: चलिए।

0: अच्छा, अगर झटपट से आपको बनाना है, कोई अचानक आ जाए, तो आप ऐसा करिए कि थोड़े से पोहे को पानी के में अंदर से धो के उसको निचो लीजिए, और फिर जो उबले हुए अगर आलू पड़े हैं फ्रिज में, तो उसको भी आप इसके साथ में मिक्स कर लीजिए, और फिर देखिएगा जब आप पोहा निचोड़ेंगे ना, तो अच्छे से वो फूल जाते हैं थोड़ी सी देर के बाद। इसमें उबले हुए आप आलू डालिए, भुनी हुई अगर मूंगफली घर में है तो उसको दरदरा पीस के वो भी डाल लीजिए, एक ब्रेड का टुकड़ा पानी में भिगोकर उसे भी निचोड़कर मसलकर अच्छे से डाल दीजिए। अब बारीक कटे हुए प्याज डालकर, आप अगर खाते हैं तो बारीक धनिया पत्ती प्याज अगर खाते हैं तो वो डाल लीजिए, हरी मिर्ची डाल लीजिए, और इसका एक थोड़ा सा डो जैसा, मतलब आटे जैसा तैयार
1: हाँ,
0: कर
1: मतलब
0: लीजिए।
1: ये एक साथ में इकट्ठा हो जाए।
0: हाँ, टिकिया का, टिकिया जैसा बनना है, और बस आप टिकिया का उसका शेप लेकर के झटपट से आप चाहें तो फ्राई कर लीजिए या शैलो फ्राई कीजिए, और देखिए बन गई आपकी बढ़िया सी टिकिया।
1: और बस हमारी सखियां ये टिकिया बनाकर खाएंगी, क्योंकि समय हो चला है पूरा। हम लेते हैं इजाजत, दीजिए चंचल वर्मा
0: और दीपा माहेश्वरी को इजाजत, नमस्कार।
1: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं डायरेक्टर, एक्टर और डबिंग डायरेक्टर पंकज रैना से विधि जैन की बातचीत।
1: हमारे सामने है एक बहुत बेहतरीन कलाकार जिनके हाथ में सब कुछ है, सारी रेखाएं हैं कला की, और उन्हीं रेखाओं में से रेखाएं चुनने की बारी आई तो हम भी थोड़ा परेशान हो गए किस विषय पे बात की जाए। तो हम आपसे ही पूछ लेते हैं पंकज जी कि आप क्या ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि आप एक एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, वॉइस ओवर डायरेक्टर भी हैं, और आपकी आवाज में भी बड़ा दम है जो अभी लोग सुनने वाले हैं। इसलिए विविध भारती में आपका स्वागत करते हैं बहुत हृदय से, बहुत प्यार से, और पहला प्रश्न हम आपसे पूछ चुके हैं, स्वागत है आपका।
2: बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विविध भारती के सारे दर्शकों को और विविध भारती से जुड़े हुए सारे लोगों को मैं मेरा आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यहां बुलाया, याद किया और कहा कि हम कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे
1: जी।
2: और जैसे आपने कहा कि मैं एक्टर भी हूं, सिंगर भी हूं, डायरेक्टर भी हूं, प्रोड्यूसर भी हूं, वॉइस ओवर डायरेक्टर, हाँ
1: जी,
2: एज ए डबिंग डायरेक्टर मैंने तकरीबन 18-20 फिल्में की हैं और अलग अलग विषय पे झुकी हैं। तो आपने मुझे पूछा कि आपको कौन सा वाला सब्जेक्ट इसमें से पसंद है, तो मुझे सारे ही पसंद है। जब जब जो मेरे पास सामने जो प्रोजेक्ट होता है
1: जी,
2: मैं उसको बहुत आनंद से, बहुत अंतरात्मा से करता हूँ
1: जी,
2: बहुत सिंसेरिटी से करता हूँ, ताकि इसमें मेरी जितनी भी कैपेबिलिटी जो भी है
1: जी,
2: वट एवर आई एम कैपेबल ऑफ, मैं उसको अच्छी तरह से कोशिश करके बहुत अच्छी तरह उसको प्रस्तुत करूं।
1: तो चलिए हम इसको और सरल बना देते हैं पंकज जी। छोटे वाले पंकज ने जो बहुत छोटा सा था उम्र में, वहां पे उस पंकज ने सबसे पहले क्या किया था?
2: ये बात जाती है, बहुत पीछे जाती है। When I was in कश्मीर
1: जी,
2: असल में मैं कश्मीरी पंडित हूँ, पंकज रैना, रैना से नाम तो समझ ही आया होगा आपको कि हम कश्मीरी पंडित हैं
1: जी।
2: कश्मीर में रहते थे, जवाहर नगर हमारा अपना घर था, और हमारा जो घर था वो एक कल्चरल हब जैसा था।
1: अच्छा,
2: ये पूरा श्रेय मेरे पिताजी को जाता है
1: जी,
2: पंडित महेंद्र नाथ रैना, जो आत्मा से अंदर से बहुत अच्छे लेखक और शायर थे
1: जी।
2: वैसे वो जे एंड के असेंबली में काम करते थे, कार्यरत थे, लेकिन उनके अंदर की जो आत्मा थी वो एक कवि की थी और लेखक की थी
1: जी।
2: उनकी वजह से जो मेरे जो बाकी भाई बहन थे वो भी कला क्षेत्र से जुड़ गए थे।
1: अच्छा,
2: पिताजी वैसे बहुत सारे पेपर्स के भी एडिटर रहे हैं जो हमारे जे एंड के में हुआ करते थे। लेकिन हमारे घर में जैसे मेरे एक भाई, बड़े भाई थे भुवनेश, वो पेंटर स्कल्प्टर थे, पेंटिंग में स्कल्पचर का काम था उनका, उनको स्कल्पचर और पेंटिंग का शौक था। तो हमारा नीचे एक कमरा था जो नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर वाला डेडिकेटेड था, उसमें पत्थर पे भी स्कल्प्टर बनते थे, लकड़ी पे भी बनते थे, ऑयल पेंट भी होता था, ये सब चीज। हम बहुत छोटे छोटे थे।
1: अच्छा।
2: तो हमारे बड़े भाई थे, उनसे बड़े भाई थे जो फिजिक्स के डीन प्रोफेसर हुए हैं, वो मेरे पहले गुरु थे, जो प्रोफेसर तेज रैना, जिन्होंने कभी किसी संगीत सीखा नहीं, जिन्होंने उस तरह को कुछ किया नहीं, लेकिन मैं जब 10 साल की उम्र में था तो उन्होंने मुझे पहली एक गजल सिखाई थी इसकी, फैज अहमद फैज की, तो मैंने वो बच्चों के कॉम्पिटिशन में गा के मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। वहां से मेरी यात्रा शुरू हुई। तो दूरदर्शन नया नया आया था 1972 में कश्मीर में, तो फिर वहां से मैं बच्चों के प्रोग्राम में मुझे बुलाया जाने लगा।
1: मैं आपको यहाँ रोक रही हूँ, आपको फैज अहमद फैज की एक गजल गाने पर फर्स्ट प्राइज मिला था, तो हमारा अधिकार बनता है कि वो गजल हम भी सुने जिस पे आपको प्रथम पुरस्कार मिला था, और वो हमारा, हमारे श्रोताओं का अधिकार तो बनता है, तो अगर आप कुछ गुनगुना दें उसके कुछ हिस्से तो
2: मेरे, लेकिन बच्चों जैसी आवाज कैसे आएगी?
1: अब इस उम्र की उसी आवाज में सुना दीजिए, हम सुनना चाहते हैं।
2: दोनों जहान तेरी

0: क्या बात है।
1: ए दोनों जहान तेरी।
0: क्या खूबसूरत आवाज है, इतना तो विश्वास है कि हमारे श्रोता तालियां जरूर बजा रहे होंगे सुनते सुनते। अब हम आगे बढ़ेंगे कि वो जो बच्चा है वो रेडियो पे जा रहा है ना गाने के लिए या
1: टेलीविजन पे और रेडियो पे, फिर टेलीविजन में बच्चों

0: का प्रोग्राम होता था
1: जी
0: 1972 में, तो मैं वहाँ जाने लगा। तो वो मुझे बहुत प्यार करते थे क्योंकि मैं छोटा सा था, तो मैं गाता भी था। उससे पहले भी मैंने एक, जो हमारे प्रोफेसर साहब थे, तो उनका एक एनुअल फंक्शन में मैंने ऑन द स्पॉट कहा था कि मैं भी गाऊंगा। उनका वो 15 अगस्त का प्रोग्राम था,
1: जी
0: तो मैंने वो बच्चों की आवाज़ में ही 8 साल की उम्र में ऐ मेरे वतन के लोगों गाया था। मैंने
1: हाँ
0: कहा था मैं भी गाऊँ, जिद की मैंने,
1: जी जी
0: और चारों तरफ लोग खड़े थे। बहुत पुरानी बात है, इट इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर 70 की
1: हाँ
0: बात कर रहा हूँ मैं। और लोग उस वक्त, उस तरह का स्टेडियम बना भी नहीं था, तो उस तरह के लोग आसपास खड़े थे, सब सबकी आंखों में आंसू थे। मैं, मेरी आवाज़ एकदम लता जी जैसी थी, बच्चों की आवाज़ थी, ऐ मेरे वतन
1: हाँ
0: के लोगों गा रहा था। तो यहाँ से एक तरह से, जैसे बोलते हैं ना, वो समझ आने लगा कि हाँ, इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलने लगा।
1: जी
0: फिर वो होते होते फिर वो बच्चों का प्रोग्राम आ गया दूरदर्शन का, फिर रेडियो में सुनने लगे। आकाशवाणी और विविध भारती का मेरे
1: जी
0: जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि बचपन से, जो कि तब तो टेलीविजन था नहीं, नया नया आया था, घर में एक रेडियो होता था, चाहे मर्फी का या फिलिप्स का, लेकिन वो तार से जुड़ा होता था, इलेक्ट्रिसिटी, वो चलता था, और गीत और तरह तरह के प्रोग्राम आते रहते थे, हम सब सुनते थे।
1: जी
0: भाषा उच्चारण सीखने में तो काफी योगदान रहा है विविध भारती का और आकाशवाणी का, तो हम इनके हमेशा से शुक्रगुजार रहे हैं, अब हम भी रहते हैं। आज भी बहुत सौभाग्य है कि आकाशवाणी में आके हम कुछ चर्चा कर पा रहे हैं आकाशवाणी और विविध भारती के बारे में।
1: जी
0: तो इनका बड़ा योगदान रहा है मेरे जीवन में, जबकि कहते हैं कि देखिए, हर प्रांत, हर राज्य का एक अलग भाषा होती है, हर राज्य की एक अलग डायलेक्ट होता है, हम जाते हैं तो वो दिखता है जब कोई बात करता है। लेकिन इन सब चीज़ों पे हमने जब वर्क किया, तो हमें, क्योंकि अगर आप कश्मीरी, नॉर्मल एक कश्मीरी से बात करेंगे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कश्मीर
1: कश्मीर का
0: का
1: है।
0: रहने
1: जी
0: वाला है,
1: जी
0: या ये चेन्नई का रहने वाला है, या
1: जी
0: ये कलकत्ता का रहने वाला है।
1: जी
0: हमने लेकिन भाषा और उच्चारण पे बहुत काम किया कि ताकि हमें एक नॉर्मल, एक जनरलाइज्ड, एक हमारी भाषा हो, ताकि हम एक, जिसको देवनागरी हिंदी में जब बात करें, तो लगे कि हिंदी बोल रहे हैं, कश्मीरी हिंदी नहीं बोल रहे,
1: जी
0: बंगाली हिंदी नहीं बोल रहे हैं।
1: जी
0: तो इसमें हमारा आकाशवाणी और विविध भारती का बहुत बड़ा हमारे जीवन में योगदान रहा है, मैं हमेशा आभार व्यक्त करता हूँ।
1: विविध भारती के और आकाशवाणी के पुराने उद्घोषक जो रहे हैं, उनकी बात बहुत निराली है और उनसे सीखकर हम भी
0: हमारे
1: बने हैं।
0: शिक्षक
1: और
0: रहे हैं,
1: जी
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल, तो उन सबको हम सविनय प्रणाम करते हैं और
0: बिल्कुल
1: धन्यवाद
0: करते हैं,
1: देते हैं कि ये बात सुनने को मिल रही है और हमें भी बहुत अच्छा लग
0: बिल्कुल,
1: रहा
0: मैं
1: है।
0: हमेशा इस बात को एक्सेप्ट करता हूं। और मैं आज भी आकाशवाणी और विविध भारती का एक, मतलब, ये श्रोता हूं, मैं
1: जी
0: सुनता हूं जब भी ड्राइव करते करते कहीं जाते हैं लंबे सफर में, तो आई विल ऑलवेज प्रेफर कि मैं 102.8
1: एट जी
0: सुनूं,
1: जी जी
0: या एक और है 107, जो जैसे आकाश में
1: आप
0: गोल्ड
1: जहां
0: है।
1: जहां शहर
0: हाँ
1: बदलेंगे, हमारे नंबर्स
0: जी
1: बदल
0: जी
1: जाते हैं,
0: नंबर्स
1: इसलिए
0: बदल
1: आपको
0: जाते
1: अलग
0: हैं,
1: अलग शहर में अलग अलग दिखाई
0: लेकिन
1: देता
0: मुझे
1: होगा।
0: इनके ही प्रोग्राम सुनना अच्छा लगता है, बिकॉज
1: जी
0: एक तो मर्यादा में बोलते हैं, भाषा रेस्पेक्टेबल भाषा में बात करते हैं,
1: जी
0: और कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है, बहुत ही सुंदर एकदम, मतलब, प्रसारण होता है।
1: जी
0: मैं माफी चाहता हूँ उस बात के लिए, लेकिन मैं FM सुनता नहीं आजकल के, क्योंकि वहाँ ना उच्चारण है, ना भाषा है, ना कोई उसका अंदाज है। लेकिन आकाशवाणी ने और विविध भारती ने हमेशा से वो कंटिन्यू रखा है कि किस तरह से एक भाषा को एक रेस्पेक्टेबल वे में प्रस्तुत किया जाए।
1: जी हम हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता और हमारे इतिहास को संभालने का विविध भारती प्रयास कर रहा है, और आप सब लोगों जैसे लोगों का साथ रहता है तो
0: हम
1: अच्छा
0: हमेशा
1: चलता
0: साथ
1: जाता
0: हैं,
1: है।
0: हम
1: जी
0: हमेशा साथ,
1: तो अब हम वापस आपके
0: मेरे
1: जीवन
0: बचपन
1: पे
0: में
1: आ
0: चलते
1: जाते
0: थे। फिर
1: हैं।
0: मेरे एक ब्रदर है चंद्रशेखर,
1: जी
0: वो हमारे थिएटर भी हमारे यहाँ होता था, हमारे कश्मीर में एक हॉल होता था, जहाँ एक ही हॉल था, टैगोर हॉल,
1: जी
0: अब भी है वो, जहाँ
1: जी
0: पे प्लेज होते थे, म्यूजिकल प्रोग्राम्स होते थे। तो हमारे घर में चूंकि इस तरह का वातावरण था ही, तो हम बच्चों छोटे थे, हम भी फॉलो अप करते थे, तो इस तरह से ये क्रिएट हुआ।
1: जी
0: घर से हमारे उस वक्त चीजें ले जाते थे, जो सेट डेकोरेशन
1: सेट
0: करने के
1: लगाने
0: लिए,
1: के लिए।
0: लगाने
1: जी
0: के लिए। और आकाशवाणी का भी, विविध भारती का भी योगदान था, ऑल इंडिया रेडियो कश्मीर का भी बहुत योगदान था। वो वक्त वक्त पे बड़े बड़े पंडित और उस्ताद लोगों को वहाँ, उनके प्रोग्राम्स होते थे, जैसे शिव कुमार शर्मा जी का, उनके हरिप्रसाद जी का, और बहुत अच्छे अच्छे परवीन सुल्ताना, ये बड़े बड़े जितने भी दिग्गज संगीत के जो मारतंड हुए हैं, उन लोगों का प्रोग्राम आकाशवाणी प्रस्तुत करवाती थी, और कभी आकाशवाणी में होता था, कभी हॉल में होता था, तो हम लोग देखते जाते थे, क्योंकि हमें बड़ा शौक था, हम लोग इस तरफ इंक्लाइंड थे, झुकाव
1: जी
0: था हमारा।
1: जी
0: तो हमने वहां से ही शुरुआत की है, वहीं से शुरुआत हुई है, उस तरह के ही वहां से असर पड़ा है। तो फिर धीरे धीरे हम लोग, फिर मैं और मेरी बहन प्रेरणा, हम लोग, म्यूजिक एंड इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स था, जे एंड के अकेडमी का, वहां जाके हमने सारे गामा सीखना शुरू किया, छोटे छोटे थे तब, तो फिर हमें

0: थिएटर में उतना मिलता नहीं था मौका,
1: जी
0: लेकिन गीत संगीत की तरफ पूरा ध्यान जाता था।
1: जी
0: फिर धीरे धीरे वहाँ थिएटर करना शुरू किया हमारे, क्योंकि घर में ही था। जितने भी अच्छे अच्छे कलाकार, इतने बड़े बड़े जिन्होंने नाम किया बाद में, तो वो हमारे थिएटर ग्रुप में भी थे कश्मीर में, और उनकी वजह से हमें बड़ा आनंद होता था कि इन्होंने बॉम्बे जाकर और दिल्ली जाकर इतना नाम कमाया, इतनी ख्याति पाई। तो देखा जाए तो बचपन से ही इसकी नींव पड़ी थी जो आज तक चली जा रही है। नाउ आई एम ए सीनियर
1: बीच
0: सिटीजन, इट्स बीन लॉट ऑफ टाइम आई हैव बीन विद म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट ऑलवेज।
1: ये जो बीज सही पड़ा था, ये बीज आगे बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते एक होता है ना कि अभी तक तो आप सीख रहे हो या मजाक मस्ती में कर रहे हो या शौक के लिए कर रहे हो, प्रोफेशनली या कहा जाए जैसा शायद पूछा भी जाता है सामान्यतया, ये हालांकि मजाक का विषय लिया जाता है, एक व्यक्ति ने कहा कि मैं गायक हूं तो उससे उसका होने वाला ससुर पूछता है पर खाने के लिए क्या खाता तो इसी विषय के नाते मैं आपसे पूछूंगी कि आपने इसको अपने दाना पानी का विषय यानी अपने प्रोफेशन का विषय कब बनाया और कैसे बनाया?
0: वो थोड़ा बाद में बनाना पड़ा, बिकॉज जब मैं बहुत ही अर्ली एज से, क्योंकि बच्चों के प्रोग्राम में जाता था, फिर हमारे रेडियो कश्मीर में युववाणी की स्थापना हुई,
1: जी
0: और युववाणी में जब हम टीनेजर थे, 16-17-18 साल के थे, 16-17 साल, 15-16-17 साल के ही थे, तो तब हमें वहां पे हमें मौका मिला कि हम प्रसारण कैसे करें। उन्होंने थोड़ा बहुत समझाया सिखाया,
1: सिखाया
0: तो फिर वो शामे गजल और आपकी फरमाइश, इस तरह के प्रोग्राम हम युवानी में प्रस्तुत करने लग गए।
1: अच्छा
0: फिर हमारे वहाँ ड्रामा प्रोड्यूसर थे प्राण किशोर कौल साहब,
1: जी
0: तो फिर उन्होंने बोला तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, तुम आओ, तुम ड्रामा का भी ऑडिशन दो,
1: जी
0: मैं प्लेज करते रहता हूँ, रेडियो प्लेज
1: हाँ
0: जो
1: हाँ
0: होते थे। तो हमारा फिर ड्रामा के लिए ऑडिशन हुआ रेडियो का, तो उसमें हम अच्छी ग्रेड में हुए, तो फिर हम
1: पास हो
0: उसमें
1: गए
0: प्लेज करते थे।
1: जी
0: तो वहां से कुछ ना कुछ, शुरू शुरू में कभी 15 रुपए का चेक मिलता था, फिर बाद में धीरे धीरे 50 रुपए का हुआ, ऐसी
1: हाँ
0: शुरुआत हुई। तो यहां से तो आना शुरू हुआ ही था जब कोई ना
1: जी
0: कुछ, लेकिन पिताजी की वजह से हमें इस तरह का वो नहीं था, उनका हम आज भी धन्यवाद करते हैं, बहुत करते हैं, कि उन्होंने कभी हमें सप्रेस नहीं किया, दबाया नहीं,
1: जी
0: कि उन्होंने हमें खिलने दिया जैसे हम खिलना चाहते थे।
1: जी
0: तो उन्होंने हमेशा कहा कि बेटा, उन्होंने सिखाया कि हाँ, ये अब चेक मिला है तो कहाँ रखे, 15 रुपए का चेक मिला है, छोटे छोटे थे। तो पिताजी अपने साथ बैंक ले गए, उन्होंने बोला कि ये अकाउंट खुलवाया तो इसमें चेक डाल दो। फिर जब वो पैसे जमा होते थे, तो हम कभी वो हमारे लिए कभी कभी शूज लेके आते थे,
1: हाँ
0: जाते थे, कभी वो लाते, तो उस तरह का उन्होंने सिखाया शुरू से बचपन से
1: जी
0: कि कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, इकोनॉमिक जब से कुछ पैसे कमाए हैं तो उनको कैसा उपयोग होना चाहिए। फिर होते होते मैं घर से निकल पड़ा था, एक्चुअली सच बताएं तो मेरे
1: निकल
0: भाग्य
1: पड़े थे,
0: में
1: मतलब
0: ऐसा था कि
1: भाग पड़े थे
0: मैं
1: या निकल पड़े थे? अच्छा
0: नहीं, घर वालों की सहमति से ही आया था, ऐसा नहीं भाग के नहीं आया।
1: जी
0: तो मैं 1980 में दिल्ली आया, और दिल्ली में मैंने भारतीय कला केंद्र में एडमिशन लिया, और मैं थिएटर भी करता था, और मैं पंडित अमरनाथ जी से म्यूजिक भी सीख रहा
1: संगीत भी
0: था।
1: सीखा
0: और वो भारतीय कला केंद्र दिल्ली मंडी हाउस में बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है जो श्री राम लोगों का है, तो वहाँ हमने म्यूजिक क्लास में मुझे एडमिशन मिला अमरनाथ जी के यहाँ, तो पीछे हॉस्टल में रहने की व्यवस्था भी थी, और बाकी टाइम सब हर वक्त क्लास नहीं होता था, लेकिन बाकी टाइम 1-2 घंटे निकाल के मैं और हम मेरे कुछ साथी थे, उनके साथ हम थिएटर वगैरह, प्लेज पढ़ना, प्लेज की
1: जी
0: रीडिंग करना और प्ले करना। तो वहाँ पे श्रीराम सेंटर, कमानी ऑडिटोरियम, फिक्की ऑडिटोरियम,
1: जी
0: बहुत सारे ऑडिटोरियम मंडी हाउस में थे, तो वहाँ हम कभी कभी फिर नाटक करते थे, और कभी कभी यहाँ, छोटे ही थे, आई वॉज आई थिंक ऑलमोस्ट वो टीनेज की एंड ही था मेरा कुछ ऐसा, जब मैं दिल्ली आ गया
1: एटीन
0: था,
1: ट्वेंटी ईयर्स का एज
0: हाँ
1: होगा, अठारह
0: उन्नीस
1: बीस
0: बीस
1: साल
0: साल की उम्र थी।
1: हाँ
0: तो वहाँ मैं 5 साल दिल्ली में रहा, वहाँ पे उस दौरान फिर मैंने कुछ वहाँ भी रेडियो में मैंने म्यूजिक में ऑडिशन दिया, तो मैं मुझे पास हुआ था दिल्ली रेडियो से, मैं
1: जी
0: सिंगिंग में बी हाई ग्रेड में
1: मतलब
0: पास
1: रेडियो
0: हुआ
1: का साथ छोड़ा
0: रेडियो मेरे साथ में
1: नहीं
0: हमेशा रहा है,
1: जी
0: और मेरी बहन का तो ये था कि हमारे एग्जाम्स होते थे ना,
1: हाँ
0: तो उसका रेडियो चलता रहता था, गीत भी चलते रहते थे, वो
1: और
0: प्रिपेयर भी
1: पढ़ते भी
0: करती
1: रहते थे
0: रहती थी,
1: जी जी
0: मुझसे
1: जी
0: ऐसा नहीं होता था, उससे हो जाता
1: जी लड़कियां मल्टी टैलेंटेड होती
0: था
1: हैं
0: तो मेरी ट्रेनिंग ही इस तरह की रही है,
1: जी
0: लेकिन कभी उस तरह की वो रही नहीं डेस्परेशन की, हाँ मुझे कुछ करना है, मुझे कहीं नौकरी करनी है, ऐसा नहीं रहा। लेकिन मुझे लगता है ट्रेनिंग ऐसी होती रही, उसके साथ में इंटेलिजेंस वैसी होती रही, जैसे कि जैसे म्यूजिक भी था, थिएटर भी था, और अपनी भाषा पे और उच्चारण पे तो शुरू से ही ध्यान देते थे, तो आवाज़ का भी कुछ एक समझ आया कि आवाज़ को कैसे इस्तेमाल करना है।
1: जी
0: कुछ वहाँ दिल्ली में प्रोग्राम करने का मौका मिलता तो एंकरिंग करने का मौका मिला,
1: जी
0: तो इस तरह की सारी चीज़ें होती रही अपने आप ही, सच बताएं तो।
1: मतलब आपके लिए

0: अपने आप ही सब हो रहा था, और उसी अपने आप में आपने ना आवाज की बात के बारे में कई बार बोला,
1: जी
0: उच्चारण के बारे में कई बार बोला, तो मैं आपके जीवन की जो परिधि पे हम चल रहे थे उस परिधि पे एक मिनट के लिए रुक के एक बात पूछना चाहती हूँ। आप वॉइस ओवर डायरेक्टर हैं, हमारे श्रोताओं में कई सारे बच्चे हैं जिनकी आवाज बहुत अच्छी है, शायद उनको मॉड्यूलेशन भी आता है खुद से अपने आप से, और वो ऐसा सोशल मीडिया पे कई चीजें करके भी डालते होंगे, पर वो चाहते हैं कि वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन जाए, तो उसके लिए वो क्या करें? अगर आप थोड़ा सा बीच में कुछ सिखा दें फिर हम आपकी यात्रा पे वापस आ जाएंगे।
1: मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर कोई वॉइस ओवर या डबिंग करना चाहता हो या
0: जी
1: वॉइस एक्टर बनना चाहता हो,
0: जी
1: उसे सबसे पहले तो अपनी भाषा पे और उच्चारण, जो मैं बार बार कह रहा हूँ,
0: जी
1: क्योंकि ये आजकल सबसे ज्यादा कमी अगर मुझे कहीं महसूस होती है, कहीं ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट सुनने में, तो ये बहुत तकलीफ होती है
0: जी
1: कि लोग, उनका भी शायद कितना दोष है, उनके शिक्षक वैसे हैं क्या, ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हाँ उच्चारण पे बहुत ध्यान देना चाहिए, वॉइस क्वालिटी पे देख उनकी वॉइस। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी आवाज में बेस कैसे आएगा,
0: हाँ
1: ऐसा नहीं
0: ये
1: हो। मेरे
0: प्रश्न
1: मुझे
0: है
1: कहीं लोग सवाल पूछते हैं कि हमारी आवाज ऐसे कैसी होगी,
0: जी।
1: आपके जैसे हमारी आवाज कैसी होगी,
0: हाँ
1: लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हर एक व्यक्ति की, हर एक शख्स की एक आवाज, एक अपनी क्वालिटेटिव आवाज, वो नेचर से मिलती है।
0: जी
1: उसमें थोड़ा सा हम लोग एनहांसमेंट कर सकते हैं अगर हम उसका थोड़ा रियाज करें, जैसे हम खरज का रियाज करें मॉर्निंग में उठ के, वो संगीत
0: खरज का
1: के
0: रियाज
1: जैसे
0: कैसे कर सकते हैं थोड़ा सा?
1: वॉइस को थोड़ा सा नीचे के टोन, जैसे ऑक्टेव्स हैं, जैसे सप्तक है,
0: हाँ
1: मंदर सप्तक है, मध्य सप्तक है और तार सप्तक है, तीनों ऑक्टेव्स जो हैं उसमें मध्य सप्तक से आपको मॉर्निंग में, चूंकि आप नींद से उठते हैं तो उसके बाद आपके पास थोड़ी सी बैठी होती है,
0: बेस
1: मतलब
0: काफी
1: बेस वहां
0: अच्छा
1: होती है,
0: होता
1: तो
0: है।
1: उसमें आप
0: हाँ
1: नीचे की तरफ सा
0: सा के बाद
1: नी, हाँ
0: नी
1: नीचे
0: जी
1: आए
0: जी
1: आ नीचे की तरफ जितना जाएंगे,
0: जी
1: और कहते हैं कि जितना नीचे जाएंगे उतना ऊपर छू सकते हैं। हमारे
0: अच्छा
1: बड़े बुजुर्गों ने ये कहा है कि वेन्यू आप जब खरज का रियाज करते हैं तो तार सप्तक में आपकी आवाज और भी आगे
0: खुलती
1: जब
0: है
1: खुलती है,
0: जी।
1: तो इस तरह का मुझे लगता है वॉइस क्वालिटी में अगर थोड़ा बदलाव लाना है तो थोड़ा आपको खरज का रियाज करना पड़ेगा, चाहे आप संगीत का करें या
0: जी
1: आ करके ही कर सकते हैं।
0: जी
1: लेकिन हर एक व्यक्ति की, हर एक शख्स की, हर एक स्त्री की अपनी अपनी एक वॉइस क्वालिटी है जो नेचुरली होती है, तो उसको ही कैसे अच्छा इस्तेमाल करना है वो आपको ढूंढना है। अगर आपका उच्चारण सही है, अगर आपकी आवाज अच्छी है, तो आपको उच्चारण पे पढ़ के आपको पढ़ाई बहुत करनी है,
0: जी
1: किताबें बहुत पढ़नी चाहिए आपको, और थोड़ा सा लाउडली पढ़नी चाहिए। जैसे आप अकेले अगर हो तो किताबें पढ़ना चाहिए उसको,
0: किस तरह की किताबें पढ़नी
1: कोई भी,
0: चाहिए?
1: जैसे उपन्यास हो कोई भी हो,
0: अच्छा
1: जिसमें अगर आपको, क्योंकि भाव की भी जरूरत होती है,
0: जी
1: आवाज के साथ में उच्चारण के साथ में भाव भी चाहिए,
0: जी
1: तभी आप अच्छे आर्टिस्ट, डबिंग आर्टिस्ट या वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हैं।
0: जी
1: जब आपको मालूम, क्योंकि मेरी संगीत के योगदान ने मुझे उसमें एक अलग तरह का, एक मेरे जीवन में योगदान किया है, कि क्योंकि मैंने बेसिकली थोड़ा म्यूजिक भी सीखा है, बहुत ज्यादा मैं उस्तादी म्यूजिक नहीं सीखा, मैंने
0: जी
1: बेसिक म्यूजिक सीखा है, जो
0: जी
1: मैंने संगीत सीखा है उस वजह से मेरे डायलॉग डिलीवरी में, या मैं जब डबिंग करवाता हूं किसी से, तो मैं उनको वो गाइड कर सकता हूं कि इस सेंटेंस का भाव ऐसा है और किस शब्द को आपको कितना पुश करना है, कितना सॉफ्ट करना है, और उसको कैसे साथ में लेके चलना है,
0: जी
1: तो वो मैं इसलिए बता पाता हूं क्योंकि मेरा संगीत से मेरा जुड़ाव है, संगीत की मेरी सोल है,
0: जी
1: मेरी म्यूजिक की सोल, मुझे वो जो सुरों की जान पहचान की वजह से मुझे लगता है कि जो डायलॉग को हम किस तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं
0: जी
1: वाइल एक्टिंग या रेडियो एक्टिंग या फिल्म की एक्टिंग या टेलीविजन की एक्टिंग करते हैं, तो वो भाव उसमें आना बहुत अनिवार्य होता है, आवश्यक है,
0: ठीक है
1: तभी तो आपके सेंटेंस में वो एक वो कन्वे होगा कि आप क्या कहना चाहते हैं।
0: जी
1: तो उसमें उच्चारण के साथ साथ, वॉइस के साथ साथ, आपको भाव पे भी ध्यान देना पड़ेगा, उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी।
0: जी
1: और जैसे आजकल तो बहुत सारे एपरेटस हैं, तो सबके हाथ में मोबाइल है, उसमें रिकॉर्डर होता है, उसमें कुछ चीजें रिकॉर्ड करके आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो एक छोटा पैसेज रिकॉर्ड कर लिया, फिर आपने उसको सुन लिया, तो अगर आप जेन्युइनली एनालिटिकली अपने उसको, जो आपने रिकॉर्ड किया उसको सुनेंगे और समझेंगे कि कहीं त्रुटि है, कहीं गलती तो नहीं हुई है, कहीं कुछ ऐसा हुआ तो नहीं, तो आप उसको दोबारा से कर
0: खुद
1: सकते
0: खुद
1: हैं
0: के गुरु भी बन सकते
1: खुद
0: हैं।
1: क्या। और वैसे भी बहुत सारी कुछ लोगों की क्लासेस चलती हैं जो वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस एक्टिंग, ये सब चीजें और ब्रॉडकास्टिंग के बारे में सिखाते हैं, काफी लोग इंस्टीट्यूशन है, वो वहां पर भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा उसका मंत्र जो है कुछ करने के लिए, दीवानापन और दीवानगी होनी चाहिए। अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं जीवन में, आपके मन में वैसी दीवानगी और एकदम पागलपन होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग।
0: जी, तो वो पागलपन चाहिए, अगर पागलपन है तो आप वहां पहुंच सकते हैं। और कुछ शिक्षाएं तो इसमें दी गई हैं, तो आप उन शिक्षाओं का भी ध्यान रखें।
1: जी जी बिल्कुल, बिना गुरु के ज्ञान तो मिलता नहीं है, और गुरु आपको बनाना पड़ेगा किसी को गुरु कि हाँ ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं इनसे सीखूं।
0: जी,
1: तो आपको सीखना तो पड़ेगा ही।
0: जी,
1: तो हम बचपन में गए ना वापस?
0: नहीं, अभी बचपन में नहीं जाते। एक काम करते हैं, हम वापस आते हैं। और वापस आके जब आपने इतनी अच्छी शिक्षा दी, और आपने कहा कि संगीत ने आपका बहुत साथ दिया।
1: जी जी,
0: आपने बहुत अच्छे से दिल्ली में सीखा भी संगीत, तो अगर आप हमें कोई गीत गाकर सुना दे, ताकि वही गीत हम हमारे श्रोताओं को सुना पाए।
1: ठीक है, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, पता नहीं आपका दिल चाहे तो मतलब।
0: नहीं, स्वागत है, स्वीकार है। जी,
1: मैं चूंकि संगीत से मेरा बहुत पुराना साथ है, मेरा इट हैज बीन माय फ्रेंड ऑलवेज, मेरा साथी हमेशा संगीत रहा है, अकेलेपन का भी बहुत साथी रहा है।
0: जी,
1: बीच में तो काफी साल मैं एक्टिंग करता रहा, 1987 में पहली बार मैंने बॉम्बे में सीरियल किया था। एक्टिंग करते करते करते मैं डबिंग करता रहा, वॉइसिंग करता रहा, फिर डबिंग डायरेक्टर बना करते करते, उसके बारे में बाद में तो बात करूंगा आपसे। तो उसके साथ साथ मैं अभी एक प्रोग्राम करने वाला हूं, मैं एक ट्रिब्यूट दे रहा हूं, हमारे बहुत बड़े आइकॉन फिल्म इंडस्ट्री के रहे हैं धर्म जी, धर्मेंद्र
0: जी,
1: उनको ट्रिब्यूट देने का मेरा बड़ा दिल किया, तो मैं उनको एक ट्रिब्यूट दे रहा हूं, प्यार ही प्यार बेशुमार टाइटल रखा है मैंने प्रोग्राम का, और आई थिंक अगले अगस्त के फर्स्ट वीक के आसपास मैं सेंट एंड्रूज ऑडिटोरियम में वो शो कर रहा हूँ। उसमें एक गीत मुझे बहुत पसंद है, धर्म जी को मैंने डेडिकेट किया, उसमें गाने तो बहुत सारे हैं, हमने तकरीबन बहुत सारी लिस्ट बनाई है, उसमें एक गाना है जो मुझे बहुत बेहद पसंद है, उसकी दो लाइनें आपको सुनाता हूँ, क्योंकि आपने मुझे कहा है कि दो लाइनें सुना दीजिए।

0: ये खूबसूरत गीत आपने गाया और हमने हमारे श्रोताओं को सुनाया, मतलब हमारे श्रोताओं की भूख बढ़ गई है कि अब जो भी गीत आप चुनेंगे वो उस गीत को आप गाकर सुनाएंगे और फिर हम आगे सुना देंगे।
1: वाह वाह, मेरा
0: ये
1: सौभाग्य,
0: है
1: मेरा
0: ना, ये
1: सौभाग्य।
0: होता रहेगा। पर अब आपने बताया कि 1987 में आप मुंबई आए थे और पहला
1: 1986 में आया था।
0: 1986 में,
1: इनफैक्ट जनवरी 20-40 साल हो गए तकरीबन बंबई में।
0: ऐसा बताने से उम्र पता चल जाती है
1: मुझे कोई गम नहीं है
0: तो
1: उसका।
0: पर आप 1986 में मुंबई आए और यहां पर आके आपने अपना एक नया कदम, एक नया पायदान चढ़ा, एक नई सीढ़ी चढ़ी यहां से
1: जी,
0: आपने। तो अब जरा उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करें थोड़ा।
1: ऐसा सुनने में आया था कि बॉम्बे में बिना गॉडफादर के कुछ होता नहीं है। तो
0: अच्छा।
1: ये बात एक तरह से वाजिब भी है, अच्छी भी है, सही भी है। लेकिन अब जब मेरा कोई था ही नहीं बॉम्बे में, तो मुझे तो खुद ही अपनी पगडंडी बनानी थी, अपने रास्ते खुद बनाने थे। तो मैं उससे पहले भी कई बार, एक बार ऐसे छुट्टियां होती थी मेरे कॉलेज में, तो वो सब दिल्ली में भाग भाग के आता था, क्योंकि बम्बई अपनी तरफ खींचता था मुझे हमेशा शुरू से। फिर फाइनली मुझे बॉम्बे आना ही पड़ा। मुझे बहुत लोगों ने वहाँ दिल्ली में कहा कि आप दिल्ली में क्यों रहते हैं, आप बॉम्बे जाना चाहिए, आपको बॉम्बे में इतना अच्छा, आपके टैलेंट का विकास होगा, आपको बहुत सारे अच्छे मौके मिलेंगे। तो मैं बॉम्बे आया, तो उसके बाद फिर मैंने इधर उधर कुछ, मैंने एक फोटो सेशन करवाया था। उस वक्त के बेस्ट फोटोग्राफर जो थे, स्टिल फोटोग्राफर, उनका नाम था गौतम राजाध्यक्ष।
0: जी जी
1: अब वो
0: जी
1: है
0: जी
1: नहीं,
0: जी जी
1: लेकिन मैंने बड़ी बहुत जद्दोजहद करी, बहुत मेहनत करी। तो मैंने उनका पता ढूंढा, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे फोटो सेशन कराना है तो सिर्फ आपसे करवाना है।
0: बड़े महंगे हुआ करते थे उस समय।
1: लेकिन बहुत प्यारे थे, बहुत प्यारे
0: जी
1: थे वो,
0: जी
1: बहुत ही
0: बिल्कुल।
1: अच्छे। एंड ही वॉज द बेस्ट पोर्ट्रेट फोटोग्राफर, बहुत बड़े बड़े
0: यस
1: लोगों का करते थे। एंड ही अग्रीड टू डू माई फोटो सेशन फॉर दैट टाइम। एंड तो फिर उनके घर पे उन्होंने मुझे, बाबुलनाथ मंदिर के पास में उनका घर था, ह्यूज रोड पे, तो वहाँ उन्होंने मुझे घर पे बुलाया, बोला यू कम ऑन सैटरडे, वी विल शूट। तो उन्होंने खट खट खट खट मेरी तस्वीरें लेते गए वो, और कुछ फोटोग्राफ्स उन्होंने दी। तो फिर मेरे पास, जब वो उस जमाना वो था, तो कुछ फोटोग्राफ्स दी थी, तो मैंने बहुत सारी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में मैंने
0: अप्लाई
1: वो
0: कर
1: दिया
0: दिया।
1: उनका अपना पीछे। अच्छा, उस वक्त ऐसा जमाना था कि फोन भी नहीं होता था सबके पास में, सबके मतलब केयर ऑफ नंबर होते थे। मेरे भी एक अंकल रहते थे बांद्रा में, तो पीछे उनका केयर ऑफ नंबर देके हम लोग रखते थे नाम और केयर ऑफ नंबर। कभी कभी वो फोन करते भी थे और मैसेज मिस भी हो जाते थे। और
0: हाँ
1: मेरी आंटी घर पे रहती थी, वो बोलती थी अरे बेटा किसी का फोन आया था, वो कोई अच्छा सा था, नाम भी अच्छा सा था, कुछ क्या कुछ बताती नहीं, कोई कोई
0: भूल
1: मैसेज मिलता नहीं
0: गई
1: था,
0: भूल गई।
1: लेकिन हाँ वो भूल जाती थी। तो इस तरह का भी वक्त देखा है। तो फिर बहुत सारे लोगों से मिलना होता था। उस वक्त मुझे एक एड फिल्म मिली थी ब्रूक बॉन्ड की, 3 रोज़ेस चाय,
0: अच्छा।
1: आई थिंक दैट वॉज फॉर कुछ साउथ के लिए था।
0: हाँ।
1: उसमें एक मॉडल थी राधा और मुझे उन्होंने लिया था। ज्योति ठाकुर डायरेक्टर थे उस एड के,
0: जी
1: बहुत
0: जी
1: बड़े
0: जी जी जी
1: एड फिल्म मेकर थे ज्योति
0: जी
1: ठाकुर।
0: जी
1: तो उस एड में मुझे काम करने का मौका मिला था, ब्रूक बॉन्ड की 3 रोज़ेस चाय। फिर मैंने जिंगल गाया, एक बनफूल आयुर्वेदिक तेल का जिंगल मुझे गाने का मौका मिला। मैं बहुत, मतलब मैं जितनी मुझसे कोशिश खुद से हो सकती थी मैं करता था, क्योंकि मेरा कोई गॉडफादर था नहीं, मुझे कोई लॉन्च करने वाला था नहीं, तो आई हैड टू डू माई ओन थिंग्स। तो आई यूज टू बी इन टच, मैं पृथ्वी थिएटर में अक्सर जाता था, वहाँ लोगों से मिलना होता था, वहाँ बहुत लोग मिलते थे। कुछ मैंने उस पहले आके इप्टा के साथ में भी एक उनके साथ फंक्शन किया था इप्टा डे का, तभी वो बहुत अच्छे अच्छे लोग हुआ करते थे। इकबाल कुरैशी साहब म्यूजिक डायरेक्टर थे, कुलदीप सिंह जी थे, तो MS सत्यू साहब, ये लोग बहुत पुराने इप्टा के
0: बड़े
1: लोग थे।
0: लोग थे
1: तो
0: जी।
1: इन लोगों के साथ में भी इप्टा डे में भी मैंने गाया भी था, एक्टिंग भी किया था। तो इस तरह से मुझे जितने जितने मुझे जो भी मौका मिलता था मैं कर लेता था।
0: जी
1: आई थिंक आई यूज टू, मुझे लगता है अपने आप को मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, ब्रश कर रहा हूँ,
0: जी
1: शायद रिफाइन कर रहा हूँ। तो इनिशियली वैसे ही काम चलता रहा।
0: जी
1: फिर ये 1987 में दूरदर्शन में एक सीरियल आता था अधिकार, उसमें मेरा उसमें हुआ था, तो
0: जी
1: मैंने उसमें एक्टिंग की। फिर उनका ही नेटवर्क 7 का ही, मंजू सिंह, जोत सिंह का एक कहानी, उसमें मैंने एक्टिंग की। फिर उसके बाद तरह तरह के करता रहा। फिर मेरे साथ एक किस्सा हुआ था, मैं आपको बताऊं,
0: जी
1: मैं जो मैंने शायद बहुत लोगों को पता भी नहीं है, मैंने प्यार किया फिल्म की कास्टिंग हो रही थी।
0: हाँ
1: तो मैंने प्यार किया कास्टिंग के लिए मुझे किसी ने मुझे मुझे भेजा था, बोला उनको जरूरत थी उस वक्त एक्टर्स की। तो उन्होंने शायद सलमान खान और भाग्यश्री का सिलेक्शन हो चुका था,
0: जी
1: उसमें किरदार था जीवन का,
0: जी
1: उसके लिए मुझे उन्होंने स्क्रीन टेस्ट किया। सूरज जी से मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया था। और उस स्क्रीन टेस्ट में सलमान खान भी मौजूद थे और भाग्यश्री भी। वो एक प्रॉपर सीन शूट हुआ राजश्री प्रोडक्शंस की सीढ़ियों में जहाँ पे वो लिफ्ट है वो वहाँ सीढ़ियों से उतरते मैं एकदम सूटेड बूटेड आता हूँ और नीचे आके सलमान और भाग्यश्री खड़े हैं। उनके साथ मेरा स्क्रीन टेस्ट हुआ था उस फिल्म के लिए। वो एक डायलॉग था, वाह सुमन वाह, पराए अजनबी घर में पराए लोगों से इतना दोस्ताना, ये सब डायलॉग्स थे। तो सलमान आके मेरा कॉलर पकड़ते हैं, सूट पकड़ते हैं, तो मैं ऐसे, फिर वो डायलॉग बाजी थी, वो मेरा स्क्रीन टेस्ट हुआ था उसमें। और हमारे दो लोगों का, मेरा हुआ था और एक और लड़के था, मेरा सिलेक्शन मुझे मालूम पड़ा हुआ था। लेकिन फिर वो फाइनली दैट रोल वेंट टू अप टू मोनीश बहल। तो वहां से थोड़ा मेरा लगा था कि हाँ सचमुच जो लोग कहते हैं कि गॉडफादर होता है तो गॉडफादर होना चाहिए। लेकिन मेरी कोशिशें एकदम बरकरार थी, चालू थी, मैं हमेशा कोशिशें करता रहा, करते करते करते फिर टेलीविजन में करते रहे, बहुत सारे सीरियल्स मैंने किए। महाराणा प्रताप मेरा एक तरह से लास्ट सीरियल, उसके बाद मैंने फिर टेलीविजन नहीं किया
0: जी।
1: महाराणा प्रताप था, अदालत, बहुत सारे सीरियल्स मैंने किए, कागज की कश्ती
0: जी,
1: तो अब तो नाम भी याद नहीं रहते कितने, उस
0: इतने जमाने सारे में सीरियल्स कर लिए, गाने तो याद रहते हैं। अब आपने अपनी जिंदगी के बारे में बताया कि जिंदगी में जो कुछ आता जा रहा है वैसे ही चलता जा रहा है
1: जी।
0: तो एक गाना अगर आप हमारे श्रोताओं को कुछ सुना दें और उनको एक डेडिकेट कर दें तो बड़ी खुशी होगी श्रोताओं को भी और हमको भी।
1: लेकिन मैं दो ही लाइनें गाऊंगा, उसके बाद आप ओरिजिनल गाना चलाइएगा
0: जी। ओरिजिनल जो गाए हैं वो गा देंगे। आप दो पंक्तियां।
1: मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया,

0: एक साथ निभाता चला
1: क्या
0: गया।
1: बात है, मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये गीत बहुत खूबसूरती से आपने गाया, और अब सुनते हैं यही गीत।
0: मैं जिंदगी

0: तो ये गाना तो आपने सुना दिया और आप सोच रहे होंगे कि हाँ हमसे बात करने के लिए बुलाया है या गाना गाने के लिए। तो विविध भारती की एक बात है कि यहाँ पर अगर कोई हुनरबाज आता है तो हम सारे हुनर का आनंद उठाते हैं और सब में बांटते हैं, तो ये
1: नहीं,
0: प्रेम
1: मुझे
0: हम
1: भी
0: बांट
1: खुशी
0: रहे
1: है
0: हैं आपका।
1: बिल्कुल आपके साथ, जिस तरह हम जो वार्ता कर रहे हैं, जो भी एक चर्चा कर रहे हैं,
0: जी
1: मेरे बारे में चर्चा हो रही है, मेरे सफर के बारे में चर्चा हो रही है, उसमें मेरा साथी तो आकाशवाणी विविध भारती है ही, और विविध
0: जी
1: भारती के श्रोताओं को
0: जी
1: खासकर, उनको भी तो गीतों का आनंद मिलना चाहिए, उनको भी
0: जी
1: हमारी बातों का आनंद आना चाहिए।
0: जी बिल्कुल। तो अब जब बातों का आनंद चल रहा है, तो अभी तक तो आप मुंबई आए, फिर से दूरदर्शन यानी प्रसार भारती ने आपका हाथ पकड़ लिया, आपको बहुत सारे नाटकों का, धारावाहिकों का हिस्सा बनने का मौका मिल
1: जी
0: गया।
1: जी
0: अब आपने धारावाहिक कर लिए, उन्हें छोड़ दिया, लेकिन साथ साथ में कुछ फिल्में भी आपके हाथ में आ रही हैं और आप उन फिल्मों में भी काम कर रहे हैं,
1: जी
0: एक एज ए एक्टर काम कर रहे हैं। तो वो जमाना कैसा था, आप काम करते थे तो कैसा लगता था, और आपने किन-किन जगहों पर क्या-क्या किरदार किए, ये बड़े प्यारे से प्रश्न हैं जिनका उत्तर हम जानना चाहते हैं।
1: असल में शुरुआती दौर में बेसिकली मेरे जहन में ऐसा बैठा था कि एज मैटर्स अ लॉट। जैसे मैं 20s में था तो मुझे ऐसा लगता था कि अभी मुझे अगर लीडिंग कैरेक्टर्स मिल जाएं, फिर मुझे वो लीडिंग कैरेक्टर ही चाहिए थे। उसके बदले में मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ भी दी उस वक्त, क्योंकि शायद मेरा गाइड या मेंटोर या गॉडफादर कोई था नहीं, या जो मुझे मतलब समझा सकते थे। मैं खुद ही अपनी एनालाइज करके अपनी डिसीजंस लेता था।
0: जी
1: जैसे मुझे मैंने प्यार किया नहीं मिली तो मेरा दिल थोड़ा सा दुख
0: टूटा
1: गया था,
0: होगा।
1: तो
0: हाँ
1: देवानंद साहब से मैं बहुत मुतासिर था, बहुत उनसे प्रभावित था। तो उनसे मुझे मेरे मित्र ने मिलवाया था, देव साहब से, वो उनके असिस्टेंट चीफ असिस्टेंट थे। तो देव साहब बहुत प्यार करते थे मुझे, कश्मीरी करके बुलाते थे, ए
0: जी
1: कश्मीरी कम हेयर, कम कम व्हेन हैव यू कम, उस तरह से बहुत स्टाइल से बात
0: आप
1: करते
0: थोड़ा और इसको क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे बात करते
1: थे
0: समय देव साहब यहाँ पर आए थे, तो देवानंद को सुनना हम चाहते हैं, अगर थोड़ा और सुना
1: मैं
0: दें।
1: उनके अंदाज में बताऊंगा जो उन्होंने मुझे जवाब दिया
0: जी जी
1: था,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि एक फिल्म बन रही थी उस वक्त, अव्वल नंबर,
0: जी
1: देव साहब का ऑफिस खीरा नगर सेंटर कुछ में भी था,
0: जी
1: जहां मैं कई बार उनसे मिला भी था,
0: जी
1: उनका आनंद डबिंग भी था,
0: जी
1: और महबूब स्टूडियो में वहां भी एक उनका एक कमरा था जहां पे वो अक्सर बैठते थे बैंड्रा में। मुझे उन्होंने सूचना मिली तो मुझे उन्होंने वहां बुलाया था। वो शायद उसके बाद वो कहीं लंदन जाने वाले थे, लेकिन
0: जी
1: उससे पहले उन्होंने अव्वल नंबर फिल्म की उन्होंने बातचीत चल रही थी, तो मुझे भी उन्होंने वहां मिलने के लिए बुलाया। तो मैं वहां गया था तो मुझे उन्होंने एक रोल ऑफर किया जो एक पुलिस वाले का रोल था।
0: अच्छा
1: तो वो मैंने उनसे बहुत ही रिस्पेक्टफुली कहा, मैंने कहा देव साहब मुझे पुलिस वाले का रोल नहीं करना है, इट्स द बिगिनिंग ऑफ माय करियर, तो मैं एक पुलिस वाले का रोल करके मतलब
0: उसी
1: इट इज
0: लूप
1: नॉट,
0: में
1: मुझे
0: फंस
1: मुझे हाँ ऐसा लग रहा था।
0: जाएंगे।
1: उस फिल्म में आमिर खान साहब कास्ट हुए थे, और उन्होंने मुझे कहा रायना आई एम रोल रियली सॉरी आई कांट गिव यू दैट। मैंने उनको कहा था कि वो जो सेकंड लीड रोल है, जो नेगेटिव रोल था, तो मैंने कहा था वो मुझे आप दे दीजिए ना इस फिल्म के लिए, तो मुझे वो पुलिस वाला रोल नहीं करना है। कहता आई एम सो सॉरी रायना, आई हैव ऑलरेडी प्रॉमिस आदित्य अबाउट दैट रोल एंड आई हैव टू गिव इट टू हिम, आई कैन नॉट गो बैक ऑन माई प्रॉमिस, सो वी विल यू बेटर डू दैट वन, दैट्स अ गुड रोल ऑफ ए पुलिसमैन। तो
0: जी
1: मैं बहुत उनका फैन था, बहुत जबरदस्त फैन रहा हूँ उनकी फिल्मों का भी। तो इस तरह से उन्होंने मुझे जवाब दिया, तो
0: जी
1: मैं फिर थोड़ा सा मेरा मैंने कहा ये पुलिस वाला रोल मुझे नहीं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं देव साहब, मैं आपके साथ में नेक्स्ट फिल्म में ही काम करूंगा, इस फिल्म में पता नहीं ये क्या था मुझे मालूम नहीं, ये
0: जी
1: मेरी अब मैं अगर को कहूँ गलतियां थी, लेकिन उस वक्त मुझे सही लगता था, मुझे लगता था कि मेरा करियर का बिगिनिंग है, मेरा कोई है नहीं, मुझे वन ऑफ द लीडिंग रोल करना चाहिए, चाहे नेगेटिव रोल में। नेगेटिव के लिए मेरा बहुत अच्छा एक
0: जी
1: शौक था कि मैं नेगेटिव रोल्स करूं, मेरी
0: जी
1: आवाज और मेरे पर्सनालिटी और मेरी आंखों की वजह से मुझे ऐसा लगता था कि नेगेटिव
0: कर
1: रोल विल
0: सकते
1: सूट
0: हैं।
1: मी। तो उन्होंने जब वो कहा कि मुझे आदित्य को प्रॉमिस किया है, तो मेरा फिर दिल थोड़ा सा वो हो गया,
0: फिर से टूट
1: फिर थोड़ा सा वो हो गया कि
0: गया।
1: हाँ मतलब कहना तो नहीं चाहिए लेकिन हाँ आपका कोई होना चाहिए,
0: जी
1: देर हैज टू बी सम सपोर्ट। जैसे आप तो जानती हैं, इतिहास भी जानती हैं कि बहुत सारे लोगों को लॉन्च उनके घर वालों ने ही किया हुआ है, मैं किसी
0: जी
1: का नाम नहीं ले रहा,
0: जी
1: लेकिन किया तो है ना हमारा,
0: जी
1: मेरा ऐसा कोई था नहीं, कुछ लोगों को लेकिन भाग्य के अंतर्गत

0: मिला भी है, जो इनका कोई
1: जी
0: गॉडफादर नहीं था उनको भी मिला है।
1: जी
0: लेकिन मेरे साथ में ऐसा हुआ, फिर उसके बाद देव साहब से अक्सर मिलना होता था, मुझे कश्मीरी बुलाते थे, ए कश्मीरी, जो कि म्यूजिक से भी मेरा रिलेशन था, तो इसलिए मैं म्यूजिक के प्रोग्राम भी करता रहता था, मैं
1: जी
0: शोज भी करता रहता था,
1: अच्छा
0: जैसा आपने अंदाजा लगा एक्टिंग। और किशोर कुमार साहब हमारे वन ऑफ द गुरुज हैं,
1: जी
0: तो इसलिए जैसे वो एक्टिंग और सिंगिंग दोनों
1: सिंगिंग
0: करते
1: दोनों
0: थे, तो ऐसा ही हमारा भी
1: करते
0: कुछ तो ऐसा ही था।
1: थे जी
0: लेकिन अब अच्छी अच्छी फिल्में कुछ, मैंने वीर ज़ारा, मुझे
1: जी
0: यश चोपड़ा जी के साथ में काम करने का मौका मिला, और उस कव्वाली में उन्होंने अपने किसी मित्र से कहा था कि मुझे एक ऐसा एक्टर चाहिए जो जिसको म्यूजिक का नॉलेज हो, तो मेरे साथ में यश जी के साथ मेरी एक मीटिंग फिक्स की गई फिल्म सिटी में। तो वहाँ उन्होंने मुझे, आई वॉज कॉल्ड 10 बजे, मुझे उन्होंने फिल्म सिटी बुलाया था, तो मैं वहाँ ड्राइव करके आया, तो वो भी आए मेरे साथ में। तो यश जी से उन्होंने मुलाकात करवाई, तो उन्होंने मुझे पूछा, अच्छा कश्मीर के हो, अच्छा, म्यूजिक आता है वो ये, तो फिर उन्होंने मुझे वो उस वीर ज़ारा में उन्होंने मुझे कास्ट किया,
1: जी
0: उस कव्वाली है बहुत अच्छी, अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की गाई हुई, आया तेरे दर पे दीवाना, ये सुना
1: वो
0: सकती हैं
1: थोड़ा
0: आप
1: सा आप
0: श्रोताओं
1: गा
0: के
1: के, नहीं आप थोड़ा, वही मैं कहने आई थी, आप थोड़ा गा के सुना दें तो आगे वो कव्वाली हम हमारे श्रोताओं
0: लिए
1: तक पहुंचा देंगे।
0: जो बन

तो इस पे मैंने एक्टिंग की है, तो मुझे खुशी तो इस बात की थी कि यश चोपड़ा जी मेरा नाम लेके मुझे एड्रेस करते थे, रैना चलो अब तुम्हारे शॉर्ट्स होने हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। सरोज जी वहां से कोरियोग्राफ कर रही थी, हाँ पंकज जी रैना जी चलिए अब आपकी शॉर्ट्स लेने हैं, तो इस तरह से नहीं ये लोग जब मुझे एड्रेस करते थे आई यूज टू फील रियली गुड अबाउट इट। एंड तो वो कवाली हुई उसमें, उस पर मैंने एक्टिंग की, उसके बाद कई और फिल्में, अभी मेरी

0: अभी है ना, हमारे बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं और आपके जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जो अब तक हम पढ़ चुके हैं, गढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। अब वक्त आ गया है कि हमारे सामने जो इतना बड़ा आर्टिस्ट बैठा है, जिसके पास में संगीत का भी ज्ञान है, आवाज का भी ज्ञान है, जिनके पास दिग्दर्शन का भी ज्ञान है तो निर्देशन का भी ज्ञान है,
1: जी
0: जिनको पता है कि किस तरह से किस अभिनय को करना है, जो नेगेटिव किरदार भी कर सकते हैं, जो मस्ती भरे माहौल में भी जी सकते हैं, इस सब का निचोड़ एक कुछ ऐसा हमारे श्रोताओं के लिए मिल जाए आपकी बातों से, आपके जज्बात से, ताकि हमारे जो श्रोता हैं जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं वो आपकी उन बातों का सहारा लेकर आगे बढ़ सकें। तो एक कोई संदेश, एक कोई बात, एक कोई सीख हमारे आगामी पीढ़ी के लिए, या जो श्रोता भी इस राह में संघर्षरत हैं वो भी ये काम कर सकें।
1: मैंने जैसे पहले भी आपसे जिक्र किया कि ये जो कला क्षेत्र है, इसमें ये तो एक तपस्या की तरह है।
0: जी
1: कला क्षेत्र में जब तक इंसान तपस्या भाव से इस फील्ड में नहीं आता, तो वो भाग्य के द्वारा हो भी सकता है, बन भी सकता है, लेकिन है तो तपस्या।
0: जी
1: आपकी चीज़ों का सराहा तभी जाएगा जब आप उस तरह का एक्ट करेंगे, उस तरह का गाएंगे, उस तरह का संगीत निर्देशन करेंगे।
0: जी
1: और उन सब चीज़ों के लिए तो स्टडी और दीवानगी की जरूरत तो होती है। आपको
0: बिल्कुल
1: मीडियम का कितना ज्ञान है, उसमें आपकी कितनी दीवानगी है,
0: जी
1: आपने अपने आप को उसमें कितना
0: ढाला है
1: एनग्रॉस किया हुआ है, उसमें
0: जी।
1: ढाला है। तो वो सब तो नए लोगों के लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए तो ऐसा ही है कि वो दीवानगी की तरह से ही करेंगे, तब जाके होता है, तब
0: जी
1: जाके आपको सराहा जाएगा। अदरवाइज
0: अगर वो
1: भाग
0: हारते हैं, टूटते हैं तो क्या करें?
1: नहीं, हारना टूटना नहीं होता। देखिए, अगर आप सोच लेते हैं कि दीवानगी मतलब एक चीज ये करनी है तो करनी ही है,
0: जी
1: अब उसका निष्कर्ष कुछ भी निकले, उसको जैसे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये एक श्लोक है,
0: जी
1: इसका एक्चुअल अर्थ ये है कि मेरा काम है कर्म करना, फल की इच्छा भी नहीं करना।
0: जी
1: तो हमको कर्म लगातार करने हैं, बिकॉज ये एक इट्स नॉट ए क्वेश्चन ऑफ वन जन्म।
0: जी
1: मुझे लगता है जन्म जन्मों की तपस्या के बाद अमिताभ बच्चन बनते हैं,
0: जी
1: जन्मों जन्मों की तपस्या के बाद इतने बड़े बड़े महान कलाकार बलराज सहनी जैसे होते हैं,
0: जी
1: जो मतलब अपनी छाप छोड़ जाते हैं सदियों तक।
0: जी
1: तो वो एक इट्स नॉट, अगर 13 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर को इंडियन कैप मिलेगी, तो वो जन्मों जन्मों के कर्म होते हैं।
0: जी
1: तो ऐसा कौन सा चीज उन्होंने सीख लिया कि वो सचिन तेंदुलकर बन गए? लता जी 11 साल की उम्र में उनको
0: जी
1: सक्सेस मतलब गाने का मौका
0: बिल्कुल
1: मिला और वो आगे बढ़ी और सारा जीवन 94-95 की एज तक गाती रही।
0: जी
1: मुझे लगता है कि इट्स ए कर्मा, इट
0: जी
1: इज द डेडिकेशन विच मैटर्स अ लॉट। आप अपने आप को निखार सकते हैं, कुछ चीजें बना सकते हैं, कुछ चीजों की त्रुटियों को खत्म कर सकते हैं,
0: जी
1: बट बेसिकली वो डेडिकेशन और वो जुनून जब तक नहीं होगा आप में, तो और आपने उसके लिए कुछ वैसा सेक्रीफाइस नहीं किया होगा ना, तो
0: जी
1: होता नहीं है। तो इट हैज टू बी डन विद द डेडिकेशन, टोटल डेडिकेशन।
0: बहुत मेहनत करनी
1: टूटना
0: पड़ेगी,
1: नहीं होता है।
0: टूटना नहीं है। जी तो जब आपका इतना अच्छा विचार हमारे श्रोताओं तक जा रहा है, तो एक कोई बात, एक कोई बड़ा सुंदर सा किस्सा और एक गीत, इतनी अपेक्षा तो हम आपसे कर सकते हैं।
1: चलिए मैं आपको बताऊं, मैं बचपन से, जैसे मैंने बताया कि मेरे घर का माहौल बिल्कुल कल्चरल हब जैसा था,
0: जी
1: पेंटिंग भी थी, म्यूजिक भी था, शायरी भी थी, ये सब था।
0: जी
1: मैं जब रफ़ी साहब और किशोर कुमार और मुकेश जी, जो तीन बड़े जो
0: दिग्गज
1: स्टॉलवार्ट्स हैं,
0: खिलाड़ी
1: मतलब
0: जी
1: इतने
0: बिल्कुल
1: बड़े दिग्गज
0: जी
1: जो मेल सिंगर्स हुए हैं,
0: जी
1: उन तीनों का मेरे जीवन पे बहुत असर रहा है, बिकॉज आई हैव बीन फॉलोइंग देयर म्यूजिक। और मैंने उनकी सिंगिंग की स्टाइल्स और अदायगी पे, जो लटके खटके झटके सब सबको मैंने शुरू से मैंने शोध किया, उस पर रिसर्च किया कि उनका क्या क्या कैसे कैसा स्टाइल है। फिर इस दौरान एक बीच में, ये तो गुरु हैं ही हमारे तीनों, और मेहदी हसन साहब भी बहुत अच्छा है,
0: जी
1: उनका भी वो भी हमारे वन ऑफ द गुरुज हैं। एक और शख्स बीच में आए जिनका नाम था भूपेंद्र। तो
0: जी
1: भूपेंद्र पहले वो भी आकाशवाणी में कार्यरत थे,
0: अच्छा जी
1: दिल्ली रेडियो में काम करते थे ये, और
0: जी
1: 12 स्ट्रिंग एकॉस्टिक गिटार बजाते थे। और
0: अच्छा
1: मदन मोहन जी एक बार दिल्ली गए थे, तो उन्होंने उनसे मुलाकात करके उन्होंने बम्बई बुला लिया भूपेंद्र को।
0: अच्छा
1: तो चेतन आनंद साहब की फिल्म थी हकीकत, उसमें भूपेंद्र को उन्होंने एज ए म्यूजिशियन उन्होंने गाया भी है,
0: जी
1: वो हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, उसमें पहला
0: हाँ
1: अंतरा भूपेंद्र ने गाया है।
0: अच्छा
1: मैं बड़ा प्रभावित हुआ था भूपेंद्र की आवाज से, बहुत ही अलग तरह की आवाज थी,
0: जी
1: बहुत ही अलग तरह का उनका एक टोनल क्वालिटी थी,
0: जी
1: और एकदम बेस वाली और कमाल की आवाज थी। तो
0: जी
1: मैं पता नहीं क्यों शुरू से, जब छोटा ही था, तो बहुत प्रभावित हुआ उनकी आवाज से, उनके गीत गाता था उन दिनों, दिल ढूंढता है फिर वही।

0: फुर्सत के रात
1: क्या
0: दिन,
1: बात है
0: मौसम फिल्म का गाना
1: जी।
0: उनका आया, गरौंधा का एक अकेला इस शहर में, इस तरह के कई गाने उनके, भूपेंद्र जी के उन दिनों आते थे, तो मैं सब पिकअप करता था, सब सुनता था, गाता भी था। एक बार बड़ी चाहत हुई मैं बॉम्बे आया तो मैं भूपेंद्र से मिलूं,
1: जी
0: तो वो उस वक्त पाली हिल बैंड्रा में रहते थे,
1: जी
0: हाईलैंड बिल्डिंग का नाम था,
1: जी
0: तो मैं उनसे मिलने एक बार आ गया, तो मिलने आया तो मैं लिफ्ट के बाहर खड़ा हूं, तो लिफ्ट खुली तो अंदर से भूपेंद्र बाहर आ रहे हैं। तो मैंने कहा मैं तो आपसे ही मिलने आया हूं। बोले
1: जी
0: कहां से आए? मैं बोला कश्मीर से आया
1: जी
0: हूं। तो बोला चलो चलो चलो ऊपर। फिर
1: मिलने की
0: ऊपर
1: चाहत ने मिला
0: नहीं, मैं
1: दिया,
0: मिलने गया ही था उनसे, तो देखा तो वो
1: पर
0: अंदर से,
1: लिफ्ट में
0: हाँ,
1: ही मिल
0: लेकिन वो
1: गए।
0: नीचे ही मिल गए।
1: जी
0: तो
1: जी
0: फिर उनके साथ ऊपर उनके घर पे गए, तो वहां पे फिर बोला अच्छा बताओ क्या क्या है वो, ये बातें बातें हुई। फिर उन्होंने गिटार उठा ली, तो साथ में हम लोग, मैं और भूपेंद्र जी, मैं उनको सुनाता रहा उनके गाने,
1: जी
0: तो बहुत खुश हुए। बाद में वो बहुत मिलते थे, अक्सर उनसे मिलना होता था। राम लक्ष्मण जी ने से भी, उनसे भी मिलना होता था। राम लक्ष्मण जी ने भी कहा मेरे पास नया भूपेंद्र आ गया है, इस तरह की बातें। तो मेरे जीवन में इस तरह के कुछ अच्छे किस्से हैं जो
1: जी
0: महान महान लोगों से मिले भी हैं।
1: जी
0: तो बॉम्बे जब आए थे शुरू शुरू में, तो हमारी कश्मीरी पंडित एसोसिएशन है यहाँ पे,
1: जी
0: तो उनका फंक्शन था, तो मुझे उन्होंने कहा कि एक गाना सुनाओ जैसे आप कह रही हैं। तो
1: हाँ
0: मैंने पहला गीत यही गाया था
1: तो
0: जो मैं दो
1: जरा
0: लाइन आपको सुना के, हा, ओ, एक अकेला इस

0: श्री पंकज रैना जी हमारे समक्ष हैं और उनके जीवन की बहुत सारी बातें हमने सुनी, संघर्ष को भी सुना और जीत को भी सुना, बहाव के साथ बहने को भी सुना और जीतने को भी सुना, और जहां नहीं जीते वहां अडिग खड़े रहने को भी सुना। ये सब सुनने के बाद जब पंकज जी हमारे सामने आए हैं, विविध भारती तक आए हैं, तो बहुत बड़ा परिवार है पंकज जी विविध भारती का।
1: जी
0: इसमें केवल उद्घोषक नहीं है, उद्घोषकों के साथ में बहुत सारे इंजीनियर्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो पीछे से परोक्ष में रहकर बहुत सारा काम करते
1: जी जी
0: हैं,
1: जी मैं
0: और
1: अंडरस्टैंड करता
0: इन
1: हूं।
0: सब के साथ बहुत सारे श्रोता हैं जिन्हें हम गिन नहीं
1: वाह
0: सकते। तो उस बड़े से परिवार की तरफ से हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप यहाँ तक आए, इतना साथ दिया, और बहुत आभार व्यक्त करते
1: मैं
0: हैं।
1: अपने हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने मुझे याद किया और मैं यहाँ चला आया, और मुझे अपनी जड़ों से, अपने रूट से, अपने कश्मीर से, अपने दिल्ली की यात्रा से और बम्बई की यात्रा से मुझे कुछ कहने का, मुझे साझा करने का मुझे मौका मिला।
0: जी
1: मैं बहुत दिल से, हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे आज इस जगह पे मुझे बुला के बहुत ही एकदम आत्मविभोर कर दिया है। मैं
0: बहुत
1: बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ।
0: धन्यवाद।
2: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डायरेक्टर, एक्टर और डबिंग डायरेक्टर पंकज रैना से विधि जैन की ये बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग काजल भदरगे का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
3: आज के मेहमान।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के उभरे केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 5 बजे प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ खुश और स्वस्थ होंगे, क्योंकि इस बारिश के मौसम में थोड़ी सी लापरवाही आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। इसलिए ऐसे मौसम में अपने और अपने परिवार का खास ध्यान दीजिए और साथ ही सुनते रहिए अपना वन ऑफ द डेली यूथ प्रोग्राम युवाणी, जो लेकर हाजिर है आपके रेडियो हम सफ़र एकता। तो फ्रेंड्स, हर बार की तरह आज भी करेंगे ढेर सारी बातें चर्चा से जुड़ी, साथ में सुनेंगे प्यारे प्यारे सॉन्ग्स भी, जिसके लिए आप जुड़े रहिए अपनी रेडियो हम सफर के साथ। दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल को शब्दों में नहीं बल्कि सिर्फ

तस्वीर में हमेशा के लिए सहेज लिया जाए तो क्या वह तस्वीर आने वाले वर्षों में वही एहसास जगा पाएगी? एक मुस्कान, माँ की ममता, बचपन की शरारत, बारिश की पहली बूंद या फिर किसी ऐसे ऐतिहासिक घटने का वह क्षण। जी हाँ, तस्वीरें सिर्फ तस्वीरें नहीं होती, वो समय को रोक लेने वाली यादें होती हैं। फ्रेंड्स, इसलिए तो आज हम हर समय अपनी तस्वीरों में कैद कर लेते हैं ताकि बीते समय में उन्हें तस्वीर को देखकर यादें याद कर सकें और जो कैद हैं तस्वीरें उनको देखकर अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर सकें। साथियों, और आज इसी बात को साबित करने के लिए हम बात करेंगे एक ऐसे दिवस की जो कला, तकनीक और यादों तीनों का एक साथ जोड़ता है। आज है विश्व फोटोग्राफी दिवस। हर वर्ष आज के दिन 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। ये दिन फोटोग्राफी की कला, उसके महत्व को सम्मान देने का अवसर है। फ्रेंड्स, फोटोग्राफी का अर्थ है केवल कैमरे में तस्वीर खींचना नहीं, ये किसी क्षण, भावना, घटना और कहानी को एक फ्रेम में सुरक्षित कर लेने की कला है। कभी एक तस्वीर हजारों शब्दों से ज़्यादा प्रभावशाली हो जाती है। एक तस्वीर हमें हंसा सकती है, भावुक कर सकती है और कभी कभी किसी बड़े सामाजिक बदलाव की शुरुआत भी बन सकती है। आज हमारे हाथों में मौजूद मोबाइल फ़ोन ने फोटोग्राफी को बहुत आसान बना दिया है। अब कैमरा केवल पेशेवर फोटोग्राफरों तक सीमित नहीं है, बच्चे, युवा, बुजुर्ग, हर कोई अपने आसपास की दुनिया को कैमरे में कैद कर सकता है। दोस्तों, फोटोग्राफी में समाज को देखने और समझने का हमारा नजरिया भी बदलता है। एक अच्छी तस्वीर केवल सुंदर दिखाई नहीं देती बल्कि वो एक कहानी कहती है। इसलिए हमें भी तस्वीर लेना चाहिए, अपनी यादों को और आने वाले समय के लिए एक तस्वीर के रूप में रखना चाहिए। तो साथियों, अब इस विषय पर बात तो बस यहीं तक। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं लेकिन किसी और विषय के साथ। फ्रेंड्स, कल्पना कीजिए, चारों तरफ तबाही है, घर उजड़ चुके हैं, अपनों से बिछड़ने का दर्द है और उसी बीच कोई अनजान व्यक्ति आपकी ओर हाथ बढ़ाकर कहता है, घबराए मत, मैं आपके साथ हूँ। उस पल वह व्यक्ति आपके लिए सिर्फ एक इंसान नहीं रहता, वह मानवता की उम्मीद बन जाता है। दोस्तों, और आप ऐसे विषय की बात करने जा रहे हैं हम, जिसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वो विषय है विश्व मानववादी दिवस। एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म और किसी की मदद से बड़ा कोई कर्म नहीं होता। हर वर्ष 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। इस दिन दुनिया भर में उन मानवीय कार्यकर्ताओं और आम लोगों को सम्मान दिया जाता है जो युद्ध, प्राकृतिक आपदा, भूखमरी, विस्थापन और अन्य संकेतों से प्रभावित लोगों की मदद के लिए अपना योगदान देते हैं। फ्रेंड्स, मानवता का अर्थ केवल किसी की आर्थिक सहायता करना नहीं, किसी भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी पिलाना, घायल की मदद करना, किसी परेशान व्यक्ति को संतावना देना या किसी अकेले व्यक्ति का साथ देना है। जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है, बाढ़, भूकंप, चक्रवात या कोई अन्य संकट, तब मानवतावादी सहायता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। साथियों, हम किसी की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं, ये हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन किसी मुश्किल समय में किसी का साथ देना हमारे हाथ में होता है। इसलिए एक मानव होने के नाते हमें मानवता का धर्म जरूर निभाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी बात इस विषय पर, जो बस यहीं तक। अब चलिए चलते हैं म्यूजिकल वर्ल्ड में और सुनते हैं एक प्यारा सा सॉन्ग।

0: वो भी ऐप से। वाह, फसा।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों, अब आज हम स्मरण कर रहे हैं महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर वक्ता और राष्ट्रवादी नेता एस सत्यमूर्ति जी को, जिनका जन्म 19 अगस्त आज के दिन 1887 में तमिलनाडु में हुआ था। तो आइए इनसे जुड़ी और भी बातें जानते हैं एक वार्ता द्वारा। वार्ता का विषय है स्वतंत्रता सेनानी एस सत्यमूर्ति। वार्ताकार है प्रियंका विश्वकर्मा।
1: मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रियंका विश्वकर्मा आज आप सभी से एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के बारे में चर्चा करने जा रही हूं, जिसका नाम इतिहास के पन्नों में छिपा हुआ है। एस सत्यमूर्ति, जिन्हें स्वतंत्रता सेनानी सत्यमूर्ति के नाम से भी जाना जाता है, इनका पूरा नाम सुंदर शास्त्री सत्यमूर्ति है। ये एक प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख सदस्य और ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता के मुखर समर्थक थे। दोस्तों, सत्यमूर्ति जी का जन्म 19 अगस्त 1887 को पुदुकोट्टई राज्य के तिरुमायम में हुआ था। इन्होंने वकील बनने से पहले मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से स्नातक किया था। इसके बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई की और वकील बन गए। सत्यमूर्ति जी ने युवा अवस्था में ही राजनीति में प्रवेश किया था और कॉलेज के चुनाव में भी भाग लिया करते थे। एस सत्यमूर्ति जी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान सेनानी, विचारक, समाजसेवी और राजनेता थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक थे और महात्मा गांधी के निकट सहयोगी माने जाते थे। सत्यनिष्ठा, सिद्धांत प्रियता और सेवा भावना से ओतप्रोत उनका व्यक्तित्व तो भारतीय राजनीति में एक आदर्श के रूप में देखा जाता है। उनका जीवन सादगी, त्याग और देशभक्ति का प्रेरणादायक उदाहरण रहा है। दोस्तों, प्रारंभ से ही वे अत्यंत प्रतिभाशाली, मेधावी और अध्ययनशील छात्र थे। उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और फिर कानून की पढ़ाई की। उनके शिक्षा में गहरी रुचि थी और वे सदैव ज्ञानार्जन के प्रति समर्पित रहे। सत्यमूर्ति जी 20वीं सदी के प्रारंभ में कांग्रेस से जुड़े और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लेना प्रारंभ किया। वे गरम दल और नरम दल के बीच एक संतुलनकारी विचारधारा के समर्थक थे। उन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलकर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई और असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। सत्यनारायण मूर्ति जी कई बार जेल भी गए और यातनाएं सही, लेकिन कभी अपने सिद्धांत से विचलित नहीं हुए। दोस्तों, वे गांधी जी के सिद्धांतों के प्रबल समर्थक थे, परंतु जहां आवश्यक होता था वे अपनी स्वतंत्र सोच भी व्यक्त करते थे। वे वाक्यपटु वक्ता और संवेदनशील विचारक थे। उनके भाषणों में तर्क, संवेदना और प्रेरणा का सुंदर मिश्रण होता था। दोस्तों, सत्यमूर्ति जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख नेता थे। उन्होंने कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशनों में भाग लिया और संगठन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1937 में जब भारत में प्रांतीय स्वशासन की शुरुआत हुई, तब मद्रास प्रेसिडेंसी में बनी सरकार में वे एक मंत्री बने और सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD के प्रभारी थे। उनके कार्यकाल में चेन्नई में कई विकास कार्य हुए, जैसे बिजली आपूर्ति का विस्तार, जल आपूर्ति योजनाएं, पुलों का निर्माण और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार। उनका प्रशासनिक कौशल अनुकरणीय था और उन्होंने दिखाया कि एक ईमानदार और राष्ट्रनिष्ठ नेता किस प्रकार जनहित में कार्य कर सकता है। अगर सत्यमूर्ति जी के आदर्शों की बात करें तो सत्यमूर्ति जी का व्यक्तित्व तेजस्वी, निडर, सरल और समर्पित था। वे सिद्धांतों के प्रति अडीग रहते थे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, उनमें नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी। वे न केवल एक राजनेता थे बल्कि एक शिक्षक, समाज सुधारक और प्रेरणा स्रोत भी थे। वे तमिल और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के प्रखर वक्ता थे। उनके भाषण लोगों में जोश और चेतना भर देते थे। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता, जातिगत समानता और सामाजिक न्याय का समर्थन किया। उनका जीवन उच्च मानवीय मूल्यों पर आधारित था। उन्होंने सत्ता को सेवा का माध्यम माना, न कि व्यक्तिगत लाभ का साधन। दोस्तों, सत्यमूर्ति जी का निधन 28 मार्च 1943 को हुआ। वे आज़ादी से कुछ वर्ष पहले ही इस दुनिया को छोड़ गए, लेकिन उनका योगदान और आदर्श आने वाली पीढ़ियों के लिए अमूल्य धरोहर बन गए। मद्रास यानी कि आज का चेन्नई के सत्यमूर्ति भवन और कई संस्थाएं उनके नाम पर आज भी कार्य कर रही हैं। दोस्तों, इन्हें धेरार की उपाधि भी दी गई थी, जिसका अर्थ है बहादुर। सत्यमूर्ति जी ने सिनेमा को जन प्रतिनिधित्व और राष्ट्रीय निर्माण के एक सशक्त माध्यम के रूप में पहचाना। सत्यमूर्ति जी ने सिर्फ इतना ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने भारतीय फिल्म उद्योग को 100% स्वदेशी बनाने की वकालत की। सत्यमूर्ति जी का जीवन देशभक्ति, सिद्धांतों और जनसेवा का प्रतीक था। वे राजनीति में नैतिक मूल्यों के प्रति माने जाते थे। आज जब राजनीति में मूल्यहीनता और स्वार्थ की भावना बढ़ रही है, तब सत्यमूर्ति जैसे नेताओं का जीवन हमें सच्ची राजनीति और जनसेवा का मार्ग दिखाता है। वे भारत के ऐसे सपूत थे जिन्होंने अपने जीवन को राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। वास्तव में हमें अपने जीवन में उनसे सीख लेने की जरूरत है, ताकि हम भी देश हित में अपना योगदान दे सकें। धन्यवाद।
0: तो दोस्तों, हमने वार्ता द्वारा एस सत्यमूर्ति जी के बारे में बहुत सारी बातें जानी। वार्ता का विषय था स्वतंत्रता सेनानी एस सत्यमूर्ति और वार्ताकार थी प्रियंका विश्वकर्मा। फ्रेंड्स, अब इन पर बातें बस यहीं तक। अब चलिए चलते हैं अपनी चर्चा की ओर और चर्चा का विषय बदलते हैं। दोस्तों, अब चर्चा हिंदी साहित्य के महान निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचन और विद्वान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, जिनका जन्म 19 अगस्त आज के दिन 1907 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। संस्कृत, ज्योतिष और भारतीय संस्कृति के अध्ययन में उनकी गहरी रुचि थी। बाद में उन्होंने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अपनी ऐसी पहचान बनाई जिसे आज भी पूरे समाज के साथ याद किया जाता है। दोस्तों, द्विवेदी जी की लेखनी बहुत आयामी थी। उन्होंने निबंध, उपन्यास, आलोचना और इतिहास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी प्रमुख रचनाओं में बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, अनामदान का पोथा और प्रसिद्ध निबंध संग्रह अशोक के फूल शामिल हैं। दोस्तों, द्विवेदी जी की सबसे बड़ी विशेषता में से एक थी भारतीय परंपरा को आधुनिक दृष्टि से देखना। वो साहित्य को केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं मानते थे। उनके हिंदी साहित्य का उद्देश्य मनुष्य को अधिक संवेदनशील, विचारशील और मानवीय बनाना भी था। आज के युवाओं के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन ये संदेश देता है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ इन पर बातें बस यहीं तक। अब चलिए चलते हैं म्यूजिकल वर्ल्ड में और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों, जिस समय संस्कृत के विद्वानों तक ही धार्मिक और साहित्यिक ज्ञान सीमित था, तब एक कवि ने लोक भाषा में ऐसी रचना की जिसने गांव गांव, घर घर और जन जन के हृदय में अपनी जगह बना ली। एक ऐसी रचना जिसमें आदर्श पुत्र भी थे, आदर्श भाई भी थे, आदर्श राजा भी थे, आदर्श मानव भी। वह अमर रचना है रामचरितमानस, जिसके रचयिता है गोस्वामी तुलसीदास जी। दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास के जन्म वर्ष को लेकर विद्वानों में मतभेद मिलते हैं। सामान्यतः उनका जन्म 16वीं शताब्दी में माना जाता है। उनका जीवन राम भक्ति से गहराई से जुड़ा रहा। दोस्तों, तुलसीदास जी की सबसे प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस है। यह अवधि भाषा में चरित्र महाकाव्य है, जिसमें भगवान श्री राम जी के जीवन, आदर्श और मर्यादा का अत्यंत सुंदर चित्रण मिलता है। रामचरितमानस केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि भारतीय समाज, संस्कृति, नैतिक मूल्य और लोक जीवन को समझने का भी महत्वपूर्ण माध्यम है। इसमें बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक का 7 कांड है। तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से भक्ति को जनसाधारण के लिए सहज और सरल बनाया। दोस्तों, उनकी अन्य प्रमुख रचनाएं विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, हनुमान चालीसा विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। आज भी हनुमान चालीसा करोड़ लोगों की आस्था और श्रद्धा का हिस्सा है। दोस्तों, तुलसीदास जी का संदेश, तुलसीदास जी के साहित्य में भक्ति के साथ साथ प्रेम, करुणा, सेवा, त्याग, मर्यादा और सदाचार का संदेश मिलता है। आज के समय में भी तुलसीदास जी की रचनाएं हमें ये सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाई परिस्थितियां आए, हमें सत्य, धैर्य और सदाचार का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ हमारे इन पर बातें बस यहीं तक। अब चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं अपने देश के 9वें राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी के, जिनकी आज जयंती मनाई जा रही है। दोस्तों, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी का जन्म 19 अगस्त 1918 को भोपाल में हुआ था। वो बचपन से ही अत्यंत मेधावी थे। उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करी और कानून तथा राजनीति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान लिया। फ्रेंड्स, भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में डॉक्टर शर्मा ने सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने अंग्रेजी शासन का विरोध किया और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल भी गए। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। वो भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री रहे और बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में शामिल हो गए। साथ ही डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने भारत के 9वें राष्ट्रपति के रूप में 1992 से लेकर 1997 तक देश की सेवा की। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उन्होंने संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता दिखाई। उनका व्यक्तित्व हमें बताता है कि राजनीति केवल सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि जनसेवा और संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने का अवसर भी है।

दोस्तों, उनका जीवन शिक्षा के महत्व का भी उदाहरण है। उन्होंने ये साबित किया है कि ज्ञान, अनुशासन और निरंतर परिश्रम के बल पर व्यक्ति समाज और राष्ट्र में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। फ्रेंड्स, आज के युवाओं के लिए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी का जीवन एक प्रेरणा है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि शिक्षा हमें ज्ञान देती है, ज्ञान हमें विवेक देता है और विवेक हमें सही दिशा में राष्ट्र सेवा करने की शक्ति देता है। इसलिए युवाओं को अपने अधिकारों के साथ साथ अपने संवैधानिक कर्तव्य को भी समझना चाहिए। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारे इन पर बातें बस यहीं तक। दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज के कार्यक्रम यहीं तक। अब अपना ख्याल रखिए और अपनी रेडियो फ्रेंड एकता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी हमारी युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी। एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के उभर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है बच्चों का कार्यक्रम बाल संघ।

बच्चों जय हिंद। बच्चों शुरू हुआ आपका अपना कार्यक्रम बाल संग। मैं आपकी बबीता दीदी सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ एक कविता से। हर बार तो आप लोग सुनाते हैं तो आज दीदी सुना देती हैं। सच की राह पर कदम बढ़ाएं, सच की राह पर कदम बढ़ाएं, झूठ से हम दूर हो जाएं। बड़ों का हम मान करें, छोटों से भी प्यार करें। मेहनत को अपना साथी बनाएं, मेहनत को अपना साथी बनाएं, ईमानदारी से आगे जाएं। अच्छे कर्मों का फल पाएं, सदाचार को जीवन में लाएं, सदाचार को जीवन में लाएं, अच्छे बच्चे कहलाएं। सच्चाई सेवा और सम्मान बने हमारी पहचान। बच्चों पहचान कैसे बनेगी? जब आप अच्छे अच्छे काम करेंगे, सबका कहना मानेंगे, सच बोलेंगे, तभी आप अच्छे बच्चे कहलाएंगे। और जब कोई कहता है कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, कितनी खुशी होती है ना, मन ही मन कितने लड्डू फूट रहे होते हैं कि हमारी तो तारीफ हो गई। तो तारीफ कब होगी ना, जब आप अच्छे अच्छे काम करेंगे, कहना मानेंगे, सच बोलेंगे, बस तो आप अच्छे बच्चे कहला लेंगे। बच्चों सदाचार का मतलब ही है अच्छे आचरण और अच्छे व्यवहार। बस इसको आप अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि हम सदाचार कैसे सीखें? सीखना तो चाह रहे हैं, लेकिन हम कैसे सीखें? सीखने के लिए बच्चों कोई किताबें नहीं पढ़नी है कि मैं दे रही हूँ आप लोगों को कि ये किताब पढ़ लीजिए, वो किताब पढ़ लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। कठिन नियम की भी जरूरत नहीं है। इसकी शुरुआत तो आप डेली के छोटे छोटे कामों से कर सकते हैं। वो काम क्या है? जैसे सुबह उठकर सबको घर में जो भी है गुड मॉर्निंग कर लिया, नमस्ते बोल दिया, बड़ों के पैर छू लिए। कितना अच्छा लगेगा कि हम रात में सोए सुबह सबसे मिल रहे हैं तो हमने गुड मॉर्निंग किया। अपने कमरे को ठीक ढंग से रख दिया, नहीं कि सो के उठ के बस आ गए बाहर और सब चादर ऐसी खराब है, तकिया जगह पे नहीं है, सब ठीक ढंग से कर दिया। पढ़ाई करने के बाद किताबें जगह पर रख दी। बहुत भारी काम नहीं हो गया कि हमने तो अब पढ़ाई करी है, अब मम्मी जो है वो सब जाने किताबें कॉपियां वही जगह पर रखें। क्यों? आपने पढ़ाई करी है, आप जगह पे उसको रख दीजिए। स्कूल में टीचर की बात ध्यान से सुनिए, नहीं तो पीछे बैठ जाते हैं आप लोग, बातें करते रहते हैं, टीचर जो बोल रही है बोल रही है, उनकी बात को ध्यान से सुनना है। घर में भी बड़ों का कहना मानना है। दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहना है। एक और बात बच्चों, किसी का मजाक नहीं बनाना है। गलती करी हो बिना डरे अपनी गलती मानिए, नहीं तो आप लोग मानते ही नहीं है, नहीं नहीं हमने तो की नहीं है, हमसे तो हुई नहीं है गलती। अरे हो गई है गलती, कोई बात नहीं, उसको मानिए। बच्चों कभी कभी ऐसी सिचुएशन, मतलब कि वो परिस्थिति आ जाती है जब सच बोलना बड़ा मुश्किल लगता होगा। सोचते होंगे झूठ बोल देते हैं अभी तो काम चल जाएगा हमारा, हम डांट से बच जाएंगे। लेकिन याद रखिए, सच बोलने वाला भले ही कुछ समय के लिए परेशानी में आए, लेकिन फिर 100 झूठ नहीं बोलने पड़ते हैं, एक सच बता के काम हो जाता है। हाँ हो सकता है आपने गलती की हो तो डांट भी पड़ जाए, स्कूल में की हो तो मतलब पनिशमेंट मिल जाए, क्लास से बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन कोई बात नहीं, जब गलती की है तो फिर पनिशमेंट मिलेगी ही, लेकिन सच बोलना चाहिए। मान लीजिए अच्छा आपको कभी क्लास में कोई कॉपी पेंसिल मिल जाए, मिल जाती होगी, किसी की कॉपी गिर गई, किसी की पेंसिल रबड़ गिर गया, या कोई भी सामान मिले, तो जिसका है या तो आपको पता है कि हाँ अच्छा ये तो इसका है, आप उसको वापस कर दीजिए, या नहीं समझ में आ रहा है किसका है, आप टीचर को दे दीजिए। यही सब सदाचार है। इसी तरह एग्जाम्स में नकल करने के बजाय अपनी मेहनत पर भरोसा करिए।
जितना आता है उतना लिख के आइए, नकल करने से कुछ नहीं होगा बच्चों। नकल करने की तो सोचिए ही नहीं, हर विषय को पढ़िए ना आप। बल्कि जिस विषय में आप कमजोर हैं, आप लोग सोचते हैं अरे छोड़ो ये तो मेरे से हो नहीं रहा, इसको छोड़ दो, लाओ हम दूसरे सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं। बल्कि जिसमें आप वीक हैं, उस विषय को तो रोज पढ़िए, उसको ज्यादा देर पढ़िए। किसी सब्जेक्ट से डरे नहीं, एक तो डरने की जब बात आई तो आप समझ गए होंगे मैं किस विषय की बात कर रही हूँ। जैसे गणित विषय, साइंस, इससे आप लोग डरने लग जाते हैं, हिंदी इंग्लिश और ये सब पढ़ने बैठ जाते हैं। समझ के करें तो ये भी बहुत आसान है। चलिए, जब गणित विषय की बात हो रही है तो गणित विषय को और आसान बनाते

0: करते हैं ये भेंट वार्ता सुन के। विषय है गिनती से लेकर बड़े सवालों तक गणित की यात्रा, और भेंट वार्ताकार हैं श्री सरफराज आलम जी, जो पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय चोपन में शिक्षक हैं, और इनसे बातचीत कर रही हैं बबीता बत्रा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जिसमें कई बच्चे बहुत डरते हैं और कई बच्चे इस विषय से दोस्ती कर लेते हैं। जब भी कठिन विषय की बात आए या डरने की बात आए तो सबसे पहले गणित विषय सामने आता है। तो आज गणित विषय को आसान बनाएंगे, डर भगाएंगे। इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय चोपन के शिक्षक श्री सरफराज आलम सर जी। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मैम।
0: बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम 1, 2, 3 गिनना कैसे सीखते हैं और फिर वही गिनती आगे चलकर बड़े बड़े सवालों में कैसे बदल जाती है? इन्हीं मजेदार सवालों के जवाब जानने के लिए आज हम लेकर आए हैं एक खास बातचीत, गिनती से लेकर बड़े सवालों तक गणित की यात्रा। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि गणित की शुरुआत गिनती से कैसे होती है?
1: जी मैम, देखिए यह सवाल बहुत अच्छा है लेकिन इसका जवाब उतना ही गहरा है। गणित की पूरी इमारत जिस नींव पर खड़ी होती है वह है गिनती। अब सवाल यह है कि बच्चा गिनती सीखता कैसे है?
0: जी,
1: शुरुआत में जब हम किसी छोटे बच्चे को 1, 2, 3, 4 गिनते हुए सुनते हैं तो हमें लगता है कि उसे गिनती आ गई है।
0: जी,
1: लेकिन असल में वह उस समय सिर्फ एक कविता या एक गाने की तरह इन शब्दों को दोहरा रहा होता है।
0: हाँ।
1: उसे यह नहीं पता होता है कि 3 कहने का मतलब क्या है या 3 और 4 में फर्क क्या है।
0: हाँ।
1: इसके बाद अगला चरण आता है जिसमें हम कहते हैं कि 1 से 1 मेल बिठाना, यानी जब बच्चा किसी वस्तु को छूकर या उसकी तरफ इशारा करके गिनता है।
0: जी।
1: जैसे 1 चॉकलेट को छूकर 1 बोलना, दूसरे को छूकर 2 बोलना।
0: जी।
1: तब धीरे धीरे उसके दिमाग में यह बात बैठनी शुरू होती है कि हर वस्तु के लिए एक संख्या आती है।
0: जी।
1: और जब यह अभ्यास लंबे समय तक चलता है तब कहीं जाकर तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है जिसे हम संख्या बोध कहते हैं।
0: जी, जी।
1: यानी बच्चा यह समझने लगता है कि 5 का मतलब हमेशा 5 चीजों की मात्रा ही होता है।
0: हाँ।
1: चाहे वह 5 गेंदे हो या 5 उंगलियां।
0: हाँ।
1: यही वह पल होता है जब हम कह सकते हैं कि बच्चे ने सच में गिनती सीखना सीख ली, न कि सिर्फ रटा है।
0: मतलब केवल रटा नहीं है, सीख लिया।
1: जी।
0: और जब बच्चे गिनती सीख लिए उसके बाद बच्चों को अगला कदम क्या उठाना चाहिए?
1: बिल्कुल सही सवाल है मैम, क्योंकि बहुत से माता पिता यहीं पर आकर उलझ जाते हैं। उन्हें लगता है कि बच्चा 1 से 20 तक गिन लेता है तो अब सीधे जोड़ घटाव पर चले जाओ। लेकिन असल में गिनती और गणित के बीच कई जरूरी पड़ाव होते हैं जिन्हें छोड़ना नहीं चाहिए।
0: जी।
1: सबसे पहला कदम है संख्याओं को पहचानना और उन्हें लिखना। यानी बच्चा जब 5 बोलना जानता है तो अब उसे यह भी सिखाना जरूरी है कि अंक 5 कैसा दिखता है और वह उसे खुद अपने हाथ से लिख भी सके।
0: जी, जी।
1: इसमें थोड़ा वक्त लगता है इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए।
0: जी, मतलब लिखना भी तो आना चाहिए।
1: बिल्कुल
0: ना?
1: बिल्कुल मैम। दूसरा कदम है छोटी और बड़ी संख्या की तुलना करना सिखाना। जैसे 2 समूह दिखाकर पूछना कि किसमें ज्यादा वस्तुएं हैं और किसमें कम।
0: हाँ।
1: यह बच्चे के दिमाग में बड़ा छोटा ज्यादा कम जैसी अवधारणाओं को मजबूत करता है।
0: जी।
1: जो आगे चलकर गणित के हर हिस्से में काम आता है।
0: बिल्कुल।
1: तीसरा कदम है आगे और पीछे दोनों तरफ से गिनना सिखाना। ज्यादातर बच्चे आगे तो आसानी से गिन लेते हैं लेकिन 10 से 1 उल्टा गिनना उनके लिए चुनौती होती है।
0: वो मुश्किल हो जाता है।
1: जी जी। यह अभ्यास उनके दिमाग में संख्याओं के क्रम और उनके आपसी संबंध को और पक्का करता है।
0: जी।
1: और हाँ, एक बात जो मैं जरूर जोड़ना चाहूंगा वह यह कि यह सारा अभ्यास किताब और कॉपी में बैठाकर कराने की बजाय खेल खेल में, ब्लॉक्स में, माचिस की तीलियों से या घर की रोजमर्रा की चीजों से कराया जाए तो बच्चा इसे बोझ की तरह नहीं बल्कि मजे की तरह सीखता।
0: हाँ, उसको तो खेल खेल में वो सीख जाएगा।
1: बिल्कुल,
0: फिर अगर हम माचिस की तीलियां सामने रख दें, ब्लॉक्स रख दें, ब्लॉक्स में बच्चों को वैसे बहुत इंटरेस्ट आता है तो उससे बच्चे जल्दी सीख जाएंगे।
1: जी मैम।
0: सर, एक सवाल ये है कि ये जोड़ घटाव गुणा भाग इसकी शुरुआत बच्चों को कैसे समझाई जाए?
1: देखिए, यह वह जगह है जहां सबसे ज्यादा बच्चे गणित से डरना शुरू करते हैं और इसकी वजह यह होती है कि हम इन्हें सीधे अंकों और चिन्हों से सिखाना शुरू कर देते हैं। जैसे सीधे ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया जाए 2+3=5 और बच्चे को याद करने को कह दिया। यह तरीका बच्चे को कंसेप्ट नहीं समझाता, बस रटा देता है। इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि हमेशा एक तय क्रम अपनाया जाए। पहले असली वस्तुएं, फिर तस्वीरें और चित्र, और सबसे आखिर में अंक, यानी सबसे पहले असली चीजों से समझाया जाए। जोड़ को समझने के लिए कहा जा सकता है कि तुम्हारे पास दो चॉकलेट है, मैंने तुम्हें तीन और दे दी।

0: बताओ कुल कितनी हो गई।
1: हाँ।
0: तो और बच्चा खुद अपनी उंगलियों से या असली चॉकलेट को साथ मिलाकर गिनने दिया जाए।
1: हाँ।
0: जब बच्चा खुद अपने हाथों से यह क्रिया करता है तब उसे जोड़ का असली मतलब समझ आता है,
1: तब वो प्लस सीख जाएगा।
0: जी, घटाव के लिए इसी तरह कहा जा सकता है कि 5 सेब रखे हैं, इसमें से 2 सेब तुमने खा लिए, अब बताओ कितने बचे, और सामने से 2 सेब हटाकर दिखाया जाए। वस्तु को आंखों के सामने से हटते देखना घटाव के कॉन्सेप्ट को एकदम साफ कर देता है।
1: बहुत आसान से समझ जाएंगे ना,
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि भाई हटा दिया गया, अब बताना है कितना बचा,
0: जी,
1: है,
0: जी,
1: तो वो माइनस हो गया।
0: गुणा को समझाने का सबसे आसान तरीका है इसे बार बार जोड़ने के रूप में पेश करना। जैसे कहा जाए 3 प्लेटें हैं और हर एक में 2-2 बिस्किट रखे हुए हैं, तो बताओ कुल कितने बिस्किट हुए, और बच्चे को खुद गिनने दिया जाए 2, 4, 6। इस तरह वह खुद ही समझ जाता है कि 3×2 का मतलब 3 बार 2 को जोड़ना ही है।
1: जी जी।
0: और भाग को सबसे अच्छी तरह समझाया जा सकता है बराबर बांटने के रूप में। जैसे कहा जाए 10 टॉफियां हैं और 5 दोस्त हैं, अगर आपको बराबर बराबर बांटी जाए तो हर एक को कितनी मिलेंगी, और बच्चे को खुद अपने हाथों से टॉफियां बांटने दी जाए एक एक करके बारी बारी से। यह क्रिया उसके दिमाग में भाग का कॉन्सेप्ट को मजबूती से बैठा देता है।
1: जी। और सरफराज सर, अक्सर बच्चों को यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी होती है, वो परेशानी है पहाड़े याद करना। कुछ आसान तरीके हैं जिससे बच्चे पहाड़े याद कर ले?
0: जी मैम, यह सचमुच हर घर की कहानी है। शाम होते ही बच्चा किताब लेकर बैठता है, माँ या पापा पहाड़ा सुनने बैठ जाते हैं।
1: हाँ।
0: और आधे घंटे की मशक्कत के बाद फिर अगले दिन बच्चा भूल जाता है। तो इसका हल क्या है, यहाँ मैं कुछ आसान तरीकों को समझाता हूँ। एक तो तरीका यह है कि पहाड़ों को गाने और लय में बदल देना। जब कोई चीज धुन में गाई जाती है तो हमारा दिमाग उसे बहुत आसानी से और लंबे समय तक याद रखता है।
1: जी।
0: इसलिए आपने देखा होगा कि जो बच्चे पहाड़े गाकर याद करते हैं वे उसे सालों तक नहीं भूलते। और एक और बहुत जरूरी तरीका है थोड़ा थोड़ा रोज अभ्यास कराना। एक ही दिन में पूरा पहाड़ा रटने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए।
1: अच्छा।
0: इसकी बजाय रोज 5-10 मिनट धीरे धीरे एक पहाड़े पर काम किया जाए तो वह पक्का याद हो जाता है और लंबे समय तक टिकता भी है।
1: अच्छा।
0: एक और तरीका है खेल और फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल करना। आजकल कई तरह के मोबाइल ऐप और खेल उपलब्ध हैं, इसमें बच्चा प्रश्न उत्तर के खेल की तरह पहाड़े का अभ्यास करता है। जब यह अभ्यास खेल की तरह लगता है तो बच्चे का दबाव कम हो जाता है और सीखना आसान हो जाता है।
1: जी।
0: जब बच्चे को यह समझ आ जाता है कि पहाड़ा सिर्फ किताब की चीज नहीं बल्कि रोजमर्रा के हिसाब किताब के काम आने वाली चीज है, तो उसकी दिलचस्पी अपने आप बढ़ जाती
1: है। अपने आप बढ़ेगी।
0: जी।
1: सरफराज सर, अब मेरा प्रश्न है उन बच्चों के लिए जिन्हें गणित से डर लगता है, उन्हें कैसे समझाया जाए कि ये बहुत आसान सब्जेक्ट है?
0: जी मैम, देखिए यह सवाल बहुत ही संवेदनशील है, क्योंकि गणित का डर अक्सर विषय से नहीं बल्कि हमारे नजरिए से पैदा होता है।
1: जी।
0: जो बच्चा एक बार किसी सवाल में असफल हो जाता है और उसे डांट पड़ जाती है या क्लास में उसका मजाक बन जाता है,
1: जी,
0: वह उसी पर से गणित को अपना दुश्मन मान लेता है।
1: हाँ।
0: और फिर वह डर समय के साथ और गहरा होता चला जाता है। तो सबसे पहला काम यह है कि हमें बच्चे के मन से यह डर निकालना होगा कि गलती करना कोई बुरी बात नहीं है। गलती करना सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है, न कि असफलता की निशानी। जब बच्चा यह समझ लेता है कि गलती करने पर उसे डांट नहीं पड़ेगी बल्कि उसे सुधरने में मदद मिलेगी, तब उसका आधा डर वहीं खत्म हो। दूसरी बात, गणित को हमेशा रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर दिखाना चाहिए। जैसे बाजार में सब्जी खरीदते वक्त हिसाब लगाना, घर का बजट बनाना या क्रिकेट में रन रेट निकालना। जब बच्चे को दिखता है कि गणित सिर्फ किताब के अंदर की चीज नहीं बल्कि उसकी अपनी जिंदगी के हर जगह मौजूद है, उसे लगता है कि यह तो वह पहले से ही कर रहा है, बस अब उसे थोड़ा तरीके से सीखना है।
1: सर, शुरू शुरू में तो आसान सवाल होते हैं, जैसे 10 रुपए के 2 केले हैं तो 20 के कितने होंगे, या 5 रुपए की 5 टॉफियां हैं तो 10 रुपए में कितनी आएंगी। लेकिन धीरे धीरे सवाल बड़े होते जाते हैं, कई बार तो पूरा 1 पेज भी लग जाता है सवाल को हल करने में। अब प्रश्न ये है, बड़े सवालों को हल करने का आसान तरीका क्या है?
0: जी मैम, यह सवाल बहुत ही व्यावहारिक है, क्योंकि यही वह पड़ाव है जहां बहुत से बच्चे गणित से घबरा जाते हैं।
1: जी।
0: जब सवाल छोटा होता है तो वे इसे झट से हल कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही सवाल लंबा दिखता है, कई लाइनों में फैला दिखता है,
1: जी,
0: तो देखते ही उनके मन में डर बैठ जाता है, यह तो बहुत मुश्किल है, और वे बिना कोशिश किए ही हार मान लेते हैं।
1: जी।
0: तो सबसे पहला और सबसे जरूरी तरीका है बड़े सवालों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना। कोई भी लंबा सवाल चाहे वह कितना भी बड़ा दिखे, असल में कई छोटे छोटे आसान सवालों का ही जोड़ होता है।
1: जी।
0: बच्चे को यह सिखाया जाए कि पूरे सवाल को एक साथ मत देखो बल्कि उसे छोटे टुकड़े में बांट लो और एक एक टुकड़े को उसी तरह हल करो जैसे तुम छोटे सवाल को करते हो। एक और तरीका है कि सवाल को ध्यान से 2-3 बार पढ़ना और यह समझना कि आखिर पूछा क्या जा रहा है। बहुत बार बच्चे बिना पूरा सवाल समझे ही हल करना शुरू कर देते हैं और

0: एक जगह सारे जरूरी फार्मूले और नियम लिखे हों तो उसे दोहराना बहुत आसान हो जाता है। घर पर अभ्यास करते समय भी घड़ी लगाकर सवाल हल करने चाहिए ताकि परीक्षा हाल में समय की कमी महसूस न हो। तो अगर संक्षेप में कहूँ तो परीक्षा की तैयारी का सही तरीका है निरंतर अभ्यास, कमजोर विषयों पर ध्यान, समय का प्रबंधन और सबसे जरूरी शांत और आत्मविश्वासी मन।
1: जी, तो आज हमने जाना कि गणित की यात्रा गिनती से शुरू होकर बड़े सवालों तक कैसे पहुंचती है। बच्चों, अगर आप अभ्यास करें तो ये बहुत आसान बन जाती है। बच्चों, आप भी गणित से दोस्ती करिए और सीखते रहिए। तो आज पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक सरफराज आलम सर जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गिनती से लेकर बड़े सवालों तक गणित की यात्रा, इस विषय पर अभी आप लोग भेंटवार्ता सुन रहे थे। श्री सरफराज आलम जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी, जो पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय चोपन में शिक्षक है, और इनसे बातचीत कर रही थी बबीता बत्रा। देखा बच्चों, कितना आसान है गणित विषय, बस रोज प्रैक्टिस करनी है और नकल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भेंटवार्ता से पहले हम लोग सदाचार की बात कर रहे थे, तो याद रखिए, अच्छे काम करने में आप कभी पीछे नहीं हटेंगे, अच्छे विचार अपनाएंगे, अच्छे कर्म करेंगे, सच्चाई की राह पर चलेंगे और सदाचारी बनेंगे। बच्चों, कल यानी कि 20 अगस्त को सद्भावना दिवस भी है, हर साल मनाया जाता है ये दिवस, और ये दिन जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की जयंती के अवसर पर मनाते हैं। सद्भावना का मतलब है सबके प्रति प्रेम, सम्मान, सहयोग और भाईचारे की भावना। और ये केवल एक दिन मनाने से नहीं होगा कि अच्छा 20 अगस्त है, सद्भावना दिवस है, उस दिन हम अच्छे बच्चे बन के दिखा देते हैं। बस ऐसा नहीं करना है, आपको हमेशा रहना है अच्छे बच्चे बनकर। बच्चों, याद रखिएगा, प्रेम से दिल जीतेंगे, नफरत को दूर भगाएंगे, मिलजुल कर हम सब मिलकर सद्भावना का दीप जलाएंगे। चलिए, बातें अभी हम और भी करेंगे, पहले ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

बच्चों अब एक आवश्यक सूचना। सोनभद्र में अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना। जिला प्रशासन ने आम जन से सतर्क रहने की अपील की। कार्यालय जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण सोनभद्र। भारत मौसम विज्ञान विभाग क्षेत्रीय मौसम केंद्र लखनऊ द्वारा जारी प्रभाव आधारित मौसम पूर्वानुमान एवं चेतावनी के अनुसार दिनांक 18, 19 और 20 अगस्त को जनपद सोनभद्र एवं आसपास के क्षेत्रों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा आम जन से सतर्क एवं सुरक्षित रहने की अपील की गई है। भारी वर्षा के कारण जनपद के निचले एवं जल भराव वाले क्षेत्रों, नदी नालों, मौसमी जलधाराओं, जलप्रपातों, बांधों एवं जलाशयों के आसपास जल स्तर में अचानक वृद्धि हो सकती है। इसके साथ ही निचले पुलों एवं सड़कों पर जल भराव से आवागमन बाधित होने, कच्चे एवं असुरक्षित भवनों संरचनाओं को क्षति पहुंचने, पेड़ों के गिरने तथा विद्युत एवं अन्य सामुदायिक सेवाओं में व्यवधान की संभावना बनी रह सकती है। जिलाधिकारी द्वारा जनपदवासियों से अपील की गई है कि मौसम की स्थिति को देखते हुए अनावश्यक यात्रा से बचें तथा प्रशासन एवं मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों एवं दिशा निर्देशों का पालन करें।

0: आम जन के लिए आवश्यक सावधानियां। निचले एवं बाढ़ संभावित क्षेत्रों में जाने से बचें। नदी, नाले, जलप्रपात, तालाब एवं जलाशयों के पास ना जाएं, विशेषकर जल स्तर बढ़ने की स्थिति में। तेज बहाव वाले पुलों एवं जलमग्न सड़कों को पार करने का प्रयास ना करें। कच्चे, पुराने एवं असुरक्षित भवनों तथा अस्थायी संरचनाओं से दूर रहें। बारिश के दौरान पेड़ों के नीचे आश्रय लेने से बचें। भारी वर्षा के दौरान अनावश्यक यात्रा स्थगित करें तथा वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। वर्षा के दौरान नालों एवं मौसमी जलधाराओं को पार करने का जोखिम ना उठाएं। किसान खेतों से अतिरिक्त पानी की निकासी की व्यवस्था रखें तथा भारी वर्षा के दौरान अनावश्यक कृषि कार्य एवं उर्वरक कीटनाशक के प्रयोग से बचें। जिला प्रशासन द्वारा आम जन से अपील की गई है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और केवल अधिकृत स्रोतों से प्राप्त मौसम संबंधी सूचनाओं पर ही भरोसा करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अब ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
1: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
2: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
0: बच्चों, अब हम बात करेंगे हिंदी साहित्य और भक्ति परंपरा के महान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में। आज उनकी जयंती है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। इनके बचपन का नाम राम बोला था, क्योंकि जन्म के समय इनके मुख से राम निकला था। इनका विवाह रत्नावली से हुआ था। बच्चों, तुलसीदास जी का नाम हिंदी साहित्य के इतिहास में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से भगवान श्री राम के आदर्श चरित्र, प्रेम, मर्यादा, त्याग और कर्तव्य का संदेश हम सब तक पहुंचाया। तुलसीदास जी की सबसे प्रसिद्ध रचना तो सब बच्चों को पता होगी, श्री रामचरित मानस। ये इतनी प्रसिद्ध हम सब के बीच इसलिए हुई क्योंकि इसमें भाषा बहुत सरल थी। तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से जीवन के कई महत्वपूर्ण मूल्यों की सीख भी दी। बच्चों, चलिए अब इसके बाद समय हो रहा है एक प्यारे से गीत का, तो चलिए मिलकर सुनते हैं ये गीत।

बच्चों, अब देखिए बारिश का मौसम अच्छा तो बहुत लगता है। गीत संगीत तो सुन लिया हम लोगों ने, मौसम की अगर हम बात करें, बारिश का मौसम तो मज़ेदार होता ही है, लेकिन बीमारियां भी इन दिनों में बहुत होती हैं। इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखिए, बाहर की खाने की चीज़ों से परहेज़ करिए, ज़िद मत करिएगा कि बाहर का ही खाना है, खासकर तो खुली चीज़ों से, जैसे उस पर डस्ट, मक्खी, कीड़े बैठते हैं तो ये बहुत हानि पहुँचाते हैं। इसी के साथ अब बाल संघ कार्यक्रम समाप्त करती हूँ, तो दीजिए अपनी बबीता दीदी को विदा। बच्चों, जय हिंद।

अभी बच्चे सुन रहे थे अपना कार्यक्रम बाल संघ एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के उबरा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 6 बजने वाले कुछ एक क्षणों में आप सुनेंगे भोजपुरी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथे हम वैष्णवी त्रिपाठी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नई दिल्ली में आयोजित उत्तर प्रदेश जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 के उद्घाटन सत्र में शामिल भइले। इ मौका पर श्री योगी कहले कि भारत आ जापान के साझेदारी साझा विकास प्रौद्योगिकी आ समृद्धि पर आधारित बा।
1: भारत जापान के स्ट्रेटेजिक विजन को अब उत्तर प्रदेश और जापानी उद्योग के बीच इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप के माध्यम से एक कंक्रीट इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप में परिवर्तित करने का यह सबसे बेहतर समय है और इस पार्टनरशिप का अगला अध्याय फैक्ट्रीज में बनेगा, लेबोरेटरीज में इनोवेशन के रूप में जन्म लेगा। हमारे यूनिवर्सिटीज में इसका टैलेंट तैयार होगा और ग्लोबल सप्लाई चेन के माध्यम से यह दुनिया तक पहुंचेगा। सबसे बड़ा युवा कार्यबल आज उत्तर प्रदेश के पास है। हमारे युवा स्किल्ड है, टैलेंटेड है। हमारे पास इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु युवा शक्ति को इंडस्ट्री रेडी वर्क फोर्स में बदलना है। यूपी के युवाओं को जापानीज मैन्युफैक्चरिंग कल्चर से जोड़ना हमारी प्राथमिकता है।
0: कार्यक्रम के संबोधित करत केंद्रीय मंत्री सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव कहले कि भारत के आर्थिक वृद्धि के अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रहल हो। वहां के कहनी कि देश 6-8% के विकास दर से आगे बढ़ रहल हो।
2: इन्वेस्टमेंट स्टोरी हमारी विकास यात्रा में निवेश की अहम भूमिका रही है। आज हम हर साल करीब $130 अरब का सार्वजनिक निवेश कर रहे हैं। इससे

0: व्यवस्था में $1 के निवेश पर करीब $3.6 की आर्थिक गतिविधि होती है। इसके साथ ही इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और ये सुनिश्चित करने में भी सहायता मिली है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे।
1: बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ रीच एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी।
2: श्री वैष्णव कहलें कि भारत के लगे अब दुनिया के दूसरका सबसे बढ़न सड़क नेटवर्क हो। पछला 10 बरिस में करीब 65,000 किलोमीटर राजमार्गन के निर्माण कैल गई हो। वहीं हवाई अड्डन के संख्या दुगना हो गई हो। वहां के कहली कि देश में रेल नेटवर्क में बढ़न सुधार भइल बा। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि या किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहलें कि भारत आज जापान के सहयोग के खास दिशा में आगे बढ़ रहा हो।
3: जापान के साथ भारत की पार्टनरशिप केवल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप नहीं है, ये डेवलपमेंट की पार्टनरशिप है, ये डिप्लोमेसी की पार्टनरशिप है और ये डिग्निटी की पार्टनरशिप है। उत्तर प्रदेश आपको केवल इन्वेस्टर नहीं मानेगा, आपको डेवलपमेंट पार्टनर मानेगा, क्योंकि हम मानते हैं इन्वेस्टमेंट का सर्वोत्तम रूप है जो कैपिटल के साथ साथ कैपेबिलिटी भी लाती है, टेक्नोलॉजी के साथ टैलेंट लाता है और प्रॉफिट के साथ प्रॉस्पेरिटी भी लाता है और रेवेन्यू से ज्यादा रिलेशन मजबूत करता है।
2: सर्वोच्च न्यायालय भविष्य में प्रश्न पत्र लीक जैसन मामला रोके बदे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के संस्थागत रूप दिहले के जरूरत पर जोर दिहले, जिनमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता आ परीक्षा से जुड़ल कारण बदे एगो स्थायी तंत्र शामिल होके। एगो रिपोर्ट।
4: नीट UG 2026 पेपर लीक से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सचिव को निर्देश दिया कि वे हलफनामा दाखिल करें जिससे यह बताया जाए कि राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा नंदन नीलकेणी समिति द्वारा सुझाए गए आवश्यक संशोधनों को भी इसमें शामिल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि उसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में एक मजबूत परीक्षा संस्थान हो जो विशेषज्ञता को बनाए रखने और तकनीकी परिवर्तनों के अनुकूल होने में सक्षम हो। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
2: प्रदेश भर में आज रामचरितमानस के रचयिता और महान कवि गोस्वामी तुलसीदास के जयंती मनावल जा रहा हो। ए मौका पर चित्रकूट के सतही प्रदेश के कई जिलों में सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रम के आयोजन कैल गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ए मौका पर एगो सोशल मीडिया पोस्ट के जरिया से कहले कि गोस्वामी तुलसीदास अपने दिव्य कृतियन के जरिए प्रभु श्री राम के आदर्शन, सनातन संस्कृति या भारतीय जीवन मूल्यन के सनेसा के जन जन ले पहुंचौले। प्रदेश के कई जिलों में रुकी रुक के बरखा के सिलसिला जारी बा। मौसम विभाग अगला 3 दिन ले प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बरखा भइले के पूर्वानुमान जतौले ह। बरखा और बैराजन से पानी छुड़ैले के नाते प्रदेश के कई गो नदियन के जलस्तर तेजी से बढ़ रहल ह। अयोध्या में सरजू नदी खतरा के चिन्ह से ऊपर बह रहल ह। वाराणसी में गंगा नदी के लगतारे बढ़ी रहल जलस्तर के देखत श्रद्धालुओं के सुरक्षा बदे एहतियाती कदम उठावल गई ह। ओइजा के पुलिस कमिश्नर सुरक्षा के लिहाज से अगला आदेश ले नाई चलौले पर रोक लगा देले हवे। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।
5: FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओब्र केंद्र से बोल रहे हैं। समय है स्थानीय सूचना और कार्यक्रम विवरण का। सबसे पहले खोए व्यक्ति के संबंध में सूचना सुनिए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार नीलू पत्नी विजय कुमार निवासी ग्राम मानपुर थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र जो दिनांक 16 जून 2026 से लापता है। हुलिया इस प्रकार है, उम्र 25 वर्ष, लंबाई 5 फीट, हुलिया सांवला रंग, लंबा चेहरा, एकहरी बदन, पहनावा पीले रंग की साड़ी और चप्पल पहने हुए हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें। खोए व्यक्ति के संबंध में एक और सूचना सुनिए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार उषा पुत्री महेश निवासी ग्राम ममुआ थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र जो दिनांक 25 अप्रैल 2026 से अपने 4 वर्षीय पुत्र गौरांश मित्तल के साथ लापता है। हुलिया इस प्रकार है, उम्र 35 वर्ष, लंबाई 5 फीट, हुलिया गेहुआ रंग, लंबा चेहरा।

एक कहरी बदन है। पहनावा छींटदार सफेद रंग की साड़ी व हरे रंग का ब्लाउज तथा पैर में सफेद रंग का चप्पल पहने हुए हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें। सूचना समाप्त हुई। और अब आइए आपको जानकारी दे दें हमारी सभा के शेष कार्यक्रमों की। चर्चा का विषय है, ये कार्यक्रम रिले किया जाएगा हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात्रि 9:30 पर, शाम 7:31 पर आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम कानून की बात। रात 10:00 क्षमा रोशन होगी कार्यक्रम रसधारा से। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे उस्ताद विलायत हुसैन खान का राग जोग में ख्याल गायन। पुराने गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत सुना जाएगा रात्रि 9:15 पर।

अब से कुछ ही देर बाद ग्राम जगत कार्यक्रम में आप सुनेंगे हिंदी के प्रवक्ता डॉक्टर देवेंद्र कुमार लाल की वार्ता। विषय रहेगा तुलसीदास जी का समन्वयवाद एवं लोकनायकत्व। साथ ही आप सुनेंगे मछलियों की सामायिक देखभाल विषय पर आदिवासी मत्स्य पालन संतलाल बैगा से जगत नारायण की भेंट वार्ता, और इसमें आप आनंद लेंगे राम लक्ष्मण एवं साथियों के गाय कजरी का। समय रहेगा शाम 6:10 का। शाम 7:05 पर सुना जाएगा कार्यक्रम हम और हमारा स्वास्थ्य। इसमें आप सुनेंगे चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर शरण कांदु से बबीता बत्रा की भेंट वार्ता। विषय रहेगा परिवार के सदस्यों और समाज पर नशे का प्रभाव। शाम 7:45 पर आप आनंद लेंगे कार्यक्रम सबरस का। सुगम संगीत का लुत्फ आप लेंगे रात्रि 8:00 और रात्रि 8:30 पर। रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। शाम 7:45 पर सुना जाएगा कार्यक्रम सबरस। तो ये थी जानकारी हमारी सभा के शेष कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण अब समाप्त हुआ है। FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीणों का कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: राम राम।
1: नैना बहिन तोके भी राम राम।
0: जग्गू भी आप हो के राम राम। और बताओ का हाल चाल बा।
1: हाल चाल तो देखते बाटू की ए समय जवन है दउ एकदम बरखा बुन्नी जवन है चाँप के पड़त बा।
0: हाँ हाँ।
1: और भैया जहाँ देखा तहाँ एकदम नदी नाला पोखरा कुल देखा
0: भरल बा। तो ये बात सही कहलन है। तो देखा है अपन वही तरीके से सरकार की तरफ से और क्या है अपन जिलाधिकारी की तरफ से भी सूचना आयल बा कि हमनी लोगन के चाहिए कि बच बचा के रही जाए।
1: बिल्कुल, जिलाधिकारी महोदय के तरफ से जोन है निहोरा कहल गल बा अपने जनपद के लोगन से कि भैया देखा अपन अंचल पहाड़ी पठारी अंचल नाला ढोढ़ा नदी पोखरा तालाब कुल बाय ना।
0: हाँ हाँ कुल बाय।
1: भैया देखा होला का कि अमून भैया लोग जवन है भैया नदी बढ़िया इल तो लोग घूमे चल जाना देखे चल जाना।
0: हाँ कि कितना पानी बा।
1: सबसे बड़ चीज बाय कि नदी नाला के अगल बगल का जवन आबादी है छोट छोट लड़का गदेला भी जवन है खिलवाड़ में वैया चल जाना। अब भैया ये पहाड़ी नाला का स्थिति होले कि कब कितना कैसे पानी आ जाए और मैं फंस जी बा। बहुत भैया लोग ऐसा भी हो ना भैया सयान सयान का बात करते हो कि भैया फोटो खिंचावे में बीचे में हो जी ना उनके अगल बगल पानी हो गए
0: पानी हो गए
1: अब
0: हाँ।
1: उनके राहत की जरूरत हो जाला। अरे भैया जागरूक हुआ जानकार हुआ समझदार हुआ यह मौसम में

0: भैया उसे बचे के जरूरत है। बहुत जगह भैया देखा माटी का भी घर बा जवन के वो भी सिलसिला जला ऐसा कुल पानी बुन्नी जब लगातार होले ना तो वो देखा गिरा पड़े के स्थिति में हो जाला। तो अपने के चाहिए कि सुरक्षित स्थान अपन धर ले ले के जरूरत बा। कुल मिलाए के देखा कहल यह चाहत है कि जवन नीचे हमेशा पानी ऊपर से नीचे के तरफ भैया नदी नाला के बहेला नीचे के तरफ जाए से बचे के है सुरक्षित स्थान के देखे के है और रह के है। देखे के मतलब रह के है। और किसान भैया लोग भी जैसे कौनो काम नहीं बा तो बरखा बुन्नी में भैया खाद का फेंक दे तो वहाँ कुछ भैया यो चीज बचावे के है। जब ले रग्गी न हो जाए बोले मौसम खुले न तब ले कौनो मतलब नहीं है भैया। अत्यधिक भैया जवन खाद फेंकबा वो भैया बही जाई अपने पौधा के का लगी।
1: सही बात कहलन है। और देख अपने किसान भैया लोगन के ये भी चाहिए कि जौन खेती में पानी लगत है ओके अपन निकासी भी बना ली सही से। और खाद के बात अब करबे के लिए तो मैं देखा अपन कीटनाशक भी दवाई का उपयोग न करी तो देखा ये अपन विभाग से सूचना आई रहा है तो अपने पंच भैया लोगन के बता दिले ताकि सावधानी बरते।
0: और एक व्यवहारिक चीज भी बताए देवल जाए हो कि अपने प्रियंका बहन के देखत हो ना वो देखा है अपन दुगदुगी पीटत है लेकिन गदेलन के मछुआरा भाई के कटिया फसाए के जो मछली मारे वाला भैया लोग हो कि भैया हो रोज तो मछली मारे के बाय नदी नाला घूम ही के है भैया ये समय जो स्थिति आपदा कहे ऐसे बचे का काम है भैया। देखी देखा पाप देखा
1: पुण्य
0: पुण्य। अगर दो आदमी चल गई ना भैया देखे नदी ना तो चार आदमी और चल जी है लड़का गदेला और चल जी है। तो भैया जब तू बड़ हुआ समझदार हुआ तू मत जा तो दूसरे लोगन के भी ये लगी ना कि भैया नहीं गई ना
1: तो हम नहीं जाए
0: दूरी बनाओ के तो ये देखा रहा है माननीय जिला अधिकारी महोदय द्वारा। एक अपने जनपद के लोगन के संदेश रहा है कि नदी नालन से बचाव कर जा। और ये भी जानत हो कि जवन समय रहा भैया अब इन कल भी दिखावत है बरखा बुन्नी
1: रही
0: तो भैया सुरक्षित रहे बचल रहे हम तो यह कहब। और देखा बातचीत कयल जा आगे हो तो आज देखा तुलसीदास जी का जयंती भी बा और जवन की रामायण जवन की एक तरह से अपने महाकाव्य है अपने देश का लोग उनके पढ़ा ल गुना ल उनके हिसाब से अपने जीवन के आगे भी बढ़ावा ल सत्कर्मन से जुड़े का
1: सही
0: एक रास्ता है।
1: और देखा जब बात कर लेन है रामायण का तो देखा आज तुलसीदास जयंती है तो देखा रामचरित मानस की भी रचयिता हुआ ये देखा भगवान श्री राम के अनन भक्त और तुलसीदास जी की स्मृति में मनावल जाला। जो कहल जाला कि तुलसीदास जी के जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में भैल रहा आ इनके माता का नाम हुलसी और पिता जी का नाम रहा आत्माराम दुबे। तुलसीदास जी ने एक प्रमुख रचना ई रहल कि जो रामचरित मानस रहल विनय पत्रिका रहल हनुमान चालीसा भी बात कैलन है ना हनुमान चालीसा कवितावली और दोहावली सब इनके देखो प्रसिद्ध रचना भी रहल रामचरित मानस के और जो लिखले रहना देखा वो अवधि भाषा में लिखले रहना पहले के जोन अवधि भाषा रहल हिंदी में चलत रहल जोन की बोलचाल के भाषा रहल ताकि सभी लोग समझ पाव तो देखा आज भी वो चलल आवत बा
0: बिल्कुल
1: देखा लोग शामिल भी कैले बाए। और देखा पंच भैया लोगन से भी बतावत है कि इनकर जोन विवाह भरल वो रथ नावली नामक एक विदेशी कन्या के साथ भय रहल इनकर पत्नी की एक प्रेरणा से इनकर मन में सांसारिक मोह माया छूट गयल और उनके वैराग्य उत्पन्न हो गयल। इनकर बचपन का नाम का रहल राम बोला देखा राम बोला ये बदे रखा रहल क्योंकि जब पैदा होले के कुछ समय बाद जब बड़ भइलेन तो पहला शब्द इनके मुंह से काल निकल रहल राम ऐसे इनका नाम रखे गए राम बोला। तो देखा इनकर गुरु भी जो रहलन वो नरहरि दास जी रहलन जो देखा इनके विधवा शिक्षा दे लेन अपन और वही में देखा इनका नाम इनकर बदल के तुलसीदास जी रखलन
0: बिल्कुल। और देखा जवन ग्रंथ लिखना वो ग्रंथ के हिसाब से भैया कोई आपके अपने सत्कर्मन के करे के बाद जीवों पर दया करे के बाद
1: सही बात कहलन हिया तो देखाई वही तरीके से अपने कार्यक्रम में भी शामिल कैले है जा हमनी लोगन के तुलसीदास का समन्वय वाद और लोक नायकत्व।
0: डॉक्टर देवेंद्र कुमार लाल भैया हुआ जो उनकी प्रवक्ता हुआ हिंदी का, तो हम तो कहते ना कि हम उनका बातचीत हुई, लेकिन डॉक्टर देवेंद्र कुमार लाल भैया का जानकारी देत हुआ हम चुप होवल जाए सुनल जाए।
1: चलो सुन लेवल जाए।
2: गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 ईस्वी में कालिंदी नदी के किनारे श्रावण शुक्ला सप्तमी को हुआ था। इस संबंध में एक दोहा इस प्रकार है। 1554 से कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरियो शरीर। बचपन में इनका नाम रामबोला था, बाद में इनका नाम तुलसी अथवा तुलसीदास हुआ। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। ये बांदा जिले के राजापुर गांव के रहने वाले थे। इस संबंध में एक दोहा इस प्रकार है। पिता आत्माराम द्विवेदी हुलसी जिनकी माता थी, अब बांदा जिले के राजापुर ग्राम में जिनकी भक्ति राम की थी। गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे। कहा जाता है कि इनके माता पिता ने इन्हें बाल्यकाल में ही त्याग दिया था। इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत बाबा नरहरि दास ने किया और इन्हें ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रदान की। इनका विवाह दीन बंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हो गया तथा इनकी मृत्यु संवत 1680 काशी में हुआ था। इस संबंध में एक दोहा इस प्रकार प्रचलित है। संवत 1680 असी गंग के तीर श्रावण कृष्णा तीज सनी तुलसी तज्यो शरीर, तुलसी तज्यो शरीर। अब हम इनके भी जन्म और मृत्यु के बारे में मैं बताया, अब इनके कृतियों के बारे में हम चर्चा करते हैं, तो आप सुने। तुलसी के इष्ट देव राम थे। तुलसी चाहत जन्म भरी राम चरण अनुराग, यही इनके जीवन का परम आदर्श था। राम के प्रति इनकी अटूट भक्ति भावना की अभिव्यक्ति ही इनके संपूर्ण काव्य ग्रंथों का विषय है। तुलसीदास द्वारा रचित कुछ प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार हैं: दोहावली, गीतावली, श्री रामचरित मानस, रामाज्ञा प्रश्नावली, विनय पत्रिका, हनुमान वाहुक, रामलला नछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग संदीपनी, कृष्ण गीतावली इत्यादि। इनमें श्री रामचरित मानस तुलसीदास जी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। अब मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि रामचरित मानस में कुल 7 कांड हैं। जब किसी से इसके बारे में पूछा जाता है तो बहुत ढेर सारे पढ़े लिखे लोग क्रम से बता नहीं पाते हैं, और कुछ लोग तो रामचरित मानस को पूरा का पूरा उनका एकदम एक एक दोहा चौपाई पूरा याद है। तो कुछ हमारे विद्यार्थी भाई भी पढ़े लिखे हैं, अभी पढ़ रहे हैं। मैं आप सभी लोगों के से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आप क्रम से इसके बारे में जानें। पहला बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा कृष्ण किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठवा लंका कांड, सातवा उत्तर कांड। अब हम तुलसीदास का समन्वयवाद एवं लोकनायकत्व के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। हिंदू धर्म के अवतार के रूप में तुलसीदास जी ने मानव जाति को पतन होने से बचाया, यह बात देखकर गीता के एक श्लोक की ओर ध्यान जाता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है तब तब धर्म के अभ्युत्थान के लिए तथा दुष्ट आत्माओं के विनाश के लिए मैं अवतार लिया करता हूँ। भारत भूमि कर्म भूमि है। जब जब इस पर अत्याचार और अनाचार हुआ तब समयानुकूल किसी न किसी संत एवं महात्मा का अवतार होता रहा है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, क्योंकि भारतीय समाज में नाना भांत की परस्पर विरोधी संस्कृतियां, साधनाएं, विचार और धर्म प्रचलित रहते हैं। बुद्ध देव समन्वयकारी थे, गीता में समन्वय की चेष्टा की गई और तुलसीदास भी समन्वयकारी थे। लोकनायक तुलसीदास को जो अभूतपूर्व सफलता मिली उसका कारण यह था कि वे समन्वय की विशाल बुद्धि को लेकर उत्पन्न हुए थे। एक विद्वान ने लिखा है कि अकबर जिस काल में महान शासक था, तुलसी उसी काल के महान लोकनायक थे। तुलसी ने समाज मनोविज्ञान को भली भांति पहचान कर अपने युग के समस्त विरोधी तत्वों का परिहार एवं समाज के विकृत स्वरूप का परिष्कार करके जन समाज के सभी क्षेत्रों में समन्वय की भावना को मूर्त रूप दिया और सच्चे लोक धर्म की स्थापना की। तुलसी जैसा बहुव्यक्तित्व संपन्न पुरुष मध्य युग में कदाचित ही कोई मिलेगा। तुलसीदास ने अपने गहन चिंतन और व्यक्तित्व के अनुरूप समन्वय किया। उन्होंने लोक और शास्त्र का ही नहीं, शक्ति और ज्ञान का, भाषा और संस्कृति का, निर्गुण और सगुण का, पुराण और काव्य का, पंडित और अज्ञानी का, ब्राह्मण एवं चंडाल का, आदर्श और व्यवहार का, प्रकृति और निवृत्त का अपूर्व समन्वय किया। गोस्वामी तुलसीदास के कुछ दोहों और चौपाइयों को मैं लिया हूँ। इसमें आप पूरा का पूरा लोकनायकत्व एवं समन्वयवाद को देखें। वर्णा श्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग। वर्णा श्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग। चलहि सदा पावहि सुख, नहीं भव शोक न रोग, नहीं भव शोक न रोग। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, अपालहि पोसहि सकल अंग, तुलसी सहित विवेक, तुलसी सहित विवेक। अब इनके कुछ चौपाई को आप देखें। मैं लीलावाणी के रूप में मैं इसको थोड़ा समय प्रकट कर रहा हूँ।

0: ज्ञान। इस प्रकार तुलसी का संपूर्ण साहित्य लोक मंगलकारी समन्वय की विराट लोक चेतना को समाये हुए हैं तथा तुलसी संपूर्ण विश्व को एक सूत्र में जोड़ने का कार्य किया है। अंत में युवाओं के लिए मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने साहित्य के माध्यम से समाज को सत्य, धर्म और मानवता का अमूल्य संदेश दिया। उनकी रचना रामचरितमानस आज भी युवाओं के लिए आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देती है। उन्होंने श्री राम के चरित्र के माध्यम से मर्यादा, कर्तव्य और अनुशासन का महत्व समझाया। आज के दौर में जब युवा अनेक चुनौतियों और भ्रमों से घिरे हैं, तब तुलसीदास जी की शिक्षाएं सही दिशा प्रदान करती हैं। उनका साहित्य आत्मविश्वास, धैर्य और सकारात्मक सोच विकसित करने में सहायक हैं। वे बताते हैं कि सफलता केवल प्रतिभा से ही नहीं बल्कि अच्छे संस्कारों से भी मिलती है। उनके विचार परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी का भाव जगाते हैं। युवाओं को जीवन में संयम और सदाचार अपनाने की प्रेरणा मिलती है। उनकी वाणी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी अपने समय में थी। इसी कारण गोस्वामी तुलसीदास जी का योगदान आज के युवाओं के लिए अत्यंत उपयोगी और प्रेरणादायक सिद्ध होता है।
1: नैना बहन।
2: हाँ भैया।
1: देखा ई रहना है डॉक्टर देवेंद्र कुमार लाल भैया जो उनकी प्रवक्ता रहना हिंदी का, और तुलसीदास जी पे कितना बढ़िया अपन अनुभव रखना है मन के साथ साझा कहना है, सुनल गयल है, गुनल गयल है, अब आगे का हो के चाहे
2: तो देखा सुनल गयल गुनल गयल अपन मन भी सही हो गयल। तो चला चलल जाए अब अपने खेती बाड़ी के तरफ से तरफ पे। तो देखा खेती बाड़ी के बात कयल जाए तो कहल जाला ना कि खेती बाड़ी में सिर्फ ये ना कर कि केवल हम अनाज लगा दिली जैसे धान हल, गेहूं भल, ये चना मटर भल,
1: कुल मिला के खेती बाड़ी और गुरुवारी।
2: हाँ।
1: बाद सह व्यवसाय के रूप में और कुछ कयल जाए ताकि घर गृहस्थी जवन है हमार आसानी से आगे बढ़त चल जाए। तब ऐसे में जैसे अपन जवन योजनाबद्ध तरीका से भैया लोग अपन खेती बाड़ी कैले ही बट ओकरे बाद बहुत भैया लोग मवेशी भी दूध वाला रखले बट, बहुत भैया लोग बकरी पालन करना, लेकिन बहुत भैया लोग देखा मछली पालन के तरफ भी रुझान बनौले रहना और करे न भी। ऐसने में मछली पालन पर जवन है संत लाल बैगा भैया हुआ आदिवासी मत्स्य पालक हुआ और मछली का कुछ देखभाल कयल जाए कि कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा भैया उत्पादन मिले। जगत नारायण भैया बातचीत करत हुआ तक इशारा करा तो हमन सुनल जाए।
2: चला सुन ले बन जाए।
3: श्रोताओं अभी बुद्धि बला के शाहपुर गांव में हैं और यहाँ हमारी मुलाकात मछली पालन कर रहे चौकीदार श्री संतलाल बैगा जी से हो रही है। आप बहुत ही बारीकी से जानते हैं कि मछलियों को कौन कौन से जानवर नुकसान पहुंचाते हैं, उसका देख रेख करते हैं, इनको चारा कैसे देना चाहिए और क्या क्या इनके संकट हैं उससे कैसे इनको बचाया जा सके, इन सभी विषयों के बारे में अभी हम जानेंगे। तो संतलाल बैगा जी आपका रेडियो कार्यक्रम में स्वागत है। ये देख रहे हैं कि आप बहुत दिन से और इतना बड़ा तालाब की रखवाली करते हैं।
4: हाँ, तीन पार्ट में बंधे है।
3: हाँ, तो तीन पार्ट में दिख ही रहा है।
4: हाँ,
3: तो ये मैं सबसे निचला पार्ट पर अभी बैठे हैं, हम
4: बैठे हैं
3: और बहुत ज्यादा पानी दिख रहा है लेकिन हमें खिदोर पानी नहीं दिख रहा है।
4: नहीं, साफ पानी है,
3: साफ पानी है।
4: हाँ।
3: तो कैसे ये इधर उधर बह करके इसमें नहीं आने देते हैं क्या?
4: नहीं, ले आते हैं।
3: हाँ।
4: लेकिन इसमें गंदा नहीं होता है।
3: अच्छा।
4: साफ का साफ रहता है।
3: हाँ, हाँ, हाँ। तो ये इसमें आजकल मछली की क्या स्थिति है?
4: ठीक है, ये समय है अब देखिए 4 बजे।
3: हाँ।
4: इसमें दो दो तगाड़ी कानार छोड़ेंगे।
3: अच्छा, मतलब चारा
4: चारा।
3: अच्छा,
4: एक तगाड़ी उसमें खरी डालेंगे।
3: कमरे में।
4: हाँ हाँ, मिला करके उसको डालेंगे।
3: अच्छा,
4: तीनों पार्ट में दुद्धू तगारी।
3: हाँ,
4: डालेंगे।
3: हाँ हाँ,
4: 4 बजे।
3: 4 बजे।
4: हाँ, इसके बाद तीसरे रोज एक लाल रंग का दवा आता है।
3: अच्छा।
4: हाँ
3: हाँ,
4: तो उसके एक चुटकी घूम घूम के
3: किनारे
4: फेंकेंगे।
3: अच्छा। हाँ, ऐसे हाथे से?
4: हाथे से।
3: चुटकी है चुटकी?
4: चुटकी है चुटकी।
3: दूर दूर में?
4: दूर दूर में।
3: अच्छा,
4: 10-10 फलांग के बीच बीच में ऐसे ही फेंकते जाएंगे। पानी लाल होते जा रहा है।
3: अच्छा, लाल होते जाए किनारे किनारे?
4: हाँ, किनारे किनारे।
3: अच्छा।
4: हाँ,
3: वो का काम करता है?
4: वो मछली को कहते हैं लोग जो वो माले रोग राई नहीं पकड़ेगा।
3: हाँ, हाँ, हाँ।
4: रहेंगे बढ़िया साफ।
3: ललका दवाई। हाँ, एक चुटकी। हाँ, दस फलांग पे।
4: हाँ,
3: दादा जी है तो किनारे किनारे सब लाल हो जाए।
4: लाल हो जाए तीसरे चौथे।
3: हाँ, दिन में?
4: दिन में।
3: अच्छा।
4: हाँ, यही काम करते हैं सर।
3: हाँ,
4: और बीच बीच में जब ये घास जो बंधी में जाम गया है उसको निकाल करके यही चारा मशीन में काट करके।
3: हाँ,
4: उसको तगारी से फेंक देंगे।
3: अच्छा, तालाब में?
4: तालाब में।
3: तो वो जो चारा?
4: हाँ, बीन को सब खा जाएंगे।
3: अच्छा।
4: हाँ,
3: इनमें कौन कौन प्रजाति की मछली है?
4: इनमें मछली है, रोहू है, भाकुर है।
3: हाँ,
4: नैन है।
3: अच्छा।
4: हाँ, यही सब है। गरवा वगैरह है।
3: गरवा वगैरह है। तो ज्यादा मछली है?
4: हाँ,
3: तो हर समय निकलते होंगे?
4: नहीं, इसी समय तो नहीं निकलते हैं।
3: मतलब सावन के महीना बा, इस समय ब्रीडिंग होता होगा।
4: हाँ, तो इसमें अभी अब 9 क्विंटल बच्चा कलकत्ता से जिया करके छोड़े हैं
3: इस समय। अच्छा अच्छा।
4: हाँ,
3: अच्छा, तो इनमें बताते हैं कि छोटका मछली के बड़का मछली खा जाला।
4: हाँ, खा जाते हैं सर, लेकिन अब करें का, अब छोटी वाली उधर छोड़वाए हैं, बड़ी वाली इसमें है।
3: अच्छा,
4: और एक पार्ट में और है।
3: तीन पार्ट में है?
4: हाँ, तीन पार्ट में है।
3: जो एकदम छोटे छोटे हैं सबसे ऊपर वाले में?
4: ऊपर वाले में है।
3: और उधर बीच वाले में?
4: बीच वाले मछली रस के है।
3: उससे बड़ हो जाए तो हमें छोड़
4: इसमें आ जाएंगे।
3: तो बड़ हो जाए तो भाई लड़े भर हो जाए। हाँ, बचे भर
4: हो जाए।
3: हाँ, ये तो बढ़िया जो है। नहीं तो हमें अगर छोटका में छोटका मछली के हमें डाल दे तो खा जी हूँ।
4: वो तो खा ही जाए।
3: अच्छा। हाँ, तो एक तो मैंने मछली के शत्रु है। एक से बचाव खातिर तीन पार्ट में आप किए हैं।
4: हाँ, तीन पार्ट।
3: और मछली के कौन कौन परेशान करे वाला लोग?
4: और बकला परेशान करता है। और पनडुब्बा एक होते है।
3: हाँ हाँ हाँ।
4: और कभी कभी एक ऊद भी होते हैं।
3: ऊद? ये सब इसमें आते हैं?
4: आते हैं।
3: हाँ,
4: आज एक मछली निकाल करके वो उस बंधे पर ले जा करके खाया है ऊद।
3: अच्छा।
4: हाँ, बढ़ाने मछली खाया कि चिड़िया उसका बड़ा बड़ा था।
3: हाँ हाँ हाँ। तो ऊद चिड़िया है?
4: नहीं, वो जानवर है, मयूर के तरह होते हैं।
3: अच्छा अच्छा।
4: अब बहुत सुघर लगते हैं वो सब। हाँ,
3: ये कैसे पकड़ता है पानी में? वो
4: पानी में वो रहता है पनिये में। हाँ,
3: अच्छा,
4: पानी में रहते हैं सर। वो चट ठगोर होता है, होश होता है, काम होता है,
3: जैसा रहेगा चिकना रहेगा।
4: चिकना रहेगा।
3: हाँ, सही बात, सही बात। तो वो पकड़ के ले जाता है?
4: हाँ, वो ले जाता है। रात में?
3: दिन में तो आप देख ही लेंगे।
4: हाँ, दिन में तो भाई देखते हैं।
3: तो आदमी के डरे भागता है?
4: भागता है। हाँ, कहीं आड़ में रहता है, समय से आप ना करके अपना काम कर लेता है।
3: ये तो बहुत अच्छा आपकी जानकारी है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण की ये। अच्छा, ये जो अभी डाले हैं जो मछली की बच्चा, तो वो कितना दिन में दूसर का तालाब में डाले भर हो जाए?
4: अब दूसर का में अब वो नहीं डालेंगे सर, वो जैसे भैया बना है।
3: हाँ,
4: हाँ, वो खोल देंगे तो आप
3: इसमें आ जाए।
4: हाँ, इसमें उसमें आते हाँ, जाते हाँ, रहेंगे। हाँ,
3: अच्छा अच्छा।
4: हाँ,
3: तो ये फिर कितना दिन में तैयार हो जाएंगे जो अभी डला है?
4: ये कम से कम 4-5 महीना।
3: अच्छा।
4: हाँ, लग जाएगा।
3: हाँ,
4: इसमें ये समय पैर को बच्चा डाले हैं तो 3 किलो।
3: अच्छा,
4: से लेकर 4 केजी तक।
3: हाँ,
4: 1.5-2 ऐसे ही के आसपास में।
3: अच्छा,
4: सब है मछली, इससे ज्यादा नहीं है।
3: ये तालाब के हर समय साफ होगा कि
4: नहीं? अब एक सफैया का होगा सर, इसमें बहुत साफ है, जो होता है अगले बगले तो उसको घास पात निकाल ही देते हैं,
3: काट काट करके चारा डाल देते,
4: चारा डाल देते हैं तो खा लेते हैं।
3: अच्छा, नया कोई अगर मछली पालन करना चाहे उसको क्या का जुगाड़ करना पड़ेगा शुरुआती में?
4: शुरुआती में सर उसको जुगाड़ करना पड़ेगा, पहले तालाब बनाए हैं, तब उसमें लिया करके पानी हो जाएगा तो बच्चा छोड़े।
3: हाँ। अच्छा, ये नया तालाब में तो और चारा दे पड़ हुई?
4: हाँ, गोबर उबर का खाद उसमें है।
3: हाँ।
4: पहले गोबर को खाद डालना
3: पड़ेगा। उससे क्या होगा,
4: वो गोबर खाते है ना तो बढ़ते हैं मछली।
3: अच्छा।
4: हाँ,
3: वह बात है।
4: हाँ, बढ़ावा के लिए है।
3: हाँ।
4: हाँ।
3: मैंने गोबर के हर जगह उपयोग।
4: हाँ।
3: हाँ।
4: हाँ।
3: चाहे खेत में डालिए फसल में।
4: हाँ।
3: चाहे मछली वगैरह के तालाब में।
4: मैंने
3: कुल मिलाकर के जीवांश की मात्रा बढ़ाने में काम आता है।
4: आता है सर,
3: बिल्कुल। तो ये चीज है। तो आहार के लिए एक बार आप बताए कि 4 बजे हम देते हैं, फिर कब देंगे?
4: अब फिर वह 4 बजे
3: 4 बजे
4: 4 बजे
3: बकिया तो पानी में जो मिलता है।
4: हाँ, खाते पीते रहते हैं, समय समय से उस लोगों के डाल देंगे।
3: तो इसका जो है कि मछली के अनुसार से डालते होंगे कि
4: नहीं? अब तो अनुभव से लग रहा है।
3: अच्छा।
4: हाँ, अब बताइए, जिससे बोल रहे हैं जो इसमें पहले बार 2 क्विंटल बच्चा छोड़वाए। अच्छा, तब उसके बाद फिर 7 क्विंटल मंगाए, तो 7 क्विंटल में 1 क्विंटल इसमें डलवा दिए, बाकी मछली उधर डलवा दिए।
3: अच्छा। तो जिससे 7 क्विंटल मछली डलाया तो उसका लगभग आहार कितना देंगे?
4: अब है मान ले, अब दूध तगाड़ी दे रहे हैं।
3: दूध तगाड़ी। चलो, मतलब वही अनुसार। अब ऐसा तब्बा नहीं खाली उतने खा रहे हैं।
4: हाँ, उतने खा रहे हैं।
3: कुछ है हमें पानी में।
4: हाँ, अब देखिए सामान इसमें भी नहीं है ना।
3: हाँ।
4: तो वो जब पानी उसमें भर गया तो वो मछली जा करके जैसे भैंस चरते हैं वैसे काट काट के वो खाते है। हाँ।
3: अच्छा,
4: बहुत तगड़ा खाते है।
3: मतलब हरा चारा भी?
4: हाँ,
3: बहुत तेजी से खाते हैं।
4: तेजी से खाते हैं सर।
3: बताइए तो और का जुगाड़ बनाते हैं उसका खिलाने में?
4: और जुगाड़ तो
3: सवा बता दिए, घर जुम्बा की हरा घास भी दे दिए।
4: हाँ।
3: तो ये मतलब हर समय एक ही माप में देना होता है? और गर्मी के मौसम में जब पानी गर्म होला तो?
4: गर्म पानी हो जाएगा सर तो कन्हर से पानी मोटर बैठाते हैं, उसमें पानी डालते हैं और वह गोबर को प्रयोग करवाते हैं, बिनवा बिनवा करके सब इसी में।
3: अच्छा।
4: फेंकवाते हैं,
3: मैंने गोबर से शीतलता है अपन, और कम पानी रहेगा तभी गर्म होगा।
4: हाँ।
3: और नहीं तो जो है कि ज्यादा पानी में तो खुद ही अंदर ठंडा रहता है।
4: ठंडा रहता है
3: तो और का देख रेख करना पड़ता है लोगों को, चिड़िया चुनगुन से और बकिया जो है कि आप बताए दो उनकी,
4: पनडुब्बी से और कोई जैसे मछली मारने खाने वाला आएगा तो उसको देख रेख करना होगा।
3: तो मान लीजिए हल्ला गुला करेंगे तो नहीं जाना।
4: हाँ।
3: सुना छोड़े नहीं है।
4: हाँ।
3: बिल्कुल बिल्कुल।
4: मछली
3: कैसे बिक जाता है?
4: अब मछली तो सर अभी देखिए हम बेचे नहीं है, हमारे रहते भर नहीं बेचे हैं।
3: अच्छा, अच्छा, अच्छा।
4: हम नया नया आए हैं।
3: अच्छा, अच्छा।
4: हाँ, करीब करीब हमको अभी 3रा महीना होता है।
3: आप पहले ही जानते हैं ये सब? आप इससे पहले कहाँ काम कर रहे थे?
4: पहले सर यही जाबर में था हम सर, 8 साल वाचरी किए।
3: अच्छा, अच्छा।
4: 8 साल जब किए तो उनको भी विश्वास जम गया, हमारा भी विश्वास जम गया। तो बैठे थे घर तो 3 साल वो बोले हैं जो संतलाल भाई क्या कर रहे हो? कोई सर हम तो बैठे हैं। तो कहे ऐसा है जो हमारे तालाब में मछली पालन हुआ है।
3: अच्छा।
4: हमारे भाई साहब करवाए हैं और उसी जगह है ये। आपको खाना मिलेगा
3: जी,
4: कपड़ा मिलेगा और 6,000 नगद मिलेगा।
3: तो यहाँ रखे हैं।
4: हाँ। तो इसी का साहब हम यहाँ,
3: मैंने ईमानदारी भी बहुत बड़ा चीज है।
4: हाँ,
3: है।
4: हाँ,
3: इसके वजह से जो है कि
4: जी,
3: कहीं भी आदमी के मांग हो जाता है, बुलावा हो जाता है।
4: हाँ,
3: धोखाधड़ी है तो जाए कि वहाँ कोई नहीं पूछता है,
4: कोई नहीं।
3: तो अगर बहुत चूंकि किसान भाई लोग सुन रहे हैं, मछली पालन करना चाहते हैं, तो चलते चलाते उन लोगों को क्या कुछ सहेजना चाहेंगे आप?
4: अब यही तो हम कहेंगे भाई, जब पालना चाहते हो तो तालाब बनवाइए, उसमें पानी डालिए और गोबर को खाद डालिए, उसमें बच्चा डालिए, देख रेख करिए भाई, यही तो काम है।
3: बिल्कुल बिल्कुल है। तो देखिए श्रोता लोग, ये दुधि ब्लॉक के शाहपुर गांव में मछली पालन की चौकीदारी करते हैं श्री संतलाल बैगा जी, और आप गुरुदह चौपन के रहने वाले हैं, मूल निवासी, और यहाँ आकर के दुधि में देख रेख कर रहे हैं। आप जो जानकारी रखे हैं वो तो रखे ही हैं, लेकिन साथ साथ जो ईमानदारी के पाठ आपने याद किया है, निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति हर जगह अपना जगह बना लेते हैं और अपना काम करते हुए और अपने लक्ष्य को प्राप्त भी करते हैं, जीविका के साधन भी जुटा पाते हैं। इतना अच्छा जानकारी देने के लिए संतलाल बैगा जी को बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नैना बहिन
2: भैया,
1: देखा ये रहना है संतलाल बैगा भैया जवन मछली पालन से जुड़ल हुआ, और कितना फरियाए फरियाए के अपन अनुभव बताना है, और देखा सह व्यवसाय के रूप में खेती बाड़ी के साथ अगर सह व्यवसाय के रूप में अगर भैया अगर ये काम के करत हुआ तो भैया आम काम गुठली का दाम मिलत है, और थोड़ा सा देखभाल करे के बाद दो पैसा मिले लगी तो अपन घर गृहस्थी आगे चले लगी, खेती गृहस्थी काम आगे बढ़े लगी। और जब खेती गृहस्थी का बात आई तो कहल जा रहा एक आँख खेते पर है दूसरा आँख बाजार में, तो भैया बाजार में दूसरा आँख कहाँ पर है, कहाँ का भाव है, पाती के माध्यम से थाती के भैया भेजले हुआ फरियाए के बाँच दे।
2: तो देखा ये इंद्रासन मोर भैया घोरावल मंडी से भेजले हैं यहाँ। देखे ये पसेरी में हवा आलू लाल 65 से 70 रुपया पसेरी, आलू सफेद 55 से 60 रुपया पसेरी, प्याज 140 से 160 रुपया पसेरी, टमाटर 130 से 140 रुपया पसेरी, नेनुआ 25 से 30 रुपया पसेरी, कोहड़ा 35 से 40 रुपया पसेरी, कुनुरु 65 से 70 रुपया पसेरी, लंबा बैगन 60 से 65 रुपया पसेरी, गोल बैगन 90 से 100 रुपया पसेरी, परवल 280 से 300 रुपया पसेरी, लौकी 45 से 50 रुपया पसेरी, करेला 80 से 85 रुपया पसेरी, भिंडी 35 से 40 रुपया पसेरी, बोड़ा 30 से 35 रुपया पसेरी, मूली 80 से 90 रुपया पसेरी, धनिया 350 से 380 रुपया पसेरी, हरी मिर्च 150 से 170 रुपया पसेरी, खीरा 60 से 65 रुपया पसेरी, मकई 85 से 90 रुपया पसेरी, और जो नींबू रहल है वो 250 रुपया प्रति सैकड़ा रहल है।
1: पाती के माध्यम से थाती भैया हमेशा भेजल करा और हम हन कार्यक्रम में शामिल करी ला जा, और जन जन तक घोरावल मंडी का थोक बाजार भाव के सब भैया लोग सुनल गल गुनल गल भैया के देवल जाए धन्यवाद। लेकिन झूरे झूर भी नहीं, सावन का महीना चलत बा, कजरी के चारों तरफ जवन है भैया देखते बटू तू नैना बहन, हरियाली का चादर अपन प्रकृति ओढ़ौल ही बा, तो काहे नहीं एक कजरी जो मनो सुनल जाए राम लक्षण संगाती भी आकर
2: चलो सुन लेवल जाए।

0: नैना बहिन,
1: हाँ जगू भैया,
0: राम लक्षण संघाती भैया, देखा कजरी सुनौना, और इस समय कजरी के बाहर भी चलत बा मन।

0: गांव का पानी गांव
1: गांव
0: में
1: में
0: रहा,
1: रहन।
0: तो भैया मेड़बंदी वगैरह चक चक, अगर कहीं भैया बरखा बुन्नी से टूटल टाटल भी बाय तो के भैया सही कह के पानी के रोकल जाए, ताकि जवन अपने मट्टी का उपजाऊ शक्ति है वो बढ़े और मेड़ हमेशा चौड़ा बनावे। प्रयास करें कि भैया वो मेढ़न पर जौन है पेड़न का रोपण जरूर कर दे, उससे भैया अपन लाठ मेढ़ जौन है मजबूत बनल
1: मजबूत
0: भी
1: होगा।
0: रही, मिट्टी का कटान भी रुकी और पर्यावरण भी साफ सुथरा रही।
1: बिल्कुल सही बात कह लेनी है। और देख कहल जाला ना कि अपन जोन पोखरा बा तालाब बा जेन अपन मतलब गड्ढा खन ले बा आस पास में जैसे वही बात कह ले रह लिए जाए ना मछली पालन बदे, तो देखो ओपी मेड़ पे भी अगर पेड़ लगावत ही जाते देखो वो मजबूत रही।
0: आ चलत चलावत एक बार फिर से दोहरावल चाहते कि भैया जवन बरखा बुन्नी होते नदी नाला जवन उफान पर चलत हुआ, फिर से बचवा लोगन से गांव के लोगन से बस्ती आबादी का जवन लोग हुआ, भैया नदी नाला से बचें दूरी बनाए के रहें। त घड़ी का सुई इशारा करत बा चले चले के सब
1: सब पंचन
0: पंचन
1: की
0: के
1: राम
0: राम राम।
1: राम।

अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्राम जगत एफएम 102.7 पर। हम आकाशवाणी के उबरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

कार्यक्रम की शुरुआत में आप सुन रहे थे गुलजार की लिखी रचना आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में। आवाज थी आशा भोसले की, फिल्म थी इजाजत। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उबरा का प्रसारण। समय हो गया है शाम के 6:57 और 42 सेकेंड। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं सुरेश वाडिकर और लता मंगेशकर की आवाजों में। फिल्म है प्यासा सावन, गीत लिखा है संतोष आनंद ने, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: कार्यक्रम के आखिर में आप सुन रहे थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई तर्ज पर संतोष आनंद के लिखे इस गीत को। आवाजें थी सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की। फिल्म थी प्यासा सावन।
1: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
0: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
1: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
0: जो चाहिए वो ट्रैक सुनाइए।
1: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
0: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।
0: फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के उबरा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम हम और हमारा स्वास्थ्य। इसमें सुनिए चिकित्सा अधिकारी श्री रामेश्वर शरण कांदू से बबीता बत्रा की बातचीत। विषय है परिवार के सदस्यों और समाज पर नशे का प्रभाव।
3: सिर्फ एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, बल्कि ये पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है। इससे रिश्तों में दरार आती है, आर्थिक स्थिति बिगड़ती है और समाज में अपराध भी बढ़ते हैं। इसी सब पहलुओं पर भेंटवार्ता करने के लिए आज हमारे साथ हैं ओबरा परियोजना चिकित्सालय के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर शरण कांदू जी। आपका कार्यक्रम में डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है।
4: जी नमस्कार।
3: नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर रामेश्वर जी, आपसे मेरा पहला प्रश्न है, नशा किस तरह से जीवन को प्रभावित करता है और इससे बचने के क्या उपाय?
4: जी, जब जब परिवार का कोई सदस्य नशे का आदी हो जाता है तो पूरे घर का वातावरण तनावपूर्ण हो जाता है।
3: जी,
4: जिसे परिवार पर नशे का प्रभाव में देखेंगे, परिवार के लोग हमेशा चिंता, डर और असुरक्षा में जीते हैं। पति पत्नी के बीच विश्वास कम हो जाता है, बच्चों के मन पर गहरा असर पड़ता है, वे भयभीत रहने लगते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। कई बच्चे अपने माता पिता को देखकर ही गलत आदत सीख लेते हैं, जैसे आगे चलकर वो भी नशे की ओर बढ़ सकते हैं। और आर्थिक प्रभाव क्या पड़ता है, नशा धीरे धीरे परिवार की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर देता है। घर की कमाई का बड़ा हिस्सा शराब या नशे में खर्च होने लगता है। व्यक्ति की काम करने की क्षमता घट जाती है या नौकरी छूट सकती है, कर्ज बढ़ता है, कई बार परिवार को अपनी जमीन जायदाद तक बेचनी पड़ जाती है।
3: जब समय पे जाएंगे ही नहीं भाई काम पे, तो सर्विस छूटेगी, बिजनेस होगा तो वो भी खत्म होता जाएगा धीरे धीरे।
4: इससे परिवार गरीबी और आर्थिक सुरक्षा में जाता है।
3: जी।
4: फिर घरेलू हिंसा और झगड़े, नशे के कारण व्यक्ति का व्यवहार आक्रामक और असंयमित हो जाता है। घर में बार बार झगड़े होने लगते हैं, महिलाओं और बच्चों के साथ मारपीट, दुर्व्यवहार की घटनाएं आए दिन होती हैं। परिवार में शांति और सुरक्षा खत्म हो जाती है। यह स्थिति मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से हानिकारक होती है। नशे की लत व्यक्ति को उसकी जिम्मेदारियों से दूर कर देती है। बच्चे की पढ़ाई और परवरिश पर ध्यान नहीं दिया जाता है। बुजुर्गों की देखभाल नहीं हो पाती है घर में। घर का पूरा बोझ एक ही सदस्य पर आ जाता है, इसे परिवार का संतुलन बिगड़ जाता है। नशे के कारण परिवार समाज से कटने लगता है। लोग बदनामी के डर से रिश्तेदारों और पड़ोसियों से दूरी बना लेते हैं।
3: उनको यही लगता है भाई एक ही सवाल किया जाएगा बार बार, तो चलो दूरी बढ़ा लें, हम मिले नहीं तो हमसे कोई पूछेगा भी नहीं।
4: परिवार सामाजिक कार्यक्रम में जाना बंद कर देते हैं। परिवार अकेलापन और शर्मिंदगी महसूस करता है। और अगला है कि समाज पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। समाज अपराध की वृद्धि हो जाती है। नशा व्यक्ति को गलत रास्तों की ओर ले जाता है, जैसे चोरी, लूट।

0: लूट झगड़े और भी अपराध बढ़ जाते हैं
1: वही पैसा पाने के लिए फिर इंसान वही गलत तरफ
0: जी,
1: चला जाता है तो वही चोरी होने लगती है
0: क्राइम करता है नशा पूरा करने के लिए लोग गैर कानूनी काम करने लगते हैं पुलिस और कानून व्यवस्था पर इससे दबाव बढ़ता है फिर नशे से कई गंभीर बीमारियां होती हैं लीवर की बीमारी मानसिक रोग इंजेक्शन द्वारा जैसे कुछ ड्रग्स को इंजेक्शन के सहारे लेते हैं उसमें HIV एड्स और हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है और इन बीमारियों का इलाज में समाज और सरकार दोनों आर्थिक बोझ बढ़ता है फिर आता है कार्य क्षमता में कमी हो जाती है लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी नशे की वजह से व्यक्ति की कार्य क्षमता घट जाती है काम में मन नहीं लगता है बार बार छुट्टी लेना काम पे समय से नहीं जाना अनुपस्थित रहना और दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है सड़क दुर्घटनाएं नशे में वाहन चलाना एक बड़ी समस्या
1: वो तो सबसे बड़ी समस्या है ही है
0: जी दुर्घटनाओं और मौतों की संख्या बढ़ जा रही है निर्दोष लोगों की जान खतरे में पड़ती है परिवार का अपूर्णीय नुकसान हो जाता है नशा समाज की नैतिकता को कमजोर करता है जिम्मेदारी और अनुशासन की कमी परिवार और समाज के प्रति कर्तव्यों का अनदेखा नई पीढ़ी पर इसका गलत प्रभाव पड़ता है बच्चे भी आगे चलकर नशे की ओर बढ़ सकते हैं गरीबी और अशिक्षा बढ़ती है समाज लगातार कमजोर हो जाता है
1: जी।
0: तो नशा केवल एक व्यक्ति की समस्या नहीं है बल्कि यह पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करने वाली गंभीर समस्या है नशे से बचने के लिए सही जानकारी और जागरूकता की जरूरत है नशे से बचने का पहला कदम है उसे नुकसान को समझना लोगों को यह बताना जरूरी है कि नशा केवल आदत नहीं है बल्कि एक बीमारी बन सकता है स्कूल कॉलेज और समाज में जागरूकता कार्यक्रम होने चाहिए जितना जल्दी व्यक्ति इस खतरे को समझेगा उतना ही बचाव आसान होगा अच्छे पारिवारिक संबंध होने चाहिए मजबूत परिवार नशे से बचाव की सबसे बड़ी ताकत है माता पिता बच्चों से खुलकर बात करें बच्चों की समस्या और भावनाओं को समझे घर का वातावरण प्यार और सहयोग से भरा होना चाहिए जब परिवार साथ होता है तो व्यक्ति गलत रास्ते पे जाने से बचता है जी अक्सर नशे की शुरुआत गलत संगत से होती है ऐसे दोस्तों से दूर रहें जो नशे के लिए दबाव डालते हैं सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताएं ना कहना सीखें एक बहुत महत्वपूर्ण कौशल होता है ना कहना खाली समय और तनाव नशे की ओर धकेल सकते हैं इसलिए खाली ना रहें नियमित व्यायाम करें खेल कूद संगीत पढ़ाई या किसी हॉबी में समय अपना व्यतीत करें अच्छी नींद और संतुलित आहार रखें और स्ट्रेस मैनेजमेंट तनाव प्रबंधन कई लोग तनाव से बचने के लिए नशा शुरू करते हैं जो कि गलत तरीका है तनाव से बचने के लिए ध्यान और योग ज्यादा असरदार होते हैं अपनी समस्या किसी भरोसेमंद व्यक्ति को साझा करें जरूरत हो तो काउंसलिंग का सहारा ले सकते हैं और जैसे मैंने बताया कि ना कहना सीखे बहुत बार लोग दोस्तों या समाज के दबाव में नशा शुरू कर देते हैं आत्मविश्वास के साथ मना करना सीखें अपनी सीमाएं तय करें याद रखें आपका स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण होता है अगर किसी को नशे की शुरुआत हो रही हो तो उसे छुपाने के बजाय मदद लें डॉक्टर या काउंसलर की सलाह लें जैसे नशा मुक्ति केंद्र एडिक्शन सेंटर की सहायता ले सकते हैं शुरुआती अवस्था में इलाज आसान और अधिक प्रभावी होता है और समाज और सरकार की भी बड़ी भूमिका है इसमें नशे के पदार्थों की बिक्री पर नियंत्रण रखना चाहिए जागरूकता अभियान चलाने चाहिए युवाओं के लिए रोजगार और शिक्षा के अवसर प्रदान करने चाहिए फिर जीवन में लक्ष्य होना बहुत जरूरी है अपने भविष्य के लिए स्पष्ट उद्देश्य बनाएं सफलता के लिए मेहनत करें सकारात्मक सोच नशे से दूर रखती है नशे से बचना पूरी तरह से संभव है अगर सही जानकारी हो परिवार और समाज का सहयोग मिले और व्यक्ति खुद जागरूक और मजबूत बनेगा तो नशे से दूर रहना ही सबसे बड़ा बचाव है
1: जी डॉक्टर साहब एक प्रश्न ये है नशा छोड़ने वाले व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है और इसमें परिवार का क्या सहयोग है
0: नशा छोड़ने वाले व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी चुनौती उसको नशा छोड़ते समय उसके विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं जैसे बेचैनी घबराहट नींद की कमी पसीना चिड़चिड़ापन आदि दूसरी बड़ी चुनौती है दोबारा नशा करने की इच्छा है रिलैप्स अर्ज होता है कि हमें नशा करना है व्यक्ति कई बार मानसिक कमजोरी या पुरानी आदतों के कारण फिर से नशे की ओर आकर्षित होता है परिवार का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है इसमें मरीज को दोष देने के बजाय उसे समझना और उसे प्रोत्साहित करना चाहिए और घर का माहौल सकारात्मक बनाना चाहिए जैसे नियमित इलाज और काउंसलिंग में सहयोग उसकी छोटी छोटी सफलताओं की सराहना करना परिवार का साथ मिलने से मरीज का रिकवरी संभावना कई गुना बढ़ जाता है
1: मतलब इसमें जो है मिला जुला के परिवार का सहयोग बहुत जरूरी
0: जी,
1: है
0: जी।
1: और एक प्रश्न है क्या तनाव और अकेलापन नशे की लत को और बढ़ा देता है
0: जी हाँ तनाव और डिप्रेशन जैसे अवसाद नशे के प्रमुख कारणों में से एक है जब व्यक्ति मानसिक दबाव में होता है तो वो क्षणिक राहत टेम्पररी रिलीफ पाने के लिए नशे का सहारा लेता है शुरुआत में तो उसे लगता है कि नशा तनाव कम कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे यह आदत और फिर लत बन जाती है। असल में नशा समस्या का समाधान नहीं होता, जबकि बल्कि यह समस्या को और बढ़ाता है। इसलिए तनाव और अवसाद के लिए सही

0: है, काउंसलिंग, योग और ध्यान है। परिवार और दोस्तों से खुलकर बात करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर मनोचिकित्सक की भी मदद लेनी चाहिए
1: जी। और एक बार नशा छोड़ने के बाद दोबारा लत लगने की संभावना रहती है क्या?
0: हाँ, नशा छोड़ने के बाद दोबारा लत लगना उसकी संभावना रहती है। एक और इसीलिए इसको बोलते हैं क्रोनिक रिलैप्सिंग कंडीशन, जैसे खासकर शराब और ड्रग्स के मामले में होता है। कुछ सामान्य कारण, जैसे पुराने दोस्त, व्यक्ति को लगता है कि मुझे पुराने दोस्त मिलने चाहिए, जो मुझे उसी माहौल में जाने का
1: माहौल चाहिए,
0: माहौल में जाने का मन करता है। फिर कभी कभी घर में तनाव आ जाता है, तो फिर वो तनाव को मैनेज करने के लिए फिर उसे नशा करने की इच्छा होती है, और भावनात्मक रूप से वो कमजोर होता है, या कभी आत्मविश्वास की कमी होती है उसके अंदर, ना, या कभी कभी इलाज चल रहा होता है नशे का, है ना, तो वो बीच में आधा अधूरा छोड़ देते हैं दवाई, है ना, तो उससे भी फिर वो रिलैप्स हो जाता है। इसलिए नशा छोड़ने के बाद भी लंबे समय तक उनकी निगरानी और उनकी काउंसलिंग और उनका सपोर्ट जरूरी होता है।
1: अच्छा, इसमें फिर वही परिवार का सहयोग चाहिए।
0: जी जी जी।
1: और समाज में नशे की बढ़ती समस्या को कैसे रोका जा सकता है?
0: नशे की समस्या को रोकने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी होता है, जैसे व्यक्ति स्तर पर जागरूकता और आत्मनियंत्रण, स्वस्थ जीवन शैली अपनाना, और पारिवारिक स्तर पर क्या कर सकते हैं, परिवार में बच्चों के साथ खुल के बात करें, है ना, उनके साथ खेलें, उनके साथ समय बिताएं,
1: जो वो कह रहे हैं उसकी बात सुने, मतलब क्या प्रॉब्लम है, क्यों बताना चाह रहे हैं हमको,
0: उनके साथ कहीं घूमने जाना हो तो घूमने जाएं, मतलब उनके साथ समय बिताएं, और जो में अच्छे संस्कार डालें, उनकी निगरानी करें। समाज और सरकार स्तर पर क्या कर सकते हैं, समाज जिस सरकार स्तर पर कई अभियान चलते हैं, जैसे नशा मुक्ति अभियान और शिक्षा, और नशीले पदार्थों की बिक्री पर सख्त नियंत्रण करना चाहिए सरकार के द्वारा। स्कूल और कॉलेजों में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए, तो बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित भी किए जाते हैं। नशा मुक्ति केंद्रों की संख्या को भी बढ़ाना चाहिए, और उनमें जो नशा मुक्ति केंद्र की गुणवत्ता वाले नशा मुक्ति केंद्र खोले जाने चाहिए।
1: जागरूक तो होना ही चाहिए भाई, मान ली किसी का बच्चा कर रहा है और हमें मालूम है तो हमें बता देना चाहिए उसके पेरेंट्स को कि भाई हमें ऐसा शक हो रहा है, बता देना ही, तभी वही जागरूकता हुई कि भाई हमने
0: अवेयर रहना चाहिए नशे को लेकर।
1: बिल्कुल
0: जी। और मीडिया की भी भूमिका होती है इसमें, सकारात्मक संदेश फैलाना। नशा एक गंभीर सामाजिक और स्वास्थ्य समस्या है, लेकिन सही जागरूकता, परिवार का सहयोग और समस्या पर चार से इसे रोका और छोड़ा जा सकता है।
1: जी, तो आज की इस भेंट वार्ता के माध्यम से हमने जाना कि नशा न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि उसके परिवार और पूरे समाज को भी प्रभावित करता है। समय रहते अगर हम जागरूक हो जाएं और अपने आसपास के लोगों का सहयोग करें तो इस समस्या से काफी हद तक बचा जा सकता है। डॉक्टर रामेश्वर शरण कांदू जी, आपने बहुत अच्छी हम लोग को जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर शरण कांदू से बबीता बत्रा की भेंट वार्ता। विषय था परिवार के सदस्यों और समाज पर नशे का प्रभाव। कार्यक्रम हम और हमारा स्वास्थ्य अब समाप्त हुआ।
3: गाइए, गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात,
4: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
5: हेलो,
3: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
4: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए,
3: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
4: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक, योर स्टाइल,
3: ओनली ऑन AIR ओबरा।
2: इस समय आप जुड़े हैं आकाशवाणी ओबरा के साथ 102.7 FM पर। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि रात्रि 9:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा चर्चा का विषय है कानून की बात। इस कार्यक्रम का अनुप्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। ये थी जानकारी हमारी इस सभा के कुछ शेष कार्यक्रमों की। FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के उभरा केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा करें हमारे अगले प्रसारण की।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।
2: हर घर

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4-4-4-7 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट में जापान के बिजनेस लीडर्स के साथ की बैठक, कहा साझा विकास प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है दोनों देशों की साझेदारी। जापान की कंपनियों के 3,195 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की हुई वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग, परियोजनाओं से 10,000 से अधिक रोजगार के अवसर होंगे सृजित। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रश्न पत्र लीक के मामले को रोकने के लिए परीक्षा सुधार पर राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से मांगा जवाब। और झांसी में बेतवा नदी पर बने पारीक्षा बांध को वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर्स के रूप में मिली मान्यता, 14 अक्टूबर को फ्रांस में मिलेगा अवार्ड। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नई दिल्ली में यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 में जापान की प्रमुख कंपनियों के सीईओ और बिजनेस लीडर्स के साथ राउंड टेबल मीटिंग की। कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने निवेशकों का आभार जताते हुए कहा कि भारत और जापान की साझेदारी साझा विकास प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन, स्पष्ट नीति और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर सुधार करते हुए प्रदेश आज भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। श्री योगी ने कहा कि जापान के पास दशकों का औद्योगिक अनुभव है, वहीं उत्तर प्रदेश के पास उसे आत्मसात करने और आगे बढ़ाने वाली युवा पीढ़ी है।
5: जापान के पास दशकों का औद्योगिक अनुभव है, उत्तर प्रदेश के पास उसे आत्मसात करने और आगे बढ़ाने वाली युवा पीढ़ी है। हम चाहते हैं जापानी कंपनियां उत्तर प्रदेश को अपना सेकंड इंडस्ट्रियल होम माने। उत्तर प्रदेश सरकार आप सभी के साथ रिलायबल पार्टनर के रूप में खड़ी है।
3: मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्ष में सरकार ने सेफ्टी, स्टेबिलिटी और स्पीड के साथ प्रदेश के बजट को, जीएसडीपी को और प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की दिशा में राज्य मजबूती से आगे बढ़ रहा है।
5: बीते 9 वर्षों में हमने सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के बजट को, उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी को, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में हम मजबूती के साथ आगे बढ़े हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल कॉस्ट एंड गुड गवर्नेंस का एडवांटेज आज उत्तर प्रदेश के पास है।
3: इस मौके पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। उन्होंने जापान के उद्योग जगत से भारत और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में निवेश करने का आह्वान किया। वहीं कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास कर रही है कि अनुसंधान और तकनीकी नवाचार सीधे किसानों तक पहुंचे। श्री चौहान ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं और ये वैश्विक निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है।
6: जापान के साथ भारत की पार्टनरशिप केवल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप नहीं है, ये डेवलपमेंट की पार्टनरशिप है, ये डिप्लोमेसी की पार्टनरशिप है और ये डिग्निटी की पार्टनरशिप है। उत्तर प्रदेश आपको केवल इन्वेस्टर नहीं मानेगा, आपको डेवलपमेंट पार्टनर मानेगा, क्योंकि हम मानते हैं इन्वेस्टमेंट का सर्वोत्तम रूप है जो कैपिटल के साथ साथ कैपेबिलिटी भी लाती है, टेक्नोलॉजी के साथ टैलेंट लाता है और प्रॉफिट के साथ प्रॉस्पेरिटी भी लाता है और रेवेन्यू से ज्यादा रिलेशन मजबूत करता है।
3: इस मौके पर जापान की दो कंपनियों के 3,195 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग की गई। यीडा क्षेत्र में लगने वाली इन परियोजनाओं से 10,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 का आयोजन 18 से 23 अगस्त तक उत्तर प्रदेश और दिल्ली में किया जा रहा है। इसमें 200 से अधिक जापानी उद्योगपति, सीईओ, कारोबारी प्रतिनिधि और नीति निर्माता हिस्सा ले रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में प्रश्न पत्र लीक जैसे मामले रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए एक स्थायी तंत्र शामिल हो। नीट यूजी 2026 पेपर लीक से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सचिव को राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को नंदन नीलेकणी समिति द्वारा संशोधित रूप में लागू करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का विवरण देते हुए एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज भारत दौरे पर आए नाइजीरियन प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने वहां के कृषि और खाद्य सुरक्षा राज्य मंत्री डॉ अलियु साबी अब्दुल्लाही से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना समेत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे सकारात्मक और जमीनी बदलावों पर विस्तार से चर्चा की। श्री मौर्य ने बताया कि कृषि खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में प्रदेश में सरकार अच्छा काम कर रही है, जिसके कारण दुनिया के अलग अलग देशों से दुनिया की सरकारें अपने प्रतिनिधिमंडल को भेज रही हैं।
7: प्रदेश की दृष्टि से हम लोग, चाहे वह कृषि का क्षेत्र हो चाहे खाद्य प्रसंस्करण का क्षेत्र हो, हम लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और उसी का आकर्षण दुनिया के अलग अलग देशों से वहाँ की सरकारों के द्वारा अपना प्रतिनिधिमंडल भेजा जा रहा है। यह सब कुछ जो होता हुआ हम देख रहे हैं, ये देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो लगातार 9 वर्ष से अधिक समय से अच्छा काम उत्तर प्रदेश में किया गया, उसका सुपरिणाम।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहारनपुर और दिल्ली में 10 परिसरों पर छापेमारी की है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा आज 3 दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंचे। श्री मिश्रा कल से शुरू हो रही समिति की बैठक में शामिल होंगे। इससे पहले उन्होंने मंदिर परिसर में चल रहे निर्माण की जानकारी देते हुए बताया कि पूर्ण स्मृति स्तंभ के शीर्ष पर न्यास का लोगो लगाया जाना बाकी है, बाकी सारे कार्य पूरे हो गए हैं।
8: निर्माण अब मंदिर परिसर में पूर्ण हो गया है। पूर्ण स्मृति स्तंभ था, उसका अब आज कल में सबसे ऊपर जो लोगो लगता है वो अब लगना बाकी है रामकथा संग्रहालय। उसमें अभी हम लोग समीक्षा करेंगे सभी गैलरीज की, जो स्क्रिप्ट होती है, स्टोरी लाइन होती है, स्टोरी लाइन पूरी हो चुकी है।
3: रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास की 529वीं जयंती आज चित्रकूट और उनकी जन्मस्थली राजापुर में श्रद्धा भक्ति और उल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर राजापुर सहित चित्रकूट जिले में धार्मिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रमों की

0: घूम रही। राजापुर स्थित तुलसी स्मारक में श्रद्धालुओं ने रामचरितमानस का पाठ किया। वहीं तुलसीदास के जीवन, संघर्ष, भक्ति और आध्यात्मिक यात्रा पर आधारित विभिन्न लीलाओं का मंचन किया गया। जिले के विभिन्न विद्यालयों में भी तुलसी जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। विद्यार्थियों ने काव्य पाठ, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास के साहित्यिक योगदान को याद किया। झांसी में बेतवा नदी पर बना 140 वर्ष पुराना पारिक्षा बांध अब वैश्विक विरासत का हिस्सा बन गया है। प्रमुख सचिव सिंचाई और जल संसाधन अनिल गर्ग ने बताया कि पारिक्षा बांध को फ्रांस के मार्सेई में 14 अक्टूबर को होने वाली 26वीं आईसीआईडी इंटरनेशनल कांग्रेस और 77वीं इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग के दौरान WHIS अवार्ड 2026 दिया जाएगा। इस बांध को इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरीगेशन एंड ड्रेनेज ने वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर्स के रूप में मान्यता दे दी है। ये बांध करीब 140 साल से बुंदेलखंड की सिंचाई व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये बेतवा नहर प्रणाली का मुख्य हिस्सा है। बलिया बलिदान दिवस के अवसर पर आज जनपद बलिया में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने किया। कार्यक्रम में शहीदों के बलिदान और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के योगदान को नमन करते हुए नई पीढ़ी को उनके आदर्शों से प्रेरणा लेने का संदेश दिया गया। परिवहन मंत्री ने कहा कि 19 अगस्त का दिन पूरे देश के साथ साथ बलिया के लिए विशेष गौरव का दिन है। प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट में जापान के बिजनेस लीडर्स के साथ की बैठक। कहा साझा विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है दोनों देशों की साझेदारी। जापान की कंपनियों के 3,195 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की हुई वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग। परियोजनाओं से 10,000 से अधिक रोजगार के अवसर होंगे सृजित। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रश्न पत्र लीक के मामले को रोकने के लिए परीक्षा सुधार पर राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से मांगा जवाब। और झांसी में बेतवा नदी पर बने पारिक्षा बांध को वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर्स के रूप में मिली मान्यता। 14 अक्टूबर को फ्रांस में मिलेगा अवार्ड। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 401.6 मीटर। कार्यक्रम कानून की बात। इस कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 से संबंधित जानकारी। और जानकारी देने जा रहे हैं स्पंदन श्रीवास्तव, भेंट करता है अतिश कुमार श्रीवास्तव।
2: नमस्कार श्रोताओं, कानून की बात पे आकर आपका स्वागत है। मैं हूं अतिश श्रीवास्तव। श्रोताओं, आपने अक्सर सुना होगा, देखा होगा कि जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं अक्सर बहुत बुरी दशा में रहते हैं। कभी तो उनको घर से निकाल दिया जाता है, कभी वो सड़कों पर रहते हैं, कभी रेलवे स्टेशन पर रह रहे हैं, कुछ तो जो ओल्ड एज होम है वहां पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, बहुत बुरी दशा में रहते हैं। तो इसी संबंध में 2007 में एक कानून बना था, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम। इसमें समय समय पर सुधार होते रहे हैं और वर्तमान में क्या स्थिति है और हम कैसे इस बारे में बातचीत कर सकते हैं, अपने श्रोताओं को बता सकते हैं, इस विषय में हमने अपने स्टूडियो में बुला रखा है स्पंदन श्रीवास्तव को। आप एडवोकेट हैं हाईकोर्ट लखनऊ में। स्पंदन, आपका स्वागत है स्टूडियो में।
3: धन्यवाद।
2: तो क्या आप समझते हैं हमारे जो श्रोता हैं उन्हें क्या जानना चाहिए इस कानून के बारे में, इस जो वरिष्ठ नागरिक का कानून है इस विषय में?
3: सबसे पहली बात तो मैं सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि हमें जरूरत क्यों पड़ी ऐसे कानून की। जब हम अपने आसपास जो देखते हैं कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं, माता पिता हैं, उन्हें एक समय के बाद देखभाल की जरूरत होती है। नीति आयोग की 2024 की रिपोर्ट बताती है कि जितने वरिष्ठ नागरिक हैं उसमें से करीबन 1% ओल्ड एज होम्स में रह रहे हैं, जो कि हो जाता है करीब करीब 15 करोड़। और एक प्रोजेक्शन है कि 2050 तक करीब करीब 32 करोड़ वरिष्ठ नागरिक ऐसे होंगे जिनको ओल्ड एज होम्स में रहने की जरूरत
2: पड़ेगी। मतलब ऑलमोस्ट आजकल के डबल,
3: क्योंकि हमारा जो समाज में परिवार का स्ट्रक्चर है, पहले जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, लोग एक साथ रहा करते थे, अब एकल परिवार देखने को मिलते हैं। बच्चे किसी और शहर में या किसी और देश में नौकरी कर रहे हैं, अपने माता पिता को समय नहीं दे पाते। और अक्सर तो यह भी देखने को मिलता है पुत्र या पुत्री ने संपत्ति अपने नाम लिखवा ली और फिर माता पिता को कहीं सड़क पर छोड़ा है ताकि उनकी देखभाल ना करना पड़े, उनको समय ना देना पड़े।
2: तो माता पिता कम एज के भी हो सकते हैं?
3: जी, माता पिता कम एज के भी हो सकते हैं अगर वो ऐसी परिस्थिति में है जहां वो अपनी देखभाल खुद नहीं कर सकते
2: जी।
3: तो जो उनकी संतान है, ग्रैंड चिल्ड्रन है, पोते पोती नाती नातिन, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने माता पिता का या दादा दादी नाना नानी का ध्यान रखें, देखभाल करें।
2: मतलब इसमें पुत्र और पुत्री दोनों की जिम्मेदारियां हैं?
3: जी बिल्कुल, पुत्र और पुत्री विवाहित हों या अविवाहित हों, जी उनका बराबर दायित्व है कि वो अपने माता पिता की देखभाल करें। 1956 के हिंदू दत्तक तथा भरत पोषण अधिनियम में मेंटेनेंस की, भरण पोषण देने की बात की गई है, जिसके अंतर्गत माता पिता अपने बच्चों से, अपनी संतानों से भरण पोषण मांग सकते हैं। अगर वो नहीं देते तो वो फैमिली कोर्ट के पास जाकर के उसकी मांग भी कर सकते हैं
2: जी।
3: पर इस अधिनियम की एक लिमिटेशन है कि ये सिर्फ हिंदू पे ही अप्लाई होता है, बाकी धर्म के लोगों पर नहीं लागू होता। वहीं पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का धारा 144 BNSS क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में यही चीज धारा 125 में थी, जो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में धारा 144 में है, जो कि किसी भी माता पिता को यह अधिकार देता है कि वो मैजिस्ट्रेट के पास जाकर के अपनी संतानों से भरण पोषण मांग सकते हैं। पर इन दोनों अधिनियम की समस्या यही थी कि ये सीमित हैं सिर्फ माता पिता के भरण पोषण के लिए, ये वरिष्ठ नागरिक की बात नहीं करते थे। सभी वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण देने के लिए ये कानून 2007 में बनाया गया। अलग अलग राज्यों ने इसे अलग समय पर लागू किया। 2012 में ये उत्तर प्रदेश में लागू होता है, जिसके अंतर्गत माता पिता ही नहीं सभी वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण के दायित्व को स्थापित किया जाता है।
2: जहां तक मैं समझता हूँ, वरिष्ठ नागरिक मतलब कि 60 साल की उम्र पूरी करने वाले।
3: जी, वरिष्ठ नागरिक वो उनको कहा जाएगा जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है, लेकिन वहीं पर
2: स्त्री हो या पुरुष।
3: जी, स्त्री या पुरुष दोनों ही 60 साल से ऊपर जो हैं वो वरिष्ठ नागरिक हैं। परंतु माता पिता की जो बात की गई है अधिनियम में, वो किसी भी उम्र के हों, अगर वो अपनी देखभाल नहीं कर सकते हैं तो वहां पर संतानों का दायित्व पड़ता है।
2: इस पर जी एक बहुत बड़ी बात मुझे लग रही है कि जो माता पिता के पुत्र पुत्री जो पैदा हुए होते हैं, बायोलॉजिकल हैं, इसके अलावा एक और है हमारे यहाँ जो गोद लिए जाते हैं, जो बच्चे गोद लिए जाते हैं, जो अडॉप्ट किए जाते हैं किसी परिवार से किसी बच्चे को, तो उनके बच्चों का क्या दायित्व बनता है?
3: जी, ये अधिनियम जब देखभाल की बात करता है, भरण पोषण की बात करता है, तो ये फर्क नहीं करता कि बच्चों को गोद लिया गया है या बायोलॉजिकल बच्चे हैं। जब बच्चों को माता पिता ने पाला है तो उनका दायित्व भी बराबर बनता है। वो बायोलॉजिकल बच्चे हों या उन्हें गोद लिया गया हो या फिर सौतेले माँ बाप भी हों, तब भी बच्चों का दायित्व बनता है कि वो उनकी देखभाल करें, उनका भरण पोषण करें।
2: तो इसकी क्या सिस्टम होता, कैसे प्रोसेस करेंगे? मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे या कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, कहाँ पर जा सकते हैं ये लोग?
3: जी, अधिनियम इसके लिए ट्रिब्यूनल्स बनाता है। पहला मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल बनता है, वो सब डिविजनल ऑफिसर यानी जो SDM जिसको हम कहते हैं, SDM के अंडर मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल बनता है। मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल का दायित्व होता है कि वो वरिष्ठ नागरिकों की एप्लीकेशन को सुने, उनको उसका संज्ञान ले और 90 दिन के अंदर उस पर फैसला सुनाए। साथ ही इस अधिनियम में ये प्रावधान किया गया है कि किसी वकील की जरूरत नहीं होगी इस एप्लीकेशन को डालने के लिए।

0: इस एप्लीकेशन जो मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल में डाली जाएगी, ये जो वरिष्ठ नागरिक हैं या माता पिता हैं वो सीधे स्वयं जा सकते हैं, या फिर उनका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव, कोई भी उनका प्रतिनिधि जा करके इस एप्लीकेशन को ट्रिब्यूनल में दे सकता है।
1: अच्छा, मतलब कि इस स्थिति में नहीं है, स्वास्थ्य नहीं ठीक है या और कोई दिक्कत है, तो उनको कोई जानने वाला या कोई वेल विशर कर सकता है।
0: जी, उनका कोई भी प्रतिनिधि किसी भी रूप में जा सकता है। इसमें एडवोकेट्स को रोका गया है ताकि किसी तरह का खर्च माता पिता पर
1: ना पड़े,
0: ना पड़े।
1: बहुत अच्छी बात है।
0: अगर वरिष्ठ नागरिक मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल के फैसले से असंतुष्ट होते हैं तो अपील का भी प्रावधान किया गया है। अपीलेट ट्रिब्यूनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अंतर्गत काम करता है और मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल के डिसीजन आने के 60 दिन के अंदर वो अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील भी दायर कर सकते
1: जो
0: हैं।
1: डीएम के अंडर में है।
0: जी
1: तो जी, आपने बताया कि एसडीएम कोर्ट से अगर असंतुष्ट है तो वो डीएम के कोर्ट में जा सकता है। अगर वहां से भी असंतुष्टि मिलती है किसी वरिष्ठ नागरिक को, तो वो आगे कहाँ जा सकता है?
0: अपीलेट ट्रिब्यूनल के निर्णय से असंतुष्ट हैं, अधिनियम के अनुसार अपीलेट ट्रिब्यूनल का जो निर्णय होता है वो आखिरी होता है, पर हाई कोर्ट में इसके लिए रिट डाली जा सकती है।
1: तो स्पंदन जी, हम लोगों ने अपेलेट न्यायालय के बारे में बात कर ली, तो इसमें जो सरकारें हैं हमारी, उनका क्या दायित्व है वरिष्ठ नागरिकों के प्रति?
0: जी, इस अधिनियम में सरकार की तरफ भी कुछ दायित्व दिया गया है वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए, उनके भरण पोषण के लिए। सबसे पहली चीज तो ये अधिनियम कहता है कि राज्य सरकार हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक ओल्ड एज होम को स्थापित करेगी, और साथ ही सबसे ज्यादा जो वरिष्ठ नागरिकों को देखा जाता है तकलीफ होती है इलाज कराने में, हेल्थ केयर में, हॉस्पिटल में लाइनों में लगने में, तो राज्य सरकार पे ये दायित्व डालता है अधिनियम कि हर सरकारी अस्पताल में कुछ बेड्स होंगे जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए ही रिजर्व किए जाएंगे,
1: जी
0: और साथ ही जो लाइनें लगती हैं, देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा समय लगता है सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने में, तो उसके लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग लाइन बनेगी और कोशिश की जाएगी कि उन्हें जल्दी से जल्दी इलाज
1: मिल सके।
0: मिल सके।
1: इस पर जी, अगर किसी वरिष्ठ नागरिक को किसी अस्पताल में या कहीं पब्लिक प्लेस पे कोई दुविधा होती है या परेशानी होती है, तो उसकी शिकायत कहीं कर सकता है क्या?
0: जी, केंद्र सरकार ने एक एल्डर लाइन करके राष्ट्रीय स्तर पर हेल्पलाइन बनाई है जिसका नंबर है 14567, और इस पर कोई भी वरिष्ठ नागरिक अपनी समस्या के लिए फोन करके उन्हें बता सकता है, उनसे सुझाव ले सकता है और अपनी कंप्लेंट भी दर्ज करा सकता है।
1: दायित्व है उसका।
0: जी, और अगर अस्पताल में कोई तकलीफ होती है तो उसके लिए सीएमओ के पास या हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन के पास उसकी कंप्लेंट की जा सकती।
1: तो स्पंदन जी, एक बात और कि जैसे किसी माँ बाप का एक बेटा है, उसकी शादी हुई कि असमय कुछ मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे स्थिति में जो प्रॉपर्टी है माँ बाप की, वो उनकी बहू को जाएगी या नहीं जाएगी? तो और फिर बहू का क्या दायित्व होगा?
0: ये अधिनियम जब माता पिता की बात करता है तो उसमें तो सिर्फ बच्चों का दायित्व है, बहू या दामाद पर इसका दायित्व नहीं डाला गया है, पर वहीं पर जहां पे वरिष्ठ नागरिकों की बात करता है तो वरिष्ठ नागरिक ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी कोई अपनी संतान ना हो, तो उसके लिए इस अधिनियम में ये प्रावधान किया गया है जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी संपत्ति जिस भी व्यक्ति को जा रही है, जो भी उनका उत्तराधिकारी है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उनका भरण पोषण करें, और अगर वो किसी को संपत्ति गिफ्ट दे रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं इस शर्त के साथ कि उनकी देखभाल की जाएगी, और वो व्यक्ति अपने इस कर्तव्य से हटता है, उसको पूरा नहीं करता, उनकी देखभाल नहीं करता, जैसे अक्सर देखने को मिलता है किसी व्यक्ति ने वरिष्ठ नागरिक से संपत्ति अपने नाम करा ली, गिफ्ट करा ली, और फिर उनको सड़क पे छोड़ाया या देखभाल करने से मना कर दिया, तो
1: अक्सर
0: ये अधिनियम ये प्रावधान देता है कि इस तरह की परिस्थिति में ये माना जाएगा कि उसने दबाव डाल करके उस संपत्ति को अपने नाम कराया है, और उस संपत्ति का जो ट्रांसफर हुआ है, जो संपत्ति उस वरिष्ठ नागरिक से किसी और व्यक्ति को दी गई है जो अपना दायित्व पूरा नहीं कर रहा है, उसको वापस वरिष्ठ नागरिक को कर दिया जाएगा। या ऐसा भी

0: सकता है कि कोई, जैसे कि आजकल समाचारों में सुनने को मिलता है कि बहू जो है उसके पति की मृत्यु हो जाती है या मर्डर हो जाता है, तो क्या इसमें बहू का जो दायित्व है वो कहीं और शिफ्ट हो जाती है या दूसरी शादी कर लेती है? तो ऐसी स्थिति में क्या संज्ञान लेती है कोर्ट या खुद उसको दावा करना पड़ेगा?
1: जी, इस अधिनियम में दावा भी किया जा सकता है और ट्रिब्यूनल जो है, जो मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल एसडीएम के अंडर बनाया गया है, वो खुद भी इसका संज्ञान ले सकता है। और अगर उदाहरणतः जैसे किसी माता पिता ने अपने पुत्र को संपत्ति दी, गिफ्ट की या ट्रांसफर करी, और असमय उस संतान की मृत्यु हो जाती है, हाँ, बहू या दामाद को चली जाती है, और वो उन वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करने से मना कर देते हैं, तो वो संपत्ति भी वापस उन वरिष्ठ नागरिक को चली जाएगी।
0: बहुत अच्छी बात है। तो स्पंदन जी, विषय तो इतना बड़ा है कि हम चाहे जितनी बात करें लेकिन हमारी घड़ी हमें इजाज़त नहीं देती कि हम ज़्यादा बातचीत बढ़ाएं। तो हम अपनी जो बातचीत है यहीं समाप्त करते हैं, और आगे कभी भविष्य में हम कभी फिर इस विषय पर बातचीत करेंगे तो आपको फिर आमंत्रित करेंगे आप इस स्टूडियो में। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की जानकारी। जानकारी दे रहे थे हाईकोर्ट के एडवोकेट स्पंदन श्रीवास्तव और भेंटकर्ता थे अतीश कुमार श्रीवास्तव। इसी के साथ आज का कानून की बात यह कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से
3: एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के उभरे केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सबरस।

0: नवाब आरजू के लिखे इस गीत को अभी आप सुन रहे थे अनु मलिक के संगीत निर्देशन में। आवाज थी विनोद राठौड़ और आशा भोसले की। फिल्म थी बाजीगर।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए वो भी ऐप से, वाह।
2: अनजान ऐप से बचें।
3: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण। कार्यक्रम है सबरस। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, सरदार अंजुम का लिखा हुआ, संगीत दिया है उत्तम जगदीश ने। आवाजें हैं पंकज उधास और अनुराधा पौडवाल की। फिल्म है गवाही।

कार्यक्रम के आखिर में आपने सुना सर मूवी का फिल्म कुमार सानू की आवाज में। रचना थी कातिल शिफाई की और संगीत दिया था अनु मलिक ने। इसी गीत के साथ कार्यक्रम सबरस समाप्त होता है।

एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। पेश कार्यक्रम सुगम संगीत, इसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं चंद गैर फिल्मी गजलें। पहली गजल आइए सुनते हैं बशीर बद्रू की लिखी हुई, जगजीत सिंह की आवाज में।

इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण, कार्यक्रम है सुगम संगीत। श्रोताओं, एक आवश्यक सूचना सुनिए। सोनभद्र में अत्यधिक बारिश, भारी वर्षा की संभावना, जिला प्रशासन ने आमजन से सतर्क रहने की अपील की। कार्यालय जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण सोनभद्र, भारत मौसम विज्ञान विभाग क्षेत्रीय मौसम केंद्र लखनऊ द्वारा जारी प्रभाव आधारित मौसम पूर्वानुमान एवं चेतावनी के अनुसार दिनांक 18, 19 एवं 20 अगस्त को जनपद सोनभद्र एवं आसपास के क्षेत्रों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा

आम जन से सतर्क एवं सुरक्षित रहने की अपील की गई है। भारी वर्षा के कारण जनपद के निचले एवं जलभराव वाले क्षेत्रों, नदी नालों, मौसमी जलधाराओं, जलप्रपातों, बांधों एवं जलाशयों के आसपास जलस्तर में अचानक वृद्धि हो सकती है, जिसके साथ ही निचले पुलों एवं सड़कों पर जलभराव से आवागमन बाधित होने, कच्चे एवं असुरक्षित भवनों संरचनाओं को क्षति पहुंचने, पेड़ों के गिरने तथा विद्युत एवं अन्य सामुदायिक सेवाओं में व्यवधान की संभावना बनी रह सकती है। जिला अधिकारी द्वारा जनपद वासियों से अपील की गई है कि मौसम की स्थिति को देखते हुए अनावश्यक यात्रा से बचें तथा प्रशासन एवं मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों एवं दिशा निर्देशों का पालन करें। आमजन के लिए आवश्यक सावधानियां। निचले एवं बाढ़ संभावित क्षेत्रों में जाने से बचें। नदी नाले, जलप्रपात, तालाब एवं जलाशयों के पास न जाएं, विशेषकर जलस्तर बढ़ने की स्थिति में। तेज बहाव वाले पुलों एवं जलमग्न सड़कों को पार करने का प्रयास न करें। कच्चे पुराने एवं असुरक्षित भवनों का अस्थायी संरचनाओं से दूर रहें। बारिश के दौरान पेड़ों के नीचे आश्रय लेने से बचें। भारी वर्षा के दौरान अनावश्यक यात्रा स्थगित करें तथा वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। वर्षा के दौरान नालों एवं मौसमी जलधाराओं को पार करने का जोखिम न उठाएं। किसान खेतों से अतिरिक्त पानी की निकासी की व्यवस्था रखें तथा भारी वर्षा के दौरान अनावश्यक कृषि कार्य एवं उर्वरक कीटनाशक के प्रयोग से बचें। जिला प्रशासन द्वारा आमजन से अपील की गई है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल अधिकृत स्रोतों से प्राप्त मौसम संबंधी सूचनाओं पर ही भरोसा करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण। अगली गजल आइए सुनते हैं, हसरत जयपुरी की लिखी हुई, मोहम्मद हुसैन और अहमद हुसैन की आवाजों में।

अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की गाई इसी गजल के साथ आज का सुगम संगीत का ये प्रोग्राम अब समाप्त होता है। एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के उबरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे कल्याण जुयानंद जी की बनाई तर्ज पर आनंद बख्शी के लिखे इस गाने को। आवाजें थी मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, फिल्म थी आमने सामने। आकाशवाणी उबरे से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। समय हो गया है रात्रि के 8:22 और 43 सेकेंड। रेडियो सेट पे मैं प्रियंका, और अगला गीत आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म जूली से।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को। संगीत दिया था राजेश रोशन ने और फिल्म थी जूली। कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म अनुरोध का ये गीत। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के उबरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। इसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं आज गैर फिल्मी गीत। सबसे पहले आइए सुनते हैं सोनू निगम की आवाज में ये गीत।

जाने जा, ये सच है कि मैं अपनी मोहब्बत का इजहार कभी खुलकर न कर सका, मगर मेरी आंखें हमेशा मेरे दिल की हालत बताती रही, और तू है कि मुझसे बेखबर आज भी है।

आकाशवाणी उबरा से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत और इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं गैर फिल्मी गीत। समय हो गया है रात्रि के 8:36 और 33 सेकेंड। रेडियो सेट पे मैं प्रियंका और अगला गीत आइए सुनते हैं अदनान सामी की आवाज में।

इस वक्त आपने ट्यून किया है आकाशवाणी ओबरा और कार्यक्रम है सुगम संगीत। कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं फाल्गुनी पाठक की आवाज में ये गीत।

0: फाल्गुनी पाठक के गाए इसी गीत के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत समाप्त होता है। एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8:45 होने वाले कुछ एक क्षणों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की 5 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी। 4 राज्यों में 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के चौड़ीकरण को स्वीकृति। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, उच्च गुणवत्ता और लागत प्रभावी अवसंरचना सर्वोच्च प्राथमिकता। केंद्र सरकार उप ठेकेदारी मानदंडों की समीक्षा करेगी। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के युग में सटीक, विश्वसनीय और नागरिक केंद्रित सरकारी संचार का आह्वान किया। ईरान ने खाड़ी देशों को अमरीका के सैन्य अभियानों में सहयोग न करने की चेतावनी दी। नीदरलैंड्स में पुरुष FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत ने गोल टेस्ट में मेजबान श्रीलंका को 165 रन से हराया। मानव सुथार ने पहली बार 10 विकेट झटके। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
2: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd and 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4थी लाइन, गुमेड़ी पुंडी गुदुर की 3री और 4थी लाइन तथा कटक पारादीप की 3री तथा 4थी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है। श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है।
2: बिहार में बहुत इम्पोर्टेंट आज हाईवे का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4-लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट इसमें हो। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लागत को संतुलित बनाए रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवसंरचना विकास की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित सुरंग और पुल सम्मेलन 2026

0: प्लानिंग इन एडवांस, प्लानिंग इन डिटेल बनाकर वी नीड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर दैट। तो ये हमारे लिए अनप्रेडिक्टेबल जियोलॉजी एंड ग्राउंड कंडीशंस ये बहुत बड़ी समस्या है, इसका बहुत अध्ययन होना चाहिए। अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने इसके ऊपर कुछ किया तो उसका उपयोग ओवरऑल देश को होगा। बाद में एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस एंड नेचुरल हजार्ड्स, लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, हेवी स्नोफॉल, अभी बहुत कठिन है, ये जो जिला में काम कर रहे हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि प्रौद्योगिकी, मीडिया, अर्थशास्त्र और लोकनीति की दुनिया तेजी से बदल रही है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भारतीय सूचना सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि सोशल मीडिया ने सूचना प्राप्त करने, साझा करने और उस पर प्रतिक्रिया देने के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया है।
2: Social media has fundamentally transformed the way citizens receive, share and respond to information. You should use social media platforms not only to inform the engaged, but also to listen, understand and respond to concerns of the people.
1: राष्ट्रपति ने कहा कि जब सूचना तेजी से फैलती है तो आधिकारिक संचार में सटीकता, विश्वसनीयता और जनहित का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में वन अधिकारियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वन, वन्यजीव, जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ विकास को आगे बढ़ाना होगा। उपराष्ट्रपति ने आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में वर्ष 2025-27 बैच के भारतीय वन सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित किया। झारखंड में 26 दिन से चल रहा विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन, राज्य सरकार द्वारा कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने और कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश देने के बाद समाप्त कर दिया गया है। एक रिपोर्ट।
3: आंदोलनरत छात्रों ने राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। सरकार ने 22 परीक्षाएं रद्द करने और 45 परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच कराने का फैसला लिया है, जिसमें जेपीएससी सिविल सर्विस और जेएसएससी सीजीएल भी शामिल हैं। छात्रों ने सरकार को जाँच पूरी करने के लिए 60 दिनों का समय दिया है और चेतावनी दी है कि जाँच निष्पक्ष या संतोषजनक नहीं होने पर वे फिर आंदोलन शुरू करेंगे। छात्रों ने आज शाम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक आभार यात्रा भी निकाली, जिसमें प्रमुख छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो भी शामिल हुए। देवेंद्रनाथ महतो ने 16 दिनों तक आमरण अनशन किया था। वहीं सरकार के फैसले से 2628 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां प्रभावित हुई हैं। इसके विरोध में जेएसएससी सीजीएल से नियुक्त अभ्यर्थियों ने झारखंड सचिवालय और प्रोजेक्ट भवन के बाहर प्रदर्शन कर अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर चिंता जताई। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया के तहत परीक्षा पास कर नियुक्ति हासिल की है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल ने भी जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग दोहराई है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। श्री जोशी ने इस बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करने की प्रधानमंत्री की पहल के कार्यान्वयन की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में लापता और बचाए गए बच्चों की पहचान और उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए राष्ट्रीय डीएनए और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली बनाने की मांग की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कृष्णानगर अदालत ने निर्देश दिया है कि वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 28 अगस्त तक प्रस्तुत की जाए। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन किया है। मुख्य

0: निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के अनुसार मतदान केंद्रों के युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्था का कार्य अब 24 अगस्त तक किया जाएगा। वहीं मतदाता सूची का प्रारूप 31 अगस्त को प्रकाशित होगा। आयोग के अनुसार दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 31 अगस्त से 30 सितंबर तक होगी। दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 31 अगस्त से 29 अक्टूबर तक चलेगी। अंतिम मतदाता सूची अब 4 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली के मुनिरका इलाके में मणिपुर के दो लोगों पर कथित हमले की मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दो व्यक्तियों ने मणिपुर के इन दोनों लोगों पर हमला किया। हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
1: New Delhi, the Chief Minister here, the government here.
2: केंद्र और स्थानीय सरकार ने इस क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ये एक बहुत सुंदर क्षेत्र है। मेरा मानना है कि बहुत से अमरीकी पर्यटक यहाँ आकर इसकी सुंदरता को देखना पसंद करेंगे।
1: I think a lot of Americans would enjoy coming here and seeing the beauty and the opportunities that exists here.
0: श्री गोर जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमेरिका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ कोई वार्ता नहीं चल रही है और न ही निर्धारित है। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 312 हो गई है। 4611 लोग घायल हैं और 290 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति अबिलाडो डे ला एस्प्रियेला ने आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। भारत ने कोलंबिया को समर्थन देते हुए पिछले सप्ताह राहत सामग्री की पहली खेप के रूप में 20 मीट्रिक टन सामग्री भेजी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल के लिए तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। नीदरलैंड्स के एम्स्टलफेन में एफआईएच हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त को मजबूत किया। भारत ने गोल में 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। मानव सुथार ने इस मुकाबले में कुल 131 रन देकर 10 विकेट हासिल किए हैं। मानव ने पहली पारी में 76 रन देकर 4 विकेट झटके। दूसरी पारी में उन्होंने 55 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
3: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 326 अंक यानी 0.42% लुढ़क कर 76,910 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 77 अंक यानी 0.32% नीचे आकर 24,078 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 8 पैसे कमजोर हुआ और 95.76 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की 5 अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी। 4 राज्यों में 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के चौड़ीकरण को स्वीकृति। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। राष्ट्रपति

0: calls for accurate, credible and citizen-centric government communication in social media era. Iran warns Gulf nations against facilitating U.S. military operations. India beat Pakistan 5-3 to qualify for second round of men's FIH Hockey World Cup in the Netherlands. That is all in the news at 9. Good night.
1: FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के उभरे केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आमने सामने फिल्म से। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

अभी आप सुन रहे थे अनीता फिल्म में लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर को गीत लिखा था राजा मेहंदी अली खान ने, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। इस वक्त आकाशवाणी ओबरा से आप सुन रहे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है 102.7 FM पर।

0: अभी आप सुन रहे थे दिल्ली कथक फिल्म में किशोर कुमार और आशा भोसले को गीत लिखा था शैलेंद्र ने और संगीत था रवि का।
1: मेहमान आएंगे हो सकता है, इंडिया मैच जीतेगा ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
2: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।

कार्यक्रम के आखिर में आप सुन रहे थे शैलेंद्र के लिखे गीत को शंकर जयकिशन की बनाई तर्ज पर, आवाजें थी मन्ना डे और लता मंगेशकर की, फिल्म थी चोरी चोरी। इसी गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का उभरा केंद्र 102.7 FM पर। हमारा अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है सार्वजनिक बैंकों का आधुनिकीकरण, युवा ऋण और डिजिटल विस्तार पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान के जोनल प्रमुख और वरिष्ठ बैंकिंग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र कुमार भसीन और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं पत्रकार सौरभ शुक्ला।
2: सरकारी बैंकों की तरफ से दो दिन पहले ही एक मंथन किया गया और उसमें तमाम मुद्दे निकलकर सामने आए और साथ ही वित्त मंत्रालय ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई और एक रूपरेखा तय हुई कि आने वाले दिनों में बैंकिंग सेक्टर को किस तरह से काम करना है। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नरेंद्र कुमार भसीन साहब मौजूद हैं, जो जोनल हेड हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के, और साथ ही साथ अश्विनी राणा जी भी मौजूद हैं जो पुराने बैंकर हैं। आप दोनों से चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले नरेंद्र जी, आपसे समझना चाहेंगे कि 2 अक्टूबर से जो युवाओं के लिए एक महीने का विशेष बैंकिंग अभियान शुरू होने जा रहा है, इस अभियान के जरिए युवाओं को बैंकिंग से जोड़ने की आखिर जरूरत क्यों महसूस हुई?
3: नमस्कार। सो बेसिकली जो दो दिन का जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें जो 7 थीम थे, उन थीम में से एक सेकंड थीम था जो बैंकिंग फॉर यूथ करके था, और जो अभी इवन फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण मैम ने भी अपने इनॉग्रल सेशन में बोला कि 29% जो पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन हमारी जो कंट्री की है, एंड 15-29 ईयर्स ऑफ एज के, तो जो ये लोग UPI इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल बैंकिंग को समझते हैं। तो अभी जो हमारे जिस तरह के 7 मुद्दे भी हैं और जिस तरह हम बैंकिंग कंसोलिडेशन करके मेन पर्पस था कि 4 बड़े बैंक हो, और इवन प्रधानमंत्री ने भी इंडिपेंडेंस डे के उसमें कहा कि उसमें से एक ऐसा बैंक होना चाहिए जो टॉप 5 ग्लोबल में आए। तो अब उसी मुद्दों को लेते हुए देखा जाए तो ये कि यंग जो जनरेशन है जो बैंकिंग को समझती है और बैंकिंग प्रोडक्ट को लाती है, तो इसीलिए ये फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि 2 अक्टूबर से जो एक यूथ कैंपेन दैट इज अ बैंकिंग फॉर यूथ करके लाया जाए। और अभी पब्लिक सेक्टर बैंक को जरूरत है कि हम वापस कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और स्किल सेंटर में जाएं, जहां पे वहां के लोगों को, बच्चों को, यंग जो आप कह रहे हैं कि जेन जी, इनको फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में लाया जाए। हालांकि प्राइवेट सेक्टर बैंक ऑलरेडी कैंपस प्लेसमेंट में जाते हैं, अपना एम्प्लॉयज हैं, तो उससे एक नया लाइफ साइकिल अप्रोच जो हम अभी देख रहे थे कस्टमर का, हम सोचते हैं कि जब से वो खाता खोलता है लाइफ साइकिल अप्रोच, बट अब लाइफ साइकिल की जगह हमें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स की जरूरत है, कि ताकि ये कैंपेन का भी यही फोकस है कि जैसा ज्यादा लोग टैक्स सेवी हैं यंग पीपल, और 66% UPI ट्रांजैक्शन जो 18-29 साल के बच्चे, क्योंकि ये मोबाइल बैंकिंग और ये बैंक में कम विजिट करते हैं तो थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, तो इसी को ये सोचते हुए कि UPI और इन बैंकिंग प्रोडक्ट्स को बढ़ाते हुए, और मेनली जो हमारा विकसित भारत 2047 का भी यही है कि स्ट्रांग बैंक बने, बड़े बैंक बने, और इसीलिए अगर देखा जाए तो इसके लिए हमें यंग जनरेशन जो आज खाता ही नहीं और अदर तरह के क्रेडिट ट्रांजैक्शन में यूज करे, तो ये पर्पस है जिससे मतलब एक नया वेव बैंकिंग इंडस्ट्री में आएगा।
2: बिल्कुल। अश्विनी राणा जी, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि आपने एक लंबा समय दिया है बैंकिंग व्यवस्था को, तो 16 साल से ऊपर के युवाओं को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए बैंक जमीनी स्तर पर क्या क्या कदम उठाएंगे, क्या चुनौतियां हैं, और क्या आप एक कमी देखते हैं जो बैंकों की तरफ से युवाओं को आकर्षित करने के लिए अभी है और उसे आने वाले दिनों में पूरा किया जाएगा?
4: देखिए, एक अच्छा है कि भाई सरकार युवाओं को बैंकिंग के साथ जोड़ने की बात कर रही है। जैसे नरेंद्र जी ने कहा कि भाई बैंकों के साथ युवाओं को आज जोड़ने की जरूरत नहीं है, को जोड़ना चाहिए था स्कूल टाइम से। स्कूल में जब बच्चा एंटर होता है उसी समय उसका अकाउंट खुले, उसकी जो फीस है उसी अकाउंट में से चली जाए, तो उसको एक फीलिंग आती है कि मैं पर्सनल बैंकिंग कर रहा हूँ। और आज का जो युवा है वो बिल्कुल डिफरेंट है। पहले बैंकिंग थी क्या, बैंकिंग विद स्माइल। आज क्योंकि वो बैंक जाता ही नहीं है, बहुत ऐसे युवा हैं कि खाता खोलने से 10-10 साल हो गए, वो बैंक कभी नहीं गए, वो सिर्फ ऐप से ही। लेकिन सरकारी बैंकों को उस जो जनरेशन है उसको अट्रैक्ट करने के लिए वो जो एप्स हैं या टेक्नोलॉजी है उसको आज के युग में लाना पड़ेगा। प्राइवेट बैंक उसमें बहुत पहले से हैं, तो इसलिए बैंकों को उस टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्व करना होगा, और उसके लिए वैसी ही आपको ह्यूमन कैपिटल, HR जो है, ह्यूमन रिसोर्स जो है, वो वैसे ही चाहिए। मशीनें सिर्फ नहीं काम कर सकती, ह्यूमन कैपिटल का भी टच बहुत जरूरी है।
2: बिल्कुल। तो मशीनें काम नहीं कर सकती और एक बैंकिंग व्यवस्था में ऐसे काम करने वाले लोग होने चाहिए जो जेन ज़ी के हैं या जो उनके कस्टमर हैं, उपभोक्ता हैं, उनकी बातों को समझे और उनकी उम्मीदों पर खरे भी उतरे। और नरेंद्र जी, सरकार युवाओं के लिए एक कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की भी बात कर रही है, ये इसकी रूपरेखा किस तरह की हो सकती है, और खासतौर पर युवाओं की अगर हम बात की जाए तो उन्हें किस तरह की सुविधाएं मिल सकती है इसके जरिए?
3: देखिए अभी जैसे मैंने बताया कि जो अश्विनी जी ने सही बोला कि राइट फ्रॉम स्कूल डेज से अगर बच्चों को बैंकिंग तो यही थीम इस जो अपना कैंपेन है कि कैंपस टू कैरियर जो स्कूल से कैरियर और कैंपस टू कैरियर और जो आज का जो यंग जनरेशन है वो जैसे हमारे फॉर्म्स हैं अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स हैं लंबे लंबे फॉर्म है साइन करना क्रेडिट अब ये जो बच्चे आज के जो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में इनमें आइडियाज होंगे और ये यंग बच्चे एंटरप्रेन्योर और बिजनेस अब उसमें ये प्रॉब्लम आएगी कि अगर यंग बच्चा उसका कोई क्रेडिट तो हिस्ट्री होगी नहीं ना सिविल होगी कि पहली बार लोन रहा तो इसलिए हमें डॉक्यूमेंटेशन और क्रेडिट कोलेटरल से उनके आइडियाज उनके कैश फ्लो जो उनकी उस चीजों को देखना पड़ेगा और मेनली ये कि इस कॉन्फ्रेंस का जो यंग जनरेशन का एक नया इनिशिएटिव लिया जो है और उसी से ये कि आगे नए नए आइडियाज आएंगे तो जो अगर इंटरनेशनल लेवल पे हमें जाना है ग्लोबली तो यंग क्योंकि हमारे कस्टमर भी यंग जनरेशन है तो यंग प्रोडक्ट है और जैसे अश्विनी सर ने बोला कि अब कस्टमर आता ही नहीं है बैंक तो कस्टमर आएगा नहीं तो ह्यूमन टच और पर ह्यूमन टच बहुत जरूरी भी है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आर्टिफिशियल ही रहेगी क्योंकि ह्यूमन जहां बैंकिंग है या कस्टमर है दोनों ह्यूमन बीइंग है तो इसलिए यंग जनरेशन को कैसे अट्रैक्ट करना है थ्रू मोबाइल थ्रू इवन सीधारम मैम ने ये भी बोला कि उसमें अट्रैक्ट करने के लिए जैसे हम लाइफ स्टाइल वोचर्स देते हैं या रिवॉर्ड पॉइंट देते हैं वेलनेस है तो इन चीजों को सारे नए प्रोडक्ट्स लाने पड़ेंगे अट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि यंग जनरेशन जो अकल का जो हमारा फ्यूचर है बैंकिंग का वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके
2: बिल्कुल ताकि भविष्य सुदृढ़ रहे उस दिशा में ये कोशिश की जाएगी अश्विन जी एक बड़ी चुनौती ये है कि आज का यूथ इंटरनेट पे रहता है तमाम सोशल मीडिया एप्स पर रहता है और उसके जरिए कहा जाए तो फायदा होने के बजाय कई मौकों पे नुकसान भी हो जाता है युवा गुमराह हो जाता है और वो तमाम अलग अलग एप्स जिनके कोई क्रेडेंशियल्स नहीं होते हैं वहां से भी वो लोन ले लेता है तो क्या ये कहना सही होगा कि फॉर्मल जो बैंकिंग व्यवस्था से उसे जोड़ दिया जाएगा तो युवा चाहे पढ़ाई की बात हो नौकरी की बात हो बिजनेस की बात हो या निवेश जैसे अलग अलग वित्तीय फैसले हो उन जरूरतों को इन बैंकों के जरिए पूरा किया जा सकता है
4: नहीं बहुत अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है और उनके पास लिक्विडिटी भी है मतलब प्रॉब्लम नहीं है कि भाई उनको फंड्स की प्रॉब्लम हो या कोई भी चीज की प्रॉब्लम हो बस ये है कि भाई उसके अंदर उनकी समय के अनुसार अपने आप में बदलाव ये जरूरी है और जहां तक आप ऐप की बात कर रहे हैं ऐप के लिए सरकार को एक बहुत सख्त कदम उठाना पड़ेगा जैसे और चीजों के लिए उठाते हैं मेटा है या दूसरी कोई भी एजेंसी जो भी प्लेटफॉर्म है कि भाई इस तरह की ऐड आती ही क्यों है अब मैं बता रहा हूं आपको बैंक वाले कोई पेंशनर का कार्ड इशू नहीं करते लेकिन आप देखेंगे फेसबुक पर हर बैंक की ऐड आ रही है कि आप जो है पेंशनर हैं तो आप इस बैंक का अपने पेंशन कार्ड बनवा लीजिए और लोन लेने की और इतने भ्रामक प्रचार हैं उसके ऊपर सरकार को सख्त कानून बना के ताकि लोग उसमें ट्रैप ना हो जाए भाई पढ़ा लिखा युवक तो समझ जाएगा लेकिन जो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है ऐसे भी बहुत युवक हैं वो उस झांसे में ना आए वो भी हमारी बैंकों की और सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए
2: बिल्कुल तो हाल ही में सरकार ने तमाम ऐसे ऐप्स को बैन किया है और इस तरह के ऐड भी बैन किए हैं उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में इन नियम कानूनों को और सख्त किया जाए नरेंद्र जी इस दो दिनों के मंथन की अगर हम कहें तो उससे निष्कर्ष क्या निकलेगा क्या बैंक सिर्फ इस नई व्यवस्था के जरिए खाता खोलने पर ही उनका फोकस रहेगा या युवाओं को लंबे समय तक अपने साथ जोड़ने की भी कोई फुल प्रूफ एक योजना एक प्लानिंग की जा सकती है इसके जरिए
3: नहीं कॉन्फ्रेंस जैसे मैंने बताया कि 7 थीम थे 7 मुद्दे थे इसमें जिसमें डिपॉजिट मोबिलाइजेशन पहला मुद्दा था जिसमें जो कि बैंक के लिए कासा और एफडी वगैरह जो होता है उसी के बेस पर क्रेडिट होता है सेकंड जो बैंकिंग फॉर यूथ था फिर इन्वेस्टमेंट साइकिल ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर जो कि इंटरनेशनल की तरफ जाना है तो हमें बड़े बड़े एग्रीकल्चर पे फोकस तो है ही और इवन क्रेडिट कार्ड बिजनेस को भी रिवैम करेंगे नए तरीके से और फिर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग तो सभी जो मुद्दों का यही था कि इसमें अब एक्शनेबल होना चाहिए टाइम बाउंड होना चाहिए और पीपल सेंट्रिक आउटकम मतलब कि जो हम डिस्कस करेंगे क्योंकि बेसिकली आपने देखा होगा बजट फरवरी में एक हाई पावर कमेटी बैंकिंग के लिए एक बनाने की जो हुई थी तो बेसिकली उसी का अनाउंसमेंट इवन फाइनेंस मिनिस्टर इनॉग्रेशन ने बोला कि आजकल में अनाउंस हो जाएगा और उसी के लिए ये जो कॉन्फ्रेंस है जिसमें 125 एमडी सीएमडी बड़े बड़े लोग आए जो यहाँ पे जो डिस्कशन हुआ दो दिन का वो एक मटेरियल रेडी हो रहा है जो मटेरियल उस कमेटी को प्रेजेंट किया जाएगा तो मेनली उसमें से यूथ का जैसे आपने बताया कि यही था एफएम का भी था कि यूथ को हमें जल्दी कैप्चर करना पड़ा ये नहीं कि हम उनको वेट करने की जब उनकी जॉब लग जाए या फर्स्ट सैलरी अकाउंट खोले और जैसे अश्विन ने बताया कि बैंकिंग के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं राइट फ्रॉम द एजुकेशन लोन से लेके स्किल डेवलपमेंट आजकल अप्रेंटिसशिप भी आ रही है इंटर्नशिप्स भी स्टूडेंट को दिए जाए ताकि उनको यंग कस्टमर को एजुकेशन फाइनेंस से लेके फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट पहला क्रेडिट business opportunities, investment, ताकि वो wealth creation की तरफ जा सके। और public sector bank का जैसे already हमारे पास number of branches हैं, हमारे पास education loan है, तो इसी तरह एक responsible create करके जो young customer को a customer for life हमेशा के लिए, ताकि हम जैसे हम customer relationship management में कहते हैं, ताकि उनको acquire करके और उनको एक jobs मिलती हैं तो नया रोजगार बनता है, business development होता है, तो इसलिए catch these people young जो है, वो ही हमारा मुद्दा इसमें। और इसी के ऊपर finance minister ने भी कहा कि जितना जल्दी हम यूथ को एंगेज करेंगे उतना ही वो रिस्पॉन्सिबल भी रहेंगे, और जब उनको सेविंग के हैबिट्स पता चल जाए, एफडीज वगैरह या अदर देन अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड, तो उनको अलग अलग इन्वेस्टमेंट के पैटर्न पता चल जाएंगे। तो इसलिए कि स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल जर्नी उनको जितना जल्दी हम फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में ले आए वो हमारे लिए भी फायदा। और बेसिकली ये जितने भी हमारे साथ जो दो दिन डिस्कशन हुआ, बेसिकली वही है कि कोलैबोरेशन है और अपना कस्टमर वेलफेयर के ऊपर फोकस है और एक ट्रस्ट के ऊपर, क्योंकि टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी इनके ऊपर भी डिस्कशन था कि जितना जितना सेफ बैंकिंग हम इसको करेंगे, तो डाटा एनालिटिक्स की बातें भी थी। तो ये सारे जितने भी मुद्दे आइडियाज है इनको अब फॉर्मली करके जो हाई कमेटी उसके आगे प्रेजेंट करके आगे ले जाया जाएगा।
2: दूसरे दिन के इस कॉन्फ्रेंस में जो चर्चा हुई थी वो जो थीम थी उसमें एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर वैल्यू चेन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने को लेकर बात हुई, और साथ ही प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात की गई। खासतौर पर ये वो कर्ज होते हैं जिसके तहत किसानों को, छोटे कारोबारियों को और कमजोर वर्ग को कर्ज दिया जाता है। तो आप आज के दौर में इस तरह के कर्ज में सबसे बड़ी दिक्कत क्या देखते हैं जो आने वाले दिनों में इस कॉन्फ्रेंस के बाद बैंक दूर कर सकते हैं?
3: तो प्राइवेटी सेक्टर लेंडिंग में वो ये कि जो हम लोन वगैरह देते हैं उसका, फिर अभी एनपीए तो काफी हमारा रिजॉल्व हो गया, जो 14.6 से 0.39 आ गया। अब प्राइवेटी सेक्टर लेंडिंग हो गया, एग्रीकल्चर फार्मिंग, उसमें बेसिकली रिकवरी और क्रेडिट मॉनिटरिंग का ज्यादा फोकस रहता है। तो इस कॉन्फ्रेंस में इसका भी फोकस भी किया कि एसेट क्वालिटी तो इम्प्रूव हुई है हमारी सब्सटेंशियली, और एसेट क्वालिटी को फर्दर अब ये हमारा कि फोकस ज्यादा कि नंबर और टारगेट पे नहीं होना चाहिए कितने लोन करने हैं हमें, क्वालिटी लोन होने चाहिए ताकि जिस पर्पज के लिए, और फिर फॉलो अप रिकवरी और मॉनिटरिंग जो सबसे जो मेन रीजन रहता है कि एनपीए के हो जाते हैं कि हम लोन तो दे देते हैं पर उसके बाद मॉनिटरिंग नहीं हो पाती, रिकवरी नहीं हो पाती। तो इसी कॉन्फ्रेंस का ये कि इसको और लोगों को, और ये नहीं कि जब किसान या जो भी प्राइवेटी सेक्टर अप्रोच करे तो बैंक को भी टाइम टू टाइम असेसमेंट करना पड़ेगा कितना कब कब उसको लोन चाहिए या आगे उसको फर्दर ग्रोथ करना है। तो रोल काफी चेंज होने वाला है बैंकिंग का, जो क्रेडिट मॉनिटरिंग था कि एनपीए को अब एक बार कम हो गया ये नहीं कि दोबारा हो जाए, तो उसको मॉनिटरिंग करने के लिए फॉलो अप और थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच उसमें लानी पड़ेगी।
2: बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच लानी पड़ेगी, बैंकिंग काफी बदल गई है। तो अश्विनी जी आपसे ये समझना चाहेंगे, इसी सवाल का एक एक्सटेंशन कहें, तो सरकार ने बैंकों से कहा है कि कर्ज देने के अपने लक्ष्य में किसी भी तरह की कमी ना रहने दे, तो इसे सुनिश्चित करने की अगर हम बात करें तो बैंक अपने अंदर क्या बदलाव करेंगे, क्योंकि ब्रांच पहले से है, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही मौजूद है, अब एक सिर्फ अप्रोच को बदलने की जरूरत है, तो वहां क्या बदलाव आप देखते हैं होगा आने वाले दिनों में?
4: आपने सिर्फ लोन ही नहीं देना, लोन देने के बाद उसकी फॉलो अप प्रॉपर यूज हो रहा है, उसकी इंस्टॉलमेंट आ रही है, रिकवरी है, वो चीजें भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए टारगेट ज्यादा ना फिक्स करके उसको इनिशिएट करके कि भी हाँ भाई ज्यादा तो लोगों तक वो पहुंचे, वो एक बहुत जरूरी है। और उसके लिए आपको कुछ स्पेसिफिक ब्रांचेस, मुझे लगता है जैसे आपने एक हाउसिंग लोन के लिए, कार लोन के लिए कुछ अलग अलग ब्रांचेस स्पेसिफिक बना दी, वैसे इनके लिए आपको स्पेसिफिक ब्रांचे और उस तरह का जो स्टाफ है वो भी रखना पड़ेगा। अब आप एक देखिए, आज गोल्ड लोन कितना पॉपुलर है, गोल्ड लोन बैंक भी करना चाहते हैं, आप उसके लिए स्पेसिफिक ब्रांचें बना दीजिए, तो उससे क्या होगा वो उस ब्रांच के अंदर उसका जो उसको स्कैन करने का कि गोल्ड ओरिजिनल है वो भी रहेगा, गोल्ड को सिक्योरिटी के तरीके से भी। तो यानी हर अब एग्रीकल्चर जो लोन है वो हर ब्रांच में तो नहीं हो सकता, तो उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर आपको उस तरह की वर्क फोर्स भी एडिशनल डालनी पड़ेगी अगर वहाँ आप कोई चीज को अचीव करना है, तो वो एक बहुत जरूरी है। और दूसरा आप जैसे डिपॉजिट की बात, मोबिलाइजेशन की, हम यंगस्टर को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन आज यंगस्टर की आदत क्या है, बाय टुडे पे टुमारो, तो वो डिपॉजिट की बात ही नहीं सोचता। तो आपको डिपॉजिट का कोई ऐसा अट्रैक्टिव प्लान लाना पड़ेगा ताकि वो अट्रैक्ट हो, पुराने एफडी और सेविंग से वो आपके पास, और डिपॉजिट के बिना बैंकिंग नहीं हो सकती भाई, आपके पास अगर फंड्स नहीं है तो आप फाइनेंस कहाँ से करो। तो आपको जो डिपॉजिट के जो

0: प्रोडक्ट्स हैं वो भी उन जेंजी के अकॉर्डिंगली आपको बनाने पड़ेंगे, तभी आप वो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन भी कर सकते हैं
1: जी। और एक जो क्रेडिट कार्ड को लेकर के और एक क्रेडिट व्यवस्था को लेकर के भी खास अहम चर्चा हुई है, एक थीम थी, उसको लेके आपका अश्विनी जी क्या कहना है कि वो कितना जरूरी रहेगा आज के माहौल में, खासतौर पर युवाओं की बात करें तो?
0: उनकी एक सोच है बाय टुडे पे टुमारो, तो वो उनके लिए क्रेडिट कार्ड एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, मतलब बैंकों के लिए भी क्योंकि वो एक टारगेट है उनके लिए, लेकिन उसके अंदर भी आपको देखना पड़ेगा कि वो उसको प्रॉपरली यूज कर रहे हैं और उसकी रिपेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आज भी आप देखोगे तो बहुत सारे बैंकों का जो एनपीए है या वो क्रेडिट के कार्ड के कारण ही है, क्योंकि वो उस तरह उसकी आप सर्विस नहीं कर पाते उसको देने से पहले, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे क्रेडिट कार्ड हैं, अब नए भी फिर आप ले आएंगे तो क्रेडिट कार्ड क्योंकि वो विदाउट एनी सिक्योर लोन नहीं है वो, तो उसको आप किसको दे रहे हैं? अब आप देखें कि मेट्रो स्टेशन पर भी क्रेडिट कार्ड बांट रहे होते हैं, अरे भाई उसकी क्रेडिबिलिटी तो हो कि भाई वो पे कर सके, जितनी उसकी लिमिट बना रहे हो उसकी सैलरी तो इतनी हो, तो उसको भी आपको सारी चीजों को फोकस करके उसको जो है प्रमोट और करने की जरूरत है,
1: यानी कस्टमर स्पेसिफिक लिमिट और इन सारी चीजों पर ध्यान रखते हुए उसको दिया जाएगा, तो एक तरह से एनपीए पे कहें काबू
0: पाएगा। भाई सिर्फ ये नहीं कि हाँ भाई नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड हमने इतने दे दिए, आप किन को दे रहे हो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट।
1: बिल्कुल, आंकड़े बढ़ाने से बात नहीं बनेगी। नरेंद्र जी, जिस तरह से डिजिटल व्यवस्था तेजी से बढ़ रही है बैंकिंग सेक्टर में, उसके साथ ही साथ साइबर फ्रॉड भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है, तो ग्राहकों को और उनके पैसे को सुरक्षित रखने के लिए आपको क्या लगता है बैंकों की तरफ से किन नए प्रयासों की जरूरत है?
2: नहीं, ऑलरेडी इसमें काफी बैंकों ने भी, इवन गवर्नमेंट में भी, और काफी अवेयरनेस है और साइबर सिक्योरिटी के अवेयरनेस, इवन आरबीआई का भी आपने देखा, आरबीआई कहता है उनके वेबसाइट में, और इवन डिजिटली, तो क्योंकि आपके पास सही है कि एक तरह हम कह रहे हैं कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, यूपीए बढ़ रहा है, पर उधर से साइबर फ्रॉड भी बढ़ रहे हैं और तरह तरह के फ्रॉड आ रहे हैं, लाइक हमने फिशिंग है, विशिंग, ईमेल से भी ओटीपी आ गया, तो अवेयरनेस का काफी बैंक्स भी, हर बैंक अपने देखा गया है। अभी हमने अभी रिसेंटली एक बैंक का ट्रेनिंग किया, तो उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग से पहले 15 मिनट एक साइबर के ऊपर की टाइप्स ऑफ साइबर डूज एंड डोंट की कैसे, तो कस्टमर अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट, डिजिटल रेस्ट जैसे आपने देखा कि आजकल काफी, तो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर प्लस अपना गवर्नमेंट की हेल्पलाइन है, I4C इंटरनेशनल अपना कोऑर्डिनेशन सेंटर है 1930 पे कॉल करके, बट वो ये कि जितना अवेयरनेस लाएंगे जितना लोगों को, अब ओटीपी के ऊपर काफी हुआ तो अब लोगों को ओटीपी समझेंगे कि नहीं करना, बट कई बार फिशिंग ईमेल आ जाता है या कोई मिक्स करके कोई मैसेज आ गया, तो टाइम टू टाइम हर फॉरम में इवन बैंक्स अपनी मीटिंग्स में कस्टमर अवेयरनेस, इवन फ्रंटलाइन स्टाफ को भी बुलाएगी हर तरह के अवेयरनेस लाए, बिकॉज जब तक हम साइबर फ्रॉड को कंट्रोल नहीं करेंगे तो डिजिटल का जो हमारा बेनिफिट हो रहा है वो नुकसान में, तो इसलिए काफी बैंक्स, गवर्नमेंट, इवन साइबर, हर पुलिस स्टेशन भी, साइबर पुलिस स्टेशन भी जहाँ पे हेल्प है कॉल कर सकते हैं आप इमीडिएटली, आप जो वेबसाइट है हेल्पलाइन साइबर सिक्योरिटी की 1930 और ये www. ये साइबर, तो साइबर सुरक्षा कवच में वहां जाके अपना आधार कार्ड और नंबर लोड कीजिए, और जो भी आपका कोई स्कैम या फेसबुक या जो भी इंस्टाग्राम हैक हुआ है तो इसमें आजकल काफी फास्टली, और ये कि आपको जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे उतना जल्दी उसका समाधान मिल रहा है।
1: तो अश्विनी जी, आम ग्राहकों को इसने किस तरह से भागीदारी देनी चाहिए कि वो एक अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए साइबर ट्रैप में ना आए?
0: ग्राहकों को तो निश्चित रूप से क्या है कि जो जो गाइडलाइंस बैंक जो है इशू करते हैं टाइम टू टाइम, भाई किस तरह के, अब जैसे SMS है तो SMS मतलब किसी बैंक के नाम का आया है अगर, और उसके आगे S लगाए तो ही वो जेन्युइन बैंक का मैसेज है, अदरवाइज अगर उसमें लास्ट एक S अल्फाबेट नहीं है तो वो नहीं है। दूसरा, उसकी जो वेबसाइट है उस पे भी आप जाते हो या मेल है bank.in, बैंकों की आज एक ऑथेंटिकेटेड मेल है, उसके अलावा किसी को नहीं, कहीं से भी फोन आता है तो आप उसको रिस्पॉन्ड मत कीजिए, कोई मैसेज आता है विदाउट एस आप उसको रिस्पॉन्ड मत कीजिए, तो ही बच सकते हैं। उसके साथ साथ बैंकों को भी डाटा सिक्योरिटी के लिए अभी बहुत सारी चीजें आरबीआई कर रहा है, म्यूल हंटर उन्होंने एक ऐप बना दिया, लेकिन वो म्यूल हंटर ऐप तब काम करता है जब वो फ्रॉड हो चुका होता है, उससे पहले वो अकाउंट, क्योंकि अकाउंट तो एक ऑर्डिनरी अकाउंट है, वो कब म्यूल अकाउंट बनता है जब फ्रॉड और उसमें पैसा आ जाता है, तो उसको भी जो बैंकों का जो टेक्नोलॉजी है उसको भी और जो है अपग्रेड करने की जरूरत है कि भाई कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो फ्रीक्वेंटली हो रही है, क्योंकि ब्रांच में बैठा, कई बार लोग कहते हैं कि ब्रांच मैनेजर जिम्मेवार है, ब्रांच मैनेजर को पता ही नहीं, क्योंकि सारा कुछ सेंट्रल सर्वर से जो ट्रांजैक्शन है वो मूव होती है, तो वहां पर इतनी ज्यादा उसको आपको अवेयरनेस चाहिए कि वो आपके पास वो टेक्नोलॉजी चाहिए, वैसे स्टाफ चाहिए। अब

0: जरूरी है।
1: नरेंद्र जी, दो दिन की बैठक में सात अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, तो अब इन चर्चाओं को जमीन पर लागू करने के लिए अगला कदम बैंकों की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या होगा?
2: सरकार का यही मैंने बताया कि जो जितने भी डिस्कशन हुए, तो जैसे FFM ने बोला कि जितना भी मटेरियल यहाँ पे इकट्ठा हुआ, उसी सारे मुद्दों को एक कंसोलिडेट करके जो अब नेक्स्ट जो मीटिंग होगी, जो हमारा बेसिकली इन सात दिनों का जो अब निचोड़ देखें, तो बेसिकली वही है कि टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट के ऊपर बात हुई, कस्टमर सेंट्रिसिटी क्या रहेगा कि अल्टीमेटली देखो डिजिटल हो या साइबर सिक्योरिटी से बचाना, तो मेनली कस्टमर सेंट्रिसिटी और कस्टमर इम्प्रूवमेंट के ऊपर ही। तो कोलोब्रेशन मैसेज है यहाँ पे, कॉमन मैसेज की आईटी और डिजिटल ये सबको एक, और मेनली डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, तो जैसे अश्विनी सर ने बोला कि बैंक के लिए इम्पोर्टेंट है उसी के बेस पे, और यूथ बैंकिंग को जो हम ऐड करेंगे तो उससे हमारा जो एक नया वेव उसमें आ जाएगा। और बट अल्टीमेटली देखा जाए तो क्वेश्चन यही उठेगा कि पब्लिक सेक्टर नंबर ऑफ ब्रांचेज है, उनका स्केल काफी बड़ा है, टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशनल की बात करें तो ये कि अब हम लार्जर बैलेंस शीट्स के ऊपर तो फोकस अब धीरे धीरे हमारा मूव हो रहा है, तो और बैंक्स को थोड़ा एजाइल होना पड़ेगा, थोड़ा डिजिटल के साथ सेफ एंड सिक्योर, और नेक्स्ट जो इंडिया का नेक्स्ट फेस ऑफ ग्रोथ इसी के ऊपर है, क्योंकि अगर हम विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं, तो अगर हमें बड़े बैंक बनाने हैं विद बेस्ट कस्टमर सर्विस, बेस्ट डिजिटल प्रोडक्ट, तो आई थिंक ये नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि जो भी यहाँ पे दो दिन के डिस्कशन हुए, हाई पावर कमेटी के लिए कैसा मटेरियल बनेगा, और जैसे अश्विनी सर ने कहा कि डाउन द लाइन रियलिटी से जरूर जुड़ी है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि जो आम कस्टमर होता है वहां तक उसको बेनिफिट नहीं पहुंच पाता, तो दैट इज इम्पोर्टेंट है। और जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो बैंकर कस्टमर के पास पहुंचता है, मतलब डोरस्टेप बैंकिंग है, तो वहां पब्लिक सेक्टर बैंक में भी थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि ये नहीं कि वेट करना कि कस्टमर ब्रांच में आए, तो हम एज अ बैंकर ऑल्सो वी कैन कस्टमर को वहां पे अवेयरनेस है और ऑन द स्पॉट डेमोन्स्ट्रेट करके चीजें बतानी ज्यादा जरूरी होंगी।
1: लेकिन क्या ये कहना सही होगा कि हालांकि निजी बैंक की तरफ से भी अच्छा काम हो रहा है और सरकारी बैंक की तरफ से, लेकिन सरकारी बैंक का जब दायरा बढ़ेगा तो लोगों का बैंकिंग व्यवस्था की तरफ भरोसा भी और ज्यादा मजबूत होगा, ये भी इस पहल के जरिए देखने को मिलेगा?
2: हाँ देखिए दोनों ही, क्योंकि पब्लिक सेक्टर सरकारी बैंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इसमें, और प्राइवेट सेक्टर ने जो एक नया यंग जनरेशन और इनके प्रोडक्ट्स, और क्योंकि वहां पे है कि स्टाफ भी यंग है कस्टमर भी यंग है, तो एक माइंडसेट और वो बात होती है, बट आई थिंक दोनों को मिलकर ही प्राइवेट सेक्टर बैंक तो रहे ही है, क्योंकि जितने भी हमारे सरकारी बैंक है 100 साल 118 साल कोई 120, तो वो तो हमारा रहेगा, बट जब दोनों साथ में काम करेंगे तो नेचुरली ग्रोथ तो उसमें आएगा बैंकिंग में।
1: एक अहम बदलाव अगर हम बात करें इस कॉन्फ्रेंस के बाद में, तो क्या बैंकिंग सेवा में किस तरह का बदलाव हमें दिखेगा आने वाले दिनों में?
2: बदलाव देखिए अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का काफी मुद्दा इसमें रहा, क्योंकि डिजिटली जितना अब हम डाटा एनालिटिक्स की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, तो अभी ये है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अब रुकेगा नहीं ये, क्योंकि अभी अगर 30 साल पहले देखा जाए तो मैनुअल बैंकिंग से हम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो डिजिटल है तो फिर यंग जनरेशन है, तो अगर उस दोनों को देखा जाए तो डिजिटल बैंकिंग अब धीरे धीरे बढ़ेगी, और उसको कैसे हम सिक्योर कर सकते, इसलिए साइबर सिक्योरिटी जो डिफरेंट टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, ईमेल क्वेश्चनर है, अवेयरनेस है, तो डिजिटल तो हमारा फ्यूचर है। इवन फॉर्मर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी एक लास्ट कॉन्फ्रेंस में बोला था कि भाई फ्यूचर इज मनी इज नाउ डिजिटल ही है, उसके बैक नहीं जा सकते हम, तो सीबीडीटी है या डिजिटल करेंसी या आरटीजीएस, यही हमारे ऐसे है जो अब डायरेक्टली धीरे धीरे बैंकिंग का बेस बनेंगे।
1: अश्विनी जी, 2047 तक सरकार भारत को एक विकसित देश बनाने की बात कर रही है, तो इस लक्ष्य में आप सरकारी बैंकों की सबसे बड़ी भूमिका क्या देखते हैं?
3: देखिए सरकारी बैंकों की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है, क्योंकि सरकारी बैंक जो है उनका एक जो कस्टमर बेस है वो भी एक वाइड है, और वहीं प्राइवेट सेक्टर जो है वो एक पर्टिकुलर क्लास को जो है सर्व करते हैं, तो यहाँ पर और उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, और उसके अंदर मैं बार बार इसलिए ये कहता हूँ कि अब जैसे आप कह रहे हैं कि यूथ को अट्रैक्ट करना है, 2 अक्टूबर से कर रहे हैं, तो अब यूथ को अप्रोच करने के लिए वैसा ही माइंडसेट चाहिए, अगर आप उस माइंडसेट के साथ जाएंगे, उस प्रोडक्ट के साथ जाएंगे, उस झील के साथ जाएंगे जो उनसे बात कर सकता है, तभी आप उनको अट्रैक्ट कर सकते हो, उसके लिए वैसा आपका माइंडसेट चाहिए और वैसे ही आपके पास वर्क फोर्स भी चाहिए।
1: नंदा जी, जो एक नए तरह के वर्क फोर्स और नए स्वरूप की बात की जा रही है, तो आपको क्या लगता है क्या नए प्रोडक्ट्स बैंक लेकर के आ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने एक लंबा दौर देखा है बैंकिंग व्यवस्था में बदलाव का। पहले बैंक सिर्फ कैश जमा करने और देने का काम करते थे, फिर वहां पे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की भी एंट्री होती है, और अब उसका स्वरूप लगातार बढ़ता जा रहा है।

0: है। तो आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है, क्या नए तरह के प्रोडक्ट, किस तरह के प्रोडक्ट्स दिखाई दे सकते हैं जो लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो?
1: देखिए बैंकिंग प्रोडक्ट्स अगर इस पर आरबीआई देखे तो हमारे वो ट्रेडिशनल वही है, सेविंग है, करंट है या फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट। बट अभी जो यूथ जो अगेन उसमें इंटरेस्टेड नहीं है एक यंग जनरेशन, क्योंकि डिपॉजिट में अगर हम 3-4% की बात कर रहे हैं या 6-7% की, तो वो फिर यंग जनरेशन रिस्क थोड़ा ज्यादा ले सकते, तो इसलिए मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्ट में जाते हैं। तो वहां पे इनको अपना म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं, अब बैंक्स के कई बैंक्स ने टाइप भी किया हुआ है कि म्यूचुअल फंड हो गए आपके, यूलिप प्रोडक्ट या यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस, जहाँ की थोड़ा सा रिस्क है, बट उसके साथ जो यंग जनरेशन है या जो नया कस्टमर हमारा जो बैंकिंग में आएगा, उनको थोड़ा सा मार्केट के ऊपर थोड़ा सा स्टडी करने का, थोड़ा सा स्टॉक मार्केट, तो बेसिकली न्यू प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, जैसे यूनिट लिंक इंश्योरेंस या एफडी के साथ है, या आप जैसे रेकरिंग डिपॉजिट की जगह अब सिप्स सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, हर महीने आप हजार हजार करते हैं, वो मार्केट के उतार चढ़ाव देखते रहे अल्टीमेटली। तो यही है कि अब जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है बैंकिंग कस्टमर भी, यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि डिपॉजिट पे अब कस्टमर कम होते जा रहे हैं, बिकॉज लोग म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट या यूनिट लिंक इंश्योरेंस या इन चीजों के ऊपर। तो यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन हमें बनाने पड़ेंगे, कॉम्बो प्रोडक्ट जिसे कह सकते हैं, जैसे अब जनरल इंश्योरेंस है, मेडिक्लेम है, पीपीएफ वगैरह, तो अब हर तरह का उसमें एक फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बनाना पड़ेगा। अब जो आज का जो बैंकर है वो खाली बैंकर नहीं है, अब कस्टमर के साथ वेल्थ क्रिएशन है कि अगर 1,00,000 रुपया देता है तो उसको कैसे डिवाइड करेगा, तो अब थोड़ा सा फाइनेंशियल प्लानर के रूप में बैंकर को बनाना पड़ेगा यंग जन पीपल को, क्योंकि जब जैसा जैसे एज यंग होते हैं तो लोग रिस्क है, उसके बाद फिर हमारे पास पेंशन प्लान है, तो एक बार जो कस्टमर अकाउंट खोलता है यंग जनरेशन, एजुकेशन लोन से लेकर सैलरी अकाउंट से धीरे धीरे फिर इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, तो इन्हीं कॉम्बो प्रोडक्ट्स को ऐसा बनाना पड़ेगा जो अट्रैक्टिव हो या जिनको उनको लगे कि यस उसके बैंक के साथ जुड़ा रहेगा तो आगे उसको। और बेसिकली अगेन पब्लिक सेक्टर बैंक नंबर ऑफ ब्रांचेस हमारे पास काफी हैं, हमारा रीच काफी है, तो इन्हीं को देखते हुए अगर ट्रस्ट है बैंक के ऊपर है, अगर हमारा रीच है, तो मॉडर्न बैंकिंग का एक ग्लोबल कॉम्पिटेटिव इंस्टीट्यूशन बन सकता है, और यही हमारा 2017 का मुद्दा भी है कि हमें टॉप ग्लोबल इंस्टीट्यूट बैंक्स बनाने।
0: और एक आखिरी सवाल का जवाब आपसे ये भी चाहेंगे कि एक तरह से फाइनेंशियल हिस्ट्री भी एक यंग एज से देश के लोगों की तैयार होने जा रही है, तो उससे किस तरह के फायदे लोगों को मिले?
1: फायदे तो देखिए जितना जल्दी अगर हम बैंकिंग से जुड़ते हैं, जितना जल्दी हम अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उतना ही फायदा होता है। तो इसीलिए मैडम ने बोला कि सीता मैम ने कि अगर हम कॉलेजेस में जाएंगे, वहां पे बच्चों के हैबिट्स बनाएंगे, सेविंग्स वगैरह होगा, तो धीरे धीरे उनका बैंकिंग इंपॉर्टेंस पता चलेगी। तो इसी ये नए प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, प्लस डिजिटल है और थ्रू डाटा एनालिटिक हम जो क्रॉस सेलिंग अप सेलिंग करते हैं, तो इन सबको अगर इकट्ठा लेके चलेंगे तो आई थिंक हमारा डिपॉजिट भी बढ़ेंगे और एक जो हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन और सभी के जितने सभी का खाता हो, जितने लोग बैंकिंग में आएंगे और उतने ही प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे।
0: जी आपसे भी एक सवाल का जल्दी से जवाब चाहेंगे कि अगर इस कॉन्फ्लुएंस का सबसे महत्वपूर्ण नतीजा बताना हो जो आम लोगों, युवा और किसानों के लिए सीधे फायदेमंद हो, तो वो क्या होगा?
2: वो ये है कि बैंकिंग को 2047 में किस रूप में हम देखना चाहते हैं, मतलब वो सभी जितने भी स्टेक होल्डर हैं, चाहे यूथ है, चाहे एग्रीकल्चर है, ट्रेडर है, एमएसएमई है, सबकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए और सबको सर्व करने वाला बैंक चाहिए। तो वो दोनों तरफ से है, मतलब वैसा ही आपको कस्टमर बेस चाहिए और वैसा ही ये चाहिए।
0: बिल्कुल, तो अब देखना होगा सरकारी बैंक या तमाम बैंकिंग व्यवस्था इन चीजों को किस तरह से अमली जामा पहनाती है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
3: नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे सार्वजनिक बैंकों का आधुनिकीकरण, युवा ऋण और डिजिटल विस्तार पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान के जोनल प्रमुख और वरिष्ठ बैंकिंग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र कुमार भसीन और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है। एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के उभरे केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 10 बज चुके हैं। लीजिए सुनिए अपना पसंदीदा कार्यक्रम रसधारा। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेवा के गाए इस गीत के साथ। फिल्म है जुनून।

अभी आप सुन रहे थे जुनून फिल्म का गीत विपिन सचदेवा और अनुराधा पौडवाल के स्वरों में। गीत लिखा था समीर ने, संगीत दिया था नदीम श्रवण ने।

और अब आइए सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में इंटरनेशनल खिलाड़ी फिल्म का ये गीत। गीतकार देव कोहली, संगीत आदेश श्रीवास्तव का है।

0: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
1: इस समय आपने ट्यून किया है आकाशवाणी ओबरा और कार्यक्रम है रसधारा। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म ये दिल लगी से। गायक कुमार सानू और लता मंगेशकर, गीतकार समीर, संगीतकार दिलीप सेन, समीर सेन। इस वक्त समय हुआ है स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:11 और 26 सेकेंड।

0: आकाशवाणी उभरे से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रसधारा। रेडियो सेट पे मैं प्रियंका और अगला गीत आइए सुनते हैं मूवी यलगार से। इस गीत को अपनी आवाजें दी हैं उदित नारायण और सपना मुखर्जी ने। गीत लिखा है सुदर्शन फकीर ने और संगीत दिया है चन्नी सिंह ने।
1: ऐ मेरी हमराज मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
2: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

और अब कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं विजू शाह के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शू के लिखे इस गीत को। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की, फिल्म है मोहरा।

उदित नारायण और अलका याग्निक की गाए इसी गीत के साथ कार्यक्रम रसधारा अब समाप्त होता है। एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उस्ताद विलायत हुसैन खां का राग जोग में ख्याल गायन। तो आइए सुनते हैं इनका गाया राग जोग में ख्याल गायन।

अभी आप सुन रहे थे उस्ताद विलायत हुसैन खां का राग जोग में ख्याल गायन। इसी के साथ कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत अब समाप्त हुआ।

0: एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिसमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
2: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd and 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4थी लाइन, गुमीडी पुंडी गुदूर की 3री और 4थी लाइन, कटक पारादेव की 3री और 4थी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लागत को संतुलित बनाए रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवसंरचना विकास की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित सुरंग और पुल सम्मेलन 2026 के 4थे संस्करण को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय राजमार्ग निर्माण कार्यों की उप ठेकेदारी संबंधी मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा करेगा ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि संविदात्मक आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन किया जाए और गुणवत्ता तथा समय पर निष्पादन की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से मुख्य ठेकेदार की ही रहे। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कृष्णानगर अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 28 अगस्त तक प्रस्तुत की जाए। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गौर जम्मू कश्मीर में अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमरीका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। नीदरलैंड्स के अम्स्टेल्फेन में एफआईएच हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त मजबूत की। भारत ने गोल में 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रनों से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की पूरी टीम आज 206 रन पर आउट हो गई। माथव मानव सुथार ने इस मुकाबले में कुल 131 रन देकर 10 विकेट हासिल किए। मानव ने पहली पारी में 76 रन देकर 4 विकेट छटके थे। वहीं दूसरी पारी में उन्होंने 55 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के उबरा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 11:05 हुए हैं। हमारी आज की यह सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल सुबह 5:50 पर अपने कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।